लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरे के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो और समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।

शांति। योगयुक्त जीवन स्वयं को भी बहुत प्रिय लगता है और योगी आत्माएं भगवान के तो मानो नैनों में बसे रहते हैं। संसार को भी, प्रकृति को भी योगयुक्त आत्माओं की बहुत बहुत जरूरत है। जो योगी बन जाते हैं वो वास्तव में सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। योगी ही सच्चे मन से महसूस करता है कि भगवान मेरा है, वो उस पर प्यार और अधिकार की संपूर्ण फीलिंग करता है। तो आओ हम सब योगी बने, क्योंकि आने वाला समय योगियों का होगा। योगयुक्त आत्माएं ही अपने सर्व खजाने देकर, दृष्टि डालकर दूसरों का कल्याण करेंगी। तो याद रखेंगे, अहंकार से हमारा कोई नाता नहीं है, क्योंकि योगी और अभिमान दोनों साथ साथ नहीं चलते। जहां अभिमान है वहां योग टूट जाता है, और जहां श्रेष्ठ योग होगा वहां अभिमान की रियलाइजेशन भी अवश्य होगी। अगर कोई बहुत अच्छा योग भी करता हो लेकिन उसे अपने अभिमान की पकड़ ही न हो तो उसका योग यथार्थ कभी नहीं माना जाएगा। हम स्वयं को स्वमान में स्थित करते चलें और अभिमान से मुक्त होते चलें। याद रखेंगे, जितना ज्यादा हमारा स्वमान बढ़ेगा उतना ही अभिमान और अहंकार घटता जाएगा। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं देता, लेकिन स्वमानधारी व्यक्ति न केवल दूसरों को सम्मान देता है लेकिन उन्हें स्वमान की ऊंची नजर से भी देखता है। स्वमान हमारे जीवन को बहुत महान बना देता है, और जहां अहंकार है वहां व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसमें कितने भी योग्यताएं हों, लेकिन उसका प्रभाव लोगों पर बहुत गहराई तक नहीं पहुंचता। हमें सेवाएं भी करनी हैं, हमें लोगों के संपर्क में भी आना है, हमें उन्हें गुड वाइब्रेशंस भी देने हैं। इसलिए हम निरहंकारी बने। अहंकार हमारी सेवाओं के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि अहंकार में आकर ही आत्माएं टकराव में आती हैं, और जहां सेवाओं में टकराव होता है वहां तो सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता, वहां तो वाइब्रेशन ही बहुत अशांत हो जाते हैं, और लोग तो हमारे पास शांति की अनुभूति के लिए आते हैं, लोग तो हमारे पास प्रेम पाने आते हैं। यदि हम अहंकार के मद में चूर होंगे तो हमसे लोग क्या पाएंगे? अहंकारी व्यक्ति तो खुद ही खाली होता है। और एक बात आज हमें विशेष रूप से स्वयं में चेक करनी है, अहंकार का एक बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, मैं राइट हूं, इस बात को जरा ठीक करें। हमेशा मैं ही राइट नहीं होता। दो व्यक्ति जब आपस में झगड़ते हैं दोनों ये समझते हैं हम राइट हैं, पर वास्तव में दोनों ही गलत होते हैं। जो राइट है, जो सही है, जो सत्य है, उसे शांत होना चाहिए, और शांति का प्रभाव अपनी राइट बात के साथ जोड़ लेना चाहिए। यदि शांति, सहनशीलता भी हमारी सत्य बात के साथ जुड़ जाएगी तो हमारी सत्य बात दूसरों को अवश्य स्वीकार्य हो जाएगी। लेकिन मैं राइट हूं ये सोच सोच कर राइट होते भी यदि अभिमान आ गया, यदि लड़ाई झगड़ा हो गया, यदि स्थिति बिगाड़ ली, तो उस सत्य बात का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो आज हम सारा दिन अहंकार पे ध्यान देंगे, कहां कहां हमारे अंदर मैंपन आता है इसको चेक करेंगे, और इस स्वमान का अभ्यास करेंगे।

मैं एक महान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है, उसने करोड़ों में से मुझे चुना है, मेरी चमक संसार की सभी आत्माओं से ज्यादा है, मेरे प्रकाश से संसार का अंधकार दूर हो रहा है, और साथ साथ बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बहुत गुड फीलिंग करेंगे अपने हाथ, बाबा के हाथ को अपने सिर पर पाएंगे, अपने हाथ में बाबा का हाथ देखेंगे और देखें आज की सुंदर अनुभूतियां। ओम शांति।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से हम उसे होते देखना नहीं चाहते और जिसे हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से हम उसे होते देखना भले न चाहें, लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार करने की स्थिति में हैं, तो हम सहिष्णु बन जाते हैं। किसी के पास जब कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे पास नहीं है, या वह कोई ऐसा परिणाम दे सकता है जो हम नहीं दे सकते, और यदि हम यह बात स्वीकार भी नहीं कर पाते, तो हम ईर्ष्यालु हो उठते हैं। लेकिन यदि हम यह सब स्वीकार करने की स्थिति में हैं, तो हम प्रेरित हो जाते हैं। जब हम किसी अनिश्चितता में उलझ जाते हैं और यह निर्णय नहीं ले पाते कि अब क्या करें, और यह बात हम स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, तो यह स्थिति हम में भय पैदा कर देती है। जब हम किसी अनिश्चितता में उलझ जाते हैं और यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन यह बात हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जोखिम उठाने का साहस अनुभव करते हैं। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो और हम उसे स्वीकार न कर पाए, तो हम में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो हमें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो, लेकिन हम उसे स्वीकार कर लें, तो यह स्थिति उसे माफ कर देने में हमारी मदद करती है।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जब कोई हमारे ख्यालों में तो मौजूद रहे लेकिन शारीरिक रूप से हमारे साथ न हो और हम यह स्थिति स्वीकार भी न कर पाएं, तो हम कह उठते हैं कि हमें उसकी कमी खल रही है। जब कोई हमारे ख्यालों में तो मौजूद रहे लेकिन शारीरिक रूप से हमारे साथ न हो और हम इसे स्वीकार कर लें, तो हम कहते हैं कि हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। और तब भावनात्मक समीकरण काफी आसान हो जाता है। कुछ होना और उसे स्वीकार करना, यह है सकारात्मक भावना। कुछ होना और उसे स्वीकार न करना, यह है नकारात्मक भावना। तो यह कुछ या कोई नहीं है जो हमें सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को मेरा स्वीकार कर लेना या स्वीकार न करना है जो मुझे सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है। बात इस संसार की नहीं है, बल्कि संसार के प्रति मेरी प्रतिक्रिया, स्वीकार करना या न करना की है, जो मेरी भावनात्मक गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगली बार जब किसी नकारात्मक भावना के कारण हम खुद को परेशान होता पाएंगे, तो यह पूछने के बजाय कि यह क्या है या कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, हम यह देखेंगे कि किस व्यक्ति या चीज या स्थिति के प्रति मैं प्रतिरोध यानी कि स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, और फिर उसका प्रतिरोध करने के बजाय मैं उसे स्वीकार कर लूँगा या स्वीकार कर लूँगी। तब नकारात्मक भावना अपने आप ही सकारात्मक भावना में रूपांतरित हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के मध्य दोष मढ़ना बंद कर देने और स्वीकार कर लेने की जिम्मेदारी के साथ जीवन पर प्रतिक्रिया करने से भावनात्मक कौशल की शुरुआत हो जाती है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि आप देख किसे रहे हैं, अपने अतीत को या अपने भविष्य को। मैं या तो यह कह सकती हूँ कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या फिर यह कह सकती हूँ मैं अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहती हूँ। आज की जमीन पर खड़े होकर आप भविष्य को देखें, अतीत को नहीं। ज्ञान को लेकर आगे देखें, पीछे नहीं। जो लोग यही कहते रहते हैं, काश, यदि, वे दरअसल ज्ञान को लेकर बीते कल में झांक रहे होते हैं। अगर आप अपने भविष्य निर्माण को लेकर जागरूक हैं, तो फिर अपने अतीत को दोबारा जीवित करने की अर्थहीन कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई ज्ञान आपको देरी से नहीं मिलता, वह तभी मिलता है जब उसे मिलना होता है, जब आप उसे पाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। ऊपर वाले की समय सारणी पर कभी प्रश्न न उठाएं। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब आगे देखा तो वे महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वे विवेकानंद बने। हमारा भविष्य हमारे अतीत के समतुल्य नहीं होता। भविष्य के स्वागत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, हमारा सर्वोत्तम तो अभी आना है। हर ज्ञान के साथ, हर ज्ञात के साथ, हर बोध के साथ, हर गंभीर जागरण के साथ हम अपने इच्छित भविष्य का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ें। आपको ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए कतई नहीं दिया गया है, बल्कि यह तो भविष्य का निर्माण करने के लिए दिया गया है। आगे देखें। आप नहीं जानते कि आप क्या बन सकते हैं। जो आप बनने वाले हैं वह भविष्य में कहीं आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए आगे बढ़ें, उस व्यक्ति से मिलें जो आप बनने

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

एक सुप्रसिद्ध वक्ता जो उसकी गंदी कार से उतर रहा था, उसको देखकर हम दंग रह गए। वह कार इतनी गंदी थी कि हम अपने बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर भी उसे छूना पसंद नहीं करते। कार के अंदर का नजारा ऐसा था जैसे नाली अटकने से कूड़े का ढेर लग गया हो। और वह वक्ता महोदय जिस विषय पर भाषण देने पधारे थे वह था जीवन की गुणवत्ता। एक बार हमने देखा कि एक आध्यात्मिक सत्संग से बाहर निकलते चेले अपनी आंखों का मैल साफ कर रहे थे। इससे साबित हो रहा था कि ये लोग जो अपने तन को स्वच्छ रखने तक में लापरवाह हैं, वे अपने मन को अपनी आत्मा को स्वच्छ करने चले हैं। कितना अज्ञान है, वे नहाते तक नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके जीवन पर गुरु की कृपा बरसती रहे। हमने ऐसे सेल्समैन देखे हैं जिनके जूतों पर पॉलिश नहीं थी, टाई फूहड़ ढंग से बंधी थी, लेकिन अपने उत्पाद व सेवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला बताने में वे पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुणवत्ता पहले भीतर उदित होती है और फिर बाहर प्रकट होती है। जो गुणवत्ता हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह इस पर निर्भर करती है कि हमारे भीतर कैसी गुणवत्ता है। जो गुणवत्ता हमारे भीतर है वह इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं, और हम क्या करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है कोई दूसरा हमसे जितनी अपेक्षा करे हम खुद से उससे ज्यादा अपेक्षा करें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है संसार हमारे लिए जितना उच्च स्तर निर्धारित करे हम अपने लिए उससे उच्च स्तर निर्धारित कर लें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है यह विश्वास करना कि हर चीज और हर अवस्था को उन्नत और बेहतर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। गुणवत्ता यानी एक ऐसी चीज जिसका होना तो नजर से चूक सकता है, लेकिन जिसका ना होना नजर से कभी नहीं चूक सकता। गुणवत्ता उन क्षेत्रों में छोटे बड़ी हर चीज का उत्कृष्ट होना है जिस पर दूसरे शायद ध्यान भी न दें। सुगंध हो या न हो, फूल तो फूल ही रहेगा, लेकिन उसमें सुगंध होने से बहुत फर्क पड़ता है।

गुणवत्ता ही वह अदृश्य शक्ति है जिसका होना ही सारा फर्क पैदा कर देता है। तो हम भी अपने जीवन स्तर की गुणवत्ता को चेक करें और उसे उच्च से उच्चतर बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य है, मगर क्या स्वास्थ्य इतना ही है? आज अगर हम स्वास्थ्य का ना होना भी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य समझते हैं तो भी आज हम देखते हैं कि कई लोग दवाइयों को खाते हुए अपने आप को स्वस्थ समझकर चलते हैं। कई लोगों को आदतन गोलियां खाने की या किसी न किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की आदत हो जाती है। लोग कहते भी हैं कि भाई, इन दवाइयों के साथ तो ठीक चली रही है गाड़ी, तो फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी कई लोग मानने लगते हैं। जब हम स्वास्थ्य के बारे में सही जागरूकता नहीं रखते तो ऐसा होता है कि हम अपनी अपने स्वास्थ्य की मान्यताओं को ही सत्य मानने लगते हैं। इसलिए ये जानना भी आवश्यक है कि सही अर्थों में हम स्वास्थ्य को कैसे समझें और अपने परिवार और अपने स्वजनों को स्वस्थ बनाने में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आइए, आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। आज हमारा मार्गदर्शन के लिए स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई व्याधि ना हो, कोई पेन नहीं हो बॉडी में, तो लोग समझते हैं कि ऐसे किसी प्रकार का पेन ना होना या बीमार ना होना ही स्वास्थ्य है, ऐसा कई लोग समझ लेते हैं। और कई कई बार तो लोग उससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई, मैं अगर ये दवाई लेता रहता हूँ, हर दिन मैं ये गोली खाता रहता हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं स्वस्थ ही हूँ, मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इसको भी स्वास्थ्य का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन समझकर लोग चलने लगते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे
1: श्री भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात की है, एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बात करता है कि सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने चाहिए। आज इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अखबार अभी देखेंगे खोलकर, जब बच्चों का 10वीं या 12वीं का रिजल्ट निकलता है, उनका परीक्षा फल आता है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि ये बच्चा 99.99% पाया, और कुछ बच्चे तो इतना अच्छा नंबर पा रहे हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। पर आप ये भी तो देखिए कि बहुत बच्चे मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, तो वो तो मानसिक रूप से परेशान हो ही जा रहे हैं, साथ साथ उनके माता पिता भी उस बच्चे के नंबर न होने से भी परेशान हो जा रहे हैं। तो आप इस पूरी व्यवस्था को स्वस्थ व्यवस्था नहीं कह सकते। आप अगर किसी भी व्यक्ति के बढ़ने से कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है और आप अगर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप उसको स्वस्थ व्यवस्था नहीं मानेंगे। आप ये सोच रहे हैं, आपका दिमाग कुछ ज्यादा सोचता रहता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्या मेरे खाने में कुछ गलत मिला हुआ है, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या ये जो मैंने कपड़ा पहना है ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आप बार बार बार बार इसी चीज के लिए परेशान होते रहेंगे तो आपको ठीक से स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। सिर्फ शरीर में कोई दर्द ना होना, कोई व्याधि ना होना, कोई परेशानी ना होना, जैसे हम लोग अभी डायबिटीज की बात की, आप पेशेंट को, मरीज को मालूम ही नहीं चलता है कि डायबिटीज है उसको, पता चला कंधा बस जाम है, कंधा जाम है, अरे कुछ तरह दर्द हो गया होगा, अरे जिम में खींच गया होगा, अरे हाथ खींच लिए होंगे, ये सारा हम बस बोलते रहेंगे और पता चलता है कि अरे भाई, ये तो डायबिटीज निकल गई। महिलाएं कितनी आती हैं कि उनको मासिक धर्म की समस्या हो रही है, महिलाएं आ रही हैं जिनको बाल झड़ रहे हैं, थकान बहुत लग रही है, उनको पसीने में दुर्गंध होने लगी, फिर अरे ये तो बहुत दिन से चला, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो मालूम चले रहे आपको तो थायराइड की समस्या शुरू हो गई, हार्मोनल

0: समस्या शुरू हो गई। तो मैं सब बहुत एक खतरनाक एग्जांपल कैंसर है, आदमी को मालूम ही नहीं चला जब वो सेकेंड फेज थर्ड फेज में चला गया तब पता चला रे भाई तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है आपके शरीर में कहीं पे और आप सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, पर आपको मानसिक शारीरिक और सामाजिक रूप तीनों तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके रोज कोई दवा या गोली अपने दिमाग से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने सेंस से मत खाइए। जब तक किसी डॉक्टर ने आपको ना लिखी हो, जब तक आपको ये समस्या हो, कुछ गड़बड़ आपके अंदर निकले, कुछ ठीक चीज ना हो, तो आपको वो दवा खानी चाहिए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि रोज मैं ये गोली खा लूं तो मैं ठीक महसूस करूंगा, रोज मैं ये, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ, इतने मरीज आते हैं, आप उनसे कहिए कि आप ये दवा खाते हैं, हाँ सुबह उठ के गैस की गोली खा लेते हैं, क्यों, हमको गैस बहुत बनती है। अच्छा, आप भोजन में कोई अपने वो किए, नहीं नहीं भोजन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, हम बस ये गैस की गोली सुबह खा लेते हैं, फिर हमें जो मन में आता है हम खाते रहते हैं। अरे अपना भोजन सुधार लीजिए, आप अगर अपना भोजन सुधार लेंगे तो शायद आपको वो गोली की जरूरत न पड़े। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, अपने भोजन को सुधार लीजिए, और जहां तक हो सके अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके दवाई का प्रयोग मत करिए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों का, होम्योपैथी का, एलोपैथी का, इवन नेचुरोपैथी का अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके उनका प्रयोग मत करिए।
1: ये बात समझ में आती है कि आज हम दवाइयों के साथ अपने जीवन को ठीक चला रहे हैं और इसे हम स्वास्थ्य का परिचायक समझकर अगर चलते हैं तो वास्तविकता में ये हमारी भूल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आती है। अब दवाइयों के साथ जो चीजें हम कर रहे हैं, दवाइयां हर दिन खाने वाली जो चीजें एक रेगुलर चीज बन गई है, वो आम बीमारियों के रूप में भी हम देखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हम डायबिटीज और बीपी, इनके लिए लोगों को गोली लेते हुए देखते हैं। डायबिटीज के लिए मरीज डायबिटीज की गोलियां ले रहे होते हैं और कोई को अगर बीपी की समस्या है तो वो बीपी की गोलियां लेते रहते हैं। पिछले एपिसोड में हम ये बात कर रहे थे कि बीपी क्या है और इसे कैसे समझने की जरूरत है और क्या इसमें होता है शरीर में, ये चीज हम समझ रहे हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हम आम लोगों को, जैसे कोई घर आए मेहमान को पूछते हैं, वैसे ही हम पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज या बीपी तो नहीं है, और कहते हैं कि हाँ उनको बीपी है या डायबिटीज है तो भी हम बोलते हैं हाँ अच्छा ये भी ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल नॉर्म के रूप में इस बीमारी को देखने लगे हैं। तो प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के बारे में तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम समझते आए हैं, मगर बीपी की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे कि भाई बीपी भी कोई चीज है, बट आजकल ये एक कॉमन नोशन बन गया है, हर कोई मतलब बीपी की दवाई के बारे में बात करता है, बीपी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है?
0: जैसा भैया हम लोग ने आज शुरुआती बात में किया कि जैसे हेल्थ की जो डेफिनेशन की बात की कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, और कल जो हमने बातों में ये बात समझी कि देश में करीब 15 से 20 करोड़ लोग इस समस्या के मुहाने पे खड़े हैं, मतलब और हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है इसीलिए फिगर हमेशा बहुत बड़े हैं, हम इतने स्ट्रेस में इस समय रह रहे हैं कि हमारा जो तनाव है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है। बहुत एकदम अगर साधारण रूप से समझिए कि अगर आप किसी चीज पे गुस्सा करते हो तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है, आप पूरे शरीर में आपके कंपन होने लगता है, तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है कि मतलब आप किसी पे गुस्सा हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर आपकी प्रवृत्ति यही है कि आप बार बार हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो सबसे जो बड़ी चीज ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार परेशान हो जा रहे हैं, आपके ऑफिस में अगर कुछ हो रहा है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके व्यापार में कुछ हो रहा है, आप उसके लिए बार बार चिंता करेंगे तो उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, और अगर आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली मिल रही है वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब आदमी कम सो रहा, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा मोबाइल फोन है। हम लोग ने पिछले एपिसोडों में बात किया है, कृपा करके अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से दूर रखिए, अगर वो आपके हाथ में रहेगा तो आपको वो सोने नहीं देगा, और अगर आपको वो सोने नहीं देगा तो आप फिर अगले दिन सवेरे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जी भैया, आप लोग ने ये भी देखा है कि जो ब्रह्म कुमारी का लिटरेचर है वो बहुत पॉजिटिव लिटरेचर माना जाता है, वो बड़ा अच्छा लिटरेचर माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ किताब पढ़ लें, हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ अच्छी चीज का अध्ययन कर पाए। ये तो हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर बच्चे को सुलाना तो कुकोर्स की किताब दे दीजिए, वो तुरंत सो जाएगा। तो हम अगर अच्छे विचार पढ़कर अगर हम सोएंगे तो हमारी नींद ठीक रहेगी, हमको मानसिक रूप से आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम अपने जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उस दोनों का तनाव कम कर पाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जरा ठीक से सोइए, पूरा 6 से 7 घंटा सोइए। मोबाइल के बाद जो दूसरा कारण ये देखा जा रहा है जो नींद लोगों की कम होती है वो है ट्रैवल टू वर्क, मतलब आप अपने घर से अपने काम करने की जगह पे कितना दूर जाते हैं। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ लोग वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा एक तरफ, मतलब दिन में 24 में से नॉर्मल है 2.5 से 3 घंटा वो अपना सिर्फ अपने काम की जगह पे जाने में और काम की जगह से अपने घर जाने में समय बिता दे रहे हैं। तो सोचिए 24 में से 3 घंटा तो लोगों का अपने सफर में ही बीत गया। तो आपके पास जो नींद का समय, जो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए, वो कैसे मिली? तो ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो अपना ट्रैवल टाइम कम करने की कोशिश करिए, और सोते समय प्लीज मोबाइल को जो प्रयोग है उसको कम करिए, तो आपकी नींद ठीक हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, जो आप अभी बात कह रहे हैं वो पता चलता है कि वो कितनी प्रासंगिक है। एक तो हम आज अपने ही ख्याल रखने के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम या तो अपने काम से रिलेटेड चीजें जो है उसको ही ज्यादा प्रामुख्यता देखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर हम सेल्फ केयर नहीं करते, अपने ख्याल रखने के बारे में हम ध्यान नहीं देते, तो हमारे अपने स्वास्थ्य को हम दरकिनार करते हुए इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है, और इसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी हैं, ये बात समझ में आती है। पर जैसे आपने कहा कि एक सकारात्मक लिटरेचर जो है, ऐसी पॉजिटिव चीजें जो ब्रह्म कुमारी इस परिवार में लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मिलती है, वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बहुत बार लोग ये कहते हैं हम करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है, मगर उसका उदाहरण यहाँ ब्रह्म कुमारी इस परिवार में हम देखते हैं कि लाखों लोग आज यहाँ सिखाए जाने वाले इन सरल विधियों को सीख कर अपने जीवन को सशक्त जीवन बनाते हैं, जीवन में छोटी छोटी तब्दीलियां करते हैं, पूरी आदतों से बच जाते हैं, अपने क्लॉक को, बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए सोने और जागने के समय को निर्धारित करते हैं। वो जैसे अक्सर राजयोग ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यही बताया जाता है कि आप स्वयं के राजा बनते हैं, आप अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने काबू में स्वयं को, अपने मन को, आप जो करना चाहते हैं वो सशक्त होकर कर सकते हैं, बात पता चलती है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर साहब मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि बहुत बार हम बीपी के बारे में सुनते हैं, तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत भी है कि हम इसमें मन का क्या रोल है, हमारे शरीर का क्या रोल है, और हमारे डाइट, खान पान इत्यादि का क्या रोल है बीपी की बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं या इससे ग्रसित होते हैं।
0: भैया, आपने अभी बड़ा अच्छा बताया, और जो अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करने आते हैं, मैं जो भी सुन रहा है, मैं चाहूंगा प्लीज एक बार माउंट आबू वाले सेंटर पे जरूर जाइए। जब सवेरे 4 बजे आपको उठाएंगे मेडिटेशन के लिए, और उठाएगा कोई नहीं, ये बात गलत है, आप अपने आप उठ जाएंगे, आप अपने आप, आपके अंदर से आवाज आएगी, यार इतने दूर आए हैं, चलो चल के देखें क्या होता है। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, जहां पहला दिन थोड़ा सा परेशान करेगा, दूसरे तीसरे दिन तो बाप रे आपको इतना आनंद आने लगेगा कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने जो मन है मानसिक रूप से शांत होते चले जाएंगे। आप खुद देखिए, ब्लड प्रेशर के इलाज में जो चीज सबसे पहले कही जाती है कि प्लीज थोड़ा मेडिटेशन करिए, ये बड़ा ही ब्रॉड टर्म है मेडिटेशन, मगर आप किसी भी विधि से, किसी भी गुरु के सिखाए हुए तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो आप बहुत कुछ पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और आप बीपी से बच सकते हैं। अभी मैं एलोपैथी की पढ़ा हूं, तो अगर आप किताबों को पढ़िए और अगर आप क्लिनिक्स में भी जाइए डॉक्टर के यहाँ, तो पहले वो तुरंत बोलते थे कि अरे ये गोली खा लो और ठीक हो जाएगा। अब वो देखिए आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कुछ एक्सरसाइज करिए। सेकंड, यूज ऑफ योगा आसन एंड प्राणायाम, कि आप कुछ आसन करिए मतलब फिजिकल एक्टिविटी करिए, प्राणायाम करिए मतलब ब्रीदिंग पे अपने कंट्रोल करिए। यूज ऑफ मेडिटेशन, प्लीज यूज मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन करिए। और उसके बाद नीचे लास्ट में लिखा जाता है कि अवॉइड सॉल्ट इनटेक। पहले जैसे हमेशा बोला जाता था ब्लड प्रेशर है तो आप 4 चीजें अपने भोजन में से निकाल दीजिए, जो है चूरन, चटनी, अचार और पापड़, कि अगर आप ये चीज जिसमें भयंकर सॉल्ट है, और खासकर आबू राजस्थान में है तो वहां तो बड़ा अच्छा नमक का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नमक और बहुत अच्छा घी का प्रयोग किया जाता है, और वो पचा भी लेते हैं उसको। तो अब डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि आपको अपने जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप आलसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब आप दिन भर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप ही मतलब कुर्सी पे बैठे ही बैठे काम कर रहे हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने को थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। कहा जाता है प्ले एनी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, आप वो नहीं कर सकते तो बेसिक वॉकिंग करिए, आप टहलिए। और ये भी कहा जाता है प्लीज घर के बाहर जाके टहलिए, अपने घर में ट्रेडमिल ले आए उस पर टहल रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि आप बाहर जाके भी अगर टहल पाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो मन है वो वातावरण को देखेगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आप कुछ लोगों को देखेंगे, आप अगल बगल आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। और ये हुआ मेंटल बात की मेडिटेशन योगा प्राणायाम का प्रयोग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना आलस्य जीवन जो है उसको छोड़िए। और तीसरा जो कहा जाता है, मतलब माइंड ठीक हो गया मेडिटेशन से, बॉडी ठीक हो गई ठीक ठाक खाने से, एक्सरसाइज बॉडी ठीक हो गया, और फिर बोला जाता है कि डाइट को कंट्रोल करिए, मतलब अपने भोजन को कंट्रोल करिए। और सबसे पहली बात जो बोली जाती है लो सॉल्ट डाइट, मतलब आप प्लीज ऐसा मतलब भोजन करें जिसमें नमक की मात्रा कम हो, और जो आज के परिवेश में मैं जो बोलना चाहूंगा कि प्लीज फ्रोजन एंड फ्राइड, मतलब जो भी भोजन फ्रीज किया गया हो और उसका प्रयोग हम फिर से तल के या गरम करके या माइक्रोवेव करके या ओवन में डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी चीज को भी प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी चीज को जिसको तला बहुत ज्यादा गया है, जिसपे नमक बहुत ज्यादा डाला गया हो, इन सारी चीज को अपने भोजन से हटा दीजिए और अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा घूमिए टहलिए और थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, ये सब आपको बहुत फायदा देगा।
1: बहुत ही सुंदर बात आप ये समझा रहे हैं कि एक ओर हम बीपी के बारे में बेहतर समझ तो हासिल कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम इसके निदान के लिए या इससे बचाव के लिए भी हमें क्या करने की जरूरत है, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। दोस्तों, ये ना समझें कि बीपी उम्र के साथ आने वाली बीमारी है और इससे हम नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम आज से ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम बेहतर बढ़ा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तला हुआ या नमकीन चीजें खाना, और खासकर आज क्योंकि हम बहुत सारी चीजें घर में नहीं बनाते हैं और आसानी से ये चीजें बाहर से हम खरीद के खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए घातक हो सकती हैं, हमें बीमारियों के कगार पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अपने आप के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, जैसे कि आप थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा अपने भोजन के प्रति ध्यान देना शुरू करेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। आज समय को देखते हुए इस एपिसोड में यहाँ रुकते हैं दोस्तों, मगर डॉक्टर आर मोदी जी ने आज हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें मार्गदर्शन दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हमने बीपी, जो एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं, उसके बढ़ते हुए कारणों के बारे में समझा। साथ में ये भी समझा कि हम क्या ऐसे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज के सेहत स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में बहुत सी चीज़ें हमने देखी, समझी कि कैसे खुद अपने आप को हम मैनेज करना सीख सकते हैं, चाहे उसमें बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी,

0: रिश्तों को भी देखा, कितने रोल्स हम निभाते हैं, और अब हम पहुंचे हैं रिसोर्सेज पर। ये हमें समझ में आया कि हमारे सामने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, हमारे सामने मेंटल रिसोर्सेज, हमारी अपनी जो संकल्प की शक्ति है, जो थॉट पावर है, वो कितना बड़ा रिसोर्स है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज रिसोर्सेज को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि कुछ और भी हमारे पास निधि है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर, बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, रिसोर्सेज को थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि एक बार एक नए रूप में हमारे सामने आ रही है कि एक तो मेरी ये फिजिकल जो आपने बताया था कि ये मेरा रिसोर्स हुआ, और एक मेरी जो थॉट पावर है उसको मैं कैसे एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते।
1: थॉट पावर तो सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, बिकॉज सारा दिन में हम जो कुछ कर रहे हैं, इट्स स्टार्टिंग विद द थॉट। सो एवरीथिंग दैट्स, एंड वी ऑल्सो हैव अंडरस्टूड दैट मेरा थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट करता है। तो सबसे बड़ा रिसोर्स, मतलब चाहे आप अपने धन को रिसोर्स मानो, मैन पावर को रिसोर्स मानो, लेकिन उस सब को हैंडल करने वाला, उस सब को मैनेज करने वाला, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बट द माइंड विच इज़ गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग, हु इज़ गोइंग टू मैनेज द माइंड एंड वो रिसोर्स। जैसे अगर किसी के पास बहुत धन है लेकिन वो उसको राइट विधि से यूज़ ना करे, तो वो धन बढ़ने के बजाय या वो वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक स्टॉक ऑफ एनर्जी है, लेकिन सारा दिन में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम सबको पता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारी सबसे वैल्यूबल जो रिसोर्स है, दैट इज़ थॉट पावर। क्योंकि सब कुछ जो हम करते हैं सारा दिन में, चाहे वो हमारा वर्क है, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इट ऑल इज़ बिगिनिंग विद अ थॉट। तो अपनी थॉट्स को राइट विधि से यूज़ करना, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग दैट हैपन्स विद मी इन लाइफ। क्योंकि माई थॉट, देन माई फीलिंग, इट विल कम आउट इन टू एक्शन, एंड जो मेरा एक्शन होगा उसी का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। सो एवरीथिंग इज बिगनिंग विद द थॉट। तो थॉट पावर तो सबसे बड़ा रिसोर्स है।
0: इनफैक्ट कई बार हम ये भी कहते हैं शिवानी कि मैंने सोचा और वो हो गया।
1: हाँ,
0: अभी सोचा ही था और वो हो गया।
1: Absolutely, क्योंकि एनर्जी है ना, वो एनर्जी ही। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारे हाथ में है सब कुछ, लेकिन क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, जैसे धन है लेकिन मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ यूजफुल तरीके से जाएगा, कुछ वेस्ट जाएगा। इसी तरह रिसोर्स है, मेंटल पावर, थॉट पावर, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है। सारा दिन में कितने थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस किस के बारे में सोच रहे हैं, किस किस के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, अच्छा अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, वॉट इज ऑल दिस। वो ही एनर्जी कुड बी यूज इन, येस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, बट नो, इंस्टेड ऑफ दैट फियर, इनसिक्योरिटी। एंड जितने पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्वांटिटी कम होती है, स्लो डाउन होते हैं। लेकिन नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स बहुत इतने फास्ट चलते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि कितने थॉट्स क्रिएट,
0: और वो उसके साथ लिंक जुड़ता जाता है, यू नो। और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने में जो हम अभी करने की कोशिश भी करते हैं, जब हम करते हैं तो उसके आगे हमें नहीं आता ज्यादा।
1: क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट कॉन्शियस एफर्ट करके क्रिएट करते हो, अवेयरनेस के साथ क्रिएट करते हो। लेकिन नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस नहीं चाहिए ना, इट जस्ट गोज वेरी वेरी वेरी वेरी फास्ट, पता भी नहीं चलता कितनी थॉट्स चली जाती हैं। जब हम रिएक्ट कर देते हैं वर्बली, तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं जब गुस्सा आता है, लेकिन जो हम बोलते हैं इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ जो हमने एक्चुअली सोचा होता है उस व्यक्ति के लिए। बहुत कुछ अगर सोचा होता है ना किसी के बारे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब अगर गुस्सा आ गया या ट्रिगर हो गया वो, तो उसमें से कुछ एक परसेंटेज निकलता है।
0: वो जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो जो वही निकल जाती है फटाफट।
1: लेकिन जो निकलता है वो भी हमें इतना हैरान करता है, और हम कहते हैं मैं नहीं बोलना चाहता था, मेरे मुँह से निकल गया, या मेरा तो भाव ही नहीं था ये बोलने का। वाई वी आर नॉट अवेयर कि हमने ये सारी थॉट्स कब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करके, अक्यूमुलेट करके, और वो जो बाहर निकलती हैं तो वो दिखने में जैसे लाइक इतना सब कुछ आई सेड, बट व्हाट डिड आई थिंक, वो तो मुझे अवेयर। तो थॉट के ऊपर कंटिन्यूसली एक, इट्स नॉट यू नो टू गेट स्ट्रेस्ड के वो व्हाट एम आई थिंकिंग द होल डे, लेकिन बीच बीच में रुक कर अगर हम देखते जाएंगे, इट इज़ लाइक बीच बीच में स्टॉप जो हम करते हैं, एक घंटे के बाद एक मिनट, दैट इज़ फॉर दिस, स्टॉप चेक, स्टॉप चेक। तो अगर बार बार ये होता जाएगा तो धीरे धीरे वो करना भी नहीं पड़ेगा ऐसे डेलिब्रेटली, आपको सारा दिन में एक अवेयरनेस रहेगी। और ऐसा नहीं है कि एकदम से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे ही आएंगी पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा, नाउ आई एम फीलिंग जेलस, यू विल कम टू नो, अब आई एम हर्ट, आपको पता चल जाएगा।
0: I'm insecure, you know, like, yes.
1: You can make out. Yes. You can make out what is going on. And this is self-awareness. बीमारी पता चल गई एक बार, तो फिर इलाज करना तो बहुत इजी है। If I can understand the minute it starts, कि मुझे hurt हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, then I can work on myself and stop. लेकिन पता ही नहीं चल रहा, हो रहा है, create हो रहा है, और यही सोच रहे हैं दूसरे की वजह से हो रहा है, तो आप अपना इलाज नहीं करवाते। तो जिस दिन बीमारी का root cause पता चल जाता है, फिर इलाज करना is not difficult. तो अगर सुबह हम थोड़ी देर ऐसे अपने साथ time spend करें, just to see what is happening here, and then consciously create positive thoughts. क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हम ख़त्म नहीं कर सकते। यू नो समटाइम्स पीपल जस्ट फील कि मेडिटेशन मीन्स सोचना बंद कर दो, यू नो जस्ट फोकस ऑन अ पॉइंट और आप सोचना बंद कर दो। वन, इट विल नॉट हैपन। एकदम से आप फिफ्थ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आप बोल रहे हो अब एकदम से उसको न्यूट्रल में ले आओ, तो वो झटका लगेगा। अब यहाँ झटका मतलब क्या कि बहुत फास्ट स्पीड पर आपकी थॉट्स है एंड सडनली अपने आप को कहते हो नो थॉट्स, आई एम नॉट टू थिंक, तो द हियर प्रेशर गेट्स बिल्ट अप। तो नो थॉट्स इज नॉट द सोल्यूशन। एंड अगर नो थॉट्स हम कर भी लिया, बट वेन वी गो इन टू एक्टिविटी, तो मुझे ऑफिस में आज प्रोजेक्ट है, लोगों से मिलना है, यू नो सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, कैन आई से नो थॉट्स?
0: थॉट्स तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे,
1: है ना? तो मेरी मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, इट इज़ सपोज टू बेनिफिट मी इन माई डे टू डे। अगर हम नो थॉट्स अभी कर भी लें, हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर, क्योंकि कुछ वेस्टेज नहीं हुआ, लेकिन सारा दिन में वो मुझे कैसे बेनिफिट करेगा? तो राजयोग मेडिटेशन में हम थॉट्स को बंद नहीं करते, हम कॉन्शियसली elevated, positive, powerful thoughts create करते हैं। So it's basically a frequency कि हम सुबह उठकर time निकालकर अपने mind को एक अलग दिशा में, उसको आदत नहीं है उस दिशा में जाने की, उसको आदत है ये fast fast वाले, तो उसको धीरे से धीरे धीरे हर रोज़ उसके साथ बैठ कर प्यार से उसको दूसरी दिशा में लेकर जाना है। अब जब हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना शुरू करते हैं, it doesn't go immediately, फिर वही thoughts आते रहते हैं ऑफिस में ये, तो वी हैव टू वर्क विद इट वेरी जेंटली, नॉट हार्शली, बट नॉट टू गिव अप। अब कई बार हम ट्राई करते हैं मेडिटेशन, फिर हम कहते हैं नहीं होता, एंड वी गिव इट अप। इट विल नॉट हैपन इन वन डे, टू डेज, 10 days, इट विल टेक इट्स टाइम। जो चीज़ को इतने सालों से या कहें इतने जन्मों से शायद एक पर्टिकुलर दिशा में जाने की आदत थी, उसको हम धीरे धीरे दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं, इट विल टेक लिटिल टाइम, बट वी हैव टू नॉट बी हार्श, वी हैव टू बी वेरी जेंटल विद आवर सेल्फ। लेकिन होगा क्या कि आप अब एक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, यू आर ट्यूनिंग इन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑल टुगेदर। So, उसका जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ सुबह नहीं होगा,
0: हाँ, वो दिन भर में हो जाएगा फिर। Yes.
1: वो दिन भर में हो जाएगा कि आपने आदत डाली है अपने मन को अब पॉजिटिव सोचने की, तो फिर वो उसकी जो प्राप्ति है वो सिर्फ सुबह के 10-15 मिनट, आधा घंटा नहीं, सारा दिन। अब आए सिचुएशन, अब आए लोग सामने जो कुछ कह रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं हमारे को, लेकिन मेरे मन को एक अलग दिशा में जाने की अब आदत पड़ गई है, फिर हमें सिचुएशन आने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा, आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। सो मेंटल एनर्जी इज़ वेरी वैल्यूएबल। अब तीसरी जो हमारी चीज़ है, हमारी मेमोरी। मेमोरी तो बचपन से हमें पता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई में हर टाइम वी हैव बीन यूजिंग आवर मेमोरी, लेकिन मेमोरी हमारी पर्सनैलिटी जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आज हम जो हैं, हमारा जो व्यक्तित्व, नॉट फिजिकल पर्सनालिटी, बट मेरी जो व्यक्तित्व है, दैट्स अ लॉट बेस्ड ऑन माय मेमोरी, बिकॉज इस मेमोरी में हमारे हर थॉट, हर फीलिंग और हर एक्शन रिकॉर्ड होता है। एवरी थॉट आई क्रिएट, फीलिंग आई जनरेट एंड एक्शन आई परफॉर्म गेट्स रिकॉर्डेड हियर। मेरी हर हैबिट, हर टेंडेंसी का रूट कहाँ पर है? मेमोरी में। तो लाइक कंप्यूटर में नहीं होता मेमोरी, तो मेमोरी में क्या करते हैं, जो प्रोग्राम आपको वर्क करना है उस कंप्यूटर में, आप उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देते हैं। सो द प्रोग्रामर बेसिकली लोड्स द प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड देन द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग ऑन इट्स ओन। तो यहाँ भी हम एवरी थॉट जो सारा दिन क्रिएट करते हैं, इट गेट्स लोडेड इन टू द मेमोरी ऑफ माई कंप्यूटर हेयर, एंड एवरी दिस थॉट एंड हैबिट दैट गेट्स फॉर्म्ड इज फाइनली माई पर्सनल यू नो प्रोग्राम, दिस इज़ हु आई एम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हैबिट्स होती क्या है, हर कोई भी चीज़ जो हमने
0: बार बार
1: कई बार रिपीट कर ली, वो बार बार करने से यहाँ सेव होती गई. नाउ दैट हैज़ बिकम माई हैबिट. अब जब नेक्स्ट टाइम इम्पल्स आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना,

0: action.
1: Mm. I felt like having a cigarette. You know, it's like they don't even think.
0: They don't even think. See, कि सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे पीना है या किसको नहीं सोचना पड़ेगा जिसने कई बार वो कर लिया है. तो इम्पल्स इज बेसिकली जहाँ आपको ना सोचना पड़ता है ना समझना पड़ता है. सो माइंड एंड इंटेलेक्ट बोथ फैकल्टीज आर टोटली बाईपास्ड एंड इट जस्ट कम्स आउट इन टू एक्शन लाइक दैट. लेकिन इम्पल्स मीन्स क्या? एक एक्शन जो हमने कई बार रिपीट किया था. अब गुस्सा भी ऐसे ही हो गया, जैसे सिगरेट पीना या ये सब बाहर की आदतें हैं. लेकिन गुस्सा क्यों हमें नहीं पता चलता कि ये एक्चुअली हम कर रहे हैं? क्योंकि कई बार करने के बाद इट हैज़ बिकम माय हैबिट. अब ना हम सोचते हैं उसके बारे में, ना उस पर इवैल्यूएट करते हैं कि करना है नहीं करना. इट जस्ट कम्स आउट. दिस इज हाउ इट इज कमिंग आउट. सो लॉट ऑफ माय हैबिट्स हैव बिकम सो डीप रूटेड कि नाउ आई वर्क बाय इम्पल्स. मैं आई एम नॉट, एंड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग बाय इम्पल्स तो क्रिएटिव प्रोसेस बंद हो गया,
1: ऑटोमेटेड हो गया,
0: ऑटोमेटेड हो गया.
1: लाइक इट्स अ रिएक्शन, यू नो,
0: क्योंकि मन और बुद्धि जो दोनों वो एनर्जीज हैं जो क्रिएटिविटी को लाएंगी कि एक नया रिस्पॉन्स करें, सोचें कि ये करूं या नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं. वो तो दोनों फैकल्टीज बाईपास हो गई हैं एंड सीधा इट इज कमिंग आउट इनटू एक्शन. तो तब हमें पता नहीं चलता कि मैंने गुस्सा कर दिया, या तब हम बोलेंगे मैंने नहीं किया, उन्होंने दिला दिया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ना सोचा था ना डिसाइड किया था कुछ भी. तो ये जो हमारा पर्सनल प्रोग्राम यहाँ बन जाता है, यू नो, एक बार आपने प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड कर दिया, आफ्टर दैट इट विल जस्ट वर्क ऑन इट्स ओन. तो इम्पल्स कैसे है? जैसे अगर कंप्यूटर पर आप काम करते हो, अगर आप कीबोर्ड पर कोई भी बटन प्रेस करो तो वो इमिजिएटली वो कैरेक्टर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा. लेकिन वो इम्पल्स से नहीं आया, उसका प्रोग्राम ऑलरेडी फीड किया होता है कंप्यूटर के अंदर कि ये की प्रेस होगी, दिस इज द कोड एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. लेकिन हमें वो प्रोग्राम नहीं पता चलता, हमें क्या लगता है, यहाँ बटन प्रेस किया, यहाँ वो आ गया. इसी तरह आपने ये बोला, मैंने रिएक्ट कर दिया, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आपके वो बोलने में और मेरे वो रिएक्ट करने के बीच में एक प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी कोड हो चुका है. एंड योर saying that was just a trigger कि आपने button press किया, लेकिन जो मेरा reaction था that was based on the program. अब जैसे keyboard है, अगर keyboard और monitor के interface में वो program नहीं किया, आप कितनी भी keys press करो उस keyboard पे कुछ नहीं आएगा. आज हमें लग रहा है this is magic, हम press करते हैं वहाँ वो आता है. It's not, there is a program that has gone inside it. तो every thought that we repeat again and again and again, वो हमारा program यहाँ बन जाता है. हमें अब अवेयरनेस नहीं है कि वो प्रोग्राम ऑलरेडी बन गया है. हमें क्या लगता है, यहाँ से ट्रिगर आया, यहाँ से मैंने जेनरेट किया. तो जो हम रिस्पॉन्स जेनरेट कर रहे हैं, आई विल हैव टू रिमेम्बर आई हैव क्रिएटेड द प्रोग्राम एंड इफ आई वॉन्ट टू चेंज इट
1: आई कैन चेंज.
0: कोडिंग मैंने की थी.
1: वेरी ट्रू शिवानी की, जहाँ बात यह आई कि ये रियलाइज हो जाएगा कि की दबाने वाला और वो लिखने वाला जो पूरा प्रोग्राम था वो मैं था, तो मुझे पता है कि उसको मैं चेंज भी कर सकता.
0: की कोई भी दबा सकता है बाहर से, राइट? लेकिन मैं स्क्रीन पर क्या दूंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन जो मैंने प्रोग्राम लिखा होगा. सो मेरे बटन्स प्रेस करने वाले आप हो एक्चुअली, सिचुएशंस जो बाहर से आती हैं. बट व्हाट आई विल फ्लैश ऑन माय स्क्रीन हियर विल बी बेस्ड ऑन व्हाट कोड आई हैव रिटन इनसाइड. नाउ अगर जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, इफ आई डोंट लाइक इट, आई कांट टेल यू आपने ये बटन क्यों प्रेस किया. आई कैन ओनली चेंज माई कोडिंग. तो वो कोडिंग मुझे कहाँ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ. क्योंकि इस प्रोग्राम में जो यहाँ फीड हुआ हुआ है, इसकी जो डीपेस्ट लेयर्स हैं वो है हमारी बिलीफ सिस्टम. बचपन से एक एक बिलीफ जो यहाँ बैठी हुई है, तो वो बिलीफ से हमारी एक एक थॉट, एक एक फीलिंग क्रिएट होती है. अब शुरू में तो इट विल जस्ट स्टार्ट फ्रेश, यू नो, एक एक थॉट, एक एक फीलिंग. लेकिन वही थॉट्स जब बार बार क्रिएट होने लगे, नाउ इट बिकम्स माय हैबिट. सो इफ वी लुक एट इट लाइक अ ट्री, तो जो जो पेड़ के जो रूट्स हैं, दैट इज़ आर बिलीव्स एंड परसेप्शंस. जो ट्रंक है, दैट इज़ आर थॉट्स एंड फीलिंग्स. एंड देन द ब्रांचेस आर आर एक्शंस. लेकिन ये जो सारे एक्शंस आ रहे हैं, ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, हमारे बिलीफ से. अब ये जो वृक्ष है, कि यहाँ बिलीव्स एंड परसेप्शंस, द ट्रंक इज थॉट एंड फीलिंग एंड देन इज द एक्शन. अब ये वृक्ष जब बड़ा होता जाता है, तो इट बिकम्स लाइक अ क्रीपर, यू नो, जो अपने और ही फिर लपेट लेता है. तो ये मेरी पर्सनालिटी बनती है.

0: जाती है कि ऑल माई एक्शंस, ऑल माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, इट जस्ट गोज ऑन. तो जैसे ही ये क्रीपर या बेल जो है लिपटती जाती है, माई ट्रू सेल्फ गेट्स हिडन समवेयर इनसाइड, एंड दिस माई हैबिट्स एंड टेंडेंसीज बिकम्स माई एक्चुअल पर्सनैलिटी. आई थिंक दिस इज हु आई एम, एंड माई ट्रू सेल्फ हियर द ओरिजिनल सेल्फ गेट्स हिडन इनसाइड. तो ये जो बेल बन जाती है, इट्स ऑल्सो लाइक अ फेंस जो मेरे चारों तरफ बन गया, एंड दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोक्यूटेड. अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, इट इज़ लाइक आपने वो जो फेंस है जो मेरे चारों तरफ बन गई है, आपने आकर उसको छेड़ दिया, एंड आई विल रिएक्ट. मुझे ऐसा कहा, एक्चुअली आपने मुझे नहीं कहा, आपने किसको कहा, वो जो मेरी हैबिट्स बन गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किस चीज़ से किया कि मैं ये हैबिट्स हूँ. तो अगर आपने मेरी किसी हैबिट के बारे में, मेरी किसी आदत के बारे में कुछ कह दिया, आई टेक इट वेरी वेरी पर्सनली कि आपने मुझे कहा, एंड आई विल रिएक्ट. सो दैट इज़ वेन वी से पर्सनैलिटी क्लैश, कि ये दो पर्सनैलिटीज़ का क्लैश क्यों हो रहा है, जब वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, यू नो दैट वायर जो इलेक्ट्रिक हो चुके हैं, इट विल जस्ट स्पाइक अगेंस्ट ईच अदर एंड देयर विल बी फायर वर्क्स बिटवीन द टू पीपल.
1: आई थिंक वी नीड टू टेक इट बैक.
0: यस, वी नीड टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट हु आई एम, जो ये लिपट चुका है इसके अराउंड, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने बिलीफ सिस्टम्स ये बनते जाते हैं कि कहीं वो जो बीज है वो तो बिल्कुल ही अंदर छुप जाता है और ये सारी लेयर्स ऊपर से बनती जाती हैं. नाउ मेडिटेशन, व्हाट इट हेल्प्स मी टू डू, गोज टू द कोर, कि वो जो बिल्कुल बीज है उस पर जाना है, एंड अपने इस जो पूरे हमने हैबिट्स और टेंडेंसीज बनाई हैं, आई नीड टू रीप्रोग्राम. मुझे रीप्रोग्राम करना है. अभी क्यों रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि जब बटन यहाँ से प्रेस हो रहा है, जो मेरा यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे पसंद नहीं है, इट्स अ रिएक्टिव रिस्पॉन्स. मुझे अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना है, तो मुझे रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी मतलब थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे. थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन थॉट्स का सोर्स क्या है, बिलीफ सिस्टम. तो मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. अब ये बिलीफ सिस्टम सारे कहाँ हैं, दे आर इन द सबकॉन्शियस माइंड, दे आर नॉट इन द कॉन्शियस माइंड. मेजॉरिटी ऑफ अस को पता भी नहीं है कि हम कैसे कैसे बिलीफ सिस्टम्स पकड़ कर बैठे हुए हैं. तो मेडिटेशन में क्या होता, जब हम अपने माइंड को साइलेंस करते हैं, तो हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड पर चले जाते हैं. सो इट्स लाइक बेसिकली गोइंग इन द लोअर लेयर. अब वो लोअर लेयर पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोडिंग पहले की हुई है बिलीफ सिस्टम. लेट्स से एंगर इज नेचुरल, ये वो लोअर लेयर पे कोड किया हुआ है. अब हम एक नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, आई एम अ पीसफुल सोल. तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो हमारी सबकॉन्शियस में डीप रूटेड है, एंड दैट्स वाई वी से ये तो मेरी नेचर है, आई कांट चेंज इट, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैं कॉन्शियसली वो कर रही हूँ, क्योंकि वो एज एन इम्पल्स हो रहा है कि वो बिलीफ सिस्टम फिट किया हुआ है कि एंगर तो गुस्से के बिना काम नहीं होता. अब मन सोचता भी नहीं है कि गुस्सा करूँ या नहीं, बुद्धि तो बीच में आती ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि सो इट्स हैपनिंग इम्पल्स. सबकॉन्शियस लेयर प्रोग्राम फिटेड है, गुस्से के बिना काम नहीं हो सकता. जैसे ही कीबोर्ड से बटन यहाँ प्रेस किया, स्टिम्युलस आया, गुस्सा, इट्स कम एज अ रिस्पॉन्स. अब जब हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनी पीपल ट्राई टू डू इट फ्रॉम आउटसाइड, गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा, इट विल नॉट वर्क. वो टेम्प्ररी होगा, फिर कुछ ना कुछ अपने माइंड को, यू नो, अपने आप को डेविएट करने की कोशिश करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ. दीज आर वेरी टेम्प्ररी थिंग्स, वो एक दो दिन काम करेंगे, उसके बाद नहीं काम करेंगे. प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा. रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड इज मेडिटेशन. सो उस प्रोग्राम को चेंज करना मतलब उस सबकॉन्शियस लेयर पे जाना और वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना. तो उसको हम नहीं हटा सकते, वो है, लेकिन हम एक नया वाला क्रिएट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हेन वी सिट इन मेडिटेशन एंड वी फीड इन दिस इनटू द बिलीफ सिस्टम, आई एम अ पीसफुल सोल. नॉट आई वांट पीस, आई वांट पीस इज नॉट द बिलीफ,
1: आई
0: एम. तो यहाँ जब वो बिलीफ सिस्टम फिट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम थॉट्स किस बेसिस पे क्रिएट होंगे, क्योंकि हमने देखा कि मन की शक्ति, थॉट पावर इज अ रिसोर्स, लेकिन उसका सोर्स क्या है,
1: बिलीफ्स,
0: हमारी पर्सनालिटी जो बनी है. तो मैं थॉट लेवल पर एकदम से चेंज नहीं कर पाऊंगी, वो जाता नहीं है, बिकॉज थॉट्स ग्रो कहाँ से हो रहे हैं, बिकॉज थॉट्स आर द ट्रंक.
1: बिलीफ सिस्टम इतना एम्बेडेड है कि वो हमने थॉट तो मैं चलो क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही सिचुएशन आती है वो एकदम से रिएक्शन जो है,
0: क्योंकि वो बना हुआ है ना बहुत टाइम से, तो इसलिए इतनी जल्दी अपने साथ वो हताश भी नहीं हो जाना, मैंने तो थॉट क्रिएट किया था आई एम अ पीसफुल सोल, फिर मुझे गुस्सा कैसे आ गया. वी आर रीप्रोग्रामिंग, इट्स लाइक रीफॉर्मेटिंग द होल कंप्यूटर, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट डू नॉट स्टॉप, कंटिन्यू. तो जैसे ही हम ये बार बार अपने आप को ये बिलीफ सिस्टम डालते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, तो नेक्स्ट टाइम थॉट कौन से बिलीफ से ग्रो होगा. जो रूट्स हैं हम रूट लेवल पर चेंज कर रहे हैं. अभी तक रूट्स वो सारे थे, एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नॉर्मल, वो सारे रूट्स थे. तो ट्रंक में थॉट्स भी कैसे आएंगे उस वृक्ष के, वैसे ही आएंगे. एक्शंस कैसे होंगे, गुस्से वाले होंगे. अब हम उसको जड़ों से, जिसको कहते हैं ना जड़ों से बदलना है, तो संस्कार को जड़ से बदलना है. तो जड़ में ही अगर परिवर्तन ले आए संस्कार में, तो फिर थॉट लेवल पे परिवर्तन लाना नहीं पड़ेगा, एक्शन लेवल पर ध्यान रखना नहीं पड़ेगा. अभी हम जड़ को नहीं चेंज करते तो एक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, थॉट को चेंज, एंड देन इट्स टू मच ऑफ अ स्ट्रगल, एंड देन आई गेट वेरी हैवी ट्राइंग टू डू इट, एंड देन आई ऑल्सो फेल many times because I'm doing it on the outer level. तो जड़ों को नरिशमेंट देनी है, पानी वहीं देना है, बाकी वृक्ष तो
1: अपने एक एक, एक, एक पौधे को या एक एक उसको नहीं देने,
0: उसको नहीं चेंज.
1: इनफैक्ट एक और जो बात देखी है मैंने अपने इस प्रोसेस में कि अगेन एंगर, हर्ट, ये जेलसी, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सारा ये नेगेटिव पूरा है, ये मुझे हटाना नहीं है. जैसे अंधेरे को बाहर नहीं निकालना, जैसे कई बार कहा जाता है कि अंधेरे को उठा उठा के बाहर निकालो तो उजाला आएगा. लाइक आई रियलाइज इट, यू नो, कि द मोमेंट आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, I don't get angry.
0: Absolutely. अब ये आई एम अ लवफुल बींग, आई एम अ पीसफुल बींग, ये सिचुएशन आने के बाद थॉट नहीं क्रिएट करनी है. अभी क्या होता है, थॉट सिचुएशन आई से आई एम अ पीसफुल बींग, देन हम यही ट्राई कर रहे हैं. ये साइलेंस में बैठ कर वो लोअर लेयर पे जाके बिलीफ को चेंज करना है पूरी तरह से. जब वो हो जाएगा, जब सिचुएशन आएगी सामने, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा.
1: इनफैक्ट अब आपको पीसफुल बीइंग
0: ये भी नहीं क्रिएट करना पड़ेगा.
1: अच्छा, इट डजंट कम आल्सो,
0: इट डजंट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. कि जब परिस्थिति आई आप थॉट क्रिएट करेंगे आई एम अ पीसफुल बीइंग, नहीं, आपकी थॉट्स ऑलरेडी पीसफुल हो गई हैं. अब आपका एक्शन क्या होगा, यू विल नॉट से इन एक्शन आई एम अ पीसफुल बीइंग, यू आर अ पीसफुल बीइंग, नो, इट्स जस्ट दैट द एक्शन विल रिफ्लेक्ट पीस. वो एक्शन जो आपका व्यवहार आएगा उसमें अग्रेशन नहीं, तनाव नहीं, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जड़ से चेंज कर दिया है आई एम अ पीसफुल सोल. एंगर इज नेचुरल, इसको हटा नहीं सकते, लेकिन एक लेयर तो चेंज कर सकते हैं ना. और जैसे ही ऊपर से एक लेयर आएगी आई एम अ पीसफुल सोल, नीचे वाली लेयर अपने आप चली जाएगी. अब कई बार क्या होगा, सुबह उठकर बोलेंगे आई एम अ पीसफुल सोल, फिर सारा दिन करते करते बोलेंगे रहन दो, होता तो है नहीं गुस्से के बिना. तो फिर क्या हो रहा है, एक तरफ से एक बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से पुराने बिलीफ को रीअफर्म कर रहे हैं. सो थिंक अबाउट इट फर्स्ट, इवैल्यूएट वेदर यू आर लाइकिंग दिस बिलीफ एंड यू फील इट विल वर्क
1: फॉर यू, मेक इट योर बिलीफ सिस्टम एक्चुअली.
0: यस, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू टेक इट वंस, एक्सपेरिमेंट विद इट. अगर आपको उसका रिजल्ट पसंद आता है, देन इट बिकम्स द ट्रुथ फॉर यू. यस, आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ये पसंद है, दिस मेक्स मी फील कम्फर्टेबल. गुस्सा करके कभी कम्फर्टेबल नहीं. फिर अपने बिलीव्स को एक बार बना दिया, फिर उनको बार बार सारा दिन में चेंज नहीं करना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी आ जाए. आई एम स्टिल टू हैंडल इट पीसफुली, आई एम स्टिल टू बी, हो सकता है अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाएगा कभी, लेकिन आई हैव टू सिट बैक एंड से ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, नॉट से हाँ नहीं गुस्सा करना तो नेचुरल ही था. तो शिफ्ट नहीं करे अपने बिलीव्स के बारे में.
1: How do we use it as a resource, you know?
0: It is a resource because वो जड़ है, और जड़ से ही थॉट्स हैं, थॉट्स से एक्शन है. तो सारा दिन हमारे सारा कुछ जो हो रहा है वो हमारे एक्शन और थॉट्स से हो रहा है. लेकिन एक्शन और थॉट्स का सोर्स क्या है, ये बिलीव्स हैं, ये संस्कार्स हैं, ये पर्सनालिटी है. तो अगर ये रिसोर्स राइट नहीं होगा तो बाकी वृक्ष भी हेल्दी नहीं हो सकता. जब तक रूट्स हेल्दी नहीं है, सीड हेल्दी नहीं है, तो पूरा वृक्ष हेल्दी नहीं होगा. इसलिए जड़ लेवल पर चेंज कर लिया तो फिर वृक्ष को कुछ नहीं करना पड़ेगा.
1: That's very true. In fact, जहां मेरे को फील अच्छा नहीं हो रहा, so I think I need to change the program.
0: Absolutely.
1: And I have to realize that. Thank you so much.
0: Om Shanti.
1: आप तो यही कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आपका अपना है. कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। इस श्रृंखला में हमने बहुत कुछ जाना है अपने बारे में और खुद को मैनेज करने का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने लिया है। आगे अभी बहुत सी बातें करनी बाकी हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और ढेर सारी खुशियां नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। 29 जुलाई 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शके 1948 शके साथ गतिव 13 आषाढ़ बुधवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ला पक्ष पूर्णिमा बुधवार उत्तराषाढ़ा आज है। इस्लामी हिजरी 1448 सफर बुद्ध बलदा आज है। इसके साथ ही आज गुरु पूर्णिमा है और विश्व बाघ दिवस भी आज है। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्व बाघ दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो? शांति, गुड मॉर्निंग।
0: या बढ़िया, गुड मॉर्निंग और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: जी जी, आपको सर भी, हमारे सभी मित्रों को भी आज के गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सबको गुरु की कृपा बनी रहे और गुरु के मार्ग पर चले। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि गुरु से बड़ा है सतगुरु, तो सतगुरु के आधार पर चले, सतगुरु का आदर करे और अच्छे बदले, अच्छे रहे और हरदम गुरु की आज्ञा पर चलते रहे, तो कहीं ना कहीं जीवन को एक उद्धार करने वाला तो सतगुरु ही है। क्योंकि कहते हैं कि सतगुरु नहीं मिलेगा तो जीवन में कुछ अंधेरा ही होता है, लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है तो जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है सर।
0: जी जी जी,
1: सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सर। आज बहुत भीड़ है सभी जगह पे, देखो सभी मंदिर है, सभी कोई गुरुद्वारे है, सभी आज बहुत भीड़ है। और भीड़ के साथ साथ बारिश का भी मौसम चलता रहता है। कई कई जगहों पे तो इतना बारिश कर रही है, इतना पानी भरा हुआ है, फिर भी लोग बोलते हैं कि जाना तो पड़ेगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो दर्शन करने के लिए तो जाना पड़ता ही है, लोग बोलते हैं। लेकिन वो सही है, लेकिन कई कई जगह पे नहीं जा सकते, तो बैठे बैठे भी हमको गुरु जी को याद कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस गुरुवार है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: गुरुवार तो नहीं है, बुधवार है, तो जो गुरु पूर्णिमा तो है, तो गुरु जी का गाना आज चलता, आप के हिसाब से चलते रहना, चलाते रहना। तो गुरु मेरी पूजा,
0: बिल्कुल
1: काल ब्रह्म गौरी, अच्छा गुरु का जो गाना है सर,
0: चला
1: देना। और हमारे गुरु लाल जी है, हमारा बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है।
0: जी जी,
1: एकदम हमारा बुरा राम कभी राम राम करना कभी नहीं चुकते, उसने राम राम नहीं किया है सर। तो नमस्ते, ओम शांति सर।
0: ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ गुरु पूर्णिमा के इस खूबसूरत दिन को यादगार बनाते हैं एक नए गीत के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही बेहद खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। आइए इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा की विशेष बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। और आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
0: जी जी जी शुक्रिया, स्वागत है आपका गुरीलाल जी।
1: सुना दिया किरण भाई की आवाज से, तो आपने हमारा भी एक भजन सुना देना सर। वो गुरुवर तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है, ये भजन है सर, ये सुना देना सर तो अच्छा रहेगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भूला राम जी है, मदन भाई है, सुरेश भाई तीनों है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर, धन्यवाद सर।
0: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा के बारे में बातें चल रही हैं और मैं चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा की बातें आप सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। आप भी गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा, और आज भी आप गुरु पूर्णिमा के दिन करते क्या है वो ज़रूर बताइए, है ना। तो आइए एक और गीत की तरफ ले चलूँगा, लेकिन उसके पहले आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में विशेष रूप से बताया जाता है। वेद व्यास जयंती को गुरु पूर्णिमा विशेष रूप से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा जगत गुरु माने जाने वाले वेद व्यास को समर्पित है, और ये बताया जाता है कि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। वेदों के सार ब्रह्मसूत्र की रचना भी वेद व्यास ने ही किया था। आज के दिन वेद व्यास ने ही वेद रचनाओं का संकलन कर वेदों को चार भागों में बांटा। उन्होंने ही महाभारत 18 पुराणों व 18 उप पुराणों की रचना भी की थी, जिनमें भागवत पुराण जैसे अतुलनीय ग्रंथ भी शामिल है। ऐसे जगत गुरु के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाने की सुंदर परंपरा है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तम सो श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, इसका ये मतलब होता है। गुरु के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु के लिए पूर्णिमा से बढ़कर और कोई तिथि नहीं हो सकती। जो स्वयं में पूर्ण है वही तो पूर्णत्व की प्राप्ति दूसरों को करा सकता है। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति पूर्णिमा जो है चंद्रमा की भांति जिसके जीवन में केवल प्रकाश है वही तो अपने शिष्यों के अंतरकरण में ज्ञान रूप

0: चंद्र की किरणें बिखेर सकता है। इसीलिए आज के दिन अपने गुरुजनों के चरणों में अपना समस्त श्रद्धा अर्पित कर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। गुरु कृपा असंभव को संभव बनाती है। गुरु कृपा शिष्य के हृदय में आगाध ज्ञान का संचार भी करती है। तो गुरु की महिमा भी अद्भुत है। गुरु को गोविंद से भी ऊंचा कहा जाता है। शास्त्रों में गुरु का अर्थ है कि अंधकार से मूल अज्ञान, और रूह का अर्थ होता है किया गया उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अज्ञान तिमिर का ज्ञान अंजन सलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु अर्थात देवता में समानता के लिए एक श्लोक भी कहा जाता है कि जैसे भक्ति की आवश्यकता देवताओं के लिए, वैसे ही गुरु को गुरु के लिए भी सदगुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ, बुराराम बोल रहा हूँ।
0: बोलिए बुराराम जी, कैसे हैं आप?
1: बस गुरु पूर्णिमा को आपको बहुत नमस्कार और सम्मान।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की।
1: हाँ, तो कुछ गुरु महिमा के बारे में कुछ अच्छे बातें कर रहे हैं, सुन रहा हूँ मैं। और मेरे तरफ से सब सुरेश भाई, गुरेलाल जी, मदन लाल जी, सबको मेरा आज गुरु पूर्णिमा का नमस्कार बोलना। और एक बरोबर है गुरु, आज तो गुरु के सत्संग में अभी शाम को जाऊंगा मेरे गुरुदेव के उधर, और सत्संग में जाके पूरी रात बिताएंगे आज।
0: बहुत सुंदर।
1: गुरु गोविंदो खड़े काके लाभ पाए, हरि गुरु देव आपने।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। आज गुरु जी के शरणों में जाने वाले हैं सर
0: जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: ओके, और गुरु महिमा के बारे में और भजन कोई है तो अच्छा सुना देना हिंदी में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुने हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर नई किरण, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और ओर से ये थे हमारे विशेष व्यक्ति जिनको हमने याद किया, और सुरेश जी के शायद ये भी वही गुरु को शायद मानते हैं, तो दोनों की अच्छी जी बनती है और दोनों एक दूसरे को याद भी करते हैं। गुड़ीलाल जी भी याद कर रहे थे सभी को और बड़े प्यार से याद करते हैं। और बुराराम जी आज जो है शाम को गुरु के पास जाएंगे आश्रम में और वहाँ समय बिताएंगे। तो आप क्या करने वाले हैं, आप भी बताइए किस तरह से आप आज का दिन को गुरु पूर्णिमा को व्यतीत करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है आज जो है कथावाचक शब्द भी व्यास का पर्यायवाचक बना है। कथावाचक भी देश काल परिस्थिति के अनुरूप पौराणिक कहानियों का विश्लेषण भी संपादन है। और भगवान वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों और उप पुराणों की रचना की, ऋषियों के बिखरे अनुभवों को सम नियोजन करके समभाग्य बनाकर व्यवस्थित किया। पंचम वेद महाभारत की रचना इसी पूर्णिमा के दिन पूर्ण हुई थी और विश्व के सुप्रसिद्ध अर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन इसी दिन आरंभ भी हुआ था। तब देवताओं ने देवव्यासी का पूजन किया और तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जाने लगी है। इसीलिए कहा जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको गुरु पूर्णिमा का एक और गीत सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए मैं आपको ले चलता हूं एक विशेष जो बात है गुरु पूर्णिमा पर। जब हम लोग बातें करते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही हमारे घरों में गुरु की जो है बातें चलती रहती हैं और गुरु करते भी हैं। लेकिन अब जो है वर्तमान समय में गुरु करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और गुरु करके उनको फॉलो करना ये उससे भी बड़ी बात होती है। तो इसीलिए हमें जो है ऐसी सुंदर जो है जैसे कहते हैं इन बातों को समझने की ज़रूरत है और किससे हम जो है गुरु दक्षिणा ले या गुरु बनाए जिन्हें उनका जीवन उनका चारित्र को हमें देखना पड़ता है। नहीं तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ढोंग करते हैं और फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। समाचार अभी नहीं हुए हैं और तब तक मैं आपको एक और सुंदर गीत सुनाता हूँ।

तो आपके यहाँ अगर गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, हमें खुशी होगा कि आपके यहाँ समाचार आपके यहाँ किस तरह से चीज़ें होती हैं और कैसे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उसके बारे में ज़रूर हम सुनना चाहेंगे आपसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए, आज का समाचार प्रभात नहीं पहुँचा है लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको ठीक से समाचार सुना पाए थोड़ी देर में। तब तक आपको एक और सुंदर गीत

ಕಿ ರೂಪವೇಗಯು ತಾತ್ ಮಾತ್ ಮುರ್ ಅಲ್ಖ ಆರಾಧ ಬಹು

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आइए आज के आपके लिए विशेष आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज पर। मौसम जो हम लोग देखते हैं कि बरसात भी कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता है, कभी लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है। अभी कभी देखा हमने इस बार तो समर में भी बारिश हो रही थी तो कहने का भाव ये है कि ये जो परिवर्तन हुआ है मौसम में, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, ग्लोबली विषय बन गया। तो आइए इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ जानकारी आपको देंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आज जानकारी सुनकर, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक्सपर्ट तरुणा जी हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और टाटा में विशेष क्लाइमेट चेंज इस विषय को लेकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो उनका अनुभव सुनने को मिलेगा और तरुणा जी जो है खास ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं, तो एक अध्यात्म का जो फीलिंग है वो भी आपको आएगा जब वो बात करेंगे। तो आप सभी की तरफ से तरुणा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: ओम शांति। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया
0: जी। जी, अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं?
1: मैं अभी जॉब करती हूँ दिल्ली में, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में। ये टेरी के नाम से जाना जाता है। टेरी ये जो संस्था है ये 50 साल पुरानी है।
0: अच्छा।
1: और ये हमारे देश की पहली संस्था थी जिसने पर्यावरण पे काम करना शुरू किया था। इससे मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर विंड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसमें हम सन की जो सूरज की ऊर्जा है उससे बिजली बना सकते हैं और उसके हम अपनी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितने 10 साल से जुड़े हैं इस संस्थान से?
1: मेरी मम्मी जो थी वो ज्ञान में चलती थी तो मैं उनके साथ सेंटर पर जाया करती थी और मैंने योग भी सीखा है।
0: ब्रह्मा कुमारी से मैंने कितना टाइम हो गया?
1: अराउंड 10 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ।
0: अच्छा अच्छा। और ये जो टाटा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर कितने समय हो गए?
1: द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। इसमें मुझे 3 साल हुए हैं काम करते हुए।
0: अच्छा, अभी 3 साल हुए काम
1: जी।
0: अच्छा तरुणा जी, मैं चाहूँगा कि ये जो एनर्जी क्लाइम जो आप बता रहे थे क्लाइमेट चेंज पर, तो यहाँ पर मेन जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग जो अभी मौसम विभाग में या मौसम का जो जानकारी देते हैं न्यूज़ के बाद, हम सुनते हैं कि भाई कल ये होगा वो होगा और ये अनुमान है, तो ये अनुमान वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, क्या सिस्टम है, क्या टेक्निक है, वो थोड़ा सा बताएं।
1: जो वेदर को जो प्रिडिक्ट करने के लिए तो हम फोरकास्ट वगैरह नई टेक्नोलॉजीज यूज़

0: करते हैं, पर उससे क्या होता है कि जैसे अगर हम कल बारिश होने वाली है या होने वाली है, उससे हमारी जो खेती है या फिर किसी पे भी जो
1: हाँ
0: इम्पैक्ट
1: बिल्कुल
0: आना
1: बिल्कुल,
0: है
1: या सागर किनारे जो
0: उसको,
1: लोग रह
0: हाँ
1: रहे हैं,
0: उसके लिए
1: तूफान
0: हम
1: आने।
0: कुछ टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जलवायु परिवर्तन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो जो जैसे कि आज बारिश है कल तूफान है कुछ भी है, अगर हम उसको पहले से जान पाएंगे टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं कि जो हम पहले से प्रिपेयर हो जाए, ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे ऊपर ज़्यादा ना आ पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: और ज़्यादा नुकसान होने से भी हम लोग बच सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा अब कि ये चीज़ें कैसे हम लोग को मालूम पड़ता है एज ए क्लाइमेट एक्सपर्ट्स?
0: ये इसके कुछ फोरकास्ट के कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स और मॉडल्स प्रिडिक्शन होते हैं, जैसे हम मॉडलिंग वर्क करते हैं तो उसमें हम ये मॉडलिंग में हम ये जानते हैं कि आगे के 10 साल में या 50 साल में कैसा कैसा ट्रेंड था, मान लीजिए बारिश का या वेदर का
1: अच्छा,
0: कैसा,
1: पूर्व में जो चीज़ें हुई
0: हाँ
1: है उसकी
0: 50 साल
1: स्टडी की
0: से
1: जाती
0: कैसा
1: है।
0: ट्रेंड आ रहा है और आगे इस साल में कैसा रहा, आगे के शॉर्ट पीरियड में, मीडियम टर्म में, अगले 5 साल में कैसा हो सकता है, पिछला देख के और जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको देख के कुछ कुछ उससे अनुमान लगा के कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स, मॉडलिंग इक्विपमेंट्स जो अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं
1: जी
0: उससे
1: जी
0: हम अनुमान लगाते हैं कि इतना जो है वो हो सकता है, मतलब ये परिवर्तन हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, अभी सोशल मीडिया पे एक दुबई वाला जो है बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, और सुना कि वो आर्टिफिशियल रेन उन्होंने क्रिएट किया था,
0: जी
1: हवा में कुछ ऐसे फव्वारे जो है किसी चीज़ का स्प्रिंकल किया था, उसके बाद फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे
0: जी
1: समय, तो क्या वो कैसे, वो क्या पॉसिबल है या ऐसा कुछ है?
0: जी पॉसिबल तो है, जैसे
1: अच्छा,
0: कि हम अभी टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं और पता कर
1: हाँ
0: सकते हैं कि कैसे हम कहीं बारिश करनी है या मतलब बारिश को रोकना भी है तो कैसे हम
1: रोक
0: उसमें कुछ
1: सकते हैं।
0: कुछ उपाय कर सकते हैं, वो सब है। बट ये हमें जो है परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, जैसे अगर हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस करनी है, क्योंकि इंडिया का जैसे भारत देश है वो एक तरफ हम बोलते हैं कि वो विकसित भारत बने, जो अभी सरकार का भी वो है कि हम विकसित भारत बनेंगे 2050 से पहले,
1: बिल्कुल
0: बट विकसित भारत मतलब कि हमारी एनर्जी डिमांड्स हर इंसान की और हमारे जो नीड्स हैं, जैसे कि जो गांव है उसमें भी और जॉब्स आएंगी और लोग जॉब्स करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, तो उससे मतलब हमारे एमिशन जो हैं, जो हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं वो तो बढ़ेंगे, पर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें एक लो कार्बन जो है लो कार्बन पाथ पे चलना है, तो इन दोनों का जो है इन दोनों चीज़ों का, कि एक तरफ हम विकसित भारत बन पाए और दूसरी तरफ हम एक लो कार्बन ज़िंदगी को जी पाए, वो कैसे हो सकता है, वो कैसे पॉसिबल है, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और कि वे वो भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री माना जाता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: डेवलपिंग कंट्री होते हुए कि वो डेवलप हो पाए और साथ साथ मतलब विकसित हो, मतलब भारत मतलब विकसित के पाथ पे चल पाए, पर साथ में एक जो है लो कार्बन जो है वो भी देश भी
1: जाने
0: बन पाए, ताकि और देश भी देखे। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी,
1: बिल्कुल
0: जिसमें कि सोलर इनिशिएटिव्स जो हैं वो उसमें उनको कि भाई भारत में जो हो रहे हैं या रिसर्च जो हो रही है वो कैसे हम देशों में जो है
1: दूसरे
0: उसकी
1: देशों को दे सके।
0: एक्सपीरियंस लर्निंग कर सकते हैं, या फिर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए जो जो पहल शुरू करी है सरकार ने वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है और विकसित भारत में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और इसके ऊपर जो है काफ़ी काम किया जा रहा है। भारत देश में सोलर का जो है पिछले कुछ सालों से काफ़ी चलन भी हुआ है, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी बनाए सरकार ने जहाँ पर किसानों को सोलार इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको स्कीम्स भी दिए जा रहे हैं और कई बार उनको जो है उनसे बिजली बना के उनको इनकम भी जनरेट करने का जो है एक सोर्स बन रहा है। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जो अगर उनके पास ठीक ढंग से जगह है तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है और इन्वेस्टमेंट करके अगर आप उन चीज़ों को लगाते हैं और उसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है और एक दो लोगों को अगर आप काम पे भी रखते हैं मेंटेनेंस के लिए तो शायद साल भर के बाद जो है इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है और आपने जो अगर अमाउंट ज़्यादा पे किया लोन है तो वो लोन भी रीपे हो जाता है आने वाले 10-15 सालों में और आपके पैसे भी बच जाते हैं और प्लस सारा सोलर सिस्टम जो इंस्टॉलेशन हो गया था उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ भी कर सकते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाती है।
0: जी
1: तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव काम चल रहा है। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं तरुणा जी से, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट है हमारे बीच में। और एक और बात आती है यहाँ पर, हम लोग बहुत सारे समय पे ऐसे देखते हैं कि बिजली के उपकरण या फिर सोलर अगर हम घर में यूज़ करना चाहते हैं तो प्लेट्स वगैरह लगाने में क्या क्या चेंजेस या नए नए जो सोलर प्लेटिंग्स आ गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: सोलर सिस्टम्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सोलर पीवी होता है, सोलर एक तो होता है कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे, कि जैसे हम घरों में सोलर रेजिडेंशियल एरियाज में हम सोलर का इस्तेमाल करें, वो होता है। और दूसरा होता है कि सोलर पार्क्स जो बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए बनते हैं, या फिर जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में सोलर कॉन्सनट्रेटेड सोलर थर्मल होता है, जिसमें कि सूरज की किरणों से हम हीट जनरेट कर सकते हैं और वो हीट को हम कुकिंग पर्पस के लिए और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग सोलर के एप्लीकेशंस हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। पर जहाँ तक देखा गया है कि इंडिया में सोलर की कोई कमी नहीं है, तो सोलर एनर्जी को हम बहुत ही अगर हम प्रमोट करें, अभी भी जो अभी सरकार का भी जो इनिशिएटिव है कि सोलर हर घर में सोलर होना चाहिए, तो वो उससे हमारी जो है एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है वो हम अचीव कर पाएंगे भारत में। और इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत में सूर्य किरणों की कोई कमी
0: टाइम रहता है मोस्टली बारिश के समय छोड़ के। और इसमें जैसे कि खाना बनाने वाले अलग अलग प्लेट्स वगैरह भी डेवलप किया है काफ़ी जो है, और इसको जितना ज़्यादा हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है हम लोग इस एनर्जी का उपयोग करके बिजली बचा सकते हैं और अपना जो है हम लोग अपना बजट भी कर सकते हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, इसके साथ में जैसे कि मौसम विभाग में और नई चीज़ें क्या आ रही है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या क्या नई चीज़ें आने वाले भविष्य में, वो थोड़ा सा बताएं।
1: टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से जैसे अभी AI आ गया है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर का देखते हैं, खेती बाड़ी में भी आप जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल कम कैसे कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रोन सिस्टम्स जो के द्वारा आप
0: बिल्कुल
1: जो है इरीगेशन कर सकते हैं, या फार्मर्स के लिए जैसे सोलर इरिगेशन भी आ गया है, तो वो वाली टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं। तो हर सेक्टर में एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जैसे बिल्डिंग्स का है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें भी कैसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके हम अपने मतलब अपने आप को किसी भी आपदा के केस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे
0: एक और बात आती है, जैसे कि हमारी युवा साथी है, अगर वो इस तरह से इस एनर्जी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ पर अगर जॉब सेक्टर के लिए वो अगर सोचते हैं तो किस किस तरह के जॉब्स हैं उसके बारे में युवाओं के लिए थोड़ा गाइड कीजिए।
1: युवाओं के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये एक नया विषय है और युवाओं जो है कंपनीज़ के अंदर ESG करके एक रोल होता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर करके एक रोल होता है, कि जिसमें जो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स देखता है। तो ये कंपनीज़ में काफ़ी इसकी डिमांड अब हाई हो रही है, क्योंकि हर कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू और अपना बिजनेस और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल संस्था के, हर कोई संस्था जितनी भी संस्थाएं हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल और ऐसी संस्था बनना चाहती हैं जो पर्यावरण पे कंट्रीब्यूट करें। तो इसका बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि युवाएं जो है सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में सस्टेनेबिलिटी कोर्सेज करके या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोर्स करके वो अपना एक करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर के रूप में। और कंपनीज़ में भी इसके ESG जो है, अब जैसे जो टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो सरकार ने मैंडेट करा है कि उनको अपना BRSR करके एक प्रोफाइल होता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स, जो वो उनको अपडेट करना है। तो वो उसके लिए, उसको बनाने के लिए भी कंपनीज को मदद चाहिए। तो ऐसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सके, जो क्लाइमेट चेंज पे, जलवायु परिवर्तन पे काम कर सके और नए इनिशिएटिव्स और नई सॉल्यूशंस को ढूंढ सके, कि युवाएं जो हैं वही सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ करने का है, और सोलार को लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन सोलार के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, और इसको जो है आप कुछ कुछ चीज़ें जो है आप पोर्टेबल अगर हम लोग बना दें तो मोस्टली लोगों को जो है चीप हो और बिना कोई खर्चे का चल रहा है, तो ऐसी चीज़ों पे लोगों का ध्यान भी रहता है, लोग अवेयर है इन चीज़ों को। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप काफ़ी काम कर सकते हैं, और लोग इस क्षेत्र में कम भी है, और आप अगर इसमें रुचि दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तरुणा जी, मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 10 साल से जुड़े हैं, तो आपका अपना निजी अनुभव क्या है, ब्रह्मा कुमारी में जाना आपको क्यों अच्छा लगता है, वहाँ से आपको क्या प्राप्ति है, थोड़ा सा बताएं।
1: मेरे को मेडिटेशन अच्छा लगता है, और मैंने जो ज्ञान सुना है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उससे मतलब मैंने जितने भी ड्रीम्स हैं उनको आप कैसे फुलफिल मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो आप योग के द्वारा या अपने थॉट्स के द्वारा, संकल्प से सिद्धि जैसे बोलती हैं वो आप अपने किसी भी संकल्प को आप अपने रियलिटी में ला सकते हो, वो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे जैसे मेरा मतलब जैसे मुझे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और मेरा एक गोल है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो मुझे प्रोजेक्ट मिला है।
0: अच्छा।
1: तो उस संदर्भ में जैसे कि कैसे हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उससे काफ़ी मदद मिली है।
0: बहुत बढ़िया।
1: योग के उससे
0: एक हद मेडिटेशन का कोई एक्सपीरियंस हो, आप ध्यान में बैठे हो, ऐसे कुछ अनुभव हुआ हो, ऐसा कुछ है?
1: ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव होते हैं, मतलब वो जैसे कि हम बता के नहीं कर सकते, वो एक पर्सनल अनुभव ही होते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कि जो जिसको हम मिरेकल्स भी बोलते हैं, तो जैसे कि
0: तो काफ़ी हुए हैं आपको अनुभव?
1: जी।
0: चलिए तरुणा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सोलार के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी दिया है, और अभी जो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं टाटा एनर्जीज में काम कर रहे
1: हैं, द एनर्जी,
0: ये टाटा का ही एक भाग है?
1: टाटा का पहले था,
0: अभी ये सेपरेट है, द एनर्जी नाम से। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि दी एनर्जी से आप जुड़े हैं, 3 साल से आप इसमें काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काम किया जाता है, और रिन्यूएबल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें वास्ट चीज़ें आ रही हैं। इवन आप देखेंगे कि हवा से भी पानी बनाया जा रहा है। सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हवा से पानी कैसे बना जाता है। तो आप एक शायद वीडियो वायरल हुआ था ये भी व्हाट्सएप पर, कि बेंगलुर का एक टीम है जो हवाई को जो है उसको उस सिस्टम में डाल देते हैं, तो उससे वो पानी बनता है, और वो पानी पीने लायक हो जाता है, यानी प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और सस्ता भी मिल जाता है। मतलब एक बॉटल आपको जो है, जैसे बाहर हम खरीदते हैं 10 रुपये का, तो वो बॉटल आपको शायद 5 रुपये में ही बन के मिल जाता है। तो अपने आप में ये भी एक यूनिक है। तो इस पर अभी देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो है इसको रिन्यूएबल या फिर एक टेस्टिंग मॉडल पे ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अगर इसको आप थोड़ा हाई लेवल पे और थोड़ा प्रैक्टिकल उसको अगर उस पर काम करेंगे, आप युवा है तो इस तरह की रिसर्च प्रोडक्ट पे अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक नया इतिहास रच सकते हैं। मतलब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो हमारे पास मौके बहुत हैं, और मैं चाहूँगा कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े रहें, और तरुणा जी का जो दी एनर्जी का एक्सपीरियंस आपने सुना ही, तो उनको भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और देखेंगे कि क्लाइमेट में अभी काफ़ी चेंज हो रहा है, तो हमें भी अब इस बदलाव को, जो क्लाइमेट चेंज को बदलाव करने के लिए, इसमें क्या हम लोगों का एक ह्यूमैनिटी के रूप में क्या कंट्रीब्यूट करने से हम क्लाइमेट को बचा सकते हैं?
1: उसमें ये होता है कि जैसे जो इनर क्लाइमेट है हमारा, जो अपने मन का क्लाइमेट है, वो हमें सही करने की ज़रूरत है, तो आउटर क्लाइमेट अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका सीधा सा, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही हैं, तो अगर हम टेक्नोलॉजी कर बात ना भी करें, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कि हमारा अपना इनर क्लाइमेट अपना ठीक करना है, और उसके लिए योग करना और स्पिरिचुअलिटी
0: को
1: मतलब कुछ अपने जीवन में ऐसे रिचुअल्स करना जिससे कि आप भगवान से जुड़े रहें, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपका इनर क्लाइमेट जो है वो परिवर्तन होगा, तो आउटर क्लाइमेट अपने आप ही चेंज हो जाएगा।
0: तरुणा जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी युवा साथियों को भी ये बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। तो चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में जहां हमने लास्ट में तरुणा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके इनर यानी मन की जो क्लाइमेट है उसको ठीक करें, क्योंकि मन के अंदर आपके जो है नेगेटिव विचार आते हैं या फिर क्रोध के विचार आते हैं, तो वो चीज़ें हमें जो है बड़ी मुश्किल में डाल देती हैं। और अगर आप वहाँ पर अपने मन को अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, अपने विचार अपने चेंज कर लिया, तो विचारों को कूल करना, विचारों को धीमा करना बहुत ज़रूरी है। आप एक एग्जांपल देके अगर हम लोग समझें, अगर आप हाईवे पे है और स्पीड में चल रहे हैं, ओके, लेकिन वही स्पीड अगर आप नॉर्मल रोड पे रखेंगे तो मुश्किल होगा ना। तो जैसे ही आप सिटी में आ जाते हैं तो आप ब्रेक डाउन करते हैं, आपकी स्पीड लेवल जो है नॉर्मल रखते हैं 40-60-100 के बीच में, तो हाईवे पे आप 100 के ऊपर चले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वो स्पेस मिलता है वैसे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब सिटी में आते हैं, विलेज में आते हैं, तो आप जिस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करके चलाते हैं, वैसे ही हमारे विचारों को भी हमें जो है हमेशा देखना है। हमारे इनसाइड जो है उनको अगर हम लोग स्पर्श करते हैं, उसको अगर कूल रखते हैं, मैनेजेबल रखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी खुशी होती है उन चीज़ों से। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको मेडिटेशन जो तरुणा जी करती हैं, उस मेडिटेशन का आप भी प्रैक्टिस करें आपके नज़दीकी किसी ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर, तो आप जो है क्लाइमेट चेंज में, आपका मेडिटेशन करना क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आप करेंगे, आपको देख के दूसरा करेगा, दूसरे को देख के तीसरा करेगा। जिस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम इस क्लाइमेट को पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार तरुणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशियाँ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ला ला। चलिए, बहुत ही सुंदर जो है आपने इंटरव्यू सुना करुणा का। आशा करूँगा क्लाइमेट चेंज पर उनकी बातें आपके दिल पर पहुंच गई होंगी। तो आइए, गुरु पूर्णिमा का जो है विशेष कुछ थोड़ी बातें मैं आपको लाइव सुनाना चाहूँगा। नमस्ते यूपी, यहाँ से सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: तो आज हम गुरु पूर्णिमा पे चर्चा कर रहे हैं, इसी को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन रुक करेंगे शहर की हलचल का और देखेंगे हमारे शहर में क्या चल रहा है।
2: राजधानी लखनऊ में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। गोमती नगर स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में 150 से अधिक फलदार और हरे शंकरी पौधों का रोपण किया गया। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी था।
3: पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज हम लोगों ने 200 पेड़ों का वृक्षारोपण किया, जिसमें फलदार वृक्ष भी हैं, आम है, अनार है, लीची है, शहतूत है, आम है, फलों का राजा। इसके अलावा जो ट्रिनिटी यानी कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के जो सिंबॉलिक पेड़ होते हैं उसको भी हमने, जिसको हरी चंकरी बोला जाता है, वो भी यहाँ लगा रहे हैं।
2: आयोजकों का मानना था कि ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर शहर को स्वच्छ, हरा भरा और बेहतर बना सकते हैं। लखनऊ में फ्यूटेक चैंप 2026 का शुभारंभ किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर की AI, रोबोटिक्स, कोडिंग और स्टेम प्रतियोगिता 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में नई तकनीकों के प्रति रुचि बढ़ाना, उनकी तार्किक सोच को विकसित करना और उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना था।
4: सबसे पहली तो बात यह है कि बच्चों को प्रैक्टिकल AI और रोबोटिक्स जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यह है कि ChatGPT के ज़्यादा कुछ जानते नहीं है AI के बारे में, बस ये कहते हैं कि ChatGPT मतलब AI। ऐसे ही रोबोटिक्स के बारे में वो जो बाहर जो कोई ड्रोन जो है वो देखते हैं शादियों में, जो ड्रोन वोन है, बस उतना ही समझते हैं, जबकि पेलोड ड्रोन भी होते हैं, बहुत तरह के और ड्रोन होते हैं, सर्वेलांस के ड्रोन भी होते हैं, उनके बारे में वो प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं। तो ये जो अभी हम लोग कंपटीशन करा रहे हैं, कंपटीशन से पहले तो ये कि स्कूल को अवेयरनेस मिले, हम लोग एक करिकुलम बना करके उस पर काम करें। गवर्नमेंट जो है वो AI को बढ़ाना चाह रही है, उन्होंने CBSE के लिए सिलेबस बना दिया है, 9th-10th क्लास में AI का एक सिलेबस है। ICSE वालों ने रोबोटिक्स और AI का एक सिलेबस बनाया है, लेकिन 1-8 के लिए प्रॉपर कोई सिलेबस नहीं है। तो हम लोग जो है सबसे पहले ग्रेडेशन करके बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दें स्कूलों में।

0: तो शहर की हलचल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर। हमारे साथ उषा कनक पाठक जी और स्वामी मुक्तिनाथानंद जी मौजूद हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो उषा जी, अब आपसे ही जानना चाहेंगे, देखिए अलग अलग तरह से हर एक लेखक ने, कवि ने गुरु को उनकी व्याख्या करी, उनके बारे में बताया है। ऐसे में अगर बात करें तुलसीदास जी की, उन्होंने किस तरह से गुरु का वर्णन किया है अपने काव्य में?
1: गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि ग्रंथ लिखे हैं और लगभग सब में गुरु के लिए उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिखा है
0: जी।
1: मैं सबसे पहले रामचरितमानस की बात कर रही हूँ। तो रामचरितमानस के मंगलाचरण में ही है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मैं ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूं जो कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सिंधु हैं और भगवान के रूप में यहाँ पे हमारे मनुष्य के रूप में भगवान हमारे सामने विराजमान है, नर रूप में हरि हैं। महामोह तम पुंज, और हमारे जो वहां मोह रूपी अंधकार रूपी चीजें हैं उसको निकाल कर हमारे अंदर क्या भरते हैं, रविकर निकर, जैसे रवि का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो प्रकाश हमारे अंदर लाके भर देते हैं। और दूसरी एक चौपाई है, गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि अति होती है। जब हम गुरु के चरण की वंदना करते हैं, पद के नख की वंदना करते हैं, तो उसकी जो नख रूपी मणि है उसकी ज्योति से, उसके प्रकाश से ऐसा प्रकाश निकलता है कि जो हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का संचार कर देता है
0: जी।
1: और उन्होंने इसी में रामचरितमानस में ही लिखा है कि गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गाँव ही वेद पुराण सुख की लहाई हरि भगत बिनु। तो क्या गुरु के बिना ज्ञान संभव है? अर्थात नहीं। ज्ञान के बिना वैराग्य संभव है? नहीं। और क्या कोई भी सुख वैराग्य के बगैर मिल सकता है? इसका उत्तर भी नहीं है। और कोई भक्ति जो है, भक्ति बिना वैराग्य के नहीं हो सकती, और जब भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति नहीं होगी तो सुख कहाँ से मिलेगा और मोक्ष कहाँ से मिलेगा?
0: बिल्कुल,
1: भक्ति ही तो मोक्ष का कारण है।
0: यानी कि जीवन के बारे में अगर जानना है, अपने बारे में जानना है, तो गुरु बहुत जरूरी है। ऐसे में स्वामी जी, आपसे सवाल है कि क्या गुरु पूर्णिमा का जो ये दिन है, आज का जो पर्व है, वो सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते या फिर गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का है या फिर आत्म मंथन करने का भी है?
2: नहीं, दोनों ही चीज है। दोनों ही चीज है, गुरु के प्रति सम्मान को फिर रिन्यू करना है। आज के दिन व्यास पूर्णिमा है, आज पुनः हम लोग सब अपने अपने शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु तथा जगत गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने का एक रिन्यूअल होना चाहिए, नवीनीकरण जो साल में होना चाहिए। उसके बाद में हमारा आत्मचिंतन, आत्म मंथन जरूरी है कि आज के युवाओं का इतने अकेलेपन, इतने उनके भीतर में जो विश्वासहीनता एवं जो असहज जो हो रहा है, इसका कारण क्या है? कारण इसका जड़ है, हम सोचते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सब कुछ हमारे मिल जाएगा। अभी ये हमारे जीवन में विज्ञान का एक बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे इंटरनेट से पूरा दुनिया से हमको जोड़ दिया, किंतु दुखद की बात है कि हम लोग स्वयं से विच्छिन्न हो गए, हम अपने से विच्छिन्न होकर पूरा दुनिया से जोड़ लिया। ये है हमारे सारी समस्या का जड़। अभी बारी आई है कि हमें जैसे बाहर से हम युक्त हुआ है, वैसे भीतर से भी युक्त होना चाहिए, और हमें हमारे स्वयं से युक्त करने का एकमात्र उपाय है गुरु। गुरु हमारे जीवन में एक बहुत ही जरूरी है, और गुरु के सहारा बिना अगर हम इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ जीत लेंगे, कभी संभव नहीं होगा।
0: बिल्कुल मैम, आप भी इस वक्त देख रही हैं जो दौर है, बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो खुद को गुरु से ज्यादा ज्ञानी समझने लगे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे आज के युवाओं को, गुरु क्यों जरूरी है?
1: गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जबकि जो ये मोबाइल है जरूरी नहीं कि ये हमें प्रकाश की ओर ले जाए
0: जी।
1: पहली बात, इसके अंदर तमाम सूचना ऐसी होती है जो भ्रामक होती है
0: जी।
1: सूचना तो मिल जाएगी लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, और सही नहीं होती है। तो सही सूचना

0: जरूरी है, उनको सिखाना पड़ेगा कि आज की दुनिया के जो विज्ञान जरूर उनको गति प्रदान कर रहे हैं लेकिन दिशा प्रदान करने में असमर्थ है। दिशा एक गुरु के पास से ही मिलना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए एवं गुरु का दिशा से ही अगर आगे बढ़े तब गति और दिशा मिलकर उसका जीवन सफल होगा। अभी हमारे जीवन में गति पूर्ण हो गया, दिशाहीन हो गए
1: जी।
0: तो आज गुरु पूर्णिमा का जी यह सूचना है, आज जो संदेश है वह है सारे युवाओं को एवं सारे समाज को दिशा प्रदान करने के लिए गुरु को अत्यंत जरूरी है मानकर गुरु के प्रति समर्पित होना।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप दोनों को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जिस तरह से हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं ये खास तौर पर गुरुओं को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने हमें सही राह दिखाई है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमें जानकारी तो हर जगह से मिल जाएगी लेकिन वो कितनी सही है इसका फैक्ट चेक गुरु ही कर सकते हैं। आपके जीवन में कौन सा कदम आपको उपलब्धि की ओर लेकर जाएगा ये गुरु ही आपको बहुत से बता सकते हैं। तो ऐसे में आज का दिन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उम्मीद करते हैं आप गुरु के महत्व को समझे होंगे और आप उनको आज आदर सम्मान भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर जियान नई किरण। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और गुरु पूर्णिमा पर विशेष अंक आपको हमने सुना। आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, समाचार आपके डाउनलोड नहीं हुए हैं, पता नहीं आज कुछ गड़बड़ है दिल्ली से लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा जो है 5 मिनट का समाचार आया हुआ है वो मैं आपको सुनाऊंगा। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
3: लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षक क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से

हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियाँ। गुरु पूर्णिमा की बातें चल रही थी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है। तो आज विशेष पुडुचेरी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे एडवर्ड गोबर्ट। 1894 में इनका जन्म आज के दिन हुआ और आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्तियों में से जे आर डी टाटा का नाम सर्वोपरि है। इनका भी जन्मदिन आज है और ये 1904 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे डैग हेम्सकेल्जरलैंड। 1905 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मराठी साहित्यकार, नाटककार और इतिहास लेखक रहे बाबा साहेब पुरंदरे। इनका भी जन्मदिन आज है। 1922 को इनका जन्म हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म हुआ आज ही के दिन 1931 में। और लोकसभा के महासचिव है उप्पल कुमार सिंह। 1960 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए मित्रों, आज के दिन जिन लोगों का जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

जी मित्रों, गुरु पूर्णिमा की फिर एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा कि गुरु पूर्णिमा के इस खूबसूरत दिन को आप भी बहुत प्यार से मनाएं और बहुत प्यार से आज के दिन को आप जो है एंजॉय करें। ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं और सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा। आशियाना के साथ आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भाई रुक रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर
0: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहन कर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है जो आप ध्यान से सुनेंगे कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या काम? उनकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिटक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम? मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आंख वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कई आप जैसे लोग मुझे अंधे से कहीं टकराने जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे तो मुझे बेचारे का क्या होगा सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका,

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए, कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। फायदा क्या होता है इसका, जो बता रही हूँ आपको कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी, कानों में तेल डालने से अंदर का मेल उगल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे। तो कितने अच्छे उपाय है, एक पंत कितने सारे काज। तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा कि सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि सप्ताह में एक ही बार भोजन करना है, भोजन आप रोज करिए ठीक है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नियम बना दीजिए कि एक बार आप भोजन करने से पहले, सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, सोमवार मंगलवार रविवार शनिवार कोई भी दिन, और जब आप भोजन करते हैं सुबह के समय तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन के समय लंच के समय उसके पहले कि भाई आप भोजन करने बैठ रहे हैं तो उसके 5 मिनट पहले आप हल्का सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गर्म नहीं हो, सुहाता ठीक है, तेल लीजिए सरसों का और इसकी 2-4 बूंदे डालिए कान में। इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं, और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मेल निकल करके बाहर आ जाएगा। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप 2-4 बूंद तेल डाले तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे। और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे। ठीक है ना, देखिए बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40

42 साल के है ऐसे, ठीक है। तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में, तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे, गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा और न ही बहरापन आएगा, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी आंखें भी नहीं दुखेगी। कितना सारा फायदा है कि देखिए आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो। और देखिए कान और नाक के छिद्रों में उंगलियां तिनकर डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए, ठीक है। तो इनसे आपको बचाव करनी है। तिनका डालते हैं, मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है, ठीक है। इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे, ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता सहता गुनगुना तेल डालने से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना, उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो, ठीक है। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी। बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है भले न चाहते हुए भी। जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए। हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहे।

0: कॉफी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और 1 टिन लेना है मिल्क मेड। अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच और पीसी हुई छोटी इलायची 1/2 चम्मच। फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की और कुछ धागे लेना है आपको केसर का। बस सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप 1 डज़न कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, 1 टिन लेना है मिल्क मेड। फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है। पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच और 6 बूंद केवड़ा जल की। केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए। तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है। और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई। दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं। चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति। कैसे आपकी तबीयत है?
1: बस देखो, चल रहा है,
0: पता जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है?
1: बस आपकी गुआती है मैं तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
0: जी।
1: 30% मिलता है महिलाओं को,
0: 30%, ठीक है?
1: 30% मिलता है और अब 50 होने वाला है, सुना है।
0: अच्छा ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है? जी जी, आभार। तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू डुंडई गांव से और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए। फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की घीरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, केवड़ा जल। फिर ठंडा होने दीजिए इसको। ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए, जमने के लिए रख दीजिए। तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गरम करना है, ठीक है, हिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है, गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की घीरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए, ठीक है, लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो, ठीक है। तो ये बन गए हमारे कुल्फी लजीज। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें, कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो। या फिर आजकल तो मेहमान भी फ़ोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फ़ोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब भाई भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है।

जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है, महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है, और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है, और आपको दीदी प्रणाम है। और
1: आपको भी नमस्कार।
2: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जी अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
1: बिल्कुल।
2: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
1: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
2: जी, दीदी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से, और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है। फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है, जिसमें आपको बादाम काजू और पिस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप लीजिएगा चिरौंजी 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच वही आपको पीसी हुई इलायची लेनी है, और सुगंध के लिए थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ा सा पीला और लाल रंग खाने वाला लेना है। ठीक है, जो हम खाने में यूज करते हैं पीला रंग और लाल रंग थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो ये हो गई तिरंगी कुल्फी की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप अपनी डायरी में नजर डाल दीजिएगा, आपने अच्छी तरह लिखा है, कहीं छूट गया हो तो फिर से आप लिख सकते हो। 5 कप क्या लेना है, दूध, फिर मिल्क मेड लेना है 1 टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम काजू और पिस्ता ले सकते हो, 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी और इलायची पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच, सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। फिर आप ये गर्म करिए, गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए, दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गर्म करिए ताकि नीचे चिपके नहीं। ठीक है, हिलाते रहिए, गर्म करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गर्म करेंगे तभी ये गाढ़ा हो पाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आप, जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा। बारीक झोंके मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को तीन हिस्सों में कर लेना है आपको, तीन जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है, तीन हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको तीन तीन कलर के डालना है, थोड़ा लाल थोड़ा सफेद थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, ठीक है। 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी, और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है, विशेष करके कलरिंग चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है, अलग अलग फ्लेवर वाली होती है, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी, 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े, ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए। हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और 1 पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी का सांचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो एक कलर वाला डालिए, ठीक है, बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए। जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के, ठीक है। और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से बड़े प्यार से श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारा जो भाव होता है जो विचार होता है एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं, प्रभु के प्रति हमारा संकल्प चला जाता है तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को मेहमानों को भी आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में आशियाना प्रोग्राम में।
0: जी तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
1: हाँ जी।
0: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
0: जी,
1: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
0: जी,
1: ठीक है ना। क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
0: जी।
1: और आपने जीत की बात की तो देखिए, जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है, तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता है, तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहाँ पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है
0: जी।
1: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को,
0: बिल्कुल
1: ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
0: जी।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा और बस इस गाड़ी को संभाल के चलिए, क्योंकि आप बस ट्रेन या कोई भी गाड़ी चला रहे तो हेलमेट या सीट बेल्ट की जरूरत होती है, मगर जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ना तो सीट बेल्ट लगती है ना कोई लगती है, बस आपको मन को मतलब शांत करके उस गाड़ी को चलाना है
0: जी।
1: तो बस आपकी गाड़ी में जरूर आपकी जीत होगी, बस यही कहना चाहता हूँ।
0: बहुत सुंदर, तो आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है इस विषय को। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
0: हूं। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे हैं। दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
0: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: सही बात है
0: जी।
2: तो वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ, समय के मुताबिक चलना चाहिए।
0: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए, विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
2: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो कि अपने गाड़ी की हो तो समझो कि आगे आ गया बम्प आ गया
0: जी,
2: बराबर, तो ब्रेक मार दिया, वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने ऊपर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
0: जी।
2: हाँ वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो के खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए, चलो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
0: चलिए ठीक है,
2: हाँ जी,
0: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
2: जी,
0: जी, जी, जी, जी। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे तो और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो हमारे श्रोता बंधु फिर से, जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: बहुत अच्छी बात हो रही है, उसका विषय भी दिया है आज, जिंदगी में यही तो हो रहा है
0: जी,
3: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की
0: जी,
3: सही समय पे खेल बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
0: हाँ जी,
3: ये देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ बाद में बताऊँ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
0: जी,
3: और कई गाड़ी सामने आते एक दूसरे के सामने भेज जाती है, तो ऐसा भी होता है
0: जी।
3: तो सही समय पे जिंदगी में भी दीदी ऐसी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए। डॉक्टर देखो चल आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जीते हैं और हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमको होगा, हमारे पास पैसा है तो हम सभी पैसे जो खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और सही समय पे पैसा भी बचाना है, सही समय पे सबको साथ भी देना है, एक दूसरे को जिंदगी में साथ भी रहना है, तो ही तो हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं
0: जी,
3: वरना जैसे गियर बदलना है, हम अच्छी है अच्छी तरह से जी रहे हैं और हम कुछ और कर देंगे, गियर बदलना चाहे कि कुछ और कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो हमारे ही आएगी,
0: बिल्कुल
3: तो ऐसा नहीं करना है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं रेस चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ियों की है, सही समय पे हमको गियर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
0: जी,
3: सोच के रहना है, सोच के चलना है,
0: जी
3: तो हम आसान से जिंदगी जी सकते हैं। दीदी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद नहीं ना।
3: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है। बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
4: ओम शांति। सर नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुम्पा।
3: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
4: बस आप मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ अभी, वो दिन चालू करवाया तो अभी कौन में सुन रहा हूँ।
3: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो मोबाइल पर?
4: चालू हो गया, चालू हो गया।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है,
4: बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
3: जी प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
4: हाँ, और ये वो बस के लिए कहते हैं, महिला के लिए तो वो भी तो कितना 35 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
3: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
4: ये 30% होती है सर, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
3: ठीक है। चलिए आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
4: अभी वो सभी ने, मैं वो यही कहता हूँ कि ये जीवन अपना और अभी से जीना सीखो, और बस ऐसे ही, और सूरज भाई ने बोला है तो वो भी सही है। चलो
3: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं,
4: मेरा तो यही बस ये कहना है।
3: जी
4: ओम शांति, नमस्कार
3: जी,
4: सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को।
3: जी आपको भी नमस्कार, जी शुक्रिया रामा भाई। तो ये रामा भाई वासना से थे और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, देखते हैं अभी बहुत जल्दी हम आप सभी को जवाब भी सुनाएंगे। अभी आप भी जुड़ सकते हो और प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा, आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि समय पर आप जो गियर बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों को इंटरव्यू देना जाना है जॉब के लिए, ठीक है, अब आज का इंटरव्यू है और बच्चे सोचेंगे अरे हो जाएगा ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या इंटरव्यू हो पाएगा, क्या उनको जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। समय के अनुसार फैसला लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बात हो। देखिए जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं की थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझ कर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
5: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
3: हाँ जी नमस्कार कमलेश बहन, कैसे हो आप?
5: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक। आप कैसे हो?
3: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
5: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
3: वो तो है, ईश्वर की कृपा तो
5: है, भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
3: जी जी जी बिल्कुल।
5: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
3: हाँ जी,
5: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
3: जी,
5: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको, किस साइड अपने को घुमाना है, और किससे तुलना करनी, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
3: जी,
5: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस मैम।
3: जी बहुत बहुत आभार कमलेश बहन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का युग होकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने जाने हैं उपाय, ज़रूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और ज़्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने % की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। लता।

समझ कुछ भी नहीं आता है, मुझे अपने ही रंग रंग कर बढ़ाने मान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं

मन बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है, एक दर्शन

एक रोज दिवाली है मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है मेरे

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है, परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
2: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर बनू

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोरबेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है। कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
3: आपने अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विने खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
3: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अनी वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परवरिश पे मने पूरो विश्वास है।
4: साथी डारे छोरा चोरी जद देखू जद घर भरियो उमड़ियो घुमड़ियो रे ऊ मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं हुल राओ हाल रियो।
5: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिक रिया।
6: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
5: अरे वाह वाह बीनणी, ले बेटा यो मुख मीठो कर गुड़ खा, मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा। पर यो कई राजू, तू बीनणी ने कही क्यों जो बीनणी उदास लाग रही?
6: माँ, थारी बीनणी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
5: देख बीनणी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी, तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
7: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
5: तू कई समझे मने थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठा कोनी मैं सब समझू। डिलीवरी अपना घर में ही वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे ही कोनी जानो समझी, और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केजे।
7: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद कोनी आवे और हर बहू खुश रह सके।
5: कई सोच में पड़ गई बीनणी।
7: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास कोनी माँ हो।
8: दिवाली में तो खूब मनावा सब मिलकर नाचागा, आयो त्योहार आचो आनंद हिरदाम समाओ।
7: पापा जी मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूं ना सब सफाई कर ले हूं। आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेले मनाई?
7: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
9: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका। क्यों श्याम?
10: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊ।
3: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊ मठड़ी।
0: मैं बनाऊ मोहन थाल।
7: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
11: बेटा थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तो ध्यान सु कर जे। सुन, मिठाई तो अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू?
7: माँ, मैं थारे वीडियो कॉल करू।
11: यो कई बेटा, ब्यान जी सा, ब्याई जी सा, जमाई सा सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
10: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
11: वाह, हावरो बेटो एड़ो। रखू बेटा फोन, मारा तो खुशी का आंसू आ गया।
9: बिन्नी, ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो और मैं थने देऊं, थारी भी पहली दिवाली है, आंसू यो थारो है।
0: बिन्नीया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आंसू छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके, किपे डिपेंड नहीं रहे इन्ने वास्ते।
7: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: सा मुक्सु कयो नहीं जायो सैको नी हो वेसा।
1: हेलो प्रिया, काई बात है? आज तू घणे खुश लाग रही है।
2: हाँ पूजा, आज मैं घणी खुश हूँ। आज मैं हमेशा के लिए छुटकारो मिलियो, मैं टेंशन फ्री वही गई।
1: अरे काई बात हुई प्रिया, कि कौन थाने छुटकारो मिलियो, कसान टेंशन फ्री हुई? भाई पूरी बात बताओ तो ठा पड़े।
2: काई बताऊं पूजा, मारा ननदोई जी है जो मने घणो परेशान करता, अश्लील फोटो भेजता, खराब मैसेज करता, गलत इशारा करता। मैं तो तंग आके वाऊ आखिरकार हिम्मत जुटान घर में सास ससुर को बात करी, सगड़ा सबूत भी बताया।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हिंसा को नो कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम हिंसा को नो कहते हैं तो वो परिवार और समाज कैसा होता है, आज हमने नाटक के द्वारा देखा है। अभी हम सुनेंगे आबू के अंचल में रहने वाली उन आवाजों को, उनका क्या अनुभव है घरेलू हिंसा को लेकर।
1: नमस्कार, मेरा नाम ललिता है और मैं आपको शारीरिक हिंसा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारे जीजा जी थे, वो ट्रक चलाते थे, तो वो बहुत नशा करते थे और आते थे ना तो मारते थे। और ऐसा नहीं अकेले में मारते हो, जैसे कि हमारी दीदी बड़ी मम्मी के सामने मारते, बड़े पापा के सामने मारते, रिश्तेदारों के सामने मारते, सबके सामने मारते। मेरी दीदी है ना, चुपचाप मार खा लेती थी। क्यों? कि भाई मायके भी नहीं जा सकते हैं और ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, तो हम कहेंगे भी किससे और जाएंगे भी कहाँ। पति का भरोसा है भाई, मार खाते रहो चुपचाप। तो ऐसे कईयों साल तक चला। हमारी बहन, छोटी बहन की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो बैठ के बातें करने लगे, फिर डांस होने लगा औरतों का, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो जाते थे, शराब पी के आते थे और उसको बहुत मारते थे दीदी को। तो फिर वहाँ पे दीदी ने ना खुद भी मारा और औरों से भी मारवाया उनको। बोला आप, तुम्हें मतलब पता चलेगा कि औरत जितना सहती है ना वो सहती है, जब वो नहीं सहती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है भाई। उसको भी जैसे तुम्हें अपनी इज्जत का वो होता है, भाई चार जनों के लोगों बीच में मार रही है तो मेरा कोई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो मर्द हूँ। वो भी तो औरत है ना, आप मर्द को जन्म देने वाली औरत ही तो होती है ना, आप उस औरत पे अत्याचार करते हो। हमारी दीदी ने सबको यही बताया, भाई कितना हो जाए मतलब सहो नहीं। और यही सा हमारी बुआ के साथ भी हुआ। तो मेरी बुआ ने तो खैर उनको जेल में डलवा दिया, तो अब वो नहीं मारते हैं। और मेरी दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, तो अब जीजा जी नहीं मारते हैं और दोनों आराम से रहते। और अभी काफ़ी उन्होंने तरक्की भी कर लिया, क्योंकि नशा छोड़ दिया और नशे में आके वो मारते थे वो, तो उनको भी जब 3-4 बार पड़ा तो वो सुधर गए। यौन हिंसा कई बार सोचते हैं यार, बात करना कईयों को अच्छा नहीं लगता है यौन हिंसा के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हो जाती है। मैं फील्ड में एक औरत से मिली हूँ जो यौन हिंसा की शिकार है, उनके 10-12 बच्चे हैं ऐसे, उनके पति गुजर गए हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। तो उनके बच्चे में से जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था, वो अपने माँ के साथ ही रेप करता था। जब वो मना करती थी तो वो सबके सामने शराब पी के सबके सामने मारता था, गांव वालों के सामने मारता था, रोड पे ऐसे मारता था जब वो नहीं मानती थी। और बहुत बार जबरदस्ती किया उसने, मारा भी बहुत, मतलब कपड़े निकाल के भी वो मारता था। उसके खिलाफ किसी ने केस भी नहीं किया, क्योंकि जो उस औरत की हेल्प करना चाहता था, मतलब उनको बचाना चाहते थे उस चीज़ से, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो। जो बेटा था ना वो उनके साथ भी मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना ये सब करता था शराब पी के। और कई बार उसने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे किया, उसने मारपीट किया है। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ली।
2: नमस्ते जी, मैं नंदू कंवर बोल रही हूँ। हमारी शादी ने 35 हो गई, माना कि 35 साल होगी। जब से मैं शादी कर मेरे ससुराल गई, के बाद में मैंने कोई परेशानी नहीं है कि जो मैं घर में काम करती हूँ या मेरे को पैसे है, मेरा पीर का दियड़ दहेज है, मार पीर की दियड़ कोई भी चीज़ है, कोई अधिकार नहीं जमाई हो। और सब जो भी मारो मान रखियो, मतलब ससुराल में कि भाई थे यहाँ करो, था को जो चीज़ बाप दादा को लिया वह आपको ही अधिकार है। तुम्हारे सासू से लगा नण देवरणी जिठानी कोई मेरा हक नहीं जमाई हो, जो मारे मन चाहिए तो मैं यूज करियो, और जो मारे चाहिए भाई कोई ने भी देनो लेनो कहीं भी करियो तो मैं मारे हिसाब ही दियो लियो, ठीक है। फिर बाद में जब मारे खुद की भी मैं काम सिलाई पकड़ी, जब से भी चाहे भले वो 100 रुपये की सिलाई करी, 50 की करी, जो मारे मन में हुई हो कि वह चीज़ खरीदनी है, वो कोई ने देनो लेनो है तो वो ही दियो लियो, और वही पैसा मारे कन जमा है, पर मारो परिवार कोई मैंने यूँ परेशान नहीं करियो कि आज आपका पैसा वहाँ न दो, मैं कोई सामान ले वहाँ करा, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी मारे घर में मैं करूँ तो मारे ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और सब अच्छे से अच्छे काम करूँ मैं मारे। और जो भी सिलाई करो, भले ही अपन 2 रुपये की कि भाई कोई बुनाई करो रहे, कोई काज बटन करो रहे, कोई भी काम करा अपा, तो मारे घर में मैं ही बाप रहूँ। और जो भी कोई पैसा आवे तो भाई देवरानी जिठानी लेनो देनो हो, चाहे आगे सास ससुराल को देनो लेनो हो, तो बेटा आप बोलो और आपने मन चाहे वो काम करो। तो ऐसो मारे तो घर में कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो को भी कोई मैंने पूछे कहते अतरा मजबूत किया हुआ कि आपा काम करा और आपा ही नाम नहीं करा तो दूसरों कौन करी, तो सब समझदारियों काम ले और चालर जकी भी आवे तो मैं तो आई कोशिश कर।

0: भी खेऊं, और कहते डरो मत, कोई भी मत डरो, अपने बढ़िया बढ़िया काम करनो और सारी होशियारी के साथ में चालनो, सबने साथ में लेट चालनो है। और जो आप काम करा और भी में भी कोई हुए तो भी ज्ञान बतावा कि बेटा यूं नहीं करनो और यूं करवाऊं, आगे आपने अच्छे काम हुई, आगे पीसा टक्का घर बार परिवार सब आपा ने चलानो है, तो सब भी हिसाब चालो। तो जो भी मार्केट कोई सिलाई वाली भी आवे ना, वही बात पूछे के भाभी साहब मैं तो यूं परेशान आ घर हूँ, दहेज की खातरी मन लड़े, मगर आदमी भी कोई यूं मन लड़े, टाबर भी है कोई पड़ोसन भी माने यूं खेदे वे कि भाई थे थाने यूं लड़े करे तो आप घरे चले जाओ, आंसू अलग हो जाओ। मैं एक ही बात कहूँ, कोई अलग नहीं होना कोई इश्यू भी, जो भी कहे आपने काम करना मजबूती के साथ करो, मजबूती के साथ रहो और बढ़िया काम करो और सबने ज्ञान करो।
1: नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है। हमारे पास में एक आंटी जी रहती है, तो वो मतलब मानसिक हिंसा की शिकार हैं। उनके सास ससुर मतलब थोड़े पुराने ज़माने के, उनकी सोच मतलब नए ज़माने के साथ में बदली नहीं है। उनके साथ में एक बेटी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उनके सास ससुर बोले कि हमको अब इस बार पोता ही चाहिए, पोती नहीं चाहिए, पोतियाँ मतलब बड़ी होगी, इतना खर्चा पैसा लगाएंगे शादी करके तो इनको दूसरे घर जाना है, इसलिए हमें एक और पोती नहीं चाहिए, हमें पोता चाहिए, पोता होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। ऐसे ऐसे करके उनको बहुत ताने मारते थे और पूरा घर का काम उनसे ही करवाते थे, ना उनको टाइम पे भोजन देना, ना उनका मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेके, मतलब ढंग से ध्यान ही नहीं रखना, बस जरा सी गलती हो जाए तो बस उनको सुनाना सुनाना। वो इतने सास ससुर से परेशान हो जाए, वो सोचते थे कि अब मेरे भी दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए। अब वो मतलब उनके ऑपरेशन से लड़की हुई, वो हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तब भाई ताने शुरू, बेटी हुई है, एक बेटी हमसे पालनी जा रही है या दूसरी पर, ऐसे ताने दे कर करके उनको मतलब सुना सुना के 5 दिन की वो बच्ची हुई और वो भी ऑफ हो गई। फिर वैसे ही वो बीमार थी और वो मतलब डिप्रेशन में चली गई। फिर उन्होंने अपने पति को बोला तो पति बोले कि मैं सेटल होता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। अब वो क्या करे, वो हिंसा को सहन कर रही है और अपनी चुप भी लगाए बैठी है।
2: तो सुना दोस्तों, हमारे आबू की महिलाएं और लड़कियां किन हालातों से गुजर रही हैं, हम हमारे घर परिवार की महिला और लड़कियों को किस प्रकार की सुरक्षा या न्याय दे पा रहे हैं। हमारी इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम अपनों के लिए खड़े रहे और उनको साथ दें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का विषय घरेलू हिंसा के प्रकार बेहतर समझ में आया होगा, और आपके कोई अगर सुझाव है या अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई और कहते हैं, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी आप सुनिए ये गीत आरजे उषा की जुबानी।

0: लीजिए श्रोताओं, हाजिर हूं मैं संदीप त्रिवेदी आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। कहां पर ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूं। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, लगातार हमराही का आपका हमारा ये साथ आगे बढ़ता जा रहा है, और कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कहानी को प्रस्तुत करना और उसको रुचिकर बनाना, इन दोनों ही कार्यों में हमारे लिए कभी कभी चुनौती हो जाती है। लेकिन फिर भी आप सबका जो प्यार है, आप सबका जो विश्वास है, और हमारे युवा साथियों की खासकर जो भावनाएं हैं इस कार्यक्रम के साथ, उसी की बदौलत निरंतर हम इस कार्यक्रम को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। आप सब जानते ही हैं दोस्तों, जिंदगी किसी भी मोड़ पर आसान नहीं होती है। हर मोड़ पर जिंदगी में संघर्ष है, और मैं तो ये भी मानता हूं कि हर किसी के जीवन में संघर्ष है। बस किसी का संघर्ष कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का सामने आ जाता है और किसी का सामने नहीं आ पाता है। ऐसे में सोचिए आप कि वो लोग जिनकी जिंदगी में किसी न किसी तरह की शारीरिक चुनौती है, वो किसी तरह की दिव्यांगता से जूझ रहे होते हैं, और उसके बावजूद जब परिवार समाज उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, तो फिर ऐसे में जिंदगी को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल से भी हमारे अनगिनत साथी हैं जो बाहर आ जाते हैं और बखूबी समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके, साबित करके बताते हैं। तो आज भी ऐसे ही मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो अब और ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं आप सबको मिलवाने जा रहा हूं। आज राजस्थान से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान धर्म सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी बबीता जी। तो बबीता जी और धर्म सिंह जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: स्वागत है सर, सभी रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम साथियों को सादर प्रणाम।
0: जी धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़े। धर्म सिंह जी, आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं थोड़ा, कि आप किस तरह की दिव्यांगता से पीड़ित हैं और कब से आप जॉब कर रहे हैं, किस तरह आप दृष्टिबाधित हुए और कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया।
1: जी हाँ सर, जैसा कि मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा दिखता था, उसके बाद जैसा आपको भी शायद बीच में विदित है क्योंकि आपसे जूनियर थे, उसके बाद हमने जो ब्लाइंड एक दृष्टिबाधित होने के कारण कई जगह इलाज भी कराया परंतु नहीं व्यवस्था बैठ पाई, और जो आँखों में कॉर्निया की कमी होने के कारण कहीं इसका इलाज नहीं हो पाया, इसलिए आपसे जूनियर हम रहे। और हमने आपको बताया कि 2012 की जॉब में सेलेक्ट हुए, परंतु किसी कारणवश या बदनसीब कहिए जो हमें जॉब नहीं मिल पाई, उसी जॉब को हमें नवंबर 2017 में जॉइनिंग मिली, वो भी बड़े संघर्ष के बाद, जिसको जॉइनिंग लेटर जून 2017 में मिल जाए और उसको जॉइनिंग नवंबर 17 में हो 6 महीने बाद, उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष किया मैंने, क्योंकि चौथा नियुक्ति आदेश आने के बाद ही मुझे जॉइनिंग मिल पाई, क्योंकि हमारी तरफ एक दिव्यांग को बड़ी चुनौती है कि दिव्यांग किस तरीके पढ़ाएगा, क्या करेगा, ये यहाँ के लोगों की सोच वो अभी तक मुझे परेशान करती आ रही है।
0: जी धर्म सिंह जी, तो ये मतलब चार चार बार जॉइनिंग लेटर जारी होने की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, थोड़ा सा आप वहां के परिवेश के मुताबिक अगर बताएंगे तो ज्यादा स्थिति क्लियर हो पाएगी हमारे सुनने वालों के लिए।
1: जैसा कि यहाँ के कुछ अशिक्षा का कारण है, और यहाँ के जो शिक्षित हैं, आप जानते हैं हमारा भरतपुर संभाग बहुत पिछड़ा हुआ संभाग है।
0: जी जी जी,
1: दिव्यांगता के और एक दृष्टिबाधित के लिए तो बिल्कुल सहानुभूति बहुत ही कम लोग रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी सोच थी कि दिव्यांग है, तुम कैसे पढ़ाओगे, क्या करोगे। जब मैं 8 जून को जॉइनिंग करने गया था 2017 में, जब ये बात आई थी
0: जी,
1: फिर आप जानते हैं कि बाबुओं को किसी के ना किसी कारणवश कोई छोटी मोटी त्रुटि निकाल के इसको मैं वापस गया, जिला परिषद से दोबारा मुझे जॉइनिंग आदेश हुए, फिर उसमें भी मुझे पारनी पड़ी, दोबारा फिर दोबारा मैंने पंचायती राज और कुछ राजनीति नेताओं के सहयोग से 16 नवंबर 2017 को ज्वाइनिंग प्राप्त की। कुछ मीडिया वालों का भी अच्छा सपोर्ट रहा और उस परेशानी को अभी तक मुझे कई अधिकारियों से झेलना भी पड़ रहा है।
0: अच्छा, मतलब लगभग आप 2.5 सालों से नौकरी कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है बखूबी शिक्षण कार्य करवा सकता है।
1: जिसमें अभी भी मैं बाकायदा मेरा 2 साल का रिजल्ट, अभी 2.5 साल का जो रिजल्ट है 8वीं का 100% रखता हूँ मैं, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास चलानी पड़े।
0: क्या बात है, चलिए आप अपने स्तर पर मेहनत पूरी कर रहे हैं और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये नेत्रहीनता है, इसका कब पता चला आपके परिवार को कि आप ब्लाइंड हैं शुरू से?
1: इसमें मेरे परिवार में अशिक्षा का कारण था और इसका जब मैं 2री-3री में पढ़ता था, जब मतलब आसपास के लोगों ने, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने ही पता चला और फिर उन्होंने ही मुझे ब्लाइंड स्कूल अजमेर के बारे में बताया था।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि बबीता जी से भी थोड़ी बात की जाए और बबीता जी अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताए। जी बबीता जी।
2: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है बबीता जी?
2: मैंने 12th पास की है।
0: 12th पास किया है, उसके बाद में फिर पढ़ाई आपने नहीं की आगे?
2: नहीं।
0: अच्छा, तो जो है क्या कोई खास कारण रहे या आपके यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा, मतलब महिलाओं को, क्या वजह रही?
2: नहीं, वो परिवार है ना, गरीब है हमारा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
2: मम्मी पापा है, 2 भाई है और 1 बहन।
0: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो मन करता है कभी अब आपका और आगे पढ़ाई करने का?
2: नहीं, अब नहीं करता।
0: अब नहीं करता, अब तो घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो धर्म सिंह भाई, अब जरा आ जाएं आपकी कहानी पर।
1: जी जी।
0: ये जब नौकरी लग गई नवंबर 2017 में,
1: जी हाँ,
0: उसके बाद फिर ये भी प्रयास शुरू हो गया होगा कि अब आपका विवाह करवा दिया जाए।
1: जी।
0: परिवार ने और आपने स्वयं ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए होंगे इसके लिए।
1: जी हाँ।
0: तो ये सब कहानी कैसे बढ़ी जरा बताएं हमारे सुनने वालों को।
1: समाज में बड़ी विडंबना है सर, आप स्वयं जानते हैं, एक दृष्टिबाधित, हालांकि नौकरी लग जाता है तो सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें तो दृष्टिबाधित को यार तुम मार साहब हो, तुम इतना करो उतना दो, इस काम में तो बाध्य कर देते हैं समाज के लोग, पर शादी के लिए समाज के लोग बड़े एग्री नहीं होते हैं कि यार जैसा बंदा है उसको वैसी ही बच्ची चाहिए।
0: अच्छा।
1: इसमें ज्यादा रो रखते हैं बीमार।
0: जी।
1: परंतु किसी कारणवश मेरी भी यही जिद थी कि भाई दिव्यांग लूंगा तो फिर अपनी जैसी लूंगा, फिर मैं क्यों किसी को परेशान करूं।
0: सही है।
1: तो नौकरी लगने से पहले ही मुझे मिल सकती थी।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी जो, हालांकि 4-5 दिन में घर पर आते, नाश्ता भी करते और बच्चा कैसा है भाई, ब्लाइंड है, ठीक है, आना, कोई जवाब ना देते हुए वापस रिटर्न हो जाते थे।

0: नहीं, ये बीच में आपकी आवाज सुनाई नहीं थी मेरी, जो आपने कहा ना उसके बाद से। जी
1: मतलब मेरी जैसे आपको बताऊं कि शादी में जो आते थे संबंध वाले 2 दिन में या
0: अच्छा
1: 4 दिन
0: अच्छा ओके ओके जी।
1: आते थे, दृष्टि बाधित को जब पता
0: ये
1: चलता,
0: कब से आना शुरू हो गए थे आपके घर में रिश्ते वाले?
1: जॉब में मतलब ये समझिए आप, जॉब लगने के मात्र 2 या 3 महीने बाद से आना शुरू हो गए थे।
0: अच्छा, 2-3 महीने बाद से ही।
1: कभी मेरे स्कूल में भी आते थे तो कभी घर पे भी आते थे, परंतु जो उनको जब पता चलता कि यार बंदा एक दृष्टिबाधित है, और मैं तो साफ कहता था भाई देखो हाथ पकड़ के जो चल सके वैसी बच्ची चाहिए मुझे ना,
0: सही है।
1: क्योंकि तो हमसे गिरना ना करे कोई भाई,
0: ठीक
1: हम जाए तो समाज में फिर गिरना हो तो क्या मतलब है।
0: ठीक बात है।
1: लिए फिर लास्ट में जब होते हुए 2018 में जो मेरे ससुर साहब हैं बबीता जी के पिताजी वो आए थे, उनको किसी ने बता रखा था कि भाई एक ब्रांड है और उसकी कोई मांग जांग नहीं है, आप अपनी बच्ची का संबंध कर
0: अच्छा, ये
1: सकते
0: मांग दांग से याद आया कि जिस मतलब जगह आप रहते हैं,
1: हैं।
0: वैसे तो खैर बहुत जगह की ये समस्या, वहां पर भी ये सब लेन देन जो है काफी ज्यादा है।
1: हाँ, आज यदि मैं मान लीजिए इस चीज को बताना तो नहीं चाहिए, दहेज प्रथा तो बहुत ज्यादा ही वो है
0: अब कुछ
1: मतलब।
0: परिवर्तन हो रहा है धर्मू भाई, या अभी भी नहीं हो रहा है? वैसा ही है माहौल है आज 2021
1: देखो
0: में।
1: आजकल सर्विस में जो लग जाता है वास्तविक, वो अब मैं बहुत बड़ा हो जाता है कि मुझे 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 5 लाख
0: ओह,
1: चाहिए।
0: मतलब जितनी बड़ी नौकरी उतना ही
1: हाँ
0: बड़ी,
1: हाँ हमारा
0: उतनी ही बड़ी डिमांड। मतलब
1: इधर बैकवर्ड एरिया एरिया भी है, और क्या है आप जानो एससी का और इनका ज्यादा, यहाँ चाहे IAS हो या RAS हो या डॉक्टर हो, उनकी करोड़ों तक की मांगों में शादी होती है।
0: ओहो, चलिए आगे बताइए जी।
1: तो इसी प्रकार आप 17 दिसंबर 2018 को मेरे जो ससुर साहब थे वो आए, उन्होंने मेरे से नाते वोते पूछे जो परंपरा होती है वो, और मोबाइल नंबर लिया। उसके बाद एक हमारे विद्यालय के जो HM थे उनको पता चला, मतलब स्कूल में आए थे वे, तो HM साहब से मैंने मिलाया। HM साहब तो और उनकी थोड़ी जान पहचान हो गई थी भाई, पूर्व से जानते थे थोड़ा सा, तो हालांकि ये संबंध होने वाला था, पर वो जैसे 3 महीने में संबंध होने वाला था, तो HM साहब की बदौलत ये 15 दिन में ही जो सगाई का प्रोग्राम होता है वो 28 दिसंबर को ही हो गया,
0: अच्छा।
1: और सीधा ही दोबारा मुझे मिलाया और दोबारा ही मेरे हाथ में 111 रुपये थमा दिए। और 1 जनवरी 2019 को जो गोद रस्म होती है, जो लड़की भरी जाती है, वो कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से करा दिया। तो हमारे HM साहब को भी ये थोड़ा डर था कि यार दिव्यांग है, क्या पता कोई पढ़ा दे, कोई इनको सिखा दे, तो संबंध टूट जाए, तो ये जल्दबाजी, इसलिए थोड़ी जल्दी करें, क्योंकि तो आप जानते हैं कि थोड़ा डर तो रहता ही है।
0: नहीं, और धर्म सिंह एक बात और बताएं आप, कि ये जातिवादी का भी बड़ा देखना पड़ता होगा ना उस एरिया में, वहां पर
1: हाँ हाँ वो
0: आपके।
1: तो है, जाति का तो देखना ही पड़ता है, तो अपने जाति से ही है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत
1: हाँ
0: बढ़िया। अच्छा, तो इस मामले में तो कम से कम आपको एक
1: हाँ
0: अच्छा रहा कि प्रस्ताव आपको जो आया वो आगे से, मतलब जो आया,
1: तो काफी जद्दोजहद के बाद आया साहब,
0: हाँ, लेकिन कई चक्कर काटने के बाद
1: बहुत
0: कई लोगों ने
1: करीब
0: तो,
1: जाने तो हाँ 30-40 लोग चक्कर काट गए।
0: जी, उसके बाद में जो है बबीता जी के परिवार ने आपका दरवाजा खटखटाया, फिर आगे क्या हुआ? आपने की वो रस्म हो गई 1 जनवरी को।
1: उसके बाद ये है कि फिर हमारा 12 मार्च 2019 को संबंध हो गया।
0: शादी हो गई तो
1: हाँ
0: शादी पूरे मतलब धूमधाम
1: हाँ
0: से।
1: पूरे जो रीति रिवाज होता है, बाकायदा
0: हाँ,
1: बारात वगैरह सब कुछ, वो सारी सुविधाएं
0: अच्छा,
1: सारा कुछ हुआ।
0: और फिर मुश्किल क्या थी जब देखिए जाति सही हो गई और आपके मतलब विवाह में?
1: मुश्किल तो यही थी जो मतलब जॉब लगने के बाद जो लोग आते थे कि यार तो इसको दिखता नहीं है, क्या करेगी हमारी बच्ची, वो ही लोग सोचते थे, कई अलवर साइड से भी आए, कई दौसा साइड से भी आए, कई हमारे करौली के आसपास के समाज के लोग आए थे। ये थोड़ी विनम्रता होती है कि जैसे समाज की जो संगठन होती है, वे संगठन यार हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना चंदा दीजिए, आप 5,000 है 10,000, आप अध्यापक हो। और जब संबंध वाली बात आती है, जब वे शांत हो जाती है
0: तो मेरे भाई,
1: ये
0: आपने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की कि देखिए मैं भले ही ब्लाइंड हूं
1: नहीं,
0: लेकिन
1: बिल्कुल समझाने की कोशिश कई जगह की, कोई रुचि नहीं लेता, ये प्रभु की देन थी। तो अचानक फिर हमारे कुछ HM सामने भी आपको से किस्मत में एक अफसर सबसे बढ़िया जानते हैं कि जो नसीब में लिखी हुई थी उन्हें, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं संबंध होना समाज से नामुमकिन था।
0: जी। तो जब मतलब इनका प्रस्ताव आया तो उन्होंने खुशी खुशी मतलब स्वीकार कर लिया?
1: यस हाँ।
0: अच्छा, कोई बिना किसी बात, उन्होंने कोई चिंता नहीं की इस बात की, ब्लाइंड माइंड की
1: ना? हाँ, वो चिंता
0: क्या
1: कुछ
0: लगता है
1: नहीं।
0: आपको, उनको कोई नॉलेज ही नहीं था या उनको ये था बस कि बेटी का ब्याह करवाना चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे?
1: इनको ये था, कुछ तो हमारे एचएम साहब का भी इसमें सपोर्ट था, उन्होंने उनको थोड़ा समझाया ज्यादा। और एक इनको ये था कि भाई कुछ समझाया कि जॉब में तो है
0: लेन देन
1: दारू का, कुछ वैसा होता तो आज बच्ची परेशान रहेगी, जॉब में है तो बच्ची सुखी तो रहेगी।
0: सही है सही है सही
1: मतलब ये चीज थोड़ा उनको समझ में आ गई,
0: अच्छा
1: कि हम एक जॉब वाले को बच्ची दे रहे हैं, कोई उसको दहेज मांग नहीं। आज कोई जॉब वाला देगा तो 10-12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें उसको।
0: अच्छा, ये तो चलो इनका पक्ष रहा धर्म सिंह जी, लेकिन आपके परिवार की भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दबी हुई इच्छा तो रही होगी ना यार, कि हमारे बेटे की शादी कर रहे हैं तो कुछ हमें मिलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ था क्या?
1: कुछ परेशानियां तो भाई थोड़ी सी परेशान तो हुए यार, कम से कम ज्यादा नहीं तो शादी का खर्चा तो मिलना चाहिए था।
0: अच्छा,
1: जॉब में उतना
0: ऐसे
1: टेंशन
0: में
1: है।
0: आपने आपने कैसे समझाया अपने परिवार को?
1: समझाया क्या, ये संबंध मैंने स्वयं ने अपने बलबूते पर कर लिया था, भाइयों को तो बाद में बताया मैंने।
0: अच्छा, ऐसी कहानी रही। ओके
1: हाँ,
0: ओके।
1: मतलब जो जो रस्म होती है सगाई की वो मैंने स्वयं ने कर ली, जब गोद भरने का कार्यक्रम आता है जब मैंने बताया था। थोड़े परेशानी
0: अच्छा,
1: हुई और थोड़े मनमुटाव भी
0: तो
1: हो रहा था।
0: आपको क्या लग रहा था, घर वालों को पहले पता चल जाता तो नहीं होने देते बिना दहेज के शादी आपकी?
1: होने तो नहीं, होने तो देते थे, परंतु एक वो थोड़ा सा मनमुटाव कुछ ज्यादा होता।
0: आप कौन से नंबर के?
1: मैं सबसे छोटा हूँ।
0: सबसे छोटे? आपसे बड़े जो भाई हैं
1: नहीं, मेरे से बड़े उन सब
0: वो सब के कोई सरकारी नौकरी में है?
1: ना ना, सभी अनपढ़ हैं,
0: केवल आप ही हो सरकारी नौकरी में?
1: और एक पढ़ा, एक समझिए शिक्षित भी मैं ही हूँ।
0: ये वही बात है ना, अनपढ़ को तो चाहे कैसा भी हो लोग अपनी लड़की मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी दे देंगे, और एक दृष्टिबाधित को शिक्षक को जो कि शिक्षक है उसको तो कोई मतलब अपनी लड़की जो है वो कैसी भी हो वो देना नहीं चाहता इंसान।
1: वही समस्या थी।
0: तो फिर आपके भाइयों ने मतलब अंत में कैसे राजी हुए, शादी में तो शामिल हुए होंगे सब लोग?
1: हाँ, शादी में तो सब हो गए करीब सभी भाई लोग, क्योंकि कुछ आस पड़ोस वालों ने समझाया कोई बात नहीं यार, जितना भी हुआ सब बच्ची की बात है, बच्ची तो आ रही है। फिर उन्होंने जो बच्ची को जब गोद भरने की जो रस्म होती है उस रस्म में गए तो बच्ची को देखा भी, बच्ची को देखते हुए सब प्रसन्न हो गए।
0: अच्छा, कि बच्ची सही है, सुंदर है यूं?
1: हाँ, सुशील सुंदर मिली।
0: अच्छा अच्छा तो ये सब समस्याएं शादी के साथ समाप्त हो गई या मतलब रह रहकर लोगों ने आपको ताना मारा? वो तो चलिए, वो तो लोगों का काम है यार, वो तो
1: वो चलता रहता है, लोग देखने भी आते हैं कई बार जगह, जैसे मैं यहाँ रहता था पहले शुरू में आया था, यार क्या सुंदर आई है, और वो ये लोग तो सोचते हैं, ये सोच तो सबकी होती है।
0: बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम बबीता जी से जरा पूछते हैं कि उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा था। बबीता जी,
1: हाँ?
0: आपको शादी के समय ये मतलब बताया गया, अब रिश्ते की बात जब चल रही थी कि भाई जो आपके होने वाले पति हैं वो नेत्रहीन है, वो देख नहीं पाते हैं आंखों से?
2: हाँ, सब कुछ बता दिया था।
0: बता दिया था?
2: हाँ?
0: तो आपने कुछ मतलब सोचा नहीं इस बारे में, आपकी अपनी कोई राय, या वहाँ पे ऐसी मतलब कि भाई जो हमने तय कर दिया वो कर दिया बात खत्म, ऐसा है?
2: नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा पे डाल दिया, तो जो वो पसंद करेंगे उनसे कर लूंगी।
0: आपने नहीं कहा कभी भी कि भाई एक जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, मैं उनके साथ कैसे जीवन बिताऊंगी, कभी आपके मन में नहीं आई ये बात?
2: नहीं।
0: अच्छा,
2: कभी
0: किसी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था आपने जो ब्लाइंड है जिनको दिखाई नहीं देता है?
2: नहीं, मैंने नहीं देखा
0: है। पहली बार ही इन्हीं को ही देखा आपने?
2: हाँ, मैंने तो शादी पे देखा था।
0: अच्छा, तो आपके घर में भाइयों की शादी हो गई थी आपसे पहले?
2: नहीं, मेरे से सब छोटे हैं।
0: अच्छा, आपसे सब छोटे हैं।
2: हाँ।
0: सबसे पहले आपकी शादी ही करनी थी परिवार को?
2: हाँ, सबसे बड़ी मैं।
0: तो बबीता एक बात बताओ ना, बातें तो आपकी भी तो और जगह चली होंगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चली होंगी?
2: पहले ना हम दोनों बहनन की कर रहे थे, पापा हमारे।
0: हाँ, अच्छा।
2: जो मतलब कोई ना कोई कमी निकल जाती, के मतलब कोई लड़का कैसा है, कोई पीवे कोई खावे, ऐसे लेकर जाती।
0: अच्छा,
2: हाँ।

0: कोई मतलब कोई बात कैसे कट जाती हो जो पापा अच्छी नहीं लगती, लोग मना कर देते। दहेज
1: दहेज वहेज की भी प्रॉब्लम करते थे वो लोग?
0: की तो नहीं करते, मतलब वो क्या है, एक मतलब लड़की एक है मांगते, हमारे पापा दोनों की कहते।
1: अच्छा, तो वो बहन आपसे छोटी थी, बड़ी थी दूसरी बहन जो है वो? अच्छा,
0: वो हमें से छोटी छोटी सा, हम चार भाई हैं।
1: वो उसकी अब शादी हो गई कि नहीं हुई अभी भी?
0: अभी नहीं, वो 11th में पढ़ रही है।
1: अच्छा, 11th की पढ़ रही हो। हो तो इतनी छोटी की शादी करने वाले थे आपके घर वाले?
0: अरे वो क्या है, वो है मतलब है जा, मैं ना शादी लाग जो बड़ी है जा, वो मुझे से बड़ी लग है, तो
1: अच्छा,
0: पापा ने कह रहे एक ही संग लेकर दूँ जो बढ़िया
2: ये
0: रहे।
2: चीज तो सर आप भी, अपन आदिवासी इलाकों में तो ऐसे चलता है,
1: जी जी जी
2: इसके बाद
1: जी
2: में भेज देते हैं जब बड़ी हो जाती है। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है
2: खर्चा
1: कि भाई
2: घर
1: कि
2: में सोचते
1: दोनों
2: हैं,
1: का एक साथ ब्याह कर देंगे तो थोड़ा
2: डबल
1: खर्चा भी कम लगेगा।
2: शादी का खर्चा नहीं बैठेगा
1: सही सही कहा आपने, ऐसा होता है आमतौर पे,
2: ना।
1: ये तो है। अच्छा बबीता, मम्मी
0: हाँ
1: पापा ने कभी बैठाल के बात करी कि भाई ये जो है तुम जिनसे शादी कर रहे हैं वो ऐसे, कभी मतलब आपसे बात अलग से की या ऐसी नौबत नहीं आई?
0: नहीं, कही तो थी मेरे से, ना कही तू देख ले तूने और बात कर ले, तो
1: हाँ
0: मम्मी पापा के सामने शर्म आई है तू, जो मैं
1: अच्छा
0: करी।
1: अच्छा अच्छा तो आपने तो कही मान ली उनकी कि भाई जो आपने करिया वो ठीक है ना?
0: हाँ
1: ये ठीक है, ये अच्छी बात है।
0: और
1: तो
0: फिर वहां बोलते हैं जो अच्छे ही ढूंढे, कुछ गलत तुमने ढूंढे।
1: ये बात भी ठीक है, लेकिन वो कईयों के होता है ना कि भाई दिखे अच्छा सुंदर और बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और जो गाड़ी पे घुमा सके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है ना कई जगह? अच्छा,
0: ऐसे मेरे मन में नहीं आई थी
1: ऐसे
0: वाटर
1: नहीं
0: में,
1: आई। तो अब आप गाड़ी पे बिठा के घुमाती हैं कि नहीं?
0: अभी तो नहीं घुमा दी
1: अभी नहीं
0: इनने।
1: घुमाते, गाड़ी नहीं दिलाई इन्होंने? ओहो, अच्छा। तो बबीता, शादी से पहले बात बात होती थी फोन पे इनसे, धर्म सिंह जी से
0: हाँ
1: होती थी? अच्छा,
0: हाँ
1: तो इसमें फिर कुछ पूछा आपने इनसे कि भाई आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं?
0: नहीं
1: तो
0: ऐसे मैंने,
1: कुछ नहीं, और इनने आपसे कुछ पूछा था कि भाई घर को सारो काम कर लेते हो कि नहीं?
0: ऐसे इनने भी नहीं पूछी, जो गई जैसी है वैसी आ जा।
1: अच्छा, वो ठीक है, सरकारी नौकरी है मतलब तो सब ठीक है फिर तो है। ये समझ सबके अंदर होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होने के बाद जो है लड़की लड़के का जीवन जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो और कोई किसी ने विरोध विरोध किया पर परिवार में, दूसरे दूर के चाचा ताऊ ने, मामे ने, किसी ने कि यार ये
0: हाँ
1: कहाँ लड़की इनकी शादी करा रहे हो भाई ब्लाइंड के? अच्छा,
0: हाँ हमारे चाचा वगैरह ने, ताऊ वगैरह ने तो कही है थी,
1: कही थी क्या? कही थी
0: पापा से कही, मेरे मुंह तो नहीं मालूम पर पीछे पापा कह रहे थे, कह रहे ताऊ वगैरह ऐसे कह रहे वैसे कह रहे। मैंने कि वो जाने कहा है, मैंने पढ़े लिखे इंसान नहीं जान सके चीजें।
1: जे बात बिल्कुल सही कही है कि भाई पढ़े जो पढ़े लिखो ना है उसको क्या मालूम।
0: हाँ अभी तो बस घर घूरे घरे दे गए, खेती बाड़ी दे गए, पर छोरा नहीं दे गए ढंग से, जो खावे के पीवे। हमारे
1: ये बात सही बात।
0: पापा है तो खावे पीवे से बहुत ज्यादा नफरत है। हाँ
1: अच्छा, तो शादी में सब शामिल हुए कि ना हुए? तुम्हारी शादी में
0: सब शामिल हुए थे। हाँ
1: सब शामिल हुए थे? ओके, और आज आज सब खुश होते कि भाई लड़की का जिंदगी सुधर गई, बढ़िया है, जीवन साथी
0: अब तो सब खुश हैं।
1: सब खुश है, ससुराल अपने पियर में जाना हो पाता है तुम्हारा? अच्छा
0: हाँ, 30 किलोमीटर दूर है सर।
1: अच्छा 30 किलोमीटर दूर है, बढ़िया है। मतलब आप अपने धर्म सिंह जी, अब अपने ससुराल के एरिया में ही आपकी नौकरी है मतलब एक तरह से? अच्छा,
2: बढ़िया
1: तो आपके साथ धर्म सिंह भाई कैसा है रवैया आपके ससुराल वालों का?
2: नहीं, बहुत अच्छा रव्यू है
1: अच्छा है। अच्छा
2: जी।
1: यार, एक बात बताओ धर्मू भाई, कि शादी के बाद कभी आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि यार मैं आगे और पढ़ाऊं मेरी पत्नी को, और मतलब थोड़ा सा कम से कम बीए तो होनी चाहिए?
2: हाँ ये ख्याल आया था, मैंने बीएड का एक बार एग्जाम भी दिलवाया था, परंतु
1: हाँ
2: उसमें नंबर दूर आ रहा था। मैंने कहा यार दूर चले जाएंगे फिर इनको वहां कौन संभालेगा।
1: नहीं तो यार, लेकिन आपको नहीं लगता भाई पढ़ाई तो करवानी चाहिए ना यार? भले बीए ही
2: वो
1: करवा
2: बात
1: लेते, बीएड
2: सही है, वो आपकी सही
1: ना
2: है। अब
1: करवाते लेकिन बीए ही करवा लेते, भले प्राइवेट ही करवा लेते बीए, कहाँ दिक्कत है?
2: मेरा प्लान है कि मैं बीएसटीसी कराऊं इस
1: हाँ
2: सत्र
1: करो,
2: से।
1: पढ़ाई तो कराओ यार।
2: यस यस
1: मतलब ये
2: कराऊंगा।
1: देखो, पहले के जमाने की परिस्थिति अलग थी, आज का समय अलग है, और आपको मतलब थोड़ा सा अगर समय मिले तो इस पर भी विचार कीजिएगा।
2: यस यस
1: बाकी और बताएं, आप अपनी जिंदगी से खुश हैं?
2: हाँ फिलहाल खुश हैं
1: आज। अच्छा, और कोई शिकायत नहीं है मतलब किसी से भी?
2: नहीं, हमारी कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है, दोनों पति पत्नी मजे से रहते हैं, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से चल रहा है फिलहाल।
1: धर्म, एक बात बताइए आप
2: जी,
1: कि आपके उस एरिया में जो बताइए आपने विशेष जो परिस्थितियां हैं, कि जो साक्षरता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम है, है ना? तो आप तो एक तरह से पुरुष हैं, तो आपने जैसे तैसे समस्याओं का सामना कर लिया। आपके उस एरिया में मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते ही होंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं, उनकी स्थिति तो और ज्यादा गंभीर होगी, और ज्यादा चिंताजनक होगी फिर।
2: हाँ, कई जगह, एक जगह अभी एक एग्जाम दे रही थी बच्ची पिछले सत्र में SBSTC का, उसमें जो एग्जामिनर उसके यहाँ जो टूटर लगाया जाता है, कोई बोला तुम्हें तो क्या दिखता है, तुम कैसे पढ़ती हो, क्या उसको वहां टॉर्चर कर रहा था। जो हम कई लोगों ने जहाँ जाकर, मैंने स्वयं ने और एक हमारे साथ में एक अध्यापिका थी, उसने खुद ने जाकर उस प्रिंसिपल को कहा कि भाई इनको क्या बात दे, आपके पास मेडिकल है तो इनको करवाते हो, इन लोगों से एग्जाम दे रही है उसका क्यों माइंड खराब रखते हो, फेल हो जाती है उस पेपर में तो कौन जिम्मेदार होगा। मतलब समस्याएं तो आती हैं सर, परंतु वो क्या है, ज्यादातर सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि जो जूझ रहा है वो उसका सपोर्ट नहीं कर पाता है कोई ज्यादातर।
1: अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस एरिया में जब आप हैं अब और अच्छी स्थिति में भी हैं, तो जो ये जो दिव्यांगों की जो परिस्थितियां खासकर, उसके लिए काम करना चाहिए?
2: अब काम तो करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शायद पूर्व में विदित होगा, 2012 में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था मैंने, 6 राज्यों की टीम बुलाई थी। उस वक्त कई हमारे जो समाज कल्याण अधिकारी, जैसे उन्होंने कह दिया यार 96 बंदे कहाँ से लाओगे, बोलो ऐसे शब्द बोले थे कि 96 बंदे कहाँ से लाओगे आप।
1: अच्छा।
2: जब एक उनको विश्वास ही नहीं था कि वास्तविक दृष्टिवादी थे क्रिकेट खेल सकते हैं।
1: अच्छा,
2: शायद आपको पता होगा अपन के क्रीड़ा परिषद के माध्यम से जो
1: जी
2: 2012 में
1: जी जी जी
2: नेशनल लेवल का हुआ था
1: जी,
2: और उससे करौली जिले में पूरी मुझे आज निजात मिल गई है। किसी विभाग में जाता हूँ अब कोई मुझे, पहले परेशान करता था, अब कोई परेशान नहीं करता है करौली जिले का,
1: उस टूर्नामेंट की बदौलत।
2: हाँ, और इतना क्राइब था कि उसको देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता था, 3 दिन चला था, 3 दिन आप अपने अजमेर के बहुत से साथी आए थे, मेरे कई क्लासमेट भी आए थे।
1: लेकिन डियर ये बताओ ना कि कार्यक्रम तो आपने करवा दिया 2012 में, कार्यक्रम तो रोज रोज करवाना संभव भी नहीं है किसी के लिए, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों को सुधारने के लिए काम आपको रोज रोज करना पड़ेगा, तो वो आपने सोचा है?
2: करौली से मुझे परिस्थितियां सुधर चुकी है मेरी।
1: अच्छा, पर करौली में ठीक है माहौल?
2: हाँ, अब माहौल ठीक है, वहाँ कोई भी दिव्यांग किसी प्रकार का, जैसे जयदेव है आज पढ़ रहा है, कहीं कोई परेशानी आती है?
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, किसी विभाग में वहाँ मुझे परेशानी नहीं आती है, और करौली में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम, कोई किसी दिव्यांग की कोई परेशानी होती है, उसको मैं स्वयं सोल्व करवा देता हूँ।
1: अच्छा,
2: क्योंकि उस टूर्नामेंट से करीब करीब सभी विभागों के अधिकारी, नहीं तो कुछ कर्मचारी जानने लग गए, हाईलाइट अच्छा हुआ था।
1: इसके अलावा अब क्या सोच रहे हैं आप आजकल, कैसे मतलब?
2: ऐसा ही नहीं सोच रहा हूं कि भरतपुर जिले
1: में, आपका कहने का मतलब है कि भरतपुर में स्थितियां अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है?
2: हाँ,
1: तो वो आपको करनी पड़ेंगी, मतलब उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा उस एरिया में।
2: हाँ, यस।
1: अनेक संगठन है, आप उन संगठनों के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं वहाँ पर।
2: संगठन क्या है, इसके आसपास नहीं है ना ऐसे कोई संगठन अपने?
1: राजस्थान लेवल के जो बड़े बड़े संगठन है,
2: संगठन है ये राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ।
1: हाँ, तो इन्हीं के तत्वावधान में भी आप काफी कुछ काम कर सकते हैं।
2: हाँ, तो प्रयासरत हूँ। देखो, कई बार, एक बार KPG सर से भी एक दो अधिकारियों को यहाँ समझाया था, उनसे भी, उनको भी महसूस हुआ यार तुम भरतपुर संभाग में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वो एक RS लेवल पे है, फिर भी कई अधिकारियों ने समझा कि यार ब्लैंड तो है, क्या RS होगा ये इस तरीके से, आप क्योंकि शायद KPG से आपकी बात हुए, तो उन्होंने भी इस चीज को समझा कि यार है, चाहे अधिकारी हो चाहे कैसा भी हो, पर अज्ञानता तो है।
1: अच्छा,
2: खुद KPG ने मुझे एक बार बताया था बात, क्योंकि तो मेरे कई समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार मैंने फोन किया उनसे डायरेक्ट, और उन्होंने मेरी समस्या सुनी और समस्याओं का समाधान भी करवाया, फिर
1: तो ऐसे ही अब जैसे आपकी समस्याओं का अनेक साथियों ने समाधान करवाया, इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा इस भूमिका में आना चाहिए कि आप बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है वो कुछ काम कर सके।
2: अब यही है कि आप जैसे बड़े भाइयों से और कुछ सलाह लेंगे और क्या कार्य कर सकते हैं, जो हालांकि हम तो जैसे तैसे सफल हो गए हो चुके हैं, परंतु अब आने वाले जो बंदे हैं उनको ये समस्याएं नहीं आए।
1: क्योंकि कहते हैं ना वो शुरुआत घर से ही करनी पड़ती है, और दूसरी बात ये भी है कि और कुछ नहीं तो आप ये जो विवाह के मामले में जो आज भी पुरानी सोच बनी हुई है लोगों की, इसको दूर करने के लिए भी आप जन जागृति फैला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं।
2: और वो तो क्या है कि यहाँ का सबसे बड़ा ये जो हमारे साथी हैं, जूनियर जो साथी हैं, वो अध्ययनरत हैं, जोधपुर हैं, कहीं अजमेर हैं, तो यहाँ मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको पता है। अब ये को साथ दें इस जन जागरूकता को तो फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फाउंडेशन आप जानते हो कि राज कर्मचारी की भी होती है।
1: बिल्कुल ठीक बात है। तो जब शादी होने वाली थी, भाइयों को पता चला, तो कभी ऐसी नौबत तो नहीं आई कि कोई आपको मतलब मारना वारना चाह रहे हो या लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हो, मतलब ऐसी नौबत तो नहीं आई थी?
2: नहीं, वो सभी समस्याओं को समाधान आसानी से कर लिया था मैं।
1: अच्छा, आसानी से कर लिया था। अब सब मतलब आपकी माता जी और अब सब अपनी बहू से खुश है मतलब?
2: क्योंकि आपको ये तो शायद पूर्व से पता है कि मैं समस्याओं का समाधान तो जहाँ तक करीब करीब कर ही लेता हूँ।
1: तो बबीता, झगड़ा वगड़ा होता है कभी दोनों में?
0: नहीं,
1: कभी नहीं हुए।
0: नहीं,
1: गुस्सा किसको आता है, आपको कि धर्म सिंह जी को?
0: दोनों को।
1: दोनों को आता है?
0: हाँ।
1: अच्छा, ज्यादा किसको आता है?
0: नहीं, हमें ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो
2: इसी बात को
1: जी जी दूध तो पीना पड़ता था ना सुबह सुबह, इसलिए
2: तो आपको पता पड़ता है धर्म सिंह सो रहा है।
1: वो अलग मामला हुआ करता था, वो हॉस्टल के दिन थे वो तो।
2: तो वही यार होता है वो सर, वो तो मेरी।
1: अच्छा अच्छा,
2: जगना।
1: तो इसी में लड़ाई होवे ज्यादा मतलब।
2: और क्या है?
1: तो धर्म सिंह भाई, एक तो ये है कि अब आप एजुकेशन के मामले में और जन जागृति के मामले में काम करें इस कार्यक्रम
2: की। तो मैंने चॉइस किया ना कि जयनारायण व्यास से
1: जी
2: करी, इसके बजाय मैंने करौली से ही करना अपने को उचित
1: है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और ये कार्यक्रम की सफलता भी तभी है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी सिखाना चलवाना ये भी अगर संभव हो, परिस्थितियां अनुमति देती हो तो, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और आपने कर दिया, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति अनुमति देती हो तो वो भी आप कीजिएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो सत्य है, वो मैं बाइक लेने के इरादे में हूँ, अभी सोच रहा हूँ बैटरी वाली लूं के पेट्रोल वाली लूं। ये सोच में।
1: तो और कोई आपके जिंदगी के अनुभव से कोई बात आप कहना चाहे जो रह गई हो धर्म सिंह भाई?
2: अब समस्याएं तो देखो ब्लाइंड को शुरू से आती हैं, परिवार में भी सबसे बड़ी के समस्याएं तो आपको पता है कि यदि जॉब नहीं लगती है जब तक तो ब्लाइंड का कहीं परिवार में कहीं कोई वाज नहीं होता है
1: जी।
2: वो जॉब लग जाती है जो सभी एक दूसरे को
1: सभी सगे हो जाते हैं,
2: ये तो आपको हमको पता है।
1: नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपके अनुभव कोई रहे हो, आपकी कोई घटनाएं रही हो ऐसी खास जो आज इस मंच पर आप बताना चाहें?
2: घटना जो मैंने आपकी बताई, एक तो जॉइनिंग के टाइम पे जो संघर्ष करना पड़ा और कई संघर्ष अभी भी करने पड़ रहे हैं।
1: अच्छा, आज भी?
2: तो सेवा संघ के पटल पे अभी चल रहे हैं।
1: तो आप जब आप कार्यक्रमों में कहीं जाते हैं, जो परिवार के कार्यक्रमों में साथ साथ जाते होंगे सब जगह, तो अब कुछ सोच बदली है लोगों की, आज भी वैसे ही है कि अब देखना और देख?
2: सोच हल्की बदल रही है।
1: अच्छा,
2: शुरुआत में जो देखते हैं, एक बार देख दो बार देखता है, तीसरी बार तो वो सोच, क्योंकि कई लोगों की जैसा कि एक बार हम यहाँ ब्याना शहर के अंदर एक मंडी में गए थे, जो हम दोनों सब्जी लेने गए थे, वो एक ठेले वाली लेडीज थी, बुला के बबीता जी को, यार आपके पिताजी ने देखा नहीं कैसा लड़का है ये, आपको पसंद आ गया क्या?
1: अच्छा
2: मतलब अलग से यार क्यों बुलाया? तो ऐसी सोच है, तो आप जानते हैं कुछ सोच तो होती है लोगों की, कई बार हमारे स्टाफ में हो जाती है, यार तुम सारा काम ताले खोलना लगाना टेबल उठाना करना, तुम्हें कैसे ये 2 मिनट में रोड पे पहुंचना रोड पार करना, ये एक समस्या है जदोजहद तो होती है। शुरू में गांव वालों को भी समस्या कि यार कैसे पढ़ाओगे क्या करोगे, जब मैं 6 महीने जब पढ़ाया गांव बच्चों ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो आज उस विद्यालय में मैं ये कहूँ कि मैं प्रत्येक वर्ष 10 से 15 एडमिशन प्रति वर्ष उसमें लाता हूँ गांव वालों को अपनी जिम्मेदारी से, तो उनको विश्वास है कि ये गुरुजी हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, हालांकि मेरा पूरा स्टाफ अच्छी मेहनत कराता है।
1: अच्छा,
2: परंतु तो उनकी जो सोच थी कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी हम सोच को तोड़ने के लिए इसलिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है और करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी है ना दिव्यांग जो बीए और बीएड करने के बाद उनकी आंखें चली गई और वो जाते हैं स्कूल में जाके बैठते हैं और छुट्टी हुई और रवाना हो जाते हैं, तो वो बिना सभी लोग सोचते हैं यार ये भी ऐसी होंगे, तो कई स्कूलों में ऐसी शिकायत मिलती है कि कई टीचर ऐसे हैं यार वे तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल का उन्होंने डप्पा उठा दिया, मतलब बोलते हैं ना कि डप्पा बैठा दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो वो कमी क्या है उनकी है जो बीए बीएड करने के बाद में उनकी अचानक रोशनी चली गई और उनकी जॉब लग गई है, हालांकि करने को तो वो भी कर सकते हैं परंतु उनकी वो सोच नहीं और उनकी क्या राजनीति पहुंच भी अच्छी, तो पढ़ाना नहीं पढ़ाना बात बराबर है, पर हमें तो उससे ज्यादा काम करना जरूरी है क्योंकि लोगों की जो सोच है वो सोच को दूर कर सकते हैं।
1: अच्छा धर्म सिंह, आपके उस क्षेत्र में ये बाल विवाह वाली भी समस्या होगी?
2: हाँ बाल विवाह वाली, आजकल कई संगठन इस पर रोक लगा रहे हैं इसलिए बाल विवाह वाली समस्या नाम मात्र की रही है।
1: आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित है या कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है आपको?
2: हाँ जैसे आपको पता है थोड़ी बहुत लाइट वगैरह पता चल जाती है।
1: नहीं, इसका पूछने का हमारा मकसद ये है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाई देता है तो उससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती होगी।
2: इतना नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, तो अब जो है भविष्य की क्या योजनाएं हैं और आप दोनों की?
2: भविष्य की यही योजना है, देखो आप जैसे बड़े भाइयों का परामर्श सलाह रहेगी और अच्छा जीवन यापन जो जॉब है वो करेंगे और आगे इनको भी मुझे बीएसटीसी कराने कर हो सकता है कहीं जॉब लग जाए आसपास तो जॉब करा लेंगे और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से रहे, माँ घर में है उसकी अच्छी सेवा हो।
1: अच्छा, माता जी को आप अपने साथ रखते हैं यहाँ पे?
2: यहाँ नहीं रखता हूँ फिलहाल, तो अच्छा, करौली है।
1: अच्छा करौली है। जी तो बबीता जी, घर के सारे काम वगैरह कौन, मतलब बाहर के जो काम होते हैं वो आप ही करती हैं या धर्म सिंह जी करते हैं?
0: मैं ही करूं।
1: आप ही करते हो?
0: हाँ।
1: तो आपने कभी, आपका भी मन करता होगा यार कि आज तो आप ही चले जाओ, हम तो थक गए हैं परेशान हैं आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर
0: संग ले जाऊं?
1: अच्छा साथ में ले जाते हो, ओके ओके ओके, लेकिन कुल ना के खुशी खुशी आप सारा संभाल लेते हैं चीजें कि भाई ये नौकरी करके आवे हैं तो बाकी सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर एक तरह से ले रखी है ना। अच्छा तो कोई परेशानी तो नहीं है जिंदगी में?
0: नहीं कोई परेशानी नहीं है।
1: कोई शिकायत
0: नहीं?
1: बोल दो आज तो खुल करके।
0: नहीं कछु नहीं है।
1: हाँ कछु ना है, कछु हो और आप कहीं मतलब बोलना नहीं चाह रहे हो?
0: नहीं ऐसी कोई बात
1: कोई,
0: नहीं
1: मतलब जो ऐसी बात जो आपके मन में हो और आप कहना चाहो
0: ना,
1: जो धर्म सिंह जी ने मना करी हो कि भाई ना कहनी?
0: नहीं मैंने तो ना कहीं खूब खोलियां बोली हो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कोई प्रोग्राम हुआ आपका, कोई ऐसे कार्यक्रम हुआ कभी?
0: नहीं पहली बार
1: है। पहली बार ही है? हाँ देख लो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहली बार फिर मौको पता नहीं मिलेगो कि ना मिलेगो। चलिए खैर बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो यही यही दुआ करेंगे ईश्वर से। अब जो है वो बबीता को देख करके वहां की आसपास की लड़कियां और ज्यादा प्रभावित हों और दिव्यांग साथियों की, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी प्रभावित हों, और जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी सुधारने के लिए और प्रयास हो, क्योंकि वहां पे कई ऐसी दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं जिनको मैं भी जानता हूँ।
2: हाँ आप तो जानते हैं करीब, शायद मैं तो उनको नहीं जान पाता हूँ।
1: जी जी जी,
2: फर्क नहीं है उनका।
1: जी जी, इसीलिए तो उस क्षेत्र में जो है वो ये जो सकारात्मकता है ये आना बहुत जरूरी है धर्म सिंह भाई, कहीं ना कहीं ग्रामीण
2: अग्रसर हूँ, जहाँ तक पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ में आगे किसी दिव्यांग को कोई ऐसी परेशानी ना आए।
1: कहीं ना कहीं हमारा जो रेडियो मधुबन है ये ग्रामीण परिवेश में कार्यक्रम प्रसारित करता है और कम्युनिटी रेडियो है ये, तो यहाँ अबू और इसके आसपास भी काफी ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो समाज में थोड़ी सी मतलब जो है वो सोच को विकसित किया जाए। तो ये लेकिन किसी एक दो के करने से नहीं होगा, ये कोशिश सबको करनी होगी। आप क्या मानते हैं कि नहीं?
2: बिल्कुल,
1: अपने पन की भावना से और जो है वो बिना किसी की कमियों को ध्यान में रखे हुए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सबको काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब चलते चलते अंत में धर्म सिंह क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को?
2: सुनने वालों को यही है कि एक जो दिव्यांग के प्रति जो सोच है, सकारात्मक सोच रखें और सहयोग नहीं बल्कि उनके एक सहानुभूति रखें, चाहे सहयोग मत कीजिए आप, एक सहानुभूति के तौर पर उनके साथ रहें और उनके मन को ना दुखाएं। और मैं सभी दिव्यांग से यही, मैं इस रेडियो मधुबन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उनको कभी जिंदगी में अपने आप में हार नहीं माननी चाहिए।
1: जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो बबीता जी, आप भी अंत में कुछ कहना चाहेंगे सभी सुनने वालों से?
2: वैसे
1: अच्छा, अब शर्म आ गई
2: मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या है, पहला जो होता है ना कहीं भी हो, आप जानते हैं।
1: जी जी,
2: झिझक तो रहती है।
1: नहीं नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन बहुत अच्छे से आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं। और साथ ही तमाम साथियों से ये निवेदन करते हैं कि देखिए, कहानी को सामने लाना महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी है, कैसी नहीं है, उसमें कितना संघर्ष है, कितना नहीं है, ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे साथियों को मंच मिले और हमारे दिव्यांग साथी आकर के जो है अपनी बातें बताएं, अपने दिल की बातें करें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है, ताकि हमारी आवाज जब समाज तक पहुंचेगी तो शायद कभी ना कभी समाज में जो है वो सोच बदलेगी, यही उम्मीद हम करते हैं। तो श्रोता हूँ, आप सबका इंतजार है हमेशा इस कार्यक्रम में। यदि आप विवाहित हैं, दिव्यांग हैं और आपकी जिंदगी की भी कोई कहानी है और आप अगर इस मंच पर आकर के बताना चाहें, सुनाना चाहें, तो रेडियो मधुबन हमेशा आप सबका इंतजार करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, आपकी प्रतिक्रियाएं आप चाहें तो 94 14 15 14 15 पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप info@radiomadhuban.in पर मेल भी कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है रेडियो मधुबन के नाम से, उसको इंस्टॉल करें और सुनते रहें 24 घंटे सातों दिन रेडियो मधुबन। और आज के इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। धर्म सिंह जी और बबीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद
1: कार्यक्रम में शामिल होने।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी जी जी, और श्रोताओं मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।

0: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट विशेष बीके जिग्नेश भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। और आप विशेष ट्रेनर हैं, फार्मिंग के जो विशेष ट्रेनिंग होते हैं वो आप कंडक्ट करते हैं, और जो विशेष इको है उसमें आप अपनी सेवा देते हैं काफी समय से। एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर आप उसमें हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग आपसे बातें करते हैं या आपकी बातें सुनते हैं। तो निश्चित तौर पे एक किसानों के प्रति आपका जो आस्था है या किसानों के जीवन में जो चेंज लाने के काम कर रही है आपकी संस्थान भी, और आप भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर अपनी विशेष जो है आध्यात्मिकता को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो किसानों का जीवन जो है उसमें योग आ जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन बेहतर बन सके। जहाँ पर उनके पास बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आते हैं, हो सकता है कि कुदरती चैलेंजेस आ जाएं, या फिर पानी की समस्या आ जाए, या फिर कुछ और चीजें, भूमि की समस्या आ जाती है, लेकिन इन सभी के बावजूद भी आज जो है हमारे पास प्रचुर मात्रा में सबको अन्न मिल रहा है। तो ये किसानों का ही मेहनत है और उनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा बातचीत हो जाए जहां पर किसानों की बात हो, किसानों की समस्या के बारे में बात हो और उनका बेहतर जीवन के लिए क्या किया। सरकारें भी अभी बहुत ज्यादा जागरूक हैं किसानों के प्रति या किसान के जीवन के प्रति, इसीलिए कई स्टेट में जो है किसानों के प्रति बड़ी आस्था सरकार की तरफ से बनी है, और उनके जमीन जो भी है उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनको कुछ स्कीम में जोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कार्ड्स भी बने हुए हैं, किसान का कार्ड अलग बनता है ना। तो बहुत सारी चीजें, योजनाएं चल रही है, और उसके साथ में हमें बेहतर किसानों का जीवन बने, क्योंकि कहते हैं भारत की अगर आत्मा है तो वो किसान है, अन्नदाता है, अगर वो नहीं तो जीवन नहीं होगा। और आप उसमें एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करने का, उनका लाइफ चेंज करने का, उनको ट्रेन करने का, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो बहुत बहुत स्वागत है जिग्नेश भाई आपका इस प्रोग्राम में। ओम शांति, नमस्कार, स्वागत।
1: शरीर का नाम तो भाई साहब ने बता दिया है, मगर मुझे परमात्मा ने सेवा के निमित्त इफ्को में सेवा के लिए बिठा दिया है, और परमात्मा कार्य को पता ही नहीं क्यों, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने पीजी किया हुआ है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और परमात्मा को कुछ कार्य कराना है तो किसी ना किसी को निमित्त बना देते।
0: बिल्कुल,
1: परमात्मा ने ये सेवा के लिए इफ्को में हमें सेवा का मौका मिला, और वहां पर मैं ये जो हमारा ट्रस्ट है कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट इफ्को का, जहाँ सालाना करीबन 20,000 से भी ज्यादा किसान भाइयों का आना होता है, वहाँ उनकी मिट्टी की जांच बिना कोई चार्ज हम लोग वहाँ मिट्टी की जांच करते हैं। साथ ही साथ हम लोग वहाँ जैविक खाद बनाते हैं जिसमें अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं बैक्टीरिया, जिसमें एसोटोबैक्टर, राइजोबियम, ESP, ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया बनाते हैं, और वहाँ फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें फार्मर्स मैंने ग्रामीण एरिया के जो भी कवरेज होता है, जैसे कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाता है, गांव में जाकर हम 6 महीने के लिए गांव में ही उनको एजुकेशन देते हैं, सिलाई कढ़ाई भरत गुंथन ऐसे भी उनको देते हैं, इवन साथ ही साथ कैनिंग प्रोग्राम्स उनको फल परिरक्षण के लिए कि जो भी फल बगीचे होते हैं उनके फल जब रेट नहीं मिलते हैं तो उनका प्रिजर्वेटिव करके कैसे उनकी आमदनी में थोड़ा बेनिफिट हो वैल्यू एडिशन करके, तो उसके लिए भी हम ट्रेनिंग चलाते हैं 6-7 दिन का, जो गांव में जाकर महिलाओं को अलग अलग जाम, जेली, मुरब्बा, अचार, बहुत सारे आइटम, करीबन 150 आइटम बनाना सीख। गांव के बच्चों के लिए हम लोग, उनका समर वैकेशन होता है, छुट्टियों के दिन में बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं गर्मियों में, तो उन लोगों को भी हम कंप्यूटर्स ट्रेनिंग देते। आसपास के रूरल एरिया के बच्चों को हम लोग हमारी गाड़ी भेजते हैं, वहां से बच्चों को लेकर आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, जिसमें हम उनको बेसिक नॉलेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वैसे उनको बेसिक नॉलेज देते हैं उन बच्चों, तो उनका भी 15-20 दिन का कार्यक्रम रहता है। और किसानों को, भारत भर से किसान आते हैं, करीबन 20,000 से भी ज्यादा किसान, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश से किसान आते हैं, और उनका अलग अलग, जैसे कि 3 दिन का 6 दिन का, तो ऐसे अलग अलग उनको ट्रेनिंग्स दिया जाता है। और ट्रेनिंग्स का मेन पर्पस यही है कि उन लोगों के जीवन में जो कर रहे हैं खेती उसमें कुछ नवीनतम हो, उनकी आय कैसे बढ़े, और साथ ही साथ प्रकृति से वो जुड़े रहे। आप सब देख रहे हैं कि आजकल लोग किसानी छोड़ रहे, धरती माँ से ही विमुख हो जाएगा तो अन्न पैदा कोई नहीं, और अन्न पैदा नहीं होगा हम खाएंगे क्या,
0: जी।
1: ये
0: जिग्नेश भाई,
1: थे।
0: बहुत बड़ी बातें आपने बताया अपने बारे में, किस तरह से आप काम करते हैं। और सुभाष जी शर्मा ने जलगांव से लिखा है, अच्छा टॉपिक लिया है, इंडियन फार्मर्स एंड फार्मिंग। कपिल देव ने ओम शांति लिख के भेजा है, और सुभाष जी लिखते हैं, जिग्नेश जी, रमेश जी, ओम शांति। तो आइए हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे आखिरी में आपने कहा कि कई बच्चे जो है, किसान खेती करता है जरूर, लेकिन वो अपने बच्चों को खेती में नहीं ले जा रहा है आजकल। वो पाठशाला में डाल के उसको पढ़ाई करके वो चाहता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईटी सेक्टर में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन खेती ना करे। तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना कहें हम लोग की, ऐसा कहा जाता है कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर हमारा सबसे पहला जो है बहुत बड़ा एसर्ट, इसी के द्वारा हम पूरा जीवन जो है व्यापन करते थे, और ये हमारा मेन बिजनेस। और आज मेन बिजनेस एकदम नीचे आ गया, और जो जिसको एकदम कोई काम का बिजनेस नहीं समझते थे वो चीजें एकदम ऊपर आ गई। ऐसा हो गया, एकदम साइकिल द चेंज, पूरी तरह से वो चेंज हो गया, पूरा डाउन टू अप, अप टू डाउन है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हमारे पास है, और आप जैसे संस्थान से जुड़कर जो काम कर रहे हैं, और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से भी बहुत सारा ग्राम विकास जो विभाग है उनके माध्यम से किसानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, नए नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, और उसके ऊपर काफी प्रयोग चल रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं। तो इन सभी के बावजूद भी हमारे चैलेंजेस कम नहीं, या तो हम लोग रीच नहीं कर पा रहे, या तो हमारा ट्रेनिंग उतना हम उनको नहीं दे पा रहे, या कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी है। इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इतने सारे लोग लगे हुए हैं काम करने वाले, काम करा रहे भी रहे, और देखा जाए तो गवर्नमेंट भी काफी केवी के जो इनके इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एनजीओ, और वो भी किसानों को मदद करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, कितने सारे पूरे हर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में एक बड़ा एनजीओ आत्मा है, ये सारे लोग इसी के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, नॉलेज के लिए, कितना सारा लोग। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारा एक किसान या खेती के प्रति या एग्रीकल्चर के प्रति एक विश्वास जो है ना, वो शायद डाउन हो गया। और मुझे लगता है कि वो विश्वास बढ़े हैं तो शायद वो सारा ब्रिज जो है, कनेक्टिविटी आ जाएगा। आपको क्या लगता है जिग्नेश भाई?
1: एकदम सही बात है। आपने जो बताया कि प्रकृति से विमुख हो रहे हैं आजकल, और प्रकृति से विमुख होना ये आज ही बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है
0: जी।
1: कि प्रकृति हमारी माँ है, और उस माँ से हम क्यों विमुख हुए हैं उसके लिए हम अगर पीछे थोड़ा जाए तो बहुत अच्छा पता चलेगा कि स्वर्णिम भारत, जो सोने का भारत था, माना सर्व, जहाँ आत्माएं संपूर्ण थी और एकदम श्रेष्ठ, तो उससे वहां से ही जब उत्तम खेती कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है उत्तम खेती मध्यवान व्यापार कनिष्ठ चक्र। अगर खेती को उत्तम बनाना है तो उत्तम बनाने के लिए सबसे पहले प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। प्रकृति से जुड़ेंगे तभी खेती उत्तम बन पाए। समय उपरांत हम देखते रहे कि जो कृषि में उत्तम खेती थी, क्योंकि किसानी आज से नहीं, आदि काल से, श्री कृष्ण जी को दिखाया है, बलराम भाई को दिखाया है, तो प्रकृति से इतने जुड़े हुए थे, और हमारा देश संपन्न था, और सिर्फ कृषि से ही पूरे विश्व को भारत देश में जीडीपी ग्रोथ में नंबर 1 पर, और धीरे धीरे जो स्वर्णिम भारत, जो हमारा हमारे यहाँ से मरी मसाला कॉटन ये सब आया, बाहरी देशों में हम देखते थे। समय बीता गया, देश में अलग अलग आक्रमण हुए और देश की परिस्थिति इतनी विकट बन गई, जो देश पूरे विश्व को सप्लाई कर रहा था वो भुखमरी में आ गया। और ऐसी हालत में साइंस ने कुछ नया इन्वेंशन किया और कृषि को एक नया वेग दिया। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जय विज्ञान। मगर अभी समय की जरूरत है, सबके अंदर आध्यात्मिकता से, जय ईमान, उनके अंदर ईमान को जागरूक करना। आपने अभी बताया कि आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र, सब लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडीज दे, मगर जब तक हर कृषक के अंदर उनके आत्मा में ईमान नहीं आ पाएगा, उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं जुड़ पाएगी, तब तक कृषि के अंदर वो विकास नहीं। और
0: बिल्कुल
1: कृषि के
0: बिल्कुल
1: अंदर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मैं तो यहाँ आने वाले किसानों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसमें 4 शब्दों में सिखा, स्वयं को जान, इसीलिए उनको 4 शब्दों में कहता हूँ, ABCDA, स्वयं खुद को जाने कि मैं कौन। अगर प्रकृति से भी जुड़ना है, प्रकृति से बात करने को भी सीखना है, तो सीखने के लिए सबसे पहले खुद को जानना। अगर वो खुद को जानेगा तब खुदा को जान पाएगा, उस परमात्मा को, जो पिता परमात्मा है, जो हमारा बाप, तो भी उस बाप को जानना, और परमात्मा को जान लिया उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, और उस संबंध को हम सही तरह से संबंध बांध लें। जैसे मंदिरों में जाकर तो कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, मगर उस परमात्मा से सर्व संबंध से जुड़ जाए, अगर संबंध ठीक होगा तो प्रकृति से वो बात ही कर सकते, क्योंकि धरती माँ हमसे बात करती है, पौधे भी हमसे बात करते हैं। बहुत सारे साइंस के बहुत सारे साइंटिस्टों के उदाहरण भी हैं, इमोटो मसारू हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे रिसर्च किए, जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि प्रकृति इनके अंदर भी हमारे संकल्पों की शक्ति को वो स्पर्श कर, और प्रकृति हमसे बात करती है ये स्पष्ट, इसीलिए कहा गया है इमोटो मसारू ने पानी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च किए कि हर एक का नाम लिखा, उसके अंदर अलग अलग क्रिस्टल बन पाए। तो यह क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो हमारे संकल्पों को सबसे बहुत स्पीडली पढ़ पाता है, हमारे जैसे संकल्प हो गए उस संकल्प को रीड कर पाता है धरती माँ। इसलिए
0: बिल्कुल
1: इन सारी चीजों को जानना पड़ेगा कि क्योंकि प्रकृति में हम कृषि के अंदर पानी यूज करते हैं, तो पानी के अंदर अगर हमारे श्रेष्ठ संकल्प जाएंगे तो हमें प्रकृति देगी। धरती हमारी माँ है, अपनी लौकिक माँ होती है, तो उसे बीमार होती है तो तुरंत अस्पताल ले जाते और डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मेरी माता जी को कुछ ना, और डॉक्टर कहते हैं वो सारे रिपोर्ट करवा, मगर हमारी धरती माँ बीमार हुई है उसके लिए कोई रिपोर्ट कराता,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उस माँ के भी रिपोर्ट कराना जरूरी है, हम जो
0: बिल्कुल
1: खेत में पानी यूज करें उसका भी रिपोर्ट करना जरूरी है, और धरती माँ के अंदर जो जीव, उस जीव को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि प्रकृति में हम जो बीज रूपी मोती धरती माँ की गोद में देते हैं तो वो मोती समान बीज अंकुरित तभी हो पाता है जब उस धरती माँ के अंदर जीव है, अगर उसके अंदर नमी नहीं होगी, जीव नहीं होगा, सूक्ष्म बैक्टीरिया जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते वैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया हो, वो अगर धरती माँ में नहीं होते हैं तो प्रकृति फलीभूत नहीं होती, अंकुरित नहीं होगा बीज। तो इन सारी चीजों से जुड़ने के लिए आध्यात्मिकता से अगर स्वयं को जानेंगे, प्रकृति को जानने के लिए प्रकृति पति परमात्मा को जान, तभी हम प्रकृति को जान पाएंगे, और सच्चे अर्थ में जो प्रकृति पति परमात्मा को जान लिया तो हम प्रकृति की बहुत ही सेवा कर सकते, और धरती माँ हमें
0: बिल्कुल
1: देने के लिए बैठी है, वो माँ है और माँ अपने बच्चों के लिए देने के लिए बैठी है, और उस माँ की
0: बिल्कुल
1: प्रति भी हमारी कुछ भावना होती है, उसे जुड़ना, वही
0: बिल्कुल
1: किसानों को
0: बिल्कुल
1: जोड़ने के लिए जो कहते हैं कि स्वर्णिम भारत बनाना है, तो उसकी नींव है स्वर्णिम भारत बनाने के लिए सबसे ज्यादा कि जैसा अन्न वैसा मन, अगर
0: बिल्कुल
1: अन्न को शुद्ध करेंगे तो मन अच्छे निर्माण हो, और अन्न की शुद्धि करनी है तो सबके अंदर आध्यात्मिक की ज्योत जगानी पड़ेगी, और उस
0: बिल्कुल
1: ज्योत से ही प्रकृति की सच्चे अर्थ में सेवा करना
0: जी,
1: है ना,
0: बहुत ही अच्छी
1: और
0: बात आपने
1: ज्योत, हाँ
0: बताया।
1: भाई जी, तो ज्योत तो तभी जग पाएगी जब वो परमात्मा से जुड़ जाएगा और प्रकृति के सारे जो भी उसको तकलीफ हो रही है से भी समझ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति हमें देने के लिए बैठी है, और
0: जी,
1: किसान किसानी में ही माना एक ऐसा जो परमात्मा से सबसे नजदीक इंसान जो कोई हो तो वो है किसान, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है मगर बहुत
0: हाँ
1: भोला है, किसान आप देखना बहुत भोले होते हैं,
0: बिल्कुल
1: और उसको
0: बिल्कुल
1: जिस तरफ कोई मोड़ता है उस तरफ वो मुड़ जाता है, तो ऐसे भोले किसानों को सच्ची राह मिल जाए ना, वो परमात्मा से जुड़कर संसार के परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा रोल प्ले कर, इसीलिए उत्तम खेती करने के लिए जो खेती उत्तम थी शास्त्रों में लिखा था, उत्तम खेती मध्यवान व्यापार कनिष्ठ चार, आज पूरा टैगलाइन उल्टा हो गया है, उत्तम नौकरी कहते और कनिष्ठ खेती को करते, गलती किसकी
0: खेती
1: हुई है, गलती कहीं ना कहीं हमसे हुई है, अगर
0: हमसे
1: हम कोई भी गेंद होती बॉल क्रिकेट की उस गेंद को जितना जोर से हम दीवार पर फेंकेंगे उतना ही तेजी से वो वापस
0: जी।
1: आता, अगर हमने गलतियां की हैं तो हमें वो रिटर्न आता, अगर हम अच्छा कर्म करते रहेंगे प्रकृति के साथ जुड़ पाए, क्योंकि हर एक पौधा, मैंने तो ये भी देखा है कि घर में अगर तुलसी का पौधा हो, घर का पूरा एटमोस्फियर उसके घर को देखना है तो तुलसी को पौधे को देख लेंगे तो पता चल जाएगा ये घर कैसा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: घर में कोई मृत्यु भी होने वाला है तो भी तुलसी का पौधा कह देता है कि अब घर में मृत्यु होने वाला है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर एक माहौल को प्रकृति इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़कर हमें उस प्रकृति के साथ बात करनी है तो वो है साइलेंस, साइलेंस से ही साइंस का जो भी उन्नति हुई है वो साइलेंस से बहुत कुछ जाना जाए, आप खेत में जाते हैं तो आप देखना खाली हंसते हुए हर एक पौधे को खाली देखते हैं, उनको दृष्टि दे, वो पौधे इतने
0: बिल्कुल
1: खिलखिलाट, माना उनको ऐसा लगे कोई मुझे पहचानने वाला, मेरा मालिक आया है, इसीलिए
0: बिल्कुल
1: मैं किसानों को कहता हूं कि आप जब भी खेत में जाते हो अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो खेती में ही मत जाओ, जो भी
0: बिल्कुल
1: खेत है खाली हरियाल में कभी नहीं जाओ। अगर अपना नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक संकल्प चल रहा है तो खेत में मत, अच्छी संकल्प से। खेतों में भी जाते हो तो अपने श्रेष्ठ संकल्प से, और उस प्रकृति के साथ इतना प्यार दो, प्रकृति आपको देने के लिए बैठी है। ये चंद्रमा, अमावस्या, ये सब में भी बहुत बड़ा रहस्य है। तो प्रकृति के साथ जितना जितना जुड़ पाएंगे उतना प्रकृति हमें देने के लिए बैठी है। उत्तम खेती तभी हो पाएगी जब हम प्रकृति से जुड़ पाएंगे और प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़, तभी इस
0: बिल्कुल
1: कृषि को उत्तम कृषि कहते हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पूरे विस्तार से कि कुदरत के साथ कैसे जुड़ना है, और बहुत सारे उदाहरण आपने दिए जिसको अगर हम लोग याद करें, तुलसी के पौधे जो है पहले ऐसे घर होते थे कि सेपरेट सेपरेट सब घर होते थे, और हर एक के घर के सामने वो आंगन में तुलसी लगा होता था, उसको सवेरे जो है माताएं बहनें जो है उसको क्लीन करके गोबर से लीपना, फिर दीवा अगरबत्ती लगा देना, उसकी देख रेख करना, ये एक बहुत ही अच्छा वो फील था। शायद वो फील हमने खो दिया इस इंफ्रास्ट्रक्चर के चीजों को लेकर, हमें
1: मगर
0: अभी
1: समय
0: इतने
1: के साथ
0: बड़े
1: ये सभी चीजें वापस आएगी।
0: बिल्कुल आएगी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं हमने वो मिस किया है। और मुझे याद है कि वो ऐसे चाल बने रहते थे सामने सबके, वो कुछ स्पेस होता है इतना अच्छा, वटा बोलते हैं उसको शायद मराठी में, या तो कट्टा जो है, वो वहां पर लोगों का शाम को बैठना और उसी बीच में आंगन में वो तुलसी का पौधा बड़ा से बन जाना, उसको पूरी तरह से करना, उसके साथ में बैठ कर, बड़ा अच्छा वो यूनिक चीजें था। जैसे कि एक शाम का फीलिंग आता था कि हाँ शाम है, तो धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती है तो चंद्रमा देखना, और उसके पहले और चंद्रमा की रोशनी, और फिर गप्पे बातचीत करना रात में, वो खुशी बांटना एक दूसरे के साथ, और फिर जाके सोचना तो शायद वो पूरी तरह से जो एक सेगमेंट है वो ये एरा खत्म हो गया, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि फिर से हमें वो समय।
1: हमारे हमारे पूर्वज जितने भी थे जिन्होंने,
0: हाँ
1: तो पढ़ाई में भले कई लोग कहते हैं आज हम साइंटिस्ट बन गए, इंजीनियर बन गए,
0: हाँ बिल्कुल
1: मगर
0: बिल्कुल
1: उनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि
0: भी
1: वो
0: नहीं है।
1: इतना जानते थे कि चंद्रमा की रोशनी जो है वो पौधों के अंदर ताकत भरता है, जो फल होता है उस फल की ताकत बढ़ा देता है। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: चंद्रमा की
0: बिल्कुल
1: रोशनी के कारण कोई भी फल होगा, अगर आप उसी कटाई करते हो, जैसे गेहूं है, तो गेहूं को पूनम के बाद 2 दिन के बाद आप कटाई करेंगे उसका वेट दिखेगा, और पूनम के
0: बिल्कुल
1: 2 दिन पहले आप कटाई करके वेट की
0: उसका
1: आपको
0: वेट
1: तुरंत पता चल जाएगा। अमावस्या है, तो अमावस्या में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव को जन्म दे, और उसी
0: हाँ
1: समय अगर किसान जागृत रहता है तो वो जो कीट है उसका आगे बढ़ना ही।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग एक्चुअली में नेचर के साथ जुड़ना और नेचर को समझने का जो प्रक्रिया है वो ज्यादा टेक्निकल चीजें लाकर हमने उसको, मेन जो हमारा कोर वैल्यू था उसको कहीं ना कहीं गुम कर दिया, या उसके पूरी ऐसा कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज हमने पूरी तरह से वो उसका वाट लगा दिया तो अब सुरेश जी ने याद किया है गुजरात से, लिखते हैं जिग्नेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी सिलाई काम करते हैं और खेती भी है आपका, और सुभाष जी ने फिर याद भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब जैसे कि हमारे जिग्नेश भाई हमारे साथ है और काफी समय से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से याद है कि ट्रेनिंग में वो क्या क्या बताते हैं, और जिन चीजों को हमने मिस कर दिया उसको फिर से वापस इग्नाइट करके, यानी उसी चीज को वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि साइकिल फिर से घूम था हमेशा जो है ना, तो दिन और जैसे एक दिन में भी आप 4 प्रहर देखते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात, है ना, और वो क्रम में चलता है उसको, कहीं भी आप, आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप दोपहर के बाद सीधा रात करो या रात के बाद सीधा शाम लेके आओ, ऐसा नहीं होगा, तो वो क्रम में चलता है, तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये भी एक क्रम है जहाँ पर हर चीज का जो है ना अपना समय होता है, चाहे टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से हो, वो भी समय के साथ साथ जरूरत के अनुसार चीजें आ गई है, और उसके बाद फिर से जरूरत के अनुसार वापस चीजें बन जाती हैं। कहते हैं कि नीड इन्वेंशन की जर्नी है, तो जब आपकी जरूरत होगी वो चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं, और उसके प्रति आप आस्था रखते हैं और जागरूक होकर उन चीजों को वापस अपनी लाइफ में इंक्लूड कर, तो ये बहुत जरा अच्छी बात है कि मनुष्य के अंदर एक आस्था है और वो अपनी गलतियों को एहसास भी करता है और उसे सुधार करने की क्षमता भी उसमें पूरी तरह से है, बस जागने की जरूरत है कि उसे जागना जल्दी चाहिए, लेट हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, तो समय के पहले जागो आप इसीलिए कई बार जो है जोर देना पड़ता है। माता पिता बच्चों को जो है वो 6 बजे उठाते, जबकि स्कूल 8-9 बजे का होगा, लेकिन जब 6 बजे उठाना शुरू कर देते हैं तो तब जाके वो 7 बजे उठेगा, फिर नहा धो के 8 बजे नाश्ता करके 9 बजे स्कूल। तो जरूरी है कि उसे 6 बजे जगा दें, 4 बजे जगा दें, 5 बजे जगा दें, ताकि वो अपनी कुछ और चीजें भी कर ले, अपने आप को कम्फर्ट रखे और जो चीजें सीखने जा रहा है, जिस जगह पे जाना है, तो उसे एंजॉय कर सके। तो ये हमारे जो जिग्नेश भाई और इनकी संस्थान ब्रह्म कुमारी, ये सारे लोग जगाने के काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। जागना हमको है और हमको प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने वालों को थोड़ा टाइम लगता है, जरूर वो चीजें जो कर रहे हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा। अब कई बार हम लोग यहाँ शांतिवन में बाहर के जो लोकल एरिया के, यहाँ पर शिरोई डिस्ट्रिक्ट के आसपास में जितने भी, बहुत से राबू रोड में भी 100-150 गाँव जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हम लोग रेडियो के माध्यम से रिकॉर्डिंग के लिए जब जाते हैं तो टाइम भी जाता है, वो सब चीजें करके हम लोग जाते हैं, और जब उनको बताते हैं कि भाई आप आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, कभी जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हो जाती है, लोग आते हैं सुनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस में लाने में कहीं ना कहीं वो डर। और अभी हमने बहुत सारी चीजें, हमारी एक तपोवन है और विशेष यहाँ शिवमणि होम के पास में हमने अभी शुरू किया है, रोज गार्डन वगैरह, नेचुरल वो सारी चीजें, तो लोगों को अभी मेरे ख्याल से लगेगा 2-4 महीने में हम लोग उनको एक विजिट कराएंगे। तपोवन में भी जो विशेष ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा, बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है और काफी लोग लगे हुए हैं उसके पीछे, तो अभी हो सकता है कि यहाँ के लोगों को हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता अपने यहाँ के गांव वालों को दें, अब रोड के आसपास में, तो लोगों को बुलाते हैं हम लोग, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप भी शुरू कर सकते हैं, आपको जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड या आप जो भी जानकारी चाहिए यहाँ से लेके जा सकते हैं, आप 2 दिन रुक के यहाँ पर पूरा समझे और फिर उसको करें। तो अब एक कदम पहल की जो जगाने की या जागरूकता फैलाने की चल रही है हमारी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो चीजें लोगों के समझ में आए और कुछ रिजल्ट उनको पॉजिटिव दिखने लग गए, तो चीजें बहुत जल्दी गैप हो सकता है, क्योंकि लोग ऐसे नहीं कि वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें सिर्फ कहीं ना कहीं एक आस्था, उनकी जो विश्वास है वो आ जाए, बस सब चीजें अपने आप ही फटाफट होना शुरू हो,
1: उनको एक गाइडेंस ठीक मिल जाए, क्योंकि मसाल हमने पकड़ लिया
0: प्रॉपर आइडिया
1: और
0: उनको मिल जाए।
1: उसको आगे बढ़ा।
0: तो आइए जिग्नेश जी, आपके लिए एक छोटा सा गीत लेकर आ रही हैं रेखा मैम, हमारे साथ आप रोड के हैं टीचर, और जिस तरह से आपने खेती और धरती माँ को याद किया, तो वंदे मातरम गीत लेकर हमारे बीच में पहुंच रही हैं, स्वागत है उनका।
2: वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।

0: तो बोले।
1: धन्यवाद, शुक्रिया रेखा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। और आइए आगे बढ़ते हैं। जिग्नेश भाई, फिर से एक बार स्वागत है आपका। और सुभाष जी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है। आज जैसे कि जापानीज फार्मिंग है, फार्मर्स हैं, और ये सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, नेचर से लव है इनका, तो इसका क्या कारण है? इवन हमारे जो जहाँ पानी की कमी है, वैसे विदेश वाले जो देश इसराइल वगैरह, यहाँ पर भी पानी से खेती की जा रही है। भूमि की वहाँ कमी है और पानी भी कमी है, लेकिन कम पानी में अच्छी खेती कर रहे हैं, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। तो हमारे यहाँ उन चीजों का उपयोग क्या संभव है, या फिर क्या आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बताएं।
2: हम प्रकृति की जो भी सोर्स हमारे पास है उसी सोर्स से हम खेती करें। कभी कभार कहीं लोग सोचते हैं कि हम इसराइल में जो कर रहे हैं कि वैसी खेती हम अपने यहाँ करें, तो उनकी वहां की वेदर, वहां का नेचर अलग है। हम
1: बिल्कुल,
2: अपने
1: बिल्कुल।
2: नेचर को समझें और उस नेचर के अनुसार कृषि को अपनाएं। अब जो जो भी है, जो भी चीज है, जैसे कि आजकल पोली हाउस, ग्रीन हाउस, मगर जो एटमोस्फेयर के अनुरूप हो उसी कृषि को हम आगे बढ़ाएं। हम उस चीज में जा सकते हैं, मगर उसके लिए एक तो मार्केट बनाना, कि आजकल कई लोग जो लीफी वेजिटेबल है उसको पानी के अंदर उगा रहे हैं, जैसे कि छत में, एक रूम में भी कर सकते हैं।
1: जी जी
2: मगर जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें स्वाद, मिठास, खुशबू, सोडम वो नहीं रहेगा। आपने आम खाए होंगे, आपने कभी गुजरात के कच्छ के आम खाइए, और वही आम गुजरात के, उत्तर गुजरात के, या तो फिर साउथ के सूरत साइड के आम, दोनों में बहुत मिठास, सोडम, खुशबू अलग। जूनागढ़ के खाएंगे उसकी भी अलग। तो हर हर जगह की नेचर होती है, उस नेचर के अनुसार जो भी हो, मगर नेचर से जुड़ना है। और नेचर से तभी जुड़ पाएंगे जब उस नेचर के रचने वाले सुप्रीम फादर परमात्मा को हम जाने, तो नेचर हमें ऑटोमेटिकली वो मदद। हमने तो बहुत सारे हमारे भाई बहनों के अनुभव भी सुने, हमने खुद ने भी अनुभव किए हैं कि अगर आप प्रकृति को जो भी आदेश देते हैं उसको कहते कि नहीं अभी रुक जाओ, तो बारिश भी रुक जाती है। ओले पड़ रहे हैं, फ्रूट तैयार है, टमाटर, और हमारे एक भाई है महेंद्र भाई, वो भी कहते कि उन्होंने कहीं और जगह पर बैठे थे और उनको खेती में से फोन आया, उनके जहाँ फार्मिंग है वहां, कि भाई साहब बहुत ओले पड़ रहे हैं और हमारे सारी फसल खराब हो जाएगी। तो उन्होंने बोला 2 मिनट में साइलेंट में बाबा से, माना परमात्मा से बात कर ले। 2 मिनट बैठ कर उन्होंने परमात्मा से रू रियान किया, कहा कि तुम्हारा है, मैं तो निमित्त हूँ, तुम्हें इसको ध्यान देना। तो कृषि में भी हर चीज में, जैसे कि हम खेत को तैयार कर, तो वो हमारी माँ है, जब उसके ऊपर हल जब लगाते हैं, जैसे कि हम हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं अखातरी, जब धरती माँ के ऊपर हल चलाते हैं तो माँ को कष्ट होता है, तो उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है कि हे माँ, मालूम है कि आपको कष्ट होगा, मैं आपको, आपके ऊपर हल चला रहा हूँ, तो एकदम बहुत चोट भी लगेगी आप, मगर माँ मैं अन्नदाता हूँ, मुझे इस समाज का पूरा अन्न पैदा करना है और मेरा घर परिवार इसी से ही चलेगा, आपकी आज्ञा लेकर। और इसीलिए उस दिन पूजा पाठ, हमारे यहाँ पूजा पाठ जैसे बैल की पूजा करते थे, धरती माँ की भी पूजा कर, उसकी आज्ञा लेने के बाद ही उसके अंदर बुआई का काम। हम सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उस बीज को भी मोती समान बीज। कई लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन में पिताजी बूढ़े हो गए तो बोलते बेटा खेत में थोड़ा देखा ना, उसमें बुआई करके आना, तो डाल कर आता है। किसानों को पूछता हूँ कि आपने बीज को क्या किया, दिया या डाल? बोलते सर हम तो डाल कर। मैं बोलता हूँ आप खाद क्या करते, खाद को देते हो या डालते हो? बोले सर डाल कर आते हैं। मैंने बोला अपने दिल से पूछो कि आप बूढ़े हो गए 80 साल के और आपके बच्चों के भी बच्चे आ गए और वो कहते हैं जा बेटा तेरे दादाजी को रोटी डाल कर। डालना और देने में दोनों में फर्क है। आज हम क्या कर रहे हैं, धरती माँ को जो भी खाद दे रहे हैं वो दे नहीं रहे, डाल
1: रहे हैं।
2: दवाई भी क्या करते हैं, बोले डाल कर आना, ये फेंक कर छिड़क कर आ जाना, तो डाल रहे हैं, दे नहीं रहे। वो माँ से आप कितना दूर हो रहे, प्रकृति से भी दूर हो रहे, उसी माँ को आप बंजर बना रहे हैं। तो देना और डालने में फर्क। पौधा पानी पीता नहीं, वो नमी को ले, ओस जो नमी होती है उस नमी के कारण ही वो अंकुरित होता है। कहीं लोग खेत में पूरा पानी भर देते, हमारे यहाँ सोर्सेस इतने अच्छे हो गए तो पानी का भी वेस्ट कर रहे हैं। हर चीज का हमारे पास इतना, मतलब प्रकृति से भारत देश ऐसा है जो संपन्न देश है, इसीलिए वो सोने की चिड़िया थे। मगर आज देखा जाए कि आज देश की हालत क्या हुई, देश में, आज मैं इफको जैसी संस्था में हूँ जो यूरिया खाद बनता है, हमारा देश पूरा देश मिलकर 40 से 50% खाद बनाते, बाकी का खाद हम विदेशों से लाते हैं, चाइना, रशिया, ओमान, अरब देश। जो खेत में हम डालते हैं डीएपी, जो रो फॉस्फेट है, वो हमारे देश में एक भी दाना नहीं, सारा का सारा डीएपी जॉर्डन इजिप्ट से लाते। तो आज देश आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज वो जरूरी है कि प्रकृति को जाने, प्रकृति के सोर्स को जाने, पौधों को क्या चाहिए उसी अनुसार उसको नेचर को समझकर उसको देंगे प्रकृति, क्योंकि देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। देश इतना संपन्न था, इसीलिए सोमनाथ की बात कहते कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार उसके ऊपर चढ़ाई, कितना संपन्न होगा। अभी अभी 5 साल पहले भी साउथ में एक मंदिर का सडनली ओपन हुआ, पद्मनाथम मंदिर, उसके अंदर कितना सोना है उसकी गिनती नहीं हो पाई। तो देश कितना संपन्न था, आज हमारे देश की हालत क्या, ये पूरे विश्व को चलाने वाला है ये श्रेष्ठ भारत देश, आज ये हालत का कारण समय के साथ जागरूक होना पड़े और हर एक कृषक जागरूक होगा, क्योंकि आज सरकार भी समझ रही है और आध्यात्मिकता का बल होगा, सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: किसी को पैसे दे दिए उससे उनका जीवन आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, उनको आत्मनिर्भर बनाना है तो उनके अंदर जागरूकता लानी, उनकी आत्मा को झकझोरना पड़ेगा, उनको वो कृषि के प्रति लगाव, प्यार, रुचि जागनी। जब तक वो प्रकृति के प्रति इतना लगाव और जागरूक नहीं हो पाएंगे तब तक वो सफल नहीं होंगे, और वो जागरूकता सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से होगी, और वो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय वही कार्य कि हर एक आत्मा को जागरूक कर प्रकृति से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, ये श्रेष्ठ कार्य यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
1: बिल्कुल बिल्कुल जिग्नेश भाई, काफी अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हम लोग नेचर से दूर हो गए और हम लोग का शब्दों में भी परिवर्तन आ गया एक्चुअली में ना, हम लोग खाद डालने गया है ना, कितना वो अभी आपको सुन रहा था मुझे बड़ा खराब भी लग रहा था कि हम लोग हमारा उच्चारण ही वैसे हो है ना, और किसी को बोलते भी है तो जा जाके डाल के आ जाए, वो बड़ी अजीब सी बातें हो जा रही है, और कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं अच्छे में अंतर की आत्मा ही जागृत नहीं है हमारी, ऐसा लग रहा है कि हम आत्मा से मर गए और जीवन खाली बाहर से जी रहे हैं, वो चीजें फील होता है। निश्चित तौर पे हमें कहीं ना कहीं धरती माँ से जुड़ना होगा, और वो जुड़ के उस भावना से जब हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो रिटर्न भी उतना ही अच्छी तरह से हमें मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो आपने बात बताई कि एक बहुत ही अच्छा रिसर्च में जैसे मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, वहां पर उन्होंने काफी अच्छा बताया था कि कैसे हम लोग, जैसे अभी मैं बीमार हो गया या कोई भी बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाएगा, डायग्नोस होगा, डॉक्टर एक चिट्ठी दे देता और कुछ नहीं करता, वो मेडिसिन लेगा, उतना डोज खा के उसको ठीक होना। लेकिन यहाँ पर जो है वो चीजें बिल्कुल संभव नहीं है, मेडिसिन बोलते हैं, अब देखो दवाइयां डालनी है, किसान खेती करता है तो बोला बिना दवा के का खेती सफल फसल आएगी नहीं, दवा तो डालते हैं, अब कितना डालना है कौन बताया इसका कोई प्रमाण नहीं है, अंधाधुंध जो है वो चीजें हो रही है। अगर प्रॉपर वे में हमारे पास जो अभी टेक्निक्स आ गए हैं, पानी और भूमि का परीक्षण हो जाए और परीक्षण के बाद आप इससे मात्रा उससे पता चलेगा कि आपको कितना यूज करना है, यूरिया भी यूज करना है या जो भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस यूज करना है, तो वो क्वांटिटी कितनी लगेगी उस हिसाब से आप अपने भूमि का कैलकुलेशन और उसमें ऑलरेडी कितना है और आपको एक्स्ट्रा देना है और जो चीजें देना है वही दे, नहीं तो सारी चीजें डाल देते हैं, हर साल हम लोग यूरिया डाल रहे पता नहीं क्यों, और पिछली बार 2 डाले थे, इस बार 4 डाले तो ज्यादा आ जाएगा तो ये अंधाधुंध कैलकुलेशन भी बड़ा मुश्किल वाला काम करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कृषि विज्ञान के जो केंद्र में जो कृषि परीक्षक होते हैं, तो साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें कुछ ऐसे डॉक्टर भी, ट्रेन्ड डॉक्टर को तैयार करना पड़ेगा कृषि के लिए, ताकि वो परीक्षण हो जाए पानी और भूमि का, तो उसके बाद उसको चिट्ठी दे दे कि भाई ये चीजें आप इतना ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना, तो क्वांटिटी के साथ उसके पास चला जाए तो तब भी मेरे ख्याल से कंट्रोलिंग चीजें हो सकती हैं। और उसके रिप्लेसमेंट में अगर हम लोग चाहें जितनी मात्रा में फॉस्फोरस का हमें यूरिया, तो नेचुरल हद क्या है हमारे पास, जैसे आपने कहा कि आपकी कंपनी जो है खास संस्थान बायोलॉजिकल जो फर्टिलाइजर बनाती है, जैविक फर्टिलाइजर बनाती है, तो यूरिया के बजाय आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यूज करें और वो कितना क्वांटिटी में लगेगा, तो वो अगर उनको प्रॉपरली मिल जाए चीजें और वो अगर हमने शुरू कर दिया करवाना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा और टेक्निकली साउंड भी हो जाएंगे और चीजें समझ में भी आ जाएगा और वो अच्छी तरह से कर भी सके। तो शायद ये थोड़ा सा एक नॉलेज का पार्ट हो गया, लेकिन नॉलेज तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में हमारी भावनाएं भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नॉलेज बड़ा, भावना नहीं है तब भी मुश्किल है, भावना है लेकिन नॉलेज नहीं तब भी वो बैलेंस नहीं होगा। शायद तराजू का जो दोनों पलड़ा है, नॉलेज और भावनाएं दोनों हो आपके पास, तो हम लोग फिर से संपन्न और समृद्ध बन सकते हैं और भारत जो सोने की चिड़िया है वो शायद वापस आ सकता है। तो जिग्नेश भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है ऐसा लग रहा इसीलिए कहा जाता है कि भाई ज्ञानी पुरुष के संग में रहो तो आपको ज्ञान मिलेगा, है ना, जैसे संग वैसा रंग होता है। तो अच्छी संगत में रहने की भी जरूरत है हम सभी को। तो जिग्नेश भाई जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे चिन्नम्मा जी ने भी याद भेजा है और ओम शांति बाबा लिख के भेजा है। सुभाष जी एक सवाल और शायद पूछ रहे हैं, आज हमारे पास रासायनिक जो खातों का ज्यादा यूज करने से सॉइल का जो शक्ति है उपज है वो कम हो रहा है, ऐसा लिखा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ में उपज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है वो नहीं, क्वालिटी घट गई है। मेन तो इम्पोर्टेंट है कि भाई मैटर वो नहीं कि कौन सी फसल ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, तो क्वालिटी बहुत दीदा हमारा जो है कम हो गया, क्वालिटी वो भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो उसी विषय में जिग्नेश भाई मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज कोट करें फिर।
2: अगर हम समाज को जहर देंगे समाज हम, अगर हम समाज को प्यार देंगे प्रकृति को क्या दे रहे, अगर हम प्रकृति को प्यार शक्ति और एक श्रेष्ठ संकल्प दे तो प्रकृति में भी दीपक और भी ऊर्जा में दे। इसलिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। आप समझ लीजिए कि प्रकृति में वो कर, और हम ऐसा जो भी प्रकृति के साथ हम क्या दे रहे हैं, देना सामने लेना है, सिर्फ देना नहीं। तो मेरी तो यही शुभ भावना है आज हमारे रेडियो के माध्यम से जो सबके जीवन में सच्ची खुशी दे और हर एक आत्मा को जागरूक करने का बहुत ही बड़ा, इस माध्यम से आप सभी को विनती करना, जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन उन सबको यही प्रार्थना है कि हम प्रकृति को दे और ऐसा श्रेष्ठ जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे। माँ है धरती और प्रकृति, उस धरती को माँ समझ कर देना और प्रकृति पिता परमात्मा को साथ लेकर जा, तो आप जीवन में कभी कभी भी परेशान नहीं, शांत से जिएंगे, खुशी से जिएंगे।
1: थैंक यू जिग्नेश भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और धरती माँ को जिस तरह से हम अपनी माँ से प्यार करते हैं वैसे बिल्कुल अगर हम अपनी धरती माँ से प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा व्यवहार उनके साथ जो है बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगा और हम उनको जो है जितना प्यार से उनके साथ व्यवहार करेंगे उतना ही प्यार उनसे हमें मिलेगा। तो चलिए जाते जाते प्रियंका गर्ग ने भी ओम शांति लिख के भेजा है, आप विद्यार्थी हैं और अभी शिक्षक बन रही हैं। सुभाष जी ने भी बेस्ट प्रोग्राम करके शुक्रिया भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और चलिए आज हमने फार्मर फार्मिंग यानी खेत और किसान इनकी जीवन कहानी को समझने की कोशिश करें, इसमें हम लोग फार्मर की जो स्टोरी है वो थोड़ा सा हमने कम लेकिन फार्मिंग के बारे में ज्यादा बातें की हैं और आगे हम लोग ऐसे अलग अलग विषय को लेकर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि बायो फर्टिलाइजर जो विशेष जिग्नेश भाई के कंपनी के द्वारा होता है, बायो फर्टिलाइजर क्या है उसके बारे में कभी हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि वो एक जैविक खाद है जो आप नेचुरली अपनी खेती में यूज कर सकते हैं और फर्टिलाइजर के रिप्लेसमेंट में आप यूज कर सकते हैं और सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आप फसल ले सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे सीरीज में कुछ एक दो एपिसोड जरूर उनके साथ करेंगे। और तब मैं चाहूंगा कि आप अपना कागज पेन लेके रखें ताकि आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए आसान हो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूं गौरव वासुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभभावना शुभकामना है। संसार के अंदर साल में कुछ दिन विशेष मनाए जाते हैं। कभी देखो तो कोई फादर्स डे मना रहा है, कभी देखो तो कोई मदर्स डे मना रहा है, कभी देखो तो टीचर्स डे मना रहा है, कभी देखो तो फ्रेंड्स डे मना रहा है। और ये दिन मनाने के पीछे भाव यही है कि इस दिन को विशेष हम अपने माता पिता शिक्षक या दोस्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनके साथ बातें करें, पुरानी यादें ताजी करें और उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट दे करके अपने मन के अंदर शुक्रिया धन्यवाद को हम अर्पित करें। परंतु हमारे भारत में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत सुंदर और शुभ माना जाता है कि जब हम गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अर्पित करें। इस दिन का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि गुरु माना जो अंधकार को मिटाए, प्रकाश की ओर ले जाने वाला, साथ ही साथ गुरु अर्थात जो गुरूर को मिटाने वाला, मनुष्य जीवन में जो अहंकार आ गया है उस अहंकार को मिटाने वाला और उसे निर्मल पावन बनाने वाला। साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा कहा अर्थात गुरु वह जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए ऐसा ज्ञान का प्रकाश फैलाए, ऐसे सद्गुणों का प्रकाश फैलाए जो जीवन संपूर्ण हो जाए। और ये कार्य आज के संसार में कोई मनुष्य नहीं कर पाता है, परंतु जब कलयुग के अंधकार रात्रि के समय जहां चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, ऐसे समय पर ही परमात्मा इस संसार में अवतरित होकर के सच्चा मात पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु बन करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए आत्मा का तीसरा नेत्र खोल करके उसे दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, जिससे हम अपने जीवन से ये अंधकार को मिटाए, प्रकाश की ओर आगे बढ़ सके, अपने जीवन को निर्मल पावन कर सके और अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर कर संपूर्णता की ओर उस मंजिल को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए ये कार्य पिता परमात्मा के सिवाय और तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कोई उस अंधकार में फंसे हुए हैं। निकालने वाला जब आएगा तभी तो इस अंधकार से हम निकल सकेंगे। परमात्मा को वृक्षपति भी कहा जाता है, अर्थात जो इस विशाल मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है और वो आकर के हमें इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना देते हैं। उसी को कहा जाता है बृहस्पति, अर्थात वो वृक्षपति जब इस संसार में आते तो बृहस्पति की दशा ले आते हैं। अनेक प्रकार की दशाएं समाप्त हो जाती हैं और बृहस्पति की दशा आरंभ होती है, अर्थात उसके बाद हमारे जीवन के अंदर शुभ ही शुभ, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ दिशा मिल जाती है और सब सुंदर शुभ होने लगता है। भावार्थ यही कि भारत में इसीलिए
परमात्मा को बृहस्पति जो कहा गया है,

तो गुरु अर्थात ये जो हमें श्रेष्ठ मंजिल की ओर ले जाए। भारत में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि परमात्मा शिव ने आकर के सप्त ऋषियों को योग की विद्या सिखाई थी। यही कहा जाता है कि परमात्मा शिव जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को वह योग विद्या अर्थात राजयोग का ज्ञान दे करके ऐसी सुंदर विद्या देते हुए सप्त ऋषि की तरह उन्हें अमर स्थान दे देते हैं। दूसरा यही कहा जाता है कि ज्ञान का दिन है क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन महावीर स्वामी ने भी कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया था। साथ ही ये भी बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने पांचों शिष्य को पहला ज्ञान का बोध जो दिया वह भी गुरु पूर्णिमा के दिन दिया। तो साथ ही साथ इसको महर्षि व्यास का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिस महर्षि व्यास ने चार वेद और 18 पुराणों की रचना की। तो इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। साथ ही कहा जाता है भारत के अंदर एक बहुत सुंदर महाभारत की कथा याद आती है, जब कहा जाता है कि एकलव्य उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना था तो वह गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि यह विद्यालय तो राजकुमारों के लिए है, इसीलिए हम आपको यहां प्रवेश नहीं दे सकते हैं। एकलव्य वहां से चला जाता है और जंगल में दूर जाए गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा की रोज पूजा करते हुए उन्हें याद करके उनसे वो वाइब्रेशंस प्राप्त करके वह धनुर्विद्या सीखना आरंभ करता है और सचमुच बहुत बड़ा धनुर्धर बन जाता है। कहा जाता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी जंगल से गुजर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि कोई धनुर्धर इतना प्रवीण है, देखते ही वो उसके पास जाता है और पूछता है कि बालक तेरा गुरु कौन है, कहां से तुमने ये धनुर्विद्या सीखी है। एकलव्य उसको ले जाता है अपने गुरु की प्रतिमा के पास और कहता है यही मेरा गुरु है जिनसे मैंने प्रेरणा प्राप्त की और ये धनुर्विद्या का ज्ञान सीखा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उस प्रतिमा को देखा और कहा ये किसकी प्रतिमा है। तब वो बालक कहता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा है, उनसे ही मैंने वाइब्रेशंस प्राप्त कर प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन के अंदर ये धनुर्विद्या को सीखा है। तब कहा जाता गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं फिर तो आपको गुरु दक्षिणा जरूर देनी होगी। तो बालक कहता है गुरु द्रोणाचार्य जी से आप जो दक्षिणा मांगेंगे मैं अवश्य दे दूंगा। और तब कहा जाता गुरु द्रोणाचार्य जी उस बालक से उसका अंगूठा मांगते हैं दक्षिणा के रूप में। और बिना सोचे समझे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर उसी समय दे दिया दक्षिणा के रूप में। कई बार ये विचार चलता है कि गुरु ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है, कैसे वो अंगूठा ही मांग ले ताकि उसका करियर वहीं खत्म हो जाए, वो आगे जीवन में बढ़ ही न सके, ऐसे कैसे कोई गुरु कर सकता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो परमात्मा परम सतगुरु भी जब इस संसार में आते हैं तो हम बच्चों से हमारा

अंगूठा मांगते हैं, और ये अंगूठा निशानी है दृढ़ संकल्प की। कोई भी बात का जब दृढ़ संकल्प करना होता है तब ये अंगूठे की निशानी अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि इस सुंदर जीवन को श्रेष्ठ दिशा, श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचाने के लिए या संपूर्णता की ओर जाने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर भी दृढ़ संकल्पधारी बनना होगा। साथ ही साथ अंगूठा निशानी है बेस्ट ऑफ लक, अर्थात सदा सफलता मूरत बनने का वरदान हमें प्राप्त होता है। परमात्मा भी हमें यही कहते हैं परम सतगुरु बन करके कि आप अपने जीवन के इस दृढ़ संकल्प में सदा सफल रहो, सफलता प्राप्त करो, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसलिए ये अंगूठा हमसे लेते हैं, अर्थात ये गुरु दक्षिणा हमसे लेते हैं, अर्थात सदा दृढ़ संकल्पधारी बन करके सदा सफलता मूरत बनो, ये हमेशा स्मृति रहे। तो कितना सुंदर भाव है इसके पीछे, ताकि हम अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जा सके, अपनी मंजिल पर सहज पहुंच सके। दूसरा, भारत के अंदर हमेशा ये श्लोक गाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ यही कि परमात्मा परम सतगुरु जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिस आधार को नाम दिया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। और इसीलिए ये भी श्लोक गाया जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भावार्थ यही कि परमात्मा परम सतगुरु और प्रजापिता ब्रह्मा तो गोविंद भी है और गुरु भी है, क्योंकि वो परमात्मा जो साक्षात परब्रह्म है वो इस संसार में जब आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा वो निमित्त आधार बनते हैं, लेकिन हमारे लिए आदर्श है गुरु ब्रह्मा के रूप में। और इसीलिए बलिहारी गुरु की है जिसने गोविंद दियो बताए, अर्थात उस परमात्मा का सत्य परिचय हमें दे दिया। गुरु ब्रह्मा इसीलिए कहा कि ब्रह्मा को कहा जाता सृष्टि का रचयिता है, तो वो हमारे अंदर नए विचारों की, नए सद्गुणों की स्थापना करते हैं, अर्थात सृजन करते हैं, एक नया जीवन हमारा बना देते हैं। उन नए विचारों के आधार पर नए जीवन को सृजन करते हैं। तो इसीलिए उस गुरु ब्रह्मा को भी नमन करते हैं। साथ ही साथ गुरु विष्णु भी कहा, अर्थात विष्णु पालन करता है कि जो हमारे जीवन का रक्षक बन करके हमारे जीवन को संभालते हैं कि हम कहीं राह भटक ना जाए, क्योंकि ये अंधकार में चकाचौंध भी बहुत है, मायावी नगरी है, तो कहीं राह भटक न जाए। तो हमारे जीवन के अंदर इस सद्गुणों की स्थापना जो हमने की है उसकी परवरिश भी करते हैं। और फिर कहा गुरु देवो महेश्वरा, यानी शंकर के द्वारा महाविनाश करते हैं। परमात्मा भी हमारे अंदर हमारी कमजोरियों का विनाश करते हैं, हमारे अहंकार को समाप्त करते हैं, हमारी गलत आदतों को समाप्त करते हैं,
दुख को मिटाते हैं और फिर कहा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है और उस गुरु को जो अंधकार को मिटाने वाला अहंकार को मिटाने वाला उसका मैं दिल से नमन करती हूं प्रणाम करती हूं। तो कितना सुंदर भाव भारत के इन श्लोकों में भी दिया हुआ है। तो आज के इस शुभ दिवस पर हम अपने अंदर भी ये दृढ़ संकल्प ले कि आज से हम अपने जीवन को भी परमात्मा की श्रेष्ठ मत के आधार से संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। तभी तो कहा गया है गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। तो परमात्मा ही परम सतगुरु बनकर के हमें ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में फैलाता है और जिस ज्ञान के प्रकाश को जीवन में धारण करने से हम श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहा आज हमें ये दृढ़ संकल्प करना है परमात्मा के श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते हुए हम अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं और संपूर्ण बना करके हम देव तुल्य स्वयं को बना दें। तो आज के दिन उस परम सतगुरु परमात्मा के प्रति हमारी दिल से कृतज्ञता का भाव अर्पित करते हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन को दिव्य देव तुल्य जरूर बनाएंगे। पुनः पुनः सभी भाई बहनों को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।

0: नमस्ते दोस्तों, एक मिनट, पहले जरा पानी पी लो। अब ठीक है, पता है मैं बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा हूँ। क्या कहा, क्यों? अरे भैया, आपसे मिलने का टाइम जो हो गया था। चलो अब जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से।
1: रवि, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो?
2: उदास क्यों लग रहे हो? सूखी हुई घास क्यों लग रहे हो?
1: मीना, मेरी नानी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज माँ और बाबा 10-12 दिनों के लिए उनके घर जा रहे हैं।
3: तो तुम अकेले कैसे रहोगे?
1: अकेले नहीं मीना, मैं अपने रमेश चाचा के घर पे रहूँगा।
3: अब समझी, तुम अपनी नानी के घर नहीं जा रहे इसलिए इतने उदास हो।
1: हाँ मीना, मैं भी नानी से मिलने जाना चाहता था, लेकिन बाबा ने कहा कि मुझे स्कूल से इतने दिन छुट्टी नहीं करनी चाहिए।
4: नमस्ते बच्चों। बच्चों, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि इस साल का कबड्डी मुकाबला अगले हफ्ते होगा।
5: अगले हफ्ते? मजा आ गया कबड्डी मुकाबला।
4: एक मिनट दीपू, क्योंकि तुम कबड्डी के सबसे अच्छे खिलाड़ी हो, इसलिए अपनी क्लास के कप्तान तुम ही होगे। तुम आज अपनी टीम चुन लेना।
6: जी बहन जी।
4: रवि, तुम आधी छुट्टी में मुझे आके मिलना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
1: जी बहन जी।
0: और आधी छुट्टी के समय दीपू ने अपनी टीम लगभग चुन ली।
6: कमल, सुनील, समीर और मोनू।
3: दीपू, लगता है तुम रवि को अपनी टीम में लेना भूल गए हो।
6: नहीं मीना, मैंने रवि की जगह मोनू को चुना है, क्योंकि मोनू बहुत तेज दौड़ सकता है।
3: लेकिन रवि एक ही सांस में बहुत देर तक कबड्डी कबड्डी कबड्डी बोल सकता है।
7: लो, नाम लिया, रवि आ गया। तुम कहाँ थे रवि?
1: मुझे बहन जी ने बुलाया था सुनील।
6: क्या कहा बहन जी ने?
1: दीपू, इस बार परीक्षा में मेरे नंबर कुछ कम आए हैं, इसलिए बहन जी मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए कह रही थी।
6: खैर, यहाँ पढ़ाई की नहीं कबड्डी की बात हो रही है। मीना बता रही थी कि तुम एक ही सांस में बहुत देर तक कबड्डी कबड्डी कबड्डी बोल सकते हो।
3: हाँ दीपू।
6: मोनू, रवि, जब मैं सीटी मारूं तो तुम दोनों एक साथ कबड्डी कबड्डी बोलना, जिसने ज्यादा देर तक बोला वही मेरी टीम में होगा। तैयार?
5: तैयार।
3: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
6: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
5: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
6: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
5: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
0: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
3: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी क्या हुआ?
1: मीना, कल रात को अंधेरे में मैं दरवाजे से टकरा गया और आँख पे जरा सी चोट लग गई।
3: लेकिन तुम्हारी आँख देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने मारा हो।
1: मैंने कहा ना, मुझे दरवाजे से टकराने के कारण चोट लगी है।
3: रवि सुनो तो।
1: रवि
3: चला गया।
0: रवि मीना की बात का जवाब दिए बिना ही क्लास में चला गया। और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जब रवि, दीपू और बाकी दोस्तों के साथ कबड्डी का अभ्यास करने मैदान में पहुंचा।
6: रवि, तुम्हारी आंख पे चोट लगी है, क्या तुम ऐसी हालत में खेल सकोगे?
1: हाँ हाँ दीपू, बिल्कुल
6: ठीक है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
0: आंख पे लगी चोट के कारण रवि ठीक से खेल नहीं पाया और दीवार में लगी एक कील में फंस के उसकी पैंट भी फट गई। और अगले दिन स्कूल में।
3: रवि, तुम्हारी बाजू पे ये पट्टी?
1: मीना, वो ठीक से दिखाई ना देने की वजह से कल रात मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया।
0: उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद दीपू अपनी टीम के साथ कबड्डी का अभ्यास करने मैदान में पहुंचा। मीना के लाख मना करने के बावजूद रवि खेला, लेकिन उसकी बाजू में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मीना फौरन उसे नर्स बहन जी के पास ले गई।
4: रवि, तुमने अभी अभी बताया कि कल रात तुम पैर फिसलने की वजह से गिर पड़े थे, है ना?
1: जी नाज बहन जी।
4: लेकिन तुम्हारी बाजू पे तो खरोंचों के निशान भी हैं, जो कि गिरने की वजह से नहीं आ सकते। तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? ओहो, रो मत रवि, मुझे बताओ क्या बात है।
7: नर्स बहन जी, कल रात को रमेश चाचा ने मुझे छड़ी से पीटा था।
4: क्या? लेकिन क्यों?
7: क्योंकि कल कबड्डी का अभ्यास करते हुए मेरी पैंट फट गई थी।
1: रवि, तुम्हारी आंख पे ये चोट भी तुम्हारे चाचा जी के कारण?
7: हाँ मीना, परीक्षा में कम नंबर लाने के कारण रमेश चाचा ने परसों मुझे खूब डांटा और पीटा भी। आज तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने कबड्डी का अभ्यास किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं टीम से बाहर हूँ और रमेश चाचा मुझे इस बात का ताना दे।
4: रवि, तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं?
7: किसको बताता नर्स बहन जी, माँ और बाबा तो शहर गए हुए हैं।
4: तुम ये बात मुझे बता सकते थे, स्कूल में बहन जी को बता सकते थे, या फिर किसी बड़े से इस बारे में बात कर सकते थे।
7: मैं बहुत डर गया था नर्स बहन जी, मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो रमेश चाचा बहुत नाराज हो जाएंगे और मुझे फिर से पीटेंगे।
4: तुम्हें पता है रवि, बच्चों पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है।
1: कानूनी अपराध?
4: हाँ, स्कूल के टीचर, माता पिता या फिर रिश्तेदार, किसी को भी बच्चे पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून की नजर में ये एक दंडनीय अपराध है। RTE का नाम सुना है तुमने?
1: हाँ नर्स बहन जी, RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
4: हाँ, और RTE के अंतर्गत बच्चों पे किसी भी प्रकार की हिंसा एक अपराध है, चाहे वो हिंसा शारीरिक हो या मानसिक।
1: मुझे ये बात पता नहीं थी नर्स बहन जी।
4: रवि, अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो तो सबसे पहले उसे अपने माता पिता से या फिर किसी बड़े से या अपनी टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए।
1: नर्स बहन जी, रमेश चाचा भी तो मेरे बड़े हैं, लेकिन
4: मैं समझ रही हूँ रवि, अगर हाथ उठाने वाला अपने घर का ही कोई सदस्य हो तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को तुरंत 1098 यानी चाइल्ड लाइन पे फोन करना चाहिए।
1: नर्स बहन जी, अगर कोई बच्चा फोन ना कर सके
4: तो उसे बाल संरक्षण समिति के किसी सदस्य से बात करनी चाहिए और किसी बड़े के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
2: शिकायत दर्ज करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए।
0: मीना रवि को अपने घर ले गई। जब मीना के बाबा को पूरी बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रवि के माता पिता को फोन किया, जो अगले ही दिन गाँव लौट आए। फिर उन्होंने मीना के बाबा के साथ जाके बाल संरक्षण समिति के एक सदस्य से रवि के चाचा की शिकायत की। बाल संरक्षण समिति के सदस्य ने रवि के चाचा को अपने घर बुलवाया और कहा,
8: देखो रमेश, इस बार तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे।
9: मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी भी बच्चे पे ना तो हाथ उठाऊंगा और ना ही उसको डांटूंगा।
0: रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पूरे गांव के सामने रवि से माफी भी मांगी। और फिर 3-4 दिन बाद जब रवि की बाजू ठीक हुई और वो स्कूल गया।
1: बहन जी, आज तो कबड्डी का मुकाबला होना था, फिर मैदान खाली क्यों है?
4: क्योंकि अब मुकाबला होगा अगले हफ्ते,
1: जिसमें तुम भी भाग ले सकोगे।

0: से?
1: मीना की वजह से। इसने प्रिंसिपल साहिबा को एक अर्जी लिखी कि कबड्डी के मुकाबले का आयोजन एक हफ्ते बाद किया जाए ताकि तुम उसमें भाग ले सको।
2: धन्यवाद मीना।
3: धन्यवाद मीना। धन्यवाद मीना।
4: भाई वाह, सचमुच बहुत चतुर और चपल है अपनी मीना। चलो अब जल्दी से सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
2: कहते हैं मीना और मिट्ठू, बात ये रखना याद,
3: बच्चों पे हिंसा करना है कानूनी अपराध।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या कविता लिखी है इन दोनों ने। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता फड़फड़ाता मुस्कुराता हुआ गीत।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है सरल।
3: बहन जी सरल का पहला अक्षर है स और स से होता है सफेद।
1: शाबाश दीपू। अब सफेद से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
4: चेहरा सफेद पड़ना यानी बहुत घबरा जाना।
1: बिल्कुल ठीक रानो।
3: स के बाद सरल में आता है र और र से होती है रात।
1: सही जवाब रवि। और मुहावरा?
3: रात दिन एक करना मतलब खूब मेहनत करना।
4: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ सुनील बताओ।
4: स और र के बाद सरल में आता है ल और ल से होती है लार।
1: शाबाश सुनील। और लार से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
4: लार टपकना और इसका मतलब होता है मुंह में पानी आना या ललचा जाना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 100003।

मन बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है एक दर

एक रोज दिवाली है मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है मेरे।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: चुलबुली चीनी। चीनी लाइब्रेरी से लाई गई लेटेस्ट किताब का लुफ्त उठा रही थी। किताब खत्म करके चीनी अपने दोस्तों राहुल, रेखा, माया और अशोक को पार्क में बुलाकर उसकी कहानी सुनाने लगी।
3: इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है, जानते हो, बिल्कुल हमारी तरह ही पांच बच्चे उनके पड़ोसी में आए एक गुंडे को पकड़ लेते हैं। काले चश्मे, नकली दाढ़ी और गाल पर निशान होने की वजह से कोई भी उस गुंडे को नहीं पहचान पाता है। आखिरकार ये पांच बच्चे मिलकर उसका भांडा फोड़कर उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर सबकी वाहवाही लूटते हैं। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें।
2: जल्द ही अशोक कहीं से एक बदमाश दिखने वाले व्यक्ति की खबर ले आया।
4: अरे सुनो, मैंने एक अजीबोगरीब आदमी को अपनी कॉलोनी में देखा है, जो किसी से भी बात नहीं करता है और उसका रहन सहन भी काफी संदेहास्पद है।
3: जरूर वह स्मगलर होगा।
2: वे सब उसका पीछा करते हुए एक मकान में पहुंचे और वहीं किसी और व्यक्ति से उसकी बातचीत सुनी।
5: आज का काम काफी सीरियस है, माल तैयार है, अगर देर हो गई तो बॉस गुस्सा होंगे।
4: इनकी बातों से लग रहा है ये कुछ गलत काम कर रहे हैं।
2: अब बच्चों को यकीन हो गया कि यह दोनों शख्स स्मगलर ही हैं। कुछ सोचकर चीनी ने उस कमरे को बाहर से लॉक करके पुलिस को फोन किया और साथ साथ पड़ोसियों को भी सतर्क कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरी कॉलोनी के लोग उस घर के बाहर इकट्ठे हो गए। तब चीनी बोली,
3: मैं साबित कर सकती हूँ कि ये आदमी बदमाश है।
6: भला कैसे?
3: रुको, दिखाती हूँ।
2: ये बोलते ही चीनी ने उसकी दाढ़ी खींची।
3: अरे, आपकी दाढ़ी तो असली है, आप कौन हो?
6: मैं यही एक फैक्ट्री में मैनेजर हूँ और अपने सहयोगी से उत्पाद के सिलसिले में यहाँ बातचीत करने आया हूँ। मेरी आंखों में इन्फेक्शन होने के कारण मैंने काला चश्मा पहना है।
2: सभी बच्चों का सिर शर्म से झुक गया।
5: किसकी शरारत थी ये?
2: सभी बच्चों ने चीनी की ओर इशारा किया।
3: मैं तो सिर्फ डिटेक्टिव बनना चाहती थी।
2: चीनी के डिटेक्टिव बनने के ख्याल ने अच्छे लोगों पर भी शक करने पर मजबूर कर दिया। चीनी और सभी बच्चों को इससे सबक मिला कि बिना पूरी बात जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

शांति। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभ भावना शुभकामनाएं। संसार के अंदर साल में कुछ दिन विशेष मनाए जाते हैं। कभी देखो तो कोई फादर्स डे मना रहा है, कभी देखो तो कोई मदर्स डे मना रहा है, कभी देखो तो टीचर्स डे मना रहा है, कभी देखो तो फ्रेंड्स डे मना रहा है। और ये दिन मनाने के पीछे भाव यही है कि इस दिन को विशेष हम अपने माता पिता शिक्षक या दोस्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनके साथ बातें करें, पुरानी यादें ताजी करें और उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट दे करके अपने मन के अंदर शुक्रिया धन्यवाद को हम अर्पित करें। परंतु हमारे भारत में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत सुंदर और शुभ माना जाता है कि जब हम गुरु के प्रति अपने कृतज्ञता का भाव अर्पित करें। इस दिन का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि गुरु माना जो अंधकार को मिटाए प्रकाश की ओर ले जाने वाला, साथ ही साथ गुरु अर्थात जो गुरूर को मिटाने वाला, मनुष्य जीवन में जो अहंकार आ गया है उस अहंकार को मिटाने वाला और उसे निर्मल पावन बनाने वाला। साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा कहा अर्थात गुरु वह जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए ऐसा ज्ञान का प्रकाश फैलाए, ऐसे सद्गुणों का प्रकाश फैलाए जो जीवन संपूर्ण हो जाए। और ये कार्य आज के संसार में कोई मनुष्य नहीं कर पाता है, परंतु जब कलयुग के अंधकार रात्रि के समय जहां चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, ऐसे समय पर ही परमात्मा इस संसार में अवतरित होकर के सच्चा मात पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु बन करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए आत्मा का तीसरा नेत्र खोल करके उसे दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, जिससे हम अपने जीवन से ये अंधकार को मिटाए प्रकाश की ओर आगे बढ़ सके, अपने जीवन को निर्मल पावन कर सके और अपने जीवन को सद्गुणों से भरपूर कर संपूर्णता की ओर उस मंजिल को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए ये कार्य पिता परमात्मा के सिवाय और तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कोई उस अंधकार में फंसे हुए हैं। निकालने वाला जब आएगा तभी तो इस अंधकार से हम निकल सकेंगे। परमात्मा को वृक्षपति भी कहा जाता है, अर्थात जो इस विशाल मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है और वो आकर के हमें इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना देते हैं, उसी को कहा जाता है बृहस्पति। अर्थात वो वृक्षपति जब इस संसार में आते तो बृहस्पति की दशा ले आते हैं। अनेक प्रकार की दशाएं समाप्त हो जाती हैं और बृहस्पति की दशा आरंभ होती है, अर्थात उसके बाद हमारे जीवन के अंदर शुभ ही शुभ, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ दिशा मिल जाती है और सब सुंदर शुभ होने लगता है। भावार्थ यही कि भारत में इसीलिए
परमात्मा को बृहस्पति जो कहा गया है, तो हफ्ते के दिन में गुरुवार को बृहस्पति का दिन भी कहा जाता है। इसीलिए जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो भी विशेष बृहस्पति का दिन ही चुनते हैं। तो यही भावना है कि परमात्मा बृहस्पति की दशा बच्चे के ऊपर बैठे, अर्थात उनका आशीर्वाद उनको मिले, ताकि वो ज्ञान की धारणा सहजता से अपने जीवन में करते हुए अपनी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर सके। तो गुरु अर्थात ये जो हमें श्रेष्ठ मंजिल की ओर ले जाए। भारत में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि परमात्मा शिव ने आकर के सप्त ऋषियों को योग की विद्या सिखाई थी।

जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने पांचों शिष्य को पहला ज्ञान का बोध जो दिया वह भी गुरु पूर्णिमा के दिन दिया। तो साथ ही साथ इसको महर्षि व्यास का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिस महर्षि व्यास ने 4 वेद और 18 पुराणों की रचना की। तो इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। साथ ही कहा जाता है भारत के अंदर एक बहुत सुंदर महाभारत की कथा याद आती है, जब कहा जाता है कि एकलव्य उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना था, तो वह गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि यह विद्यालय तो राजकुमारों के लिए है, इसीलिए हम आपको यहां प्रवेश नहीं दे सकते हैं। एकलव्य वहां से चला जाता है और जंगल में दूर जाए गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा की रोज पूजा करते हुए उन्हें याद करके उनसे वो वाइब्रेशंस प्राप्त करके वह धनुर्विद्या सीखना आरंभ करता है और सचमुच बहुत बड़ा धनुर्धर बन जाता है। कहा जाता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी जंगल से गुजर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि कोई धनुर्धर इतना प्रवीण है, देखते ही वो उसके पास जाता है और पूछता है कि बालक तेरा गुरु कौन है, कहां से तुमने ये धनुर्विद्या सीखी है। एकलव्य उसको ले जाता है अपने गुरु की प्रतिमा के पास और कहता है यही मेरा गुरु है जिनसे मैंने प्रेरणा प्राप्त की और ये धनुर्विद्या का ज्ञान सीखा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उस प्रतिमा को देखा और कहा ये किसकी प्रतिमा है। तब वो बालक कहता है गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा है, उनसे ही मैंने वाइब्रेशंस प्राप्त कर प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन के अंदर ये धनुर्विद्या को सीखा है। तब कहा जाता गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं फिर तो आपको गुरु दक्षिणा जरूर देनी होगी। वो बालक कहता है गुरु द्रोणाचार्य जी से आप जो दक्षिणा मांगेंगे मैं अवश्य दे दूंगा। और तब कहा जाता गुरु द्रोणाचार्य जी उस बालक से उसका अंगूठा मांगते हैं दक्षिणा के रूप में। और बिना सोचे समझे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर उसी समय दे दिया दक्षिणा के रूप में। कई बार ये विचार चलता है कि गुरु ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है, कैसे वो अंगूठा ही मांग ले ताकि उसका करियर वहीं खत्म हो जाए, वो आगे जीवन में बढ़ ही न सके, ऐसे कैसे कोई गुरु कर सकता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो परमात्मा परम सतगुरु भी जब इस संसार में आते हैं तो हम बच्चों से हमारा अंगूठा मांगते हैं और ये अंगूठा निशानी है दृढ़ संकल्प। कोई भी बात का जब दृढ़ संकल्प करना होता है तब ये अंगूठे की निशानी अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि इस सुंदर जीवन को श्रेष्ठ दिशा श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचाने के लिए या संपूर्णता की ओर जाने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर भी दृढ़ संकल्पधारी बनना होगा। साथ ही साथ अंगूठा निशानी है बेस्ट ऑफ लक अर्थात सदा सफलता मूर्त बनने का वरदान हमें प्राप्त होता है। परमात्मा भी हमें यही कहते हैं परम सतगुरु बन करके कि आप अपने जीवन के इस दृढ़ संकल्प में सदा सफल रहो।

सफलता प्राप्त करो, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसलिए ये अंगूठा हमसे लेते हैं, अर्थात ये गुरु दक्षिणा हमसे लेते हैं, अर्थात सदा दृढ़ संकल्पधारी बन करके सदा सफलता मूर्त बनो, ये हमेशा स्मृति रहे। तो कितना सुंदर भाव है इसके पीछे, ताकि हम अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जा सके, अपनी मंजिल पर सहज पहुंच सके। दूसरा, भारत के अंदर हमेशा ये श्लोक गाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ यही कि परमात्मा परम सतगुरु जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिस आधार को नाम दिया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। और इसीलिए ये भी श्लोक गाया जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भावार्थ यही कि परमात्मा परम सतगुरु और प्रजापिता ब्रह्मा तो गोविंद भी है और गुरु भी है, क्योंकि वो परमात्मा जो साक्षात परब्रह्म है वो इस संसार में जब आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा वो निमित आधार बनते हैं, लेकिन हमारे लिए आदर्श है गुरु ब्रह्मा के रूप में। और इसीलिए बलिहारी गुरु की है जिसने गोविंद दियो बताए, अर्थात उस परमात्मा का सत्य परिचय हमें दे दिया। गुरु ब्रह्मा इसीलिए कहा कि ब्रह्मा को कहा जाता सृष्टि का रचयिता है, तो वो हमारे अंदर नए विचारों की नए सद्गुणों की स्थापना करते हैं, अर्थात सृजन करते हैं, एक नया जीवन हमारा बना देते हैं। उन नए विचारों के आधार पर नए जीवन को सृजन करते हैं। तो इसीलिए उस गुरु ब्रह्मा को भी नमन करते हैं। साथ ही साथ गुरु विष्णु भी कहा, अर्थात विष्णु पालन करता है कि जो हमारे जीवन का रक्षक बन करके हमारे जीवन को संभालते हैं कि हम कहीं राह भटक न जाए, क्योंकि ये अंधकार में चकाचौंध भी बहुत है, मायावी नगरी है, तो कहीं राह भटक न जाए। तो हमारे जीवन के अंदर इस सद्गुणों की स्थापना जो हमने की है उसकी परवरिश भी करते हैं। और फिर कहा गुरु देवो महेश्वरा, यानी शंकर के द्वारा महाविनाश करते हैं। परमात्मा भी हमारे अंदर हमारी कमजोरियों का विनाश करते हैं, हमारे अहंकार को समाप्त करते हैं, हमारी गलत आदतों को समाप्त करते हैं, दुख को मिटाते हैं। और फिर कहा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, और उस गुरु को जो अंधकार को मिटाने वाला अहंकार को मिटाने वाला उसका मैं दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो कितना सुंदर भाव भारत के इन श्लोकों में भी दिया हुआ है। तो आज के इस शुभ दिवस पर हम अपने अंदर भी ये दृढ़ संकल्प ले कि आज से हम अपने जीवन को भी परमात्मा की श्रेष्ठ मत के आधार से संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। तभी तो कहा गया है गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। तो परमात्मा ही परम सतगुरु बन करके हमें ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में फैलाता है, और जिस ज्ञान के प्रकाश को
जीवन में धारण करने से हम श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहा, आज हमें ये दृढ़ संकल्प करना है परमात्मा के श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते हुए हम अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं और संपूर्ण बना करके हम देव तुल्य स्वयं को बना दें। तो आज के दिन उस परम सतगुरु परमात्मा के प्रति हमारी दिल से कृतज्ञता का भाव अर्पित करते हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन को दिव्य देव तुल्य जरूर बनाएंगे। पुनः पुनः सभी भाई बहनों को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।

होस्ट आत्मिका का प्यारा सत श्री अकाल सद्गुरु की महिमा गाई जाती है। और जब परमात्मा आपका सच्चा सद्गुरु और साथी बन जाए तो इस जीवन रूपी नैया को किनारा मिल ही जाएगा। तो चलिए उस सच्चे बादशाह का शुक्राना करते हैं इस सुंदर डिवाइन मैशअप द्वारा। हमारी आज की सिंगर हैं बीके शिखा और उनका साथ देंगे बीके मून और बीके स्वरा।

0: दोस्त यार, हमारे तो एग्जाम आने वाला है।
1: अच्छा, मेरे में तो अभी टाइम है।
0: सही है, तुम्हारे तो पढ़ने के लिए टाइम भी मिलेगा। मेरे तो साइंस और मैथ्स की तो तैयारी हो गई है,
1: अच्छा।
0: और SST में थोड़ा डर लग रहा है।
1: ओ, मुझे तो संस्कृत में बहुत डर लगता है भाई। मैथ्स और साइंस और हिंदी में तो एकदम परफेक्ट तैयारी है। मैथ्स की तो इतनी परफेक्ट है कि 100 में से 101 लाऊंगा।
0: सही है।
2: क्या बात है बच्चों, क्या इतनी गहरी चर्चा हो रही है आप लोगों की?
1: दीदी, हम एग्जाम की बात कर रहे थे और हमारे सब्जेक्ट्स की, जो हमारे फेवरेट हैं।
2: ओह माय गॉड, अच्छा मतलब आप लोगों के सबके फेवरेट सब्जेक्ट हैं?
1: हाँ दीदी।
0: हाँ दीदी।
2: क्या बात है, चलो मैं भी थोड़ा सा जान लेती हूँ आपके सब्जेक्ट के बारे में, कौन से पसंद है। और आज मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है यहाँ पे?
3: मेरा नाम है शिवानी, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम है अमन और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ।
1: और मेरा नाम है आयुष, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ।
0: और मेरा नाम है रोशन और मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
2: क्या बात है, तो मतलब आप लोगों को तो ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती होगी।
1: हाँ दीदी।
0: हाँ दीदी।
2: बहुत सारी?
1: हाँ बहुत सारी।
2: लग रहा है शिवानी को नहीं करनी पड़ती है।
3: नहीं, मुझे करनी पड़ी है।
2: हाँ, बिकॉज शिवानी तो एकदम चुप चुप थी, तो मुझे लग रहा है शिवानी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसी हो जाती है ना चुटकियों में। अच्छा नहीं नहीं वैसे सही बात है बच्चों, पढ़ना तो बहुत पड़ता है एंड पढ़ाई तो बढ़ती भी जा रही है कुछ ना कुछ। हमारे टाइम में जो हम पढ़ते थे, मुझे लगता है आप लोग उससे तो ज्यादा पढ़ते हो।
1: हाँ दीदी, पहले मुझे लगता है पढ़ाई आसान होती थी क्योंकि वो मेरे को बताते हैं।
0: हाँ, मेरे को भी मेरे दादी एक बार बता रही थी कि उन्होंने 8th में ABCD पढ़ा।
2: ओह हाँ, वो तो काफी पुराने जमाने की बात है।
0: हाँ दीदी,
2: है ना।
1: 10-20 साल पहले भी, मतलब अब जिसके 60% भी आते हैं ना, उसकी भी अच्छी जॉब है। लेकिन अब के टाइम में इतना कंपटीशन है दीदी कि 90 से तो ऊपर चाहिए।
2: चाहिए होता है, एडमिशन के लिए चाहिए होता है।
1: जी दीदी।
2: तो डर लगता है क्या?
4: हाँ थोड़ा सा।
1: हाँ।
2: क्या लगता है?
4: कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वरना हमारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कम आए तो ऐसा।
3: मुझे लगता है अगर मैं फेल हो गई तो फिर इसी क्लास में पढ़ी रहूंगी।
2: ऐसा डर लगता है?
4: हाँ।
2: अरे बाप रे। तो वैसे क्योंकि पढ़ाई करने के लिए तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कोई ऑप्शन तो होता नहीं है हमारे पास।
1: नहीं बिल्कुल नहीं। 11th में होता है वो
2: तो। 11th का इंतजार कौन कौन कर रहा है यहाँ?
1: मैं कर रहा हूँ।
0: मैं भी,
1: बस कुछ महीने बाकी हैं दीदी।
2: अरे वाह। और अमन को इंतजार नहीं है?
4: थोड़ा सा, पर मुझे अभी 10th भी पढ़नी है।
2: ओ, तो समय लगेगा अभी। और शिवानी?
3: मुझे तो पता ही नहीं क्या करते।
2: कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों, आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा, फेवरेट, अगर एक सब्जेक्ट कोई हो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, मजा आता हो पढ़ने में, तो कौन सा है?
1: मैं बताऊं दीदी पहले?
2: बताओ।
1: मेरा तो मैथ्स है।
2: ओके, आयुष का सब्जेक्ट मैथ्स है, क्यों अच्छा लगता है?
1: दीदी उसमें सोल्व करने होते हैं, सम तो सोल्व करते हुए इतना मजा आता है, बहुत ज्यादा, और बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है।
2: ओके, सबसे अच्छा क्या लगता है मैथ्स में?
1: ट्रिग्नोमेट्री।
2: ट्रिग्नोमेट्री पसंद
1: है? नहीं। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मुझे सच में पसंद है क्योंकि मुझे आती वो सबसे कम है, लेकिन उसको सोल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है।
2: उसमें क्या होता है ये बताओ?
1: उसमें एक्स की वैल्यू।
0: अच्छा, फाइंड एक्स।
1: हाँ।
2: अच्छा, तो आपको इक्वेशंस अच्छी लगती है?
1: हाँ, इक्वेशंस।
2: ओके, अब पता है मुझे कैसे पता है? क्योंकि ना मेरा भी फेवरेट मैथ्स था।
1: ओ अच्छा। आपको क्या अच्छा लगता था दीदी मैथ्स में?
2: मुझे मैथ्स में तो सभी चैप्टर्स अच्छे लगते थे, बस वो जो जिसमें हमको एरिया पता करना होता था, ये सब करना होता था ना, कई बार मुझे वो थोड़ा सा फिर भी फॉर्मूला भूल जाती थी।
1: हाँ दीदी।
2: लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इक्वेशन सॉल्व करना मुझे भी बहुत पसंद था। अच्छा अमन, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है?
3: साइंस।
2: क्यों अच्छा लगता है साइंस?
4: साइंस में क्योंकि वो हमारे आसपास के, जैसे आसपास होता है वैसे साइंस में लिखा होता है, वैसे पढ़ते वक्त हम जो पढ़ते हैं वो उसे समझ आता है कि हमारे आसपास ऐसा है, ये कैसे बना है।
2: ओके, तो साइंस में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब क्या सबसे अच्छा लगता है आपको?
4: बायो।
2: बायोलॉजी अच्छी लगती है, मतलब अपनी बॉडी के बारे में जानना।
4: हाँ।
2: क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसे।
4: केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है पर फिजिक्स नहीं।
2: फिजिक्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती?
4: नहीं, थोड़ी थोड़ी, बस थोड़ा टफ होती है।
2: हाँ, कोई बात नहीं। और रोशन को क्या अच्छा लगता है?
0: मेरे को भी साइंस ही अच्छा लगता है दीदी।
2: साइंस में क्या अच्छा लगता है?
0: साइंस में बायो और केमिस्ट्री।
2: ओके, बायो या केमिस्ट्री, दोनों?
0: दोनों सेम।
2: तो क्या अच्छा लगता है, केमिस्ट्री क्यों अच्छी लगती है? उसमें तो इतने टफ टफ फॉर्मूलास होते हैं।
0: फॉर्मूलास कुछ नहीं होता दीदी, एक उसका टर्म याद कर लो, हो जाता है।
2: और उसमें तो एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना?
0: एक्सेप्शंस भी होते हैं पर वो 10th में नहीं है।
2: अच्छा।
0: में
2: तो आपको अच्छा लगता है?
0: हाँ दीदी। और मेरे मम्मी कहते थे कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा।
2: हाँ हाँ अभी क्या बनने का मन करता है?
0: अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग।
2: ओके, मतलब साइंस से जुड़े।
0: हाँ, साइंस जुड़े।
2: क्या बात है। और शिवानी को क्या पसंद है?
3: मुझे तो हिंदी पसंद है।
2: अच्छा, क्यों? हिंदी में क्या अच्छा लगता है ऐसा?
3: क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत जल्दी उत्तर याद हो जाते हैं।
2: तो आपको समझ में आ जाते हैं कि आपको ऐसे रटना पड़ता है?
3: मतलब मैं कहानी सर एक बार समझा देते तो मुझे समझ आ जाती है, मैं बना बना के लिख देती हूँ।
2: अरे वाह, क्या बात है। मतलब शिवानी को कहानियाँ बहुत पसंद है ना? लेकिन हिंदी में तो बहुत सारी मात्राओं का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, क्या लगाना है, कहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या क्या करना है, वो याद रहता है? अरे वाह।
3: और मैं सर से पूछ लेती हूँ, सर मैं अपने मन से बना बना के लिख दूँ सर?
2: अच्छा अच्छा, ये बताओ आप लोगों के जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें किसी को अच्छे मार्क्स लाने हो तो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि आपके फेवरेट है तो आपको तो मालूम होगा है ना? बताओ।
4: मैं उसे समझती हूँ और फिर पॉइंट में लर्न करती हूँ। पॉइंट में लर्न करने से हमें अच्छी तरह से लर्न होता है और उसके बारे में जैसे हम पढ़ लेते हैं, एक बार हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और फिर जैसे उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, बस उनको लर्न करने में ज्यादा वो नहीं लगता। जैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं उसके बारे में।
2: अच्छा, तो मतलब पॉइंट में मतलब कैसे लिखते हैं?
4: पॉइंट में मतलब बड़ा सा क्वेश्चन होता है, हम उसको छोटे छोटे डिवाइड करते हैं, मैं छोटे छोटे डिवाइड करके इसको पूरा लर्न कर लेती हूँ। जैसे हम बड़ा होता है ना तो फिर बहुत बड़ा लर्न करना पड़ता है।
2: जैसे कोई एग्जांपल दोगे जो आपने लर्न किया हो?
4: जैसे याद नहीं है, लेकिन
2: कोई बात नहीं, सोच के बताना।
4: बड़ा आंसर होता है, हम उसको छोटा करते हैं, जैसे एक लाइन के बाद जैसे पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो उसको उसे में लर्न कर लिया और फिर थोड़ा देर बाद जो दूसरा होता है उसको दूसरे में। ऐसा
2: ऐसे तो लर्न नहीं किया, जैसे वो एक मूवी में एक सवाल पूछा था ना कि मोटर कैसे स्टार्ट होती है?
4: मोटर कैसे?
2: एक बहुत ही फेमस मूवी थी और मुझे लगता है थ्री इडियट्स, तो उसमें एक प्रोफेसर वो स्टूडेंट सवाल पूछता है कि मोटर कैसे शुरू होती है, तो क्या बोलता है वो? याद है किसी को?
4: मैंने नहीं देखी मूवी।
1: मेरे को तो वो क्वेश्चन भी याद नहीं है दीदी।
2: उसमें वो बोलता है ब्रूम।
4: नहीं, एक्चुअली साइंस ना हम इमेजिन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको इमेजिन करके भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ही होती है, इसलिए वो लर्न करने में ज्यादा इजी होती है।
2: इजी होती है लर्न करने में।

0: मैथ्स नहीं होती इजी, सो सॉल्व करना पड़ता है.
1: मैं बताता हूँ.
2: हाँ भैया, मैथ्स जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे पूछ लेते हैं एक बार. आयुष आप बताओ.
1: दीदी हमारे सर बताते हैं, मैंने उनकी बात को फॉलो करा और वो बहुत अच्छी बात है. जो भी सर बोर्ड पे सम कराते हैं उसी दिन उसे घर पे जाके रिवाइज करो. जितने क्वेश्चन, जैसे सिर्फ दो भी कराए ना, तो उसको ही आप रिपीट करो 3 से 4 बार रफ कॉपी में, और फिर वो आपको आ जाएंगे समझ में. फिर अगर वो नहीं आया तो सर से पूछ लो, और अगर आ गया तो आप समझना होता है, रटना नहीं होता मैथ्स को, और समझ के बस करो. और क्या होता है, बस फॉर्मूले याद करो, उसमें पुटअप करो और आंसर आ जाता है. और बस थोड़ा टेबल याद होने चाहिए आपको, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब, तो फटाफट होती है, बहुत इजी है.
2: मतलब कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे आप स्क्वायर याद कर लो, हाँ, उसका क्या होता है, क्यूब याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लो, टेबल याद कर लो.
1: हाँ
2: फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे,
1: फॉर्मूले तो मेन होते हैं मैथ्स में. और जो करवाया है बस उसको एक बार रिपीट कर लो घर पे जाके रफ कॉपी में, और फिर आपको मैथ्स आने लग जाती है.
2: बिल्कुल सही बात है. पता है जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे एक सर थे, वो पता है क्या करते थे, मतलब ट्यूशन पढ़ते थे हम लोग वहाँ पे, और वो हर संडे हमारा 100 मार्क्स का टेस्ट लेते थे, पूरे 100 मार्क्स का. तो भले कोई चैप्टर हमें पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो क्या होता था, शुरुआत में हमने कुछ चैप्टर नहीं पढ़े थे, तो किसी के मार्क्स 100 में से 30 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं. फिर जैसे ही पढ़ते जाते थे तो मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ते जाते थे.
1: तो दीदी सेम क्वेश्चंस होते थे?
2: नहीं, हर बार अलग क्वेश्चंस होते थे, हर बार अलग क्वेश्चंस होते थे, और क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट भी हमें हर हफ्ते मिलता था. तो फिर इतनी उन लोगों ने लेकिन हमारी प्रिपरेशन करवा दी, टेस्ट दे के कि जब एग्जाम आया ना बोर्ड का, तब हमें से किसी को डर ही नहीं लग रहा था. और वो बहुत आसान हो गया और नंबर भी आ गए, क्योंकि हर संडे टेस्ट, क्या करोगे आप, याद हो ही जाएगा अल्टीमेटली.
1: और हमारे सर जो है वो हमारी रफ कॉपी डेली चेक करते, डेली, संडे भी नहीं. उनका कहना है बस जो सम कराता हूँ उसको ही आप घर पे याद करो, पहले देख के करो फिर नोटबुक में से, फिर उसको बिना देखे करो, और उसके बाद करो 2-3-4 बार. एक सम को 3 बार करना होता है, और जितने भी करवाए, और वो डेली रफ कॉपी चेक करता है. अगर नहीं करे तो फिर डांटते हैं, मारते हैं, फिर वो अगले दिन करके लाता है बच्चा,
2: फिर पनिशमेंट मिलती है.
1: हाँ.
2: Okay, और रोशन आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी साइंस है, तो दी, कैसे दी, अगर उसमें स्कोर करना है तो कैसे पढ़ना पड़ेगा उसको?
3: हमारे स्कूल में तो सर सिखाते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ उनको एक बार समझ लेना, तुम खुद एक टेस्ट बनाना, खुद क्वेश्चन लिखो, खुद आंसर लिखो.
2: ओके.
3: और एक और बात, टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें एक एक पैरा पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन निकालो खुद, और आंसर भी खुद लिखो.
2: अच्छा, ये भी अच्छा तरीका है, मतलब क्वेश्चन खुद ही निकालो. तो आप निकालते हो क्वेश्चन खुद?
3: जी दी.
2: कैसे निकलते हैं, हर बार कोई नया क्वेश्चन निकल पाता है?
3: हाँ, एक पैरा पढ़ता हूँ, उसमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन निकलता है, समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन बन नहीं पाया.
2: तो फिर आप दोबारा पूछते हो फिर सर को?
3: हाँ जी दी.
2: तो सर समझा देते हैं?
3: हाँ. सर ने समझा देता ट्यूशन में.
2: इससे क्या फायदा होता है फिर आपको?
3: दीदी एक एक पैरा रटा हुआ नहीं, समझ में आ गया हमको, तो फिर एग्जाम में तो आसान हो जाएगा, सब आता है फिर तो.
2: अच्छा, फिर डर नहीं लगता होगा साइंस में?
3: नो दीदी.
2: ओके. और शिवानी आप बताओ, आपका फेवरेट तो हिंदी है, तो हिंदी में कैसे मार्क्स लाए जाए और कैसे पढ़ाई की जाए?
4: मतलब कि पहले तो सर कहानी ही समझा देते तो इसलिए समझ आ जाता है. और जैसे इंग्लिश में मुझे लर्न करना होता है तो मैं तो सॉन्ग बना के लर्न कर लेती हूँ.
2: कैसे सॉन्ग बनाते हो बताओ?
4: म्यूजिक देके.
2: कोई सॉन्ग याद है जो आपने बनाया हो?
4: मैंने नहीं बनाया, मतलब ये बोल रही थी तो मैंने इसके लर्न करवाया इसको.
2: हाँ, किसने बनाया वो सॉन्ग?
4: किसने बनाया था?
2: शिवानी ने बनाया.
4: हाँ.
2: शिवानी ने कैसा बनाया सुनाओ तो.
4: मुझे वो आंसर नहीं याद, इसको याद दा से था.
2: बताओ.
4: दा प्रोसेसिंग.
2: जैसे गा के कैसे किया उसे याद, वो बताओ.
4: तुम्हें पता है ना, मैं भूल गई.
2: थोड़ा सा जितना याद है उतना बोल दो.
4: मुझे थोड़ा सा नहीं याद, थोड़ा सा याद था, दा प्रोसेसिंग ऐसा कुछ था.
2: अच्छा
4: याद है, मैं नहीं बोलूंगी.
2: शिवानी हमें थोड़ा सा सुनाओ ना, क्या पता हमें भी नया तरीका आ जाए और हम भी जल्दी जल्दी याद कर लें फिर, है ना?
4: The processing on.
2: हाँ चलेगा.
4: इसका पूरा था तो हम लोग ने आगे में कहा तेने.
2: अच्छा, मतलब म्यूजिक में डाल दिया था सारे वर्ड्स को.
4: वो पहले मैं जब थोड़ी सी इसे एक क्लास और छोटी थी ना, तो मैं ऐसे ही करती थी थोड़ा सा, मतलब कोई भी गाना सुनती थी तो गाने तो मुझे बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं. और वैसे मैं सब आंसर में भी पुट कर देती थी आंसर को, लर्न करने के लिए गाने, ऐसा अपने मन से ट्यूनिंग बना के.
2: तो फिर वो याद रहता था?
4: हाँ बहुत देर,
5: क्योंकि
4: याद रहता था,
5: क्योंकि गाना होता है ना, हम लोग गाते हैं तो हम लोग को गाना याद रहता है इसीलिए.
4: हाँ, गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं जैसे हम म्यूजिक के साथ लर्न करते हैं, इसलिए.
2: कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में गाने याद आ रहे होते हैं.
4: हाँ, मेरे साथ हो चुका है ऐसा. गाने क्या होता है, सब कुछ याद आने लगता है एग्जाम में, सिर्फ कंसर्ट्स नहीं याद आते.
1: ये तो बहुत यूनिक तरीका है दीदी.
2: हाँ सही बात है, ये तो काफी यूनिक तरीका है कि भाई गाने याद कर लो. अच्छा ये बताओ, ये तो फेवरेट सब्जेक्ट की बात हुई, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता?
1: हाँ है ना.
5: हाँ?
1: संस्कृत.
2: क्यों नहीं अच्छा लगता आयुष?
1: Okay. दीदी उसके वर्ड्स ही ऐसे होते हैं, बहुत अलग होते हैं एकदम, मतलब तो वो वर्ड्स याद नहीं होते हैं. जैसे हिंदी है, साइंस है, वो हमने पढ़ा होता है, हमें याद आ जाता है. तो बोर्ड में मतलब एग्जाम में हम लिख भी सकते हैं कि हाँ ऐसा बताया था, कितना भी आता. संस्कृत में तो वो वर्ड्स ही नहीं पता होते दीदी.
2: ओके.
1: याद ही नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता.
2: अच्छा यहाँ पे कोई है जिसको संस्कृत पसंद है? बहुत टफ लगती है शिवानी.
1: हाँ इनकी छोटी होगी ना संस्कृत, तो इसलिए इसको फेवरेट.
2: क्या अच्छा लगता है उसमें?
5: उसमें ना मतलब बहुत ज्यादा फनी वर्ड्स होते हैं, जैसे किम करूती रचंती.
4: मुझे संस्कृत का बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं आता, मैंने बचपन से लेके संस्कृत अभी तक नहीं पढ़ी.
3: मार तो संस्कृति नहीं है, मैं छूट गया.
2: ओके. मैंने तो पढ़ी थी, मुझे तो बहुत डांट डांट के पढ़ाया गया था, और जब डांट के पढ़ाया गया फिर तो याद करना ही पड़ा. अच्छा और किसको क्या पसंद नहीं है? आयुष ने तो बताया कि उसको संस्कृत बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि टफ होती है ना.
5: मुझे साइंस भी पसंद है.
2: साइंस भी पसंद है. शिवानी को तो मुझे लगता है सब पसंद है. तो शिवानी को हम डॉक्टर इंजीनियर पायलट सब बना देंगे, है ना?
5: जी ड्राइंग भी पसंद है.
2: ओ देखो अभी आर्टिस्ट भी बनाएंगे.
4: हाँ मुझे एसएसटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है.
2: हाँ क्यों?
4: क्योंकि सर जो हमारे समझाते हैं ना, एक्चुअली वो हमें हिंदी में समझाते हैं इंग्लिश का, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से हम बना बना के भी लिख सकते हैं एसएसटी में तो बहुत वो होता है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद नहीं है.
2: okay.
4: क्योंकि मुझे उसके जो ये डेमोक्रेसी और ये सब बताते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. कुछ समझ ही नहीं आता समाचार में.
2: समाचार समझ नहीं आता मतलब ये तो देखिए समाज से जुड़ी बातें हैं.
4: हाँ पॉलिटिकल ऐसा कुछ
2: ये सब नहीं समझ
4: पाता. समाज से जुड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं. मैं समाचार भी नहीं देखती इसलिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता.
2: ओके कोई बात नहीं. और क्या पसंद नहीं है रोशन को?
3: मेरे को हिंदी नहीं पसंद. बात करने में मजा आता है वो अलग बात है, पर लिखने में गलती होती
2: है. क्या ग्रामर जो होती है?
3: ग्रामेटिकल और मात्रा.
2: मात्रा
4: मेरी भी ऐसा ही कुछ होता है, मात्रा में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है.
5: अब तो मुझे सर ने मुझे समझा दिया कि ई की मात्रा इधर लगती है, बड़ी की मात्रा.
4: लेकिन मैं अभी तक मुझे बहुत मिस्टेक होती है, अभी तक मेरी मिस्टेक होती है हिंदी में.
2: ओके मतलब अभी
4: भी नहीं होती इतनी ज्यादा, हिंदी में बहुत होती है.
2: ओके मात्राओं की वजह से मतलब आपको बस अच्छी लगती है?
3: हाँ दीदी.
2: बाकी वो जो पैराग्राफ में आंसर क्वेश्चन ढूंढने
4: आंसर तो हो जाता है
2: आसान. और चैप्टर में जो आंसर्स लिखने होते हैं
4: वो भी माइंड में.
2: और व्याकरण?
4: व्याकरण थोड़ा हार्ड.
2: हाँ हिंदी व्याकरण थोड़ा हार्ड.
4: अब तो नहीं है नाइन्थ मेरे क्लास में.
3: हमारा ऐसा होता है कि अगर एग्जाम हॉल में जो सर रहता है उनको हिंदी नहीं पता. सर से वो कोई टफ वर्ड हो तो पूछने गए थे तो बोलते हैं नहीं मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को पढ़ना भी नहीं आता, तुम जाके बैठ जाओ.
2: ताकि वो आपको कुछ हेल्प नहीं करे ना, इसलिए कुछ नहीं बोलते नहीं होंगे. हाँ भाई अब एग्जाम में हेल्प करना थोड़ा मुश्किल है. नहीं अच्छा ये तो आप लोगों ने बात की कि आपको पसंद नहीं है सब्जेक्ट, तो अगर एग्जाम होता है और उस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है जो आपको पसंद नहीं है तो कैसे तैयारी करते हो फिर?
1: मैं तो रट लेता हूँ. मैं भी
4: पहले समझने की कोशिश करती हूँ, नहीं समझ आता तो फिर वो रटना ही पड़ता है
3: पूरा रटन रट.
2: लेकिन मैथ्स रटना तो बड़ा मुश्किल है, मैथ्स कैसे रटते हो?
4: मैथ्स तो समझते हैं, वो दो तीन बार जैसे भैया ने बोला ना वो करके देखना तो वो करके देखते हैं मैथ्स में,
2: फिर समझ में आ जाता है.
4: हाँ मतलब जो नहीं समझ आता फिर मैं उसको बार बार टीचर से पूछती हूँ, अपनी ट्यूशन टीचर.
2: ओके
5: मुझे तो जो नहीं आता मैं छोड़ देती हूँ.
2: फिर एग्जाम में क्या होता है?
5: जो जो आता है मैं लिख लेती हूँ, फिर अपनी पहले एक दिन नहीं थोड़ी देर पहले मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ ये क्या है मुझे बताओ. फिर जब टेस्ट होता है तो मुझे पता चल जाता है.
2: अच्छा मतलब आपकी फ्रेंड आपको बता देती है?
5: हाँ क्योंकि ट्यूशन वाली मैम इतनी अच्छे से नहीं समझाती.
2: लेकिन आपकी फ्रेंड अच्छे से समझाती है?
4: इसकी फ्रेंड इसको अच्छे से समझा देती है.
2: मतलब फ्रेंड को ट्यूशन टीचर बन जाना चाहिए.
1: फ्रेंड की बात दीदी जल्दी समझ आ जाती है.
2: अच्छा ऐसा क्या?
4: हाँ
2: सभी को मतलब फ्रेंड्स की बात जल्दी समझ में आती है?
4: कोई भी समझाए ना तो हमें जल्दी समझ आता है.
3: फ्रेंड्स मजाकिया तरह से बताते
2: हैं. कैसे कैसे मजाकिया तरीके से कैसे समझाते हैं?
5: मैं बताऊं,
1: मेरा फ्रेंड है, मैं जैसे मैथ्स का सवाल कोई समझ नहीं आता तो मैं कर रहा होता हूँ तो जैसे 2 से 2 कट जाता है तो बोलता है देखो इसको 2 से 2 ये मर गए, ये दोनों मर गए, अब ये बचा है ये आ गया ऐसे. मतलब उसका बहुत अच्छा तरीका है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता.
2: ओके
1: हाँ
2: और क्या रोशन, आपको कैसे लगता है, मजाकिया तरीके से समझाते कैसे?
3: केमिस्ट्री होता है जैसे कि फ्रेंड से पूछो तो ये इक्वेशन है और इसमें से ये हट गया, मतलब ये इस ये दोनों जोड़ के एक कंपाउंड बना, ये कैसे हुआ मैं पूछ रहा हूँ, तो उसने बताया कि हमारा क्लास में दो मतलब बड़े हैं, वो एक साल फेल हो गए थे,
2: ओके,
3: तो उनका एक एग्जाम्पल ले लिया और एक सबसे छोटा बच्चा हमारे क्लास में,
2: ओके,
3: बहुत छोटा, उसका एग्जाम्पल ले लिया, अब बोले ये बड़ा है, ये इसको हटा नहीं सकता, ये तो इसको लात मार के हटा देगा,
2: okay.
3: तो ये जीत गया, बस ये आ गया।
2: अच्छा
1: ऐसा ही होता है दीदी,
2: ऐसे दोस्त समझाते
1: हैं।
2: अच्छा, मतलब फिर तो याद हो जाता होगा, क्योंकि याद हो जाता होगा कि बड़ा जो है वो छोटे को है। तो फिर कंपाउंड याद हो जाते हैं केमिस्ट्री में,
4: जिसकी मात्रा कम होती है वो हट
2: प्रैक्टिकल में याद हो जाता है। तो मतलब अगर आप लोग टीचर बनोगे
4: तो बच्चों को प्रैक्टिकल
1: हमारे तो दीदी टीचर ऐसे समझाते हैं,
2: तो मतलब आप तो बच्चों को सब कुछ याद करवा दोगे फिर
4: शायद से,
2: इतने इंटरेस्टिंग तरीके से,
5: फिर तो बहुत ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए।
2: बताओ
5: मैं तो ड्राइंग सिखाऊंगी।
2: और अमन, आपने तो बताया वैसे क्या क्या टफ लगता है, तो कैसे तैयारी करते हो आप, कैसे करते हो?
4: टफ होता है तो बस मैं उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करती हूँ, उसको बहुत बार रीड करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, पहले ट्यूशन टीचर से समझती हूँ, फिर मम्मा से बोलती हूँ, मम्मा समझाती है, फिर मुझे मैं खुद से समझती हूँ थोड़ी देर तक। बहुत टफ होता है ना तो उसको बहुत बार समझना पड़ता है, लेकिन जो इजी होता है वो जल्दी हो जाता है।
2: ओके, कभी डर लगता है क्या किसी सब्जेक्ट में?
5: हाँ, मैथ्स में।
2: हाँ, क्या डर?
4: मैथ्स में थोड़ा सा लगता है क्योंकि उसके जो होते हैं ना सम्स वो गलत भी होते हैं, भले हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं फिर भी मैथ्स में बहुत डर लगता है, थोड़ा सा लगता है,
2: थोड़ा सा बहुत लगता है।
5: मुझे मतलब मुझे तो इंग्लिश में बहुत लग रहा था, फिर मेरे इंग्लिश में 9 आ गए।
2: अच्छा, कितने में से?
4: 10।
2: और फिर ठीक हो गया डर? अरे वाह,
5: क्योंकि उसमें पैसेज था, उसमें से ढूंढ ढूंढ के आंसर करने थे।
2: अच्छा, बेस्ट टीचर कौन से सब्जेक्ट का लगता है, क्या वो उनके क्या तरीका अच्छा लगता?
4: साइंस, मेरे साइंस के टीचर बहुत अच्छे।
2: ओके,
4: वो हमें मतलब समझाती है ऐसे, है ना मेरी मैम, कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल, वो ऐसे एक एक पॉइंट समझाती है हमें, बता बता के एक एक तो पैराग्राफ पढ़ाया उसका भी अंदर से पूरा पढ़ाती रहती, हिंदी में इतना अच्छे समझाती है वो।
5: मुझे हिंदी और संस्कृत के सर दोनों सर एक ही हैं।
2: मतलब क्या टीचर जब अच्छे होते हैं तो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है, ऐसा होता है क्या कभी?
4: होता है,
2: ऐसा कब हुआ आप लोगों के साथ, बताओ?
3: दीदी, जब मैं पहले स्कूल में आया था, एक मैम थे साइंस के, वो इतने अच्छे नहीं पढ़ाते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था, तब तो मैं ट्यूशन भी नहीं जाता था, कम पसंद था। जब मैं 8th और 9th, 10th में आया तो एक और मैम आए, वो स्कूल से निकल गए थे, ये मैम आए, ये मैम बहुत अच्छे, मतलब जो रियल लाइफ में होता है ना, जो अपने लाइफ में होता है उससे रिलेट करके समझाते हैं, जैसे कि कहीं अपने पेरेंट्स मतलब बड़े वाले बच्चे को मार के सिखाते हैं कि पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा, डराते हैं। मैम ऐसे समझा दी थी कि अगर डर होता है ना तो एक हार्मोन निकलता है अपने बॉडी में, उसका नाम एड्रेनल होता है, टॉपिक एड्रेनल था।
2: ओके, ओह,
3: ऐसे कोरिलेट करके वो सिखा देते थे, तो समझ में भी आता है एड्रेनल क्या है। हाँ, मार मार के डर हो जाता है, डर लिख दो।
2: तो आपको अभी तक याद है, देखो।
3: हाँ। जी,
2: क्या बात है, मतलब टीचर के कारण सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है।
1: हाँ,
2: अमन, आपके साथ भी ऐसा हुआ?
4: हाँ, मैम फिगर से समझाती हैं।
2: कैसे?
4: फिगर बनाती हैं, जैसे अभी तो मेरे लेसन में मैम ने अभी हमें टिश्यू समझा रही थी, टिश्यू वाला लेसन है बायो में, तो उसमें मैम बताती हैं कि छोटे छोटे से सेल्स होते हैं ना, उनसे मिल मिल के टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू से हमारे ऐसे से पार्ट्स बनते हैं,
2: मतलब डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं तो याद हो जाता है।
4: हाँ, वो चौक से बना के बनाती है।
2: ओके, शिवानी, आपके साथ भी ऐसा हुआ?
5: नहीं, मेरा तो हिंदी और संस्कृत, मतलब कि हिंदी और संस्कृत के दोनों सब्जेक्ट के एक ही सर है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
2: तो उसके कारण आपका सब्जेक्ट फेवरेट हो गया।
5: हाँ।
2: अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं वो इतना अच्छा?
5: वो मतलब कि पहले कहानी पढ़ाते हैं, फिर लिखवाते हैं, पहले कहानी पढ़वाते हैं, एक हम लोग की कहानी है और एक मेरी क्लास में एक लड़की है, वो कह रही है सर कितने दिन में पढ़ाओगे, अभी मैं 2 मिनट में पढ़ा के खत्म कर दूंगी, मतलब सर ना एक एक उसका पॉइंट समझाते हैं कहानी का,
2: मतलब टाइम देते हैं।
5: हाँ, वो 3 दिन में इतने पेज है कहानी के, 3 दिन में खत्म करेंगे।
2: ओह, ये बात है। और आयुष
1: दीदी, केमिस्ट्री भी मुझे अच्छी लगती है बहुत। पहले नाइन्थ में एक मैम थी, वो अच्छा नहीं पढ़ाती थी, बहुत बहुत आलसी टाइप थी। चली गई। अब हमारे जो सर आए हैं वो बहुत बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, आबू रोड के सबसे फेमस टीचर हैं।
2: ओके, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो सर कि आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा।
1: हाँ दीदी, समझ में भी आने लगा क्योंकि बहुत अच्छे से वो प्रैक्टिकल में बताते हैं। जैसे केमिस्ट्री में है कि उसको यहाँ से यहाँ तक लाना है इन्फिनिटी से, तो वो क्लास के पहले इस कोने में जाएंगे, मान लो मैं इधर इन्फिनिटी में हूँ और फिर हमें इस पॉइंट को उधर तक ले जाना है, फिर इसको ये चीज कहते हैं, इस तरीके से बताते हैं,
2: करके बताते हैं तो याद हो जाता है। ओके, वैसे लेकिन बच्चों अगर हमें अच्छे नंबर से पास होना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना।
1: हाँ दीदी,
3: हाँ दीदी।
2: है ना। तो फिर जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पे क्या करना पड़ेगा?
1: उस पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा,
2: देना पड़ेगा।
0: हाँ।
2: है ना
1: दीदी।
2: तो देंगे क्या ज्यादा टाइम?
1: हाँ मैं तो दे रहा हूँ दीदी।
2: वेरी गुड।
1: संस्कृत को याद कर रहा हूँ, जबरदस्ती याद कर रहा हूँ। मन नहीं करता है, करता हूँ करता हूँ करता हूँ, और हो भी रहा है।
2: तो बस शिवानी की तरह गाना बना लो। कैसे बनाएंगे? पठती पठतम
1: पठंती
2: पठंती
1: राम राम रामा रामम रामो रामा।
2: हाँ, और पता है रेडियो मधुबन पर पठामी संस्कृतम भी आता है।
1: हाँ दीदी,
2: उसको सुन लो।
0: हाँ, उसे संस्कृत आ जाएगी थोड़ी बहुत।
2: और नहीं तो शिवानी की मदद ले लेना, शिवानी गाने बना देगी और फटाफट संस्कृत याद कर दोगे, है ना। तो हम लोग फिलहाल तो मुझे लग रहा है आप लोगों से गुड बाय करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, आपके फेवरेट क्या है, और जाते जाते हमने जो शिवानी के तरीका था,
1: हाँ एकदम यूनिक वाला,
2: एकदम यूनिक वाला, वो गा के कैसे याद करती है वो सुनेंगे। साइंस की एक डेफिनेशन होती है मशीन की, पता है आप लोगों को? सबने पढ़ी होगी मशीन क्या होती है, पर आज लग हाँ याद नहीं है ना। अब देखो अब शिवानी याद करा देगी हम सबको।
1: ओके,
0: कंप्यूटर में होता है ना मशीन, तो
2: सुन लेते हैं शिवानी की पहले। ओके,
5: ए सिंपल मशीन इज ए डिवाइस दैट कैन चेंज द डेकोरेशन और द मैग्नीट्यूड।
2: अब हम लोग सब लोग एक बार ट्राई करते हैं शिवानी के साथ, एक एक लाइन। शिवानी एक एक लाइन गाना, हम भी साथ में गाएंगे।
5: ए सिंपल मशीन इज ए डिवाइस,
6: a simple machine is a device
5: that can change the decoration,
6: that can change the decoration
5: or the magnitude,
6: or the magnitude।
2: अब एक बार पूरा करके देखते हैं, चलो। चलो एक बार पूरा।
6: A simple machine is a device that can change the decoration or a magnitude।
2: Yay!
1: Thank you Shivani।
2: तो आज हमें मशीन की डेफिनेशन तो याद हो गई, और शिवानी को तो सच में थैंक यू कहना पड़ेगा। थैंक यू शिवानी।
0: थैंक यू शिवानी।
2: तो चलो बच्चों, इसके साथ फिलहाल हम आपसे लेते हैं बाय बाय कहना पड़ेगा। तो बाय बाय बच्चों।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 8वां पाठ, मच्छरों की दावत, मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जस कीरत बोली, घर पर तो खूब खेलते होंगे। रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून भी टेस्ट करवाना पड़ा। जस कीरत बोली, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत बोला, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बोली, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत बोला, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत बोली, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोली, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत बोला, होते तो अलग अलग होंगे। नैन्सी बोली, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत बोला, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहां काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी बोली, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? पता करो, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है और क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। यहाँ एक चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें ली जा रही हैं जिससे खून की जांच होती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। एक और चित्र है, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं।

कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। पृष्ठ 69। यहाँ रजत ने जो डॉक्टर से जांच करवाई थी उस रिपोर्ट का चित्र छपा है। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? रिपोर्ट में लिखा है, नाम रजत, आयु 11 वर्ष, स्त्री या पुरुष, पुरुष, रोग की पहचान, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। एनीमिया क्या है? आरती कहती है, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था। सिरिंज यानी इंजेक्शन भरकर खून लिया था। जांच में तो एनीमिया निकला। रजत ने पूछा, वह क्या होता है? आरती बोली, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी बोली, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत बोली, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है। पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। पृष्ठ 70। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007, दिल्ली। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। बताओ, यहाँ आरती के खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। पहली रिपोर्ट है 20 जून 2007 की। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन 8 है और रिपोर्ट में लिखा है, नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। दूसरी रिपोर्ट 15 सितंबर 2007 की है। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन है 10.5 ग्राम और रिपोर्ट में लिखा है, नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। अब आप बताओ, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी? कब और क्यों? पृष्ठ 71। खून टेस्ट से क्या पता चला था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो, किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीजों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे। जसकीरत बोली, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। पोस्टर में कुछ चित्र हैं, जैसे डिब्बा, कूलर, हैंडपंप और पौधे, जहां आसपास पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टर में लिखा है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान,
मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पृष्ठ 72। रजत बोला, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? नैन्सी बोली, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये देखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती बोली, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी ने कहा, हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत बोला, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी बोली, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत बोली, मुझे शाजी आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत बोला, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? बताओ बताओ, क्या तुमने कोई ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है जिसमें मक्खी मच्छर से बचाव के तरीके बताए हों? ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियां क्या क्या खाती होंगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? पृष्ठ 73। पता करो, मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे दो या तीन समूहों में बंट जाएं। समूहों को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियां बंद हैं? अगर हाँ तो सही का निशान लगाओ। गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियां या और कोई जगह। यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है? इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या क्या नजर आ रहा है? इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? लिखो। पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहां पानी इकट्ठा होता है साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। पता करो, तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है? यह कौन से दफ्तर में जाएगी? अपने कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। पृष्ठ 74। सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं, आओ इन्हें पढ़ें। समूह एक। हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई कहते हैं, जो एक तरह के पौधे होते हैं।
काई से वहां फिसलन भी ज्यादा थी।

लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसीलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करो, उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उगाए हैं? पानी में और क्या क्या दिख रहा है, सूची बनाओ। यहाँ रोनाल्ड रोस एक वैज्ञानिक की फोटो छपी है। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। पृष्ठ 75। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थीं। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थीं। गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। हम क्या समझे? अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हों, उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं? मच्छरों की दावत। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 8वां पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

नमस्कार, आप सुंदर रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं 29 जुलाई के कुछ बातों से रूबरू कराते हैं। और 29 जुलाई अपने आप में एक खास दिन है और आज विशेष बाबा साहेब पुरंदरे इनका जन्मदिन है। सी नारायण रेड्डी और उत्पल कुमार सिंह इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ JRD टाटा का भी आज जन्मदिन है। तो कोशिश करूंगा कि आपको कहानी बढ़िया से सुना पाऊँ इन सभी का। और इसके साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जॉनी वॉकर, गायत्री देवी, अरुणा असफ अली, स्नेहमयी चौधरी, वसुंधरा कोम कली, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलके। और चलिए एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम जैसे हमेशा करते हैं हम वैसे ही करेंगे। और आप शाम का समय है, 4 बज चुके हैं और चाय का टाइम हो गया है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास ऑप्शन है, चाय भी पी सकते हैं आप, पानी भी पी सकते हैं, चॉइस इज योर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि विचारों में सुविचार ये है कि भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच में भी है ना। आप सुनाए हैं रेनिवाद 107.8 FM पर सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके लिए खास। सुनते रहो।

0: जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए एक लेजेंडरी के बारे में बात करते हैं अभी, JRD टाटा के बारे में। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहूँगा, भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध उद्योगपति, आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्तियों में JRD टाटा का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने ही पहली विमान सेवा टाटा एयरलाइंस शुरू की थी, जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गई। इस कारण JRD टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। तो है ना कमाल की बात। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति की कहानी आपको सुनाएंगे अभी, और वो भी RJ कार्तिक के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी में एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, साधारण पैंट शर्ट पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले, लेकिन दिखने में काफी विद्वान लग रहे थे, काफी पढ़े लिखे लग रहे थे। उस फ्लाइट में तकरीबन सबने पहचान लिया था कि ये बंदा दिलीप कुमार है, लेकिन जो पास में बैठे थे वो मुझसे बेखबर थे। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे देख करके कोई उन्होंने खास रिएक्शन दिया नहीं। जब चाय आई तो चाय पीने लगे, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे हेलो कर लिया, उन्होंने भी स्माइल की और हेलो किया। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। तो मैंने जब बातचीत आगे बढ़ाई और फिल्मों की बात आई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप फिल्में देखते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभार देख लेता हूँ, बहुत पहले एक फिल्म देखी थी। इस बात पर मैंने उनसे कहा कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं एक्टर हूँ। वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है। ये बातचीत चलती रही, फ्लाइट लैंड हुई, जब हम बाहर निकलने वाले थे एयरपोर्ट से तो एक बार फिर से मैंने उनसे उन्हें ग्रीट किया, अभिवादन किया और उनसे कहा मेरा नाम दिलीप कुमार है। वो जो सज्जन थे उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा मेरा नाम JRD टाटा है। जिस एयर इंडिया की फ्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा था उसके कर्ता धर्ता मेरे पास में बैठे हुए थे। उस दिन मुझे समझ में आया कि दुनिया में आप चाहे जितने बड़े बन जाएं, हमेशा विनम्र बने रहिए, क्योंकि आपसे भी बड़ा इस दुनिया में मौजूद है। इतने महान थे JRD टाटा। आइए आज उन्हीं की बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है RJ कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज हम बात करेंगे JRD टाटा यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की, जो 29 जुलाई 1904 को फ्रांस के पेरिस में पैदा हुए, जिनके फादर का नाम रतन दादा भाई टाटा था और माँ उनकी फ्रांस की रहने वाली थी, सुजेन ब्रीडे। उनकी माँ क्योंकि फ्रांस की रहने वाली थी इसलिए उनकी पहली लैंग्वेज फ्रेंच बन गई। JRD टाटा ने मुंबई से पढ़ाई की, उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। वो कई डेकेड्स तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे। स्टील की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, होटल की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, उन्होंने टाटा ग्रुप के अलग अलग बिजनेस को इंडिया में डेवलप किया। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। सिर्फ 34 साल की उम्र में 1938 में वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे और 1991 तक बने रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 14 अलग अलग टाटा की नई कंपनीज की शुरुआत की थी। उन्हें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, भारत रत्न, उससे भी नवाजा गया। वो इंडिया के पहले पायलट थे। भारतीय वायुसेना ने उन्हें 1974 में एयर वाइस मार्शल पद से भी नवाजा। तो आइए बात करते हैं उन 5 बड़ी बातों की जो हम सीख सकते हैं JRD टाटा साहब की लाइफ से। सीखने वाली पहली बात JRD टाटा साहब से, कभी भी सेकंड बेस्ट से सेटिस्फाई मत होइए, हमेशा नंबर 1 का पीछा कीजिए, परफेक्शन के पीछे भागिए। JRD टाटा अपनी लाइफ में यही करते रहे। एयर इंडिया 40s और 50s के बीच में कहा जाता है कि अपनी पंक्चुअलिटी और हॉस्पिटैलिटी के लिए जानी जाती थी। टाटा एयरलाइंस जो कि बाद में एयर इंडिया बन चुकी थी, उसके मालिक थे JRD टाटा। मालिक होने के बावजूद, क्योंकि वो भारत के पहले पायलट थे, वो अपने प्लेन्स खुद उड़ाना पसंद करते थे। हर 15 दिन में एक फ्लाइट वो लेते ही लेते थे और इससे वो मैसेज देना चाहते थे पूरी टीम को कि मैं खुद भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, तो आपको तन मन धन के साथ में लगना है और इस एयरलाइंस को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है। पंक्चुअलिटी के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में JRD टाटा का कोई तोड़ नहीं था। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है, कैप्टन विश्वनाथ उनके को पायलट थे, एक बार जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने को पायलट से पूछा कि इस वक्त ग्राउंड स्पीड क्या है। तो कैप्टन ने कहा कि 145 माइल्स पर आर पर हम उड़ रहे हैं। जेआरडी टाटा उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की और बताया कि 145.5 माइल्स पर आर की स्पीड से हम उड़ रहे हैं। इतने एक्यूरेट थे जेआरडी टाटा। दूसरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है जेआरडी टाटा साहब से, सलाह मानिए और चेंज लाने से डरिए मत। इन्फोसिस की को फाउंडर और फाउंडर नारायण मूर्ति सर की जो वाइफ हैं सुधा मूर्ति मैम, उन्होंने अपनी बुक द लास्टिंग लेगेसी में घटना का जिक्र किया। वो कहती हैं कि वो जमाना था जब महिलाओं को ज्यादा नौकरी नहीं दी जाती थी। इंजीनियरिंग की बात करें तो लड़कियों को इंजीनियरिंग नहीं करने दिया जाता था, उन्हें मैथ्स में कमजोर माना जाता था कि ये तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। सुधा मूर्ति मैम 600 स्टूडेंट्स के बैच में इकलौती लड़की थी और टॉपर थी। तब उनका नाम शादी से पहले सुधा कुलकर्णी था। तो टाटा मोटर्स में जो कि टेलको भी जिसको कहते हैं, उसमें इंजीनियरिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली, और जब वैकेंसी निकली तो उसमें साफ साफ पुरुषों के लिए ऐसा लिखा हुआ था। इस बात से सुधा मूर्ति मैम गुस्सा हो गई और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी जेआरडी टाटा साहब को, कंपनी के मालिक को। टाटा साहब का बुलावा आया और इंटरव्यू के बाद इन्हें नौकरी पर रख लिया गया। ये टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति मैम जब ये किस्सा शेयर करती हैं तो बताती हैं कि जेआरडी टाटा साहब जो हैं वो कितने खुले विचारों के थे, वो सलाह का स्वागत करते थे। एक और किस्सा उन्होंने शेयर किया कि जब वो बॉम्बे हाउस में थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी नारायण मूर्ति सर का, और अकेली खड़ी हुई थी, तब बाई चांस वहां से जेआरडी टाटा साहब भी निकल रहे थे। वो रुके, उन्होंने बात की और कहा कि क्यों आप अकेली खड़ी हुई। उन्होंने बताया कि मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तो जब तक नारायण मूर्ति सर नहीं आ गए, जेआरडी टाटा वहीं खड़े रहे, बात करते रहे ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, वो वहां डर महसूस ना करें। जेआरडी टाटा साहब ने इनफैक्ट जब सुधा मूर्ति जी ने नौकरी छोड़ी थी तब भी एक अच्छे से रिएक्शन देते हुए उन्हें कहा था कि आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, आप जाइए, आप अच्छे से काम कीजिए। आज भी सुधा मूर्ति मैम के कैबिन में टाटा साहब की तस्वीर रखी हुई है। ये बताता है कि कितने इंस्पिरेशनल बॉस थे, कितने इंस्पिरेशनल लीडर थे जेआरडी टाटा साहब। सीखने वाली तीसरी बात, जितनी बड़ी रिस्क होगी सक्सेस भी उतनी ही मिलेगी। जेआरडी टाटा ने उस समय में अलग अलग कंपनीज शुरू की जिस समय में उन सेक्टर्स में जाने से कंपनीज बच रही थी। लोगों को लग रहा था कि इसमें जाएंगे तो घाटा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उतनी ही बड़ी रिस्क ली। मैंने बताया आपको कि 14 अलग अलग कंपनीज उन्होंने शुरू की थी अपने टेन्योर में। 1939 में जो टाटा ग्रुप मात्र 62 करोड़ का था, वो 1990 आते आते 10,000 करोड़ का बन चुका था। ये विजन था जेआरडी टाटा का। वो कहते थे कि रिस्क जितनी बड़ी लोगे उतनी ही लाइफ में सक्सेस बड़ी पाओगे। चौथी सबसे बड़ी बात जो जेआरडी टाटा सिखाते हैं, अपनी टीम को साथ लेके चलिए, सोसाइटी का, अच्छी सोसाइटी का निर्माण कीजिए। ये जो आजकल सुनने को मिलता है कि सीएसआर एक्टिविटीज कंपनीज करती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, जो आजकल एक नया डिपार्टमेंट आ गया है ह्यूमन रिसोर्स, ये एचआर जो टर्म है कॉइन हुई थी, ये सीएसआर टर्म कॉइन हुई थी, उससे पहले ही जेआरडी टाटा अपनी कंपनी में इन सारी बातों को शामिल कर चुके थे। एम्प्लॉयज के बेनिफिट को हमेशा आगे रखने के मामले में उनका नाम आता है, चाहे पेड लीव्स की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, अलाउंस की बात हो, जेआरडी टाटा हमेशा अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचा करते थे। जो डायनेस्टी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको उन्होंने मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस में तब्दील कर दिया था। जेआरडी टाटा साहब एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखते थे कि जब कभी वो कार से जा रहे होते थे ऑफिस और उन्हें कोई एम्प्लॉय दिख जाता था, उसे गाड़ी में बिठा लेते थे, कहते आ जाओ साथ में चलते हैं। तो इतना ख्याल रखते थे जेआरडी टाटा अपने एम्प्लॉयज का। अगर आपको एक अच्छी कंपनी बिल्ड करनी है, अगर आपको एक अच्छा समाज बनाना है, तो सबको साथ में लेकर के चलना। और आखिरी पांचवी सबसे बड़ी बात जो जेआरडी टाटा साहब से सीखने को मिलती है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे ही अपनी स्ट्रेटजीज तैयार कीजिए, आपकी ताकत से ही अपनी प्लानिंग जो है आगे की वो करना शुरू कीजिए। जेआरडी टाटा साहब के पास जब एयर इंडिया थी तो एयर इंडिया के पास में सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेन्स थे, 3 पायलट थे, 3 इंजीनियर थे, इतना कम स्टाफ था, इतने कम रिसोर्सेज थे। उन्हें मालूम था कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन से हम कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम पंक्चुअल रह सकते हैं, एक्यूरेट रह सकते हैं, और हम हॉस्पिटैलिटी के मामले में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर जेआरडी टाटा ने फोकस किया। एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 11 बजे लैंड करती थी। एक किस्सा बड़ा फेमस है कि वहां एक ऑफिशियल ने दूसरे से पूछा कि भैया टाइम क्या हुआ है, तो उसने बिना घड़ी देखे कहा कि 11 बजे। तो उसने कहा तुमने घड़ी भी नहीं देखी, तो उसने कहा दिख रहा है सामने एयर इंडिया का प्लेन आ चुका है, इसका मतलब 11 बज चुकी। इतने जो है एक्यूरेट थे जेआरडी टाटा अपनी एयरलाइंस को लेकर के, इतनी टाइम पर उनकी फ्लाइट्स पहुंचा करती थी, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के वो लाइफ में आगे बढ़ते रहे। जेआरडी टाटा साहब को ना सिर्फ भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बल्कि फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जब भारत रत्न की घोषणा हुई, रतन टाटा साहब ने बताया कि आपको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो जेआरडी टाटा साहब ने रतन टाटा से कहा कि रतन मैंने ऐसा क्या कर दिया, जरूर मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, लेकिन वो तो भारत का कोई भी नागरिक होता तो उसे भारत के लिए अच्छे ही काम करने थे। इतने साधारण थे, इतने महान थे जेआरडी टाटा। जब वो अपने अंतिम क्षणों में थे, जीवन के अंतिम पल जी रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आई एम अबाउट टू डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूं और ये रोचक रोमांचक होने वाली है। जो व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हो और मृत्यु के पार अगले जन्म को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा हो, वो हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जितना अंधेरा आ जाए, आपको वो जो उम्मीद की किरण है उसे नहीं छोड़ना। और आखिरी में जेआरडी टाटा साहब ने बड़े कमाल की बात कही कि पैसा खाद की तरह होता है, आप इसका ढेर लगा देते हैं तो ये बदबू मारने लगता है, लेकिन इसे फैला देते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। कि जैसा
1: तो है ना मजेदार किस्सा, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम का, सुनते रहो मस्कर रात।

0: आशा तृष्णा ना मरे युके गए साहिब कबीर। कबीर कमाई आपकी कबू निष्फल ना जाए, सो को साधुर बसेरे मिले गाड़ी आए। कबीर कमाई क्या करे बड़े हरि न पूरे आस, फोंदो देवे हाथ कोरे टूटे हाथ पसास।
1: अरे भाई

0: भगत विशल भगवान की जय हो।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए, जेआरडी टाटा के बारे में जानने के बाद आइए अब एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, उत्पल कुमार सिंह के बारे में। जी हाँ, लोकसभा के ये महासचिव है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। उत्पल कुमार सिंह 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 1 दिसंबर 2020 से अपना जो है प्रभार ग्रहण किया है इन्होंने और विशेष ने लता श्रीवास्तव की जगह ली है। तो इनके बारे में बात करते हैं अभी, और ये विशेष समृद्ध और विविध प्रशासनिक अनुभव इनके पास है 34 वर्षों का। और वरिष्ठ सिविल सेवक उत्पल कुमार सिंह ने केंद्र और राज्य सरकारों में अर्थव्यवस्था और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एक अच्छा अनुभव इनके पास रहा है। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में 2.5 वर्षों से भी अधिक समय तक अपना कार्यकाल को उत्पल कुमार ने राज्य और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विशेष नीति रूपण और दक्षता पूर्वक कार्य संभाला है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव का पदभार संभालने के पूर्व उन्होंने उत्तराखंड सरकार में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित विभिन्न वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उत्पल कुमार सिंह ने केंद्र में भी कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के अपार सचिव सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इससे पूर्व वह लोकसभा सचिवालय के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और 29 जुलाई 1960 को इनका जन्म आज ही के दिन हुआ, मलई गांव बाराहट प्रखंड जिला जमुई बिहार में। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें इनके बारे में, उत्पल कुमार सिंह के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपके शाम को और सुंदर और रंगीन बनाने के लिए, ये गीत सुनते रहो।
4: सतगुरु मारा बाणिया और भिणज करे बेपारी,

अरे ऊपर गिरते गलावना खीर खांडरा इमरत भोजन संतो ने जी मावना, खीर खांडरा इमरत भोजन संतो ने जी मावना। सतगुरु आया पावना, परमेश्वर आया पावना, आज रे आनंद भयो मेरा सतगुरु आया पावना। हरि मोर मुकुट पीतांबर सोवे बंसली बजावना, मोर मुकुट पीतांबर सोवे हरि बंसली बजावना। कालिंदी में कूद पड़ा भई नागनाथ घर लावना, कालिंदी में कूद पड़ा भई नागनाथ घर लावना।

रे आप पधारा बावन रूप धरावणा, बलि रे द्वारे आप पधारा बावन रूप धरावणा। सतगुरु आया पावणा, परमेश्वर आया पावणा, आज रे आनंद भयो मेरा सतगुरु आया पावणा। हरि सतगुरु सरणे अड़सठ तीरथ,

0: गुरूर सरणी बाई मीरा बोले हरि गुण गाविणा। सतगुरु सरणी बाई मीरा बोले हरि गुण गाविणा। सतगुरु आया पावणा परमेश्वर आया पावणा। आज रे आनंद भयो मेरा सतगुरु आया पावणा। आज रे आनंद भयो मेरा दिन गुरु आया पावणा।
1: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी के बारे में बात करते हैं। ये एक विशेष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि हैं और अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक जाने माने कवियों में से एक है। वे 5 दशकों से अपनी अधिक समय तक काव्य रचना में लगे रहे हैं। अब तक उनकी 40 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कविता, गीत, संगीत, नाट्य और नाट्य निबंध यात्रा संस्करण और गजलें मौलिक तथा अनुदित शामिल हैं। 1997 में सी नारायण रेड्डी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। तो आइए इनके बारे में और बातें जानने की कोशिश करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और सिंगर रेड्डी नारायण रेड्डी जो है 29 जुलाई 1931 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य तेलंगाना राज्य के दूर दराज के गांव हनुमा जी पेट के एक कृषक परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई और फिर वहीं पर इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। किशोरावस्था में उन पर लोक गीतों का तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्रचलित हरिकथा, भागवत आदि लोक शैलियों की गहरी छाप पड़ी और वे संगीत प्रेमी और सुमधुर कंठ के स्वामी बन गए, जिसका ये अपने काव्य पाठकों को पूरा लाभ मिलता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। चलिए एक और गीत आपके लिए खास, सुनते रहो मस्कराते।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए अब बात करते हैं एक और ख़ास मेहमान के बारे में, और आशा करूंगा आप उनके बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और विशेष पुरंदरे साहिब के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है बाबा साहेब पुरंदरे। जी हाँ, शिवाजी महाराज की कहानी को इन्होंने जिस ढंग से, जिस रूप से रखा, वो सबके लिए जो है विशेष रहा। और आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। और बाबा साहेब पुरंदरे के बारे में अगर आपको मैं कहूँ तो ये शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। मराठी साहित्यकार, नाटककार, इतिहासकार, लेखक, वे शिवाजी से संबंधित इतिहास शोध के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं। प्रसिद्ध नाटक जानता राजा, विवेकशील राजा उनकी ही कृति है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया था। भारत सरकार द्वारा बाबा साहेब पुरंदरे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आइए ऐसे शोधकर्ता और लेखक की कहानी को आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: सौ वर्ष का एक अद्वितीय शताब्दी पुरुष श्री बलवंत मुनीश्वर पुरंदरे, जिन्होंने शिव चरित्र ऐतिहासिक दस्तावेजों से निकालकर सामान्य लोगों के दिलों में बसाया। एक ऐसा शिव चरित्र जो संदर्भ पूर्ण है, रोमांचकारी है, समझने में सरल है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दीप स्तंभ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस चरित्र में क्या कुछ नहीं है। नवरसों के साथ बाबा साहेब पुरंदरे ने इस शिव चरित्र को एक नए दसवें रस में गाया है, राष्ट्र चेतना रस। शायद इसी कारणवश देश के अन्य तथा कथित वामपंथी इतिहासकारों ने उन्हें कभी मान्यता नहीं दी। वास्तव में पुरंदरे इन सभी इतिहासकारों के समझ के परे हैं। ओम भवती भिक्षाम देही कहते हुए अनेक ऐतिहासिक घरानों, मंदिरों और गांवों में इतिहास के दस्तावेजों को ढूंढते हुए सह्याद्री के पहाड़ों, जंगलों में गर्मी, सर्दी, वर्षा, दिन रात की परवाह न करते हुए ये अनवरत अथक भ्रमंती 7-8 दशकों की एक तपश्चर्या है। छत्रपति शिवराय के पदस्पर्श से पावन ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां बाबा साहेब स्वयं न गए हों। उन्हें ब्रह्म लीन हुए अब करीब एक वर्ष हो चुका है, किंतु बाबा साहब पुरंदरे हमारे लिए सदा जीवित हैं। जानता राजा में, शिव कल्याण राजा में और राजा शिव छत्रपति में। प्राच्यम इन 100 साल के इतिहास पुरुष का उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर श्रद्धा पूर्वक नमन करता है।
1: तो ये थी कहानी बाबा साहेब पुरंदरे जी के बारे में, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम उनके बारे में सुनते हैं। और ये महाराष्ट्र में मुंबई में रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी काफ़ी बार जो है इनका आना जाना रहता ही है। तो ऐसे महान विभूति 29 जुलाई 1982 को उनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 2021 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बात।

लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जिसकी फित हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, एक महान व्यक्तित्व ने कहा था कि वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। यानी कि हम युवाओं के लिए भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन युवा ऐसे बना सकते हैं जो भविष्य का निर्माण करें। और ऐसा भविष्य अगर हम चाहते हैं जिसमें समानता हो, जिसमें सहजता हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो, जिसमें उन्नति हो, तो यूथ की बात सुनना, उनके मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत एक युवा देश है और आज इस युवा मंच में हमारे साथ मौजूद है युवा साथी जिनका नाम है राजेश। अब उनसे बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन परिचित होंगे वो लोग जो लगातार रेडियो से जुड़े रहते हैं। राजेश, आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते राजेश। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। मेरा एजुकेशन बैचलर इन रूरल स्टडीज फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ है। बैचलर इन रूरल स्टडीज अर्थात ग्रामीण अध्ययन, गाँव के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे हम गांव को एक गांव बना सकते हैं जो वास्तविक अर्थों में एक गांव होता है। और मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक लीडरशिप किया ऋषिहूड यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा से। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन भी कर रहा हूं और मैं सेवा से जुड़ा हूं, जैसे एनवायरमेंट के लिए प्लांट लगाना और वाटर कंजर्वेशन हुआ, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कई छोटे छोटे काम मैं अपने स्तर पे और कई मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैं ये काम करता हूँ। धन्यवाद
0: राजेश। सबसे पहले तो हमने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हम जब युवाओं की बात करते हैं तो एक पिक्चर लोगों के मन में आती है कि वो गांव से दूर जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, ये गांव में रहेंगे नहीं रहेंगे, या अपॉर्चुनिटीज के लिए भी उनके पास रीजन भी है। लेकिन आपने जो पढ़ाई चुनी वो आप गांव की बातें कर रहे हो और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। आपने एक स्टेटमेंट कहा कि गांव को गांव बनाना
1: जी।
0: तो मैं जानना चाहूंगी कि ये टॉपिक, मतलब या ये विषय पढ़ाई के लिए आपने क्यों चूज किया?
1: एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंट था, नया सब्जेक्ट था। यूजीसी ने इसने 2016 में यूजीसी इस प्रोग्राम को लेके आई और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिक्स, वही अकाउंट्स, वही बिजनेस स्टडी पढ़ना, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीजें पढ़ने में। मतलब था एक इंटरेस्ट कुछ चीजें पढ़ने में जानने के लिए, बट वो इंटरेस्ट सोच रहा था कुछ नया किया जाए। तो एज ए मैं यूनिवर्सिटी विजिट किया वहाँ का, पहले तो उस यूनिवर्सिटी में इतना एक चुंबकत्व था तो मुझे खींच लिया, तो वहाँ से मैंने उसे मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे पोटेंशियल लगा वहाँ पे। तो एक नया प्रोग्राम आया, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, चार्टेड अकाउंटेंट थे तो बोले कि नया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं इसमें, उसका एक पैम्पलेट देखा, उसमें देखा एग्रीकल्चर ऊपर में था और इकोनॉमिक्स था, मेरे दोनों ही सब्जेक्ट इंटरेस्टेड थे। हाँ, जबकि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड नहीं था बट इंटरेस्टेड था मैं उसके बारे में जानना के लिए और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जबकि वो दो सब्जेक्ट ही देखे थे, बाकी तो गांव के बारे में तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, जैसे
0: अच्छा।
1: हाँ, हॉर्टिकल्चर्स के बारे में था उसके बारे में, और प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन प्लांट्स के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, तो एक गांव से जुड़ी हुई सारी स्टडी, होल स्टडी होती है उस प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी। तो मैंने तो एक साल ये चीजों को समझने में ही मतलब यूज किया कि कैसे हम चीजों को समझे पढ़ाई के लिए। जब एक साल के बाद तो ऐसा हुआ कि इतना अटैचमेंट हो गया प्रोग्राम से, इतना इंटरेस्ट आ गया, तो शायद मुझे लगता कि और प्रोग्राम करके मुझे नहीं आता।
0: Okay.
1: तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा और डिफरेंट जुड़ा, तो मेरी कनेक्टिविटी बहुत हो गई। आज तक मतलब मुझे सबसे 3 सालों प्रीसियस लगते अपनी लाइफ के, क्योंकि लगता है कि जीवन में उस टाइम में मैंने प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली बहुत कुछ सीखा और इतना मजा आया इंटरेस्टेडली, और उसको मैं इतना कनेक्टेड और टच फील करता हूँ।
0: ओके राजेश, ये 3 साल का कोर्स है
1: जी,
0: ना ग्रेजुएशन है
1: जी,
0: तो क्या है कुछ सब्जेक्ट्स उसमें, क्या पढ़ाई होती है, थोड़ा सा आप और बताएंगे?
1: जी, ये नया प्रोग्राम है बट इसमें अभी हमारे 6th बैच या 7th बैच चल रहा होगा, तो कुल मिला के इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और 4 सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर होते हैं, और उसके साथ में जी जेनिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट जाके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ द रूरल स्टडीज, ग्रामीण अध्ययन का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ एक सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर तक। तो ऐसे ही मैंने जैसे 2 सेमेस्टर मैंने योग पढ़ा, 1 साल मैंने टूरिज्म के बारे में जाना इंडिया का टूरिज्म कैसा, उसका बेसिक थिंग्स, तो ये तो जेनिक लेक्टिव। इसके साथ हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ते हैं। आप अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे स्किल एनहेंसमेंट मैंने एक थेरेपी सीखी, एक्यूप्रेशर, यज्ञ थेरेपी। हम कैसे एक्यूप्रेशर दे सकते हैं लोगों को, अपना कैसे एक्यूप्रेशर से ठीक सकते हो, बेसिक हम चीजें सीख सकते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट में दूसरे भी कोर्स है, जैसे हैंडमेड पेपर बनाना और स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, फ्रूट प्रोसेसिंग हुआ, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स हुआ, और जो सेकंड सेमेस्टर होते हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटेड टू रूरल स्टडीज, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर होता है, मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसमें आ जाता है मैनेजमेंट के पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप पढ़ते हो, एनजीओ मैनेजमेंट आता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो, कम्युनिटी के बारे में आप स्टडी करते हो, डेवलपमेंट क्या से जो सारी चीजें जुड़ी है उसके बारे में पढ़ते हो टोटली।
0: बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, जितना थ्योरेटिकली पढ़ते हो उतना प्रैक्टिकली आप करते हो।
0: प्रैक्टिकली कैसे?
1: जैसे सपोज कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकली लगता है। प्रैक्टिकली ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन विजिट करवाया जाता है।
0: ओके,
1: ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के विजिट के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से मिलते हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को, स्ट्रक्चर पार्ट को समझते हो, वहाँ के जो काम कर रहा है उसके बारे में सारी चीजें जान लेते हो। एचआर का जो काम होता है उसको सारे चीजों को आप होल लेवल अपने समझ। दूसरा एक और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो हर जहाँ चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक स्किल सीखनी पड़ती है। जैसे मैंने वर्मी कंपोस्टिंग सीखा पूरी तरीके से, कैसे उसको बनाते हैं छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। जैसे ये कि मैंने वर्मी कंपोस्टिंग में करता तो नहीं हूँ, ठीक है, जितना मेरा ये है कि कोई मुझे हेल्प लेता है तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ, विजिट करता हूँ, उसको हेल्प देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा और करिए, कैसे मार्केटिंग कर सकते इसकी, कैसे आप इसको बना सकते अच्छे से या सही नहीं बन रहा है, तो मुझे कोई चीज की भी लगता है कि मुझे नहीं जानकारी है तो मैं वापस अपने एक्सपर्ट टीम या फिर मेरे टीचर लोगों से पूछता हूँ। तो ऐसे करके सारी चीजें मैं जानकारी लेता हूँ और ऐड करता जाता हूँ एज ए स्टूडेंट। मुझे आज ही लगता है मैं हमेशा स्टूडेंट हूँ उस सब्जेक्ट का, तो लर्निंग मेरी ग्रोथ होती रहती है हमेशा और उसको प्रैक्टिकली बांटता रहता हूँ खुद के थ्रू।
0: अच्छा राजेश, जैसा आपने बताया कोर्स में बहुत कुछ है जो आपने सीखा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं
1: जी,
0: तो आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में या प्रोसीजर क्या होता है, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ, कुछ उसके बारे में बताएंगे। यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में भी एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं।
1: जी, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो शांति कुंज हरिद्वार में है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, और सब्जेक्ट का नाम है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो स्कूल के अंदर वो प्रोग्राम आता है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और ये 3 साल का प्रोग्राम है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 साल का प्रोग्राम हो गया है, जिसमें आपका मास्टर भी इंक्लूडेड रहता है, तो इसमें और पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है रिसर्च के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई डेफिनेटली। मोस्टली फोकस ये किया जाता है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, कि एक गांव में जाके हम एंटरप्रेन्योरशिप करें और ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करें जॉब गेनिंग की वजह, तो यही उद्देश्य रहता है इस प्रोग्राम का मेनली। फिर भी कोई भी आप अपना जॉब भी लेना चाहते हैं एनजीओ में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको पूरा फुल्ली सपोर्ट किया जाता है।
0: ओके
1: जी।
0: अच्छा, एडमिशन कैसे होता है?
1: हाँ, जी मैं वो भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। एडमिशन के लिए ये है कि ऑनलाइन फॉर्म निकाला जाता है, जिसमें आपको पहले सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ऑफलाइन भी भर सकते हैं वहाँ जाके। आप एक बार विजिट करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का नॉर्मल जीके होता है और उसके PYQ आपको मिल जाएंगे, और 20 मार्क्स का आपका होता है रीजनिंग और मैथ्स, और 20 मार्क्स का यूनिवर्सिटी के बारे में होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप मैन तो है ना, यूनिवर्सिटी आपको बना रही है तो उसकी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, तो आप कोर वैल्यूज से एडजस्टमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कितना समझते हो, तो जितना ज्यादा समझता है वहाँ के और भी एडजस्ट कर सकता है, तो एक संभावना रखी जाती है मोटा मोटी।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो 20 मार्क्स का एड किया जाता है कि बच्चा उससे पहले कितना परिचित है, और इतना भी वो नॉर्मल होता है, इतना कोई होता नहीं, आप जाके एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी 20 मार्क्स का। तो क्योंकि वो एक पूरा अलग सिनेरियो यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि वो अपने आप में एक, मैं यूनिवर्सिटी बाद में कहता हूँ, पहले तो आई एम टेलिंग द मदर, मैं उसको हमेशा माँ कहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: क्योंकि शायद मदर एक फील करती है ना, शायद वो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे बार बार जाने का मन करता है, और एक माँ से जो सीखने को मिलता है वो यहीं सीखने को मिलता है। तो ये उसका आपका फिर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं, 10 से 15, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। फिर आपको इंटरव्यू में ही ये जाना जाता है कि आप इसके लिए कितना इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, और आपकी बेसिक देखा जाता है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, कितने आप कैपेबल हो, वो सारी चीज़ें, और मेन बात है आप इंटरेस्टेड कितना हो। तो सारे इंटरव्यू में सारी बातें, एक इंटरव्यू जो फॉर्मली रूप से होता है उसमें व्यक्तिगत रूप से सब समझने की कोशिश की जाती है।
0: आपको याद है आपसे क्या सवाल पूछे गए थे?
1: हाँ, मेरे को तो एक तो मेरा जो बेसिक मैं जहाँ से पढ़ा था उसके बारे में पूछा, कि उससे बारे में इसलिए पूछा कि चीज़ें तो हमें इंटरव्यू दे रहा था, एग्ज़ाम मार्च में थे तो इंटरव्यू में कम से कम दे रहा था 3.5 महीने बाद, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ सारी भूल गया हूँ। फिर भी मैंने बताई, याद था मेरा, मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो रिफ्लेक्ट करता है डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि आप इस कोर्स के लिए कितने क्यों इंटरेस्टेड है, बस मैंने ये कि ये प्रश्न ये होता है आप ये करना क्यों चाहते हैं।
0: आपने क्या बोला था?
1: मैंने कहा बस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं नया सीखना चाहता हूँ और मैं इस बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं जब हर यूथ से बात करता हूँ कि गाँव के बारे में, तो बोलते हैं कि रियलिटी इज द गाँव, गाँव ही असली जिंदगी है, वो बोलते हैं हमेशा, बट वो गाँव में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। कि ऐसी है कि सपोज मैं आज गांव में रहना चाहता हूँ तो मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग हो गया, जैसे कि मुझे 24 hours लाइट चाहिए, ठीक है, दिन में तो आप बिना लाइट के भी काम चला सकते हो, रोशनी उसमें पढ़ सकते हो, रात्रि में भी आप कुछ देर के लिए तो आपको रोशनी चाहिए 9-10 बजे तक, तो गांव में कभी कभी उसका भी प्रॉब्लम्स रहता है आज के भारत में भी। अभी भी मतलब चीजें सुधर रही है तो बेटर हो रहा है, और बेसिक जो थिंग्स है वो गांव में थोड़ा और अच्छे इम्प्रूवमेंट हो सके तो फिर बेटर हो सकता है। जैसे गांव हमारे इतने अच्छे थे, कभी कोई बीमार पड़ता ही नहीं था तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, और हमारे गांव में गुरुकुल सिस्टम था पहले से, तो बेसिक चीज़ें बच्चा वहीं सीख लेता, वहीं पढ़ लेता था, वहीं अध्ययन कर लेता। आज उसकी मतलब एक कहते हैं ना कि भाई टीचर है उसके लिए, स्कूल्स बना है, लाइब्रेरी बनी है, बट वो कितनी ओपन होती, कितना खुलता है, टीचर्स कितना आता है। अब कितने भी हम अकाउंटेबिलिटी रख ले ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम में भी, टीचर कितना आता है फिर भी हमारे लिए एक नया ही है कि वो टीचर आके भी बैठ जाता है, वो कितना सिखाने की कोशिश करा। फिर भी गांव में कुछ बच्चे इतने कनेक्टेड इसलिए भी रहते हैं कि कुछ टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वो आते डेफिनेटली सरकारी स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर और बहुत अच्छा पढ़ाते और इसलिए वो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो गांव मतलब रियलिटी है कि आपको ओरिजिनलिटी मिलती खाने पीने से संबंधित भी, हवा एकदम ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट। आप यदि गांव शहर में 8 बजे उठते हो, गांव में आप 6 बजे उठ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, आपका नींद अच्छी हो जाएगी आपकी। तो कह सकते हैं ओरिजिनलिटी इज द विलेज, तो स्वर्ग तो है ही वही।
0: ओके, तो आपको जब आपने पढ़ा, जब आपने 3 साल ये कोर्स किया, जैसे क्या आपके मन में कोई ऐसी पिक्चर थी या कोई ऐसी बात थी जो चेंज हुई, या आपको लगा कि एक नया परसेप्शन मिला, आपको नई सोच आपके अंदर जगी?
1: मतलब एक लाइफ में होता है ना, एक यूथ के अंदर कुछ करना है।
0: हाँ।
1: मतलब कुछ तो करना है भाई, ऐसे ही खा पी के मर जाएंगे तो कुछ हम क्या करके गए।
0: हाँ।
1: ठीक है, तो लगता है कि यार क्या किया जाए, व्यक्ति हुई सो एक्सप्लोर करता है, तो फिर एक पिक्चर ये डेवलप हुई कि भाई मुझे ज्यादा तो गांव है और सब कितने विकसित है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम मैं कभी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, गांव के लोग जब तक नहीं जाते तो हम वो सिनेरियो कैसे बदलें, उनसे कैसे बात करें, उनको कैसे समझें। ठीक है, फिर एक संकल्प ये लिया, हम संकल्प ले सकते हैं उसके ऊपर भरपूर प्रयास कर सकते हैं। तो एक संकल्प मैंने ये लिया कि मैं जीवन में कुछ भी करूं, मैं चाहे सिविल सर्विसेज भी जॉब लूं या फिर मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप करूं या बिजनेस करूं, मैं लाइफ में कहीं पे भी हूं, बट मेरा एक लक्ष्य बन गया है कि मैं जे अपने जीवन के अंतिम तक एक गांव विकसित करना है। ठीक है, और वो गांव मिलके ही हो सकता है, तो उसके लिए मैं जितने प्रयास कर सकूं वो करना, एक मेरी ये चीज चेंज हुई। पहले आज भी मतलब मैं थोड़ा सा फिर भी वो रहता हूँ कि कैसे होगा। मैंने कई लोगों से बात भी की, कई लोगों ने मुझे हेल्प भी प्रोवाइड की, क्योंकि अच्छे काम के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए अच्छे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको पूरी फुल्ली सपोर्ट करते हैं, आपके डिजाइन लेवल पे, आपको समझने के लेवल पे हम कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। तो एक तो ये मतलब छोटा संकल्प मैं समझता हूँ, बट वो सब कहते हैं कि छोटा नहीं, बहुत बड़ा संकल्प है तुम्हारा। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एक गांव अच्छा विकसित करना। फिर मैंने ये बात किसी के सामने रखी तो उन्होंने बोला कि एक गांव ही क्यों करना, सब क्यों नहीं कर सकते। मैं सब मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो सार्थकता नहीं है, फिर भी मैं एक पॉजिटिवनेस रखता हूँ अपने साथ में, हाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा गाँव डेवलप करें जो रेप्लिकेटेड मॉडल। तो ये मुझे नई चीज सीखने में मिली, मैंने जिससे भी बात की तो मैंने कहा ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है और ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी तो मन में यही है कि प्लान
0: मॉडल विलेज बना सकते हैं,
1: एक मॉडल विलेज बनाना है और जितने भी मॉडल विलेज है उनको समझना, इससे जुड़े हुए लोग जितने भी है उनसे बात करने में मुझे बहुत मजा आता है, जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो गाँव से जुड़ा हुआ है, उनसे मुझे बात करके, उनसे कॉन्टेक्ट बना के और उनसे जब चीजें नई नई सीख के मुझे बहुत मजा आता है। कुल मिला के मेरे को एक जो सिनेरियो चेंज हुआ ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो लर्निंग का बहुत हुआ। इससे पहले हम एक ना होती है ना, जैसे मुझे कुछ सीए बनना है तो मैं सीए के लिए ही पढ़ाई करूंगा, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो ऐसा ही है कि शायद मैं इस काम कर रहा हूँ ना, मुझे इंटरेस्ट बहुत आता है, मजा बहुत आता है, तो मेरे लिए डेफिनेटली काम बहुत अच्छा हो जाता है।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पढ़ाई की, जो आप करना चाहते हो उसमें आपको मजा आता है,
1: जी
0: बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा राजेश, जैसे आपने कोर्स के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, एडमिशन के प्रोसीजर की बात की, ये सब क्या मतलब कब निकलते हैं फॉर्म्स और ऑनलाइन भर सकते हैं क्या या जाना पड़ता है वहाँ पे?
1: जो ऑनलाइन आप आराम से भर सकते हैं और यूजीसी का मोस्टली यूजीसी से यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है, इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, और आपका बहुत कम फीस इज द कहते हैं मेंटेनेंस फीस। और ये कि शायद मुझे उन्होंने टच इसीलिए दिया कि वो बहुत ही मेंटेनेंस में आपको बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये यानी कि आज मैं यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ कुछ भी करने के लिए। यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को अच्छे कनेक्टिविट करना, लोगों यूनिवर्सिटी करना, डिपार्टमेंट के लिए करना, गांव के लिए करना, तो शायद वो आपके पास यदि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहाँ से करोड़ों रुपए फीस है, तो आप वहाँ टच नहीं लेके जाते हो। तो यहाँ आप कम फीस में आप बहुत अच्छा सीख के जाते हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग।
0: तो वहाँ हॉस्टल भी है?
1: जी, रेजिडेंशियल ही कैंपस है, आपको अनिवार्य रूप से हॉस्टल में ही रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ का लाइफ जीना होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप कल्चरली बहुत वहाँ रिच हो सकते हो, आप अपने नॉलेज के स्तर पे भी, पढ़ाई के स्तर भी, बहुत अच्छा लाइब्रेरीज भी है वहाँ पे। तो मतलब बेसिक एक यूनिवर्सिटी में होता है इंटरनेशनल लेवल पर सारा है।
0: क्या बात है?
1: मतलब रिसर्च के लिए भी बहुत संभावना है, जब आप कितने डेडिकेटली और इंटरेस्टेड हैं
0: आपके ऊपर डिपेंड करता है,
1: वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लेना चाहते हो, देने वाले बहुत है।
0: बहुत है, क्या बात है, तो मतलब बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी लग रही है।
1: मुश्किल से आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, और जुलाई में एक बार एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, जुलाई के आसपास, मतलब इस बार तो जुलाई में इंटरव्यू भी हो गए थे, शायद एक बार आप देख सकते हो, अपडेट रहना पड़ता है
0: वेबसाइट पे।
1: वेबसाइट 1 मई के आसपास शायद बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं और उस समय एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका एग्जाम डेट भी तय हो जाता है। और आपके भारत में करीबन 5-6 सेंटर्स भी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, हरिद्वार खुद हो गया मेन, और महाराष्ट्र में भी शायद कहीं पे है, जैसे दुर्ग वगैरह है, छत्तीसगढ़ में, तो भोपाल है एमपी में, तो ऐसे ही मतलब उनके सेंटर्स बने हुए हैं, तो आप उस सेंटर्स पे जाके एग्जाम दे सकते हो। और फिर इंटरव्यू के लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ता है,
0: अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। हाँ, इंटरव्यू आपका वहीं होता है,
1: वहीं होता है, फिर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन ले सकते हो आप।
0: ओके, तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होंगे और भी यहाँ पे।
1: जी,
0: तो अच्छी बात है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी राजेश को, अभी वेबसाइट विजिट करें, मैं तो कहूंगी देव संस्कृति की बात कर रहे हैं हम यहाँ, साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी वेबसाइट समय पर विजिट करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है राजेश कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समय निकल जाता है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर का एक समय है, निश्चित समय है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आप 12वीं में है तो आप उसी साल पहले से देख लें कि अगले साल एडमिशन कब होगा, आप लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें, नहीं तो कई बार आप जो करना चाहते हैं हो सकता है वो कोर्स निकल जाए या डेट निकल जाए या आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही ना लग पाए।
1: बिल्कुल।
0: और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूजीसी का नाम लिया, आप वहाँ पे यूजीसी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, आप वहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है
1: जी।
0: तो क्लिक करके आप वहाँ से भी वेबसाइट में जा सकते हैं। जानकारी जरूर रखें, इंटरनेट युवाओं के पास है तो उसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल अपनी शिक्षा के लिए जरूर करें।
1: यूट्यूब पे भी आपको उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए भी आपको और विस्तृत में आपको जानकारी मिल सकती है। आप इंटरव्यू कैसे दें, एग्जाम कैसे लिखें, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाते हैं बहुत ही आसान में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हाथ में है, बहुत ही आसान हो गया सारी चीजें। मेरे लिए ये था कि मैंने फॉर्म भी किसी दूसरे शहर में जाके भरा था।
0: अच्छा।
1: हाँ ऐसा था, और मतलब कोई साइबर कैफे वाला विश्वास भी नहीं होता कि भर पाएगा, तो फिर मैंने लगा को विश्वास पाते साइबर कैफे उससे जाके भरना पड़ा मुझे।
0: अच्छा ओके।
1: और एग्जाम देने के लिए भी उस समय राजस्थान में जोधपुर सेंटर हुआ करता था, तो वहीं हो गया था। और मतलब एग्जाम के बाद थोड़ा सा मन में था कि यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है, जबकि हाँ तो ऐसा लग रहा था, तो फिर जरूरी वो इंटरव्यू का कॉल भी आया और इंटरव्यू भी दिया। ऐसा लगा सब कुछ अचानक सा हो रहा है,
0: होता
1: है, हमको कोई करवा रहा है, ऐसा फील होता है।
0: क्या बात।
1: आप यदि इंटरेस्टेड हो
0: मदद मिलती है आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: फील भी होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा राजेश, आपने जैसे बात की कि आपने ग्रेजुएशन किया, एक थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में वहाँ के कैसा है कुछ बताए यूनिवर्सिटी का।
1: सबसे बड़ी और अच्छी चीज तो डीएसयू का एनवायरनमेंट है। जब मैंने आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से मैं जब मिला तो उनका कहना था कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी एक दिन के लिए आते हैं, वो दो दिन रुक के जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी आते हैं, वो भी दो दिन, एक दिन के लिए प्लान करके आते हैं, दो दिन रुक के जाते हैं। द वाइब्रेशन इज द वेरी वंडरफुल ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं उसको फील ही करता हूँ, बता भी सकता ही नहीं हूँ, आप जाके हो फील करते। जैसे रिसेंटली मेरा भाई है ना, मैंने उनको बोला हरिद्वार जाने को, मैंने कहा ऋषिकेश तो तुम जाना जाना, यूनिवर्सिटी जरूर जाना। वो गया, एंटर किया, वीडियो कॉल किया मुझे, थोड़ा और 10 कदम चला, बोले कि भाई तेरी यूनिवर्सिटी क्या है, गजब है। तो बस वो मैंने कहा, हमने कहा तुम जाके फील ही कर सकते हो, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पे, आप कितना अच्छा वातावरण और बना सकते हो, ये और भी महत्वपूर्ण है। और बच्चे बनाते भी हैं, यूनिवर्सिटी जैसे मार्केट का किंग कौन होता है, कस्टमर होते हैं, तो इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का किंग तो बच्चे लोग ही होते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी के वही होते हैं। जब मैं भी इंजीनियरिंग के छात्रों से मिलता हूँ, मैं कहा आपका यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा है वैसा है, बट बनाने वाले भी तो आप ही लोग हो, आप प्रयास करो, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। आप एक पौधा तो लगाओ, 10 लोग और मोटिवेटेड होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बट आप प्रयास तो करो। तो ऐसा एक बच्चे बहुत भरपूर प्रयास करते, फैकल्टी बहुत हेल्प करती है वहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वातावरण है। जैसे एक्यूप्रेशर पार्क, आपको नेचुरल जूस मिलता है वहाँ पीने के लिए, बहुत ही सस्ते में, मतलब कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बहुत अच्छा कैंटीन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, एकदम प्योरिटी वाला खाना। तो आज भी डीएसयू का मुझे बहुत याद आता है पर्सनली, क्योंकि आप कई हॉस्टल्स में रहते हो ना, तो फिर आपको समझ आता है कि डीएसयू का कैसा खाना है, हॉस्टल का कैसा खाना है। तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल खाना और बेहतरीन। जब कभी आप, मैं 5 साल में, 3 साल तो वहाँ रहा, कभी बीमार नहीं पड़ा, उससे भी 2 साल पहले भी कभी बीमार नहीं पड़ा, तो 5 साल में कभी बीमार पड़ा ही नहीं वहाँ पे।
0: क्या बात है,
1: कभी मेरे को बुखार तक नहीं आया वहाँ पे। थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ता है तो जरूर आपको जुकाम हो सकता है, फिर भी ये जैसे आप ये ना कि जैसे मैं हूँ स्टूडेंट रूरल स्टडीज का, साथ में पढ़ रहा हूँ जन कलेक्टिव जी, योगा भी सीख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप जल नीति भी सीख रहे हो, षटकर्म सीख रहे हो, सूत्र नीति सीख रहे हो, ये साथ में जो चीजें सीखते हो ना, आप खुद को पता नहीं चलते कि हमारी स्किल में और क्या गेन हो रहा है।
0: बाद में रियलाइज होता है कि हमने जो सीख लिया है इस वक्त, बहुत लोग हैं पता है जो सीखना चाहते हैं
1: जी,
0: जिनको लगता है, क्योंकि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और स्वस्थ रहने के लिए जैसा आपने कहा, बहुत सारी विधाएं हैं, योगा है खास तौर से, और अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में वो शामिल हो जाए तो शायद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। मैंने रियलाइज किया कुछ दिन पहले कि एक मतलब सफल व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है ना, तो उसका लाइफ स्टाइल होता है, बहुत लाइफ स्टाइल होता है, कैसे कितने बजे सोता है, कैसे रहता है, तो तो शायद मुझे लगता है बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये चीज फील किया और कई चीजें हम फील करके ही सीख पाते हैं। फिर मुझे लगता है कि यदि हम 5 बजे उठते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहती है, सुबह एनवायरमेंट बिल्कुल अलग रहता है, एनर्जी और रहती है। कोई लोग 2 बार दिन में नहाते हैं तो उसे और एनर्जाइज होते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी आदतें और लाइफ स्टाइल का जो हिस्सा होती है हमको बहुत ही आगे तक ले जाती है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने राजेश, जो ये आपने बात कही है। कई लोग ऐसे हैं, जब हम बात करते हैं जो सक्सेसफुल, जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं, जिनके बिजनेस हैं बड़े बड़े, या जो कोई कार्य है एनजीओस भले चला रहे हैं लेकिन एक अच्छे स्तर पर चला रहे हैं, या जो शुरुआत भी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका लाइफस्टाइल अगर उनसे पूछा जाए तो एक जो सामान्य लाइफस्टाइल है जिसमें ये सब चीजें शामिल नहीं, उनसे भेद तो पाएंगे, अंतर तो पाएंगे।
1: जी।
0: अच्छा राजेश, और कोई ऐसी बात है जो आपने ऑब्जर्व की और आपको लगता है कि युवाओं के अंदर या युवाओं को मालूम होनी चाहिए, जो आपके साथी हैं आपको लगता है उनको मदद मिलेगी ये बात?
1: अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो
0: कोई भी ऐसी लाइफ के प्रति आपकी बात।
1: ऑब्जर्वेशन तो मेरी बहुत है। मैंने ये कि युवा हमेशा अपने आंख, कान और ये सब जो इंद्रियां होती है वो खुली रखे।
0: ओके। हाँ।
1: दूसरा है कि वो सेल्फ अपने बारे में अवेयर हो, चाहे वो स्पिरिचुअली लेवल पे, आत्मा के लेवल पे भी, और फिजिकली बॉडी के लेवल भी वो अवेयर हो। तो अवेयर होना जरूरी है, और अवेयर यूथ है ना, तो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए जिज्ञासा की। हम जिज्ञासा की बात है, हमारी जानने की जो इच्छा शक्ति है हमें अवेयर होना चाहिए। जैसे ये कि मैंने प्रश्न किया कि राखी के ऊपर बहने ही क्यों राखी बांधती है, भाई क्यों नहीं बांध सकता? ठीक है, ये मैंने प्रश्न किया। तो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस करने का भाव है ना, वो आना चाहिए यूथ के अंदर में, वो सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए। यदि हम आपने ये करना प्रारंभ कर लिया तो आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, आप अवेयर और ज्यादा हो सकते हैं। ये यूथ में थोड़ा सा कई यूथ करते भी हैं और वही युवा कहलाते हैं। और हम एज ए उम्र की बात करें तो उम्र में एक, मैं कुछ दिन पहले ही मैं अपना एक स्टोरी छोटा सा सुनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 11th 12th में जिस हॉस्टल में रहता था उन वार्डन सर से मिलने गया। मैं कहा सर रूम तो है नहीं आपके पास खाली, मैं आना चाहता था। तो बोले, फिर भी मैंने उनसे मिलने गया। मुझे वो मतलब हमेशा ये कहते हैं फोन नहीं करते बच्चे लोग, तो मैं ठीक है सर मैं मिल के ही आता हूँ। मिलने गया तो मैंने कहा सर आप 25 साल बच्चों के साथ रहे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है? तो बोलेंगे बेटा मैं फैमिली को समय तो कम दे पाता हूँ, अपने बच्चों को समय कम दे पाता हूँ, बट एक चीज अनुभव ये करता हूँ कि बच्चों के साथ रह के बूढ़ा महसूस नहीं करता हूँ। हमेशा वो बूढ़ापन आता ही नहीं इस जीवन में भी, पता नहीं वही एनर्जाइज फील करता हूँ बच्चों के साथ, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने कहा सर जो भी अब कुछ नया होगा आपको समय निकाल के आना है, हम बुलाएंगे वहां पे भी। तो बोले ठीक है बच्चा। तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। तो एक युवा के मन में ना हमेशा जो मैंने कहा प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए, साथ ही साथ जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, लिखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, और आनंद जिसको हम कहते हैं उसको एक लॉन्ग टर्म आनंद लेने के लिए कला के माध्यम से जुड़ना चाहिए उसको हमेशा। तो यूथ को मैं यही समझता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने को बेहतर बनाए और दुनिया को कैसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है वो करे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी राजेश की, जो हमारी प्रश्न पूछने की जो क्यूरियोसिटी है, हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं
1: जी,
0: और लेकिन उतना ही वो सीखते हैं, डेवलप होते हैं
1: जी।
0: जैसे जैसे हम बड़े जाते हैं ना, कई बार हमें एक दो बार अगर बोल दिया जाता है कि अरे कितना बोलते हो, या चलो चुप हो जाओ, अरे कोई इसका जवाब नहीं है, कभी ऐसा भी होता है, और कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे हमें लगता है अब हम बड़े हो गए तो हमें सब पता होना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन इतना कुछ है लाइफ में सीखने के लिए कि हमें सब पता नहीं हो सकता, इसलिए पूछते रहे, पूछने में शर्म नहीं करें।
1: बिल्कुल, और ये है कि जो जितना बच्चा पूछ रहा है उसकी जिज्ञासा को भी हम कैसे शांत करने के लिए हम रास्ते खोजते रहते हैं, बट ये उसका मन तो देखो कितना वो प्रश्न पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कितना जिज्ञासा है। जैसे मैं छोटा होता था ना तो मैं पूछता था, कोई आता था घर पे, कोई रिलेटेड मतलब कोई ऐसे आता, गांव में होता था कोई नया अनजान व्यक्ति भी आ जाता था कभी गांव में पानी पीने के लिए, और कोई शहर का अंधा है तो छाछ वाछ के लिए भी आ जाते, तो मैं पूछता आप क्या करते हैं, तो ये फिर पूछता था आपकी सैलरी कितनी।
0: अच्छा।
1: एक प्रश्न पूछने का तरीका।
0: हाँ।
1: तो बोले मम्मी को कि बच्चा बड़ा वो है कि बड़ा क्यूरियोसिटी वाला और सैलरी का आज तक हम कोई नहीं पूछता था ऐसे प्रश्न, मतलब मुझे बोला कि सैलरी नहीं पूछना चाहिए किसी से, मैं कि ठीक है, बट एक प्रश्न पूछने का वो जिज्ञासा होनी चाहिए हमको, क्योंकि हम दुनिया और ज्यादा से अच्छे समझते। दूसरा मेरा ये रहा कि मैं पढ़ना है ना, जब थर्ड क्लास में था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, वो इस ऐसी स्टोरी है कि न्यूज़पेपर लाना ट्रेन में आता था गांव में शहर से, और शहर से मतलब न्यूज़पेपर ले आता था घर पे, पहले तो पढ़ना नहीं आता था, वो पिक्चर से देख लेते खुश हो जाते थे हम उससे समझते, फिर ये कि पढ़ना जब आया तब तक तो घर में है ना, पहले वो पूरा अखबार ना पढ़ ले समझ ले तब तक किसी दूसरे के पास जाएगा।
0: अच्छा
1: हाँ। और ऐसा होता था।
0: तो कितने बड़े थे आप जब पूरा पढ़ते थे आप बैठ के?
1: मतलब मैं पूरा अखबार अच्छे से खंगालता था, मतलब उससे बहुत सारी चीजें मुझे याद भी रहती थी। अच्छा। दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
0: स्कूल में ही थे आप तब?
1: हाँ जब स्कूल में पढ़ता था पूरा अखबार, सेवन्थ क्लास में पूरा अखबार, सिक्स सेवन्थ क्लास।
0: अच्छा।
1: सुबह सुबह जल्दी स्कूल अखबार आ जाता था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता स्कूल के लिए, तो मेरे पास आधा घंटा रहता था, जरूर मैं 20 मिनट स्कूल यहीं पढ़ लेता था, कभी कभी स्कूल में जाकर अखबार मिल जाता था, 10 मिनट जल्दी चला जाता था वहाँ पढ़ लेता था, फिर वापस आके खाना खाने के बाद फिर अखबार, और पकड़ो और पढ़ो अखबार।
0: आपको अच्छा लगता था मतलब?
1: हाँ हिंदी अखबार मैंने मतलब हमेशा वही पढ़ा, तो मुझे हिंदी आज भी अच्छा लगता है, आज तो मैं मतलब और भी हिंदी न्यूज़पेपर,
0: जानकारी मिलती है,
1: हिंदी मैगजीन्स, चाहे वो क्या बोलते बच्चों की जो चंपक भी होती है इंग्लिश हिंदी में, तो वो भी पढ़ता हूँ कि इसमें नया क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं चंपक, क्या हम लिख सकते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: इस मतलब इस भाव से आप पढ़ते थे?
1: इस भाव से अब पढ़ना प्रारंभ किया है मैंने, मतलब वो मतलब चंपक लिख रहा है तो किस के लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, तो ये सब प्रश्न करके हम उस चीजों को समझे, मजा आता है बहुत। जैसे मैं चंपक रेलवे स्टेशन खरीद के पढ़ रहा था, पास में कुछ बैठे थे लोग, तो बोले मैंने 2 मैगजीन खरीदा, उन्होंने भी मुझसे मांग लिया, मैं पढ़िए, तो मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी और मजा आता है, क्योंकि एक मैं चाहता हूँ ना भारत को और अच्छा भारत कैसे बना सकते, तो एक हमको कल से डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने का लिखने का। जैसे मुझे मेरा एक दोस्त था उसका भी टारगेट है, मेरा भी टारगेट है कि हम कम से कम भारत में 10 किलोमीटर तो नहीं, एक गांव में अच्छा लाइब्रेरी डेवलप करे, जो कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, गांव के लोग ही उसको रख रखाव करे और गांव के लोग ही उसमें अच्छी अच्छी बुक्स ला के रखें, ठीक है, और उसमें पढ़ने का एक कल्चर डेवलप करे, क्योंकि गांव में ना लोगों का समय भी होता है, वो समय किसी और चीजों में बैठते, जैसे एक अंकल थे वो मैं एक बार पढ़ के फिर वो पढ़ते थे, वो बोलते मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, ठीक पढ़े लिखे थे, और तो फिर ऐसा है कि गांव में कई कम्युनिटी हॉल भी बने होते हैं सरकार की तरफ से, हम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली बुक्स और एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। आजकल तो राजस्थान में हर जहाँ देखे थे लाइब्रेरी का अलग ही नया ही स्वरूप दिख रहा है, बच्चे वहाँ जाके फीस दे के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी पे जो पुल बने हुए वहाँ पे हम गांव के मिल के लोग वहाँ पे लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं,
0: गांव के युवा भी मिलकर ये काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और पढ़ाई से ज्यादा शिक्षा से ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ से होगा, मतलब हमें नई नई चीजें पता चलेंगी और आइडियाज भी आएंगे उससे, और जो बच्चे कई बार है कि अक्षर ज्ञान है ज्यादा पढ़ते नहीं, तो अगर स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एज ज्यादा हो गई है, तो किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, फायदे तो बहुत सारे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली राजेश, एक छोटी सी लाइब्रेरी गांव के लोग मिलकर भी इसको कर सकते हैं।
1: जैसे ये है ना कि प्लास्टिक को खत्म करना है, तो मैं जब सोचता था कि मोहल्ले में किया जाए, मैं इतना आसान भी नहीं है, लोगों को बात बताना समझाना मतलब इतना इजी है नहीं ये जो अपन सोच रहे हैं, और जब वो पढ़ते हैं ना तो खुद से करते हैं फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ये कि इसको मैं खुद करूं, जैसे मेरा प्लास्टिक का कचरा मैं कहीं भी जाता हूँ अपने बैग वाला जो साइड में होता है ना पानी की बॉटल लगते हैं वहाँ डाल देता हूँ, या फिर कुछ भी छोटा जगह होता है उसमें पॉलीथीन अलग कर देता हूँ, और घर में आके उसको सेग्रीगेशन कर लेता हूँ, पॉलीथीन अलग, कागज अलग, ठीक है कांच और लोहा समथिंग अलग अलग, हम मैंने घर पे लेवल पे भी है ना अपना पूरा कचरा है ना व्यवस्थित कर सकते, ऑर्गेनिक मैटर्स को एक अलग बाल्टी में डाल दिया पौधों के लिए, वो ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर लिया, घर में प्लांट लगा दिए तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें यूज कर लिया, बाकी सारी चीजें सारी मार्केट में सेल हो जाती है, पॉलीथीन सेल हो जाता है आपका, मतलब ये कि आप समझ रहे हो कोई भी चीज पैकेजिंग में ले आ रहे हो तो आपका पैसा मार्केट उस आपसे ही ले रहा है, तो आप उसको फेंक रहे हो तो मतलब अपना लॉस कर रहे हो सीधा सीधा। कागज है कि वो बिक सकता है छोटे अमाउंट्स को बड़े अमाउंट में इकट्ठा करके, अब नहीं भी बेचना चाहते हो तो आप जो जहाँ पे सेल कर सकते हो उसको ऐसे ही देख के आओ, क्यों वो बेच सकते हैं, कम से कम रिसाइकल में आएगा, तो ऐसे ही सबसे अच्छी सेवा कि अपने स्तर पे हम एनवायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। एक बात मेरे सर ने कहा था कि हम अपने कर्म भूमि को ही कर्म क्षेत्र बना सकते हैं। तो यही है हमारी कर्म भूमि, हम जान जी रहे उसको ही अच्छा बनाओ, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है।
0: क्या
1: बाकी ये आपसे देख के हम और लोग भी करेंगे, आप उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, आपको डस्टबिन नहीं है तो हम डस्टबिन ला के दे देते हैं, बट आप अलग तो करिए। ठीक है, आप नहीं फेंक सकते हो कचरा, नहीं गाड़ी में डाल सकते, हमको ही दे दीजिए, फिर हम ही कर देंगे। आप हमारे पड़ोसी तो कम से कम कचरा हमारे सामने तो नहीं फेंकेगा। तो ये छोटे छोटे भाव हमको पैदा करना पड़ेंगे और हमको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि पहले फर्स्ट तो मेरे लिए मोहल्ले को तो क्या मेरे परिवार वालों को समझाना मेरे लिए क्रिटिकल हो गया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई उनकी,
0: इतना समय से
1: इतना आसान नहीं है। जैसे मैं बस में गया तो उसको बोला कि मैंने पॉलिथीन बाहर मत फेंकी, मुझे ही दे दीजिए, मैं ही रख देता हूँ। तो वो शायद मुझे हमसे लर्निंग ले जा सकता है, जो हम देख के जो सीखता है ना वो। तो अब ये कि कम से कम मैं घर वालों को तो समझा चुका हूँ। हाँ, अब ये कि सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जब भी समय मिले मेरी टीम के मेंबर्स है और वो कार्यक्रम भी करते रहते पॉलिथीन से, हम बच्चों में जैसे पिछली बार हमने गणेश ब्राह्मण गणेश महोत्सव मनाया था।
0: अच्छा।
1: मिट्टी का गणेश जी, और एक ही थीम था कि पॉलिथीन को, हमें कोई भी चीज पॉलिथीन लाए नहीं थे, बाजार से प्रसाद भी लाते थे पॉलिथीन में नहीं, फूल भी लाते थे पॉलिथीन में नहीं, हम कुछ भी चीज ला रहे थे हम वहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग। ठीक है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे, कभी कभी हमको नहीं मिलता कुछ के लिए तो उसके लिए हम प्लास्टिक लाते हैं अपने घर पे ही रख देते हैं, उसको रीयूज करते हैं बार बार। जैसे मम्मी कम से कम सब्जी आती है तो हम करीबन और दूसरे सामान आते हैं मार्केट से, प्लास्टिक हो जाती है हमारी एक खड्डी करीबन 1 kg, तो वापस उन्हीं को दे देती है प्लास्टिक सब्जी वाले भैया को, वो सब्जी वाले वापस उसी में सब्जी देखते हैं सबको। तो दूसरा है कि हम प्लास्टिक फाड़ने का तरीका भी हमारा, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें है ना, तो शायद हमको सोचना चाहिए, वो सोच हमारी पढ़ाई से ही विकसित हो सकती है, हमारे देख के हमारे बिहेवियर में हम एम्पैथाइज करते तभी उस चीज से सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल राजेश, बहुत जो बातें आपने कही वो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है, और अच्छी बात यह है कि आप इस उम्र में ही बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं
1: जी।
0: और शिक्षा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है
1: जी। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, क्यों इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि वो चीज मैंने रेडियो से सीखी। जैसे हमारे रोहित भाई जी है, तो रोहित भाई जी क्या कर रहे थे, एक दिन कहीं बैठे थे हम सब लोग और मीटिंग चल रहा था, तो मीटिंग इनफॉर्मल मीटिंग में हम सब बातें कर रहे थे, तो क्या करे इतने सारे पेज लेके आए, जहाँ पे पेज पे नहीं लिखा था उसको पेज को कटिंग कर रहे थे और अपने वो जहाँ पे नोट करने की कुछ चीजें थे उसमें ऐड कर रहे थे। आज क्या था, हम 50 रुपये का स्टिकी नोट्स मार्केट से खरीद के ले आते हैं, तो शायद वो हम अपने घर में बोर्ड लगा दिया उस पे ही, और वो नोट्स पेज छोटे छोटे हमारे पेज इकट्ठा, थोड़ा टाइम लगता है, हमारे पास समय कभी फ्री रहता तो हम उसको अलग कर सकते हैं। मेरा दोस्त कहता था गांधी जी है ना छोटे छोटे पेज का उपयोग करते थे, मैंने कहा हमने तो गांधी जी को देखा नहीं है छोटे छोटे पेज उपयोग, बट तुमने बोला है तो सही बात है और करना भी चाहिए मुझे। तो वो छोटी छोटी आज मैंने कोई भी है ना, जैसे बिल देता है ना उसका पर्ची फर्श में रख दो ठीक है, या फिर कहीं फेंको मत, तो मैं अपना नोट्स बना सकता हूँ, उसपे वर्ड्स मीनिंग्स लिख सकता हूँ इंग्लिश का, तो आप यूज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों।
0: बिल्कुल, और बिल्कुल आपने ये बात इतनी सही बोली राजेश कि आपके पास जो भी चीजें आती है कई बार ना हम पुराना तो डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर नया हमारे पास है नहीं सोचने के लिए मार्केट में जाते हैं
1: जी।
0: तो अगर एक पेज पे लिखा हुआ है कुछ तो उसके पीछे का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार हमने एक ही समय का उस फेंक दिया
1: जी।
0: और क्लिप आते हैं छोटे छोटे क्लिप होते हैं, या कई बार वो क्लिप होते हैं जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं उसको, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो उसमें पेपर को फंसा के एक जगह रखा जा सकता है है ना, तो उसमें बहुत काम आ जाते हैं। आप पर्यावरण की बात की और शिक्षा की बात की, और जो आप वो बात कर रहे थे प्लास्टिक वाली कि कैसे काटते हैं, वो भी एक बार आप थोड़ा सा बता दो क्लियर करके
1: जी। मम ऐसे एक बार भूख लगा था तो चिप्स खा रहे थे।
0: हाँ।
1: मेरी हर चीज स्टोरी से जुड़ी हुई है तो मैं वहीं से सीखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल
1: सर, बेहतर कनेक्ट कर पाए हम
0: जी।
1: तो चिप्स खा रहे थे तो किसी ने चिप्स का पैकेट फाड़ा, तो चिप्स का पैकेट 2 टुकड़ों में बट गया, एक छोटा सा टुकड़ा किया हमने फेंक दिया और दूसरा रखा, चाहे हम नहीं भी फेंका हो, सपोज कहीं भी छोटा टुकड़ा फेंक के कहीं उड़ जाता है, तो ऐसे उन्होंने बोला कि ऐसे लाखों टन्स में वो छोटे छोटे टुकड़े होते ना बढ़ जाते हैं, तो आप एक बड़ा जो पॉलिथीन को ऐसे फाड़े कि वो सेपरेट ना हो, वो एक में ही पॉलीथीन रहे ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ फाड़ने का तरीका होता है, आप उसको बीच में से ऐसे फाड़ो कि वो हम अच्छे से खा भी सकते हैं उसको, और पॉलीथीन पॉलीथीन रह सकता है ठीक है। मोस्टली ऐसी चीजें तो लोग अवॉइड करते हैं जितना ज्यादा एनवायरनमेंट के प्रति सजग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना 1-2 रुपए का चिप्स हम 10 रुपए हम खरीद के खा रहे हैं तो गरीबी तो ले ही रहे हैं ठीक है, हमको जरूरत है तो हम खाए खा भी रहे, तो फिर उसको हम बचाएं कैसे। पॉलीथीन को तो उसको फाड़ने का एक तरीका होता है, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे भी अच्छा वीडियो मिल जाएगा एक पॉलीथीन को कैसे फाड़ा जाए
0: ताकि वो टुकड़ा अलग ना हो
1: और उकड़ाना तो लाखों टन्स में टुकड़ा हो जाते हैं। तो मैंने बोला ये क्या कहां से बात कर रहे हो तुम, क्योंकि हम युवा है तो पूछते ना प्रश्न क्या बात कर रहा है लाखों टन्स। तो बोले कि हाँ ये बात हमने हमारी इन्वायरमेंट वाली मैम से सुना। तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, चाहे ना भी हो लाखों टन में भी करना तो नहीं चाहिए ना। तो फिर मुझे वहाँ लगा, वहीं से सीखा मैंने। तो फिर और उससे पहले भी सीखा कि हम पॉलिस्टीन को ऐसे फाड़े कि यूज आ सके, जैसे हार्ड पॉलीथीन होती है जैसे चॉकलेट का, उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स आती है, तो उसको ऐसे फाड़े कि उसको हम कहीं यूज कर सके।
0: जैसे कि रीयूज वाला कॉन्सेप्ट है,
1: दूध का थैली होता है ना, पहले ले लेते थे वापस एक किलो थैली इकट्ठा हो जाती थी, पता नहीं आजकल वो लेते नहीं, पता नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट ये कि मैंने कहीं देखा तो मार्केट में हम पौधा प्लांट लगाते हैं ना, उसके लिए हम पॉलीथीन खरीद के लाते हैं, उसके लिए अलग से पॉलीथीन आता है, उसमें मिट्टी डाला, सैंपलिंग लगाई। तो अब क्या करते, दूध के थैली को ही फाड़ दिया ऊपर से, उन्होंने सैंपलिंग उसी में लगा दी। तो ये जैसे कि मैंने एक घर में ही मतलब एक दिन युद्ध कर लिया।
0: अच्छा।
1: हाँ, वार हो गया मेरा कि घर में एक फंक्शन था, 350 लोगों का खाना था। तो मैंने कहा कुछ भी हो, गिलास कहीं से भी लाओ, टेंट वालों से लाओ, चाहे घर में तीन घरों से मांग के लाओ, बट प्लास्टिक कहीं दिख गया ना तो तुम देख लेना।
0: अच्छा।
1: हाँ, तुम्हारा कार्यक्रम मैं ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप प्यार से है ना कितन काम करते हो इजीली नहीं समझ पाते। और मुझे था कि मुझे करना है डेडिकेशन से, और मैं नहीं करने दूंगा, प्लास्टिक यूज नहीं कर दूंगा। तो सारा मैनेजमेंट मेरे पास था, तो मैंने सारी प्लास्टिक जितनी भी यूज करने वाले आए हुए थे उसको मैंने पहले निकाल के ऐसी जगह रख दिया जो कहीं से ला नहीं सके, बस उसको तो कहीं उसको जरूरत पड़ी वो नहीं ला सकता उस वक्त। ऐसी जगह मैंने उसको अरेंजमेंट किया। पहले मैंने अरेंजमेंट पहले से कर रखी थी ग्लासेस स्टील की, क्योंकि हम 100 ग्लासेस 150 ग्लासेस स्टील की होती है हमारे पास, प्लास्टिक ग्लास तो कितने भी कर सकते ना। तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए कि 300 लोगों का खाना है। बर्तन धोने वाला था मैं सारी उसको ऐसे मतलब एक साथ तो 150 150 लोग नहीं आएंगे ना, साफ करके अच्छे से साफ करके उनको पहुंचाता गया। तो कहीं भी सप्लाई में कमी नहीं आई, और मेरा संकल्प पूरा हुआ कि मैंने प्लास्टिक यूज नहीं होने दी। ठीक है, वो बहुत सालों तक नहीं सड़ता है, जैसे एक ब्रश है तो 500 साल तक नहीं सड़ता है। तो अब मैं ब्रश भी करता हूँ, ब्रश जब हम करते हैं तो एक साफ होता है हमारा, मतलब ब्रश में जो फंसा हुआ है ब्रश से ही साफ हो सकता है। तो ये कि आप एक दिन ब्रश करो, एक दिन मैं फिंगर से अपना एक दंत मंजन वो करता हूँ, तो मतलब ये कि उसका साइकिल बढ़ गया ब्रश का।
0: और बैम्बू वाले भी आते हैं।
1: हाँ, बैम्बू है, नीम है, तो लोग मतलब जो हमारा पुराना लाइफ स्टाइल था ना, बड़ा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल था, तो हम तो ऐसे हम लाइफ को बना सकते हैं हमारे जीवन में कि छोटे छोटे यूज करके, और प्लास्टिक जितना हो सके उतना हम कम यूज करें।
0: बिल्कुल।
1: और हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा यदि यूज में आ भी रहा है तो रीयूज करें उसको, और कोशिश कर रिसाइकल। तो ये है कि जैसे आजकल ब्रिक्स बन रही है, प्लास्टिक ब्रिक्स आपने सुना होगा, बॉटल में सारी बहुत सारी पॉलीथीन डाल के, वो कई लोग उस ब्रिक्स से वॉल भी बना रहे, जैसे प्लांटेशन का वॉल बनाना, एक प्लांट्स का नीम कट रही उसके ऊपर बना लिया तो उस पर बैठ सकते,
0: टूल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते।
1: हाँ, क्रिएटिव हो सकता है। तो ऐसा है कि वो कहीं शायद हमारे एनवायरमेंट को खा रहा है तो नहीं खा सकता है, क्योंकि एक प्लास्टिक को बनने के लिए आप लगे भी प्लास्टिक फैक्ट्री में जाइए ना तो आपको समझ आता है कि वो प्लास्टिक के दाने में कितना फ्यूल लगता है, मतलब कैसे वो बनता है, बहुत सारे रिसाइकल होता है। ऐसे जैसे कि पहले पत्तों में चीजें पैक होती थी, वो सस्टेनेबल है, उसको एनर्जी मतलब यदि हम फिजिक्स के लेवल पे जाएं तो उसका एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है और जनरेट नहीं होती है, तो पत्ते अपने आप प्रकृति अपने आप सही कर देती है सब कुछ।
0: प्रकृति की अपनी साइकिल है ऑलरेडी।
1: हाँ, वो प्रकृति सबसे बड़ी माँ है और वो अपने आप को कैसे जान बचाना चाहती है सब कुछ वो अच्छे से जानती है करना। फिर भी हमारा एक जीवन है, हम उस जीवन में रहते हैं, हमको बेहतर बनाना है तो ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और मैंने प्लास्टिक की जो बात की इसके बाद मैंने जो करके दिखा है तो घर वालों का हो सकता है। अगली बार हमने जो हमारे तांबे का लोटा प्रचलन में था और तांबे के लोटे में आज भी पानी पिया जाता है, तो उसका आप साफ सुथरा रखिए, 50-100 लोटे अरेंज कर लीजिए आप, तो उसमें आप पानी पिला सकते हैं बेहतर।
0: क्या बात
1: है। ठीक है, हाइजीन ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको साफ करके भी कर सकते हैं, कई लोगों को ये मानना कि हाइजीन हो जाता है, बट तांबे में आप यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब
1: जैसे ये कि ना साफ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मैंने ही सुना है कि उसके जो केमिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं ना सर्फ वगैरह के, तो वो आपके अंदर जाते बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हो, उसको ज्यादा पानी पी रहे हो तो खत्म हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। मीन्स कि मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, एक्जेक्ट, जैसे डायरिया जैसे होता है, डायरिया का जो चीज होता है, तो आप ज्यादा पानी पियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जबकि वो पार्टिकल्स गए, उसको कैसे खत्म करोगे, जो केमिकल पार्टिकल्स के, जो वॉशिंग केमिकल पार्टिकल्स है, नहीं हो सकता है ना,
0: नुकसान बहुत करते हैं,
1: ठीक है। तो फिर यही है कि पहले हम सांप भी मिट्टी से करते थे, तो आज हमारी बॉडी भी बोलते हैं पंच तत्वों से मिला है, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। हमको इस चीजों में भी मैं और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट कैसे साइंटिफिकली प्रूव करके लोगों को समझाया जा सकते हैं।
0: जी राजेश, आपने जो बातें कही डेफिनेटली पर्यावरण वाली, वो ऐसी नहीं है जो हम केवल देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए जीवन शैली ऐसी, तो करें, हम में से हर कोई कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: छोटी छोटी बातें जीवन में शामिल की जा सकती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सब बातें कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और बातों ही बातों में हमने शिक्षा के बारे में बात की तो पर्यावरण के बारे में भी, लेकिन युवाओं के जीवन में जो भी वो ठान ले वो कर सकते हैं, ये तो डेफिनेटली प्रूफ होता है। और आपको भी आपके भविष्य के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का, और जब भी मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत सालों बाद आया हूँ तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ रह गया है, तो शायद आज वो छोटे प्रारंभ के माध्यम से पूरा हो पा रहा है। और रेडियो ने हमेशा मुझे कनेक्टिविटी दी है, प्यार दिया है। और दूसरी बात, आप सभी श्रोताओं को जो मेरी कहानियां सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, तो मेरी बातें नहीं, आप हम सबकी बातें हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ कुछ भी तो मुझे अच्छा लगेगा। बट मैंने जो भी बातें की वो मेरी लर्निंग्स है, तो हम इस लर्निंग के माध्यम से हम कैसे बेहतर बन सकते हो कर सकते हैं। धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका भी और राजेश का भी। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कार्यक्रम युवा मंच में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए,
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूं और आपके लिए लेकर आई हूं कुछ बेहतरीन गीत, कहानियां, अमेजिंग जानकारी, सवाल भी। और आप दोस्तों को जोड़कर मैं करना चाहती हूँ कुछ बातचीत भी। बारिश के इस मौसम में कभी छटपट बारिश, कभी जोर की बारिश, ये तो हो ही रही है। हमारे राजस्थान में छटपट छटपट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहते हैं गुजरात में काफ़ी हैवी रेनफॉल चल रहा है। तो आपके राज्य में क्या चल रहा है, आपके एरिया पर, राज्य तो छोड़ दीजिए, आपके एरिया पर क्या चल रहा है, तो इसकी जानकारी आप कॉल करके हमें ज़रूर दे सकते हो और साथ ही साथ सवाल का जवाब भी 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो 107.8 FM।

0: को क्या होता है?
1: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं बारिश के इस मौसम में, जुलाई के सीजन में। तो इंद्रधनुष के रंगों के विषय में कुछ बातें अमेजिंग जानकारी के तौर पर बतला ही देते हैं। बारिश पृथ्वी के प्राकृतिक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम का हिस्सा है। बिजली की चमक हमें गरज से पहले दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से कहीं ज्यादा तेज है। वहीं पर समुद्र, नदियों और झीलों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। लाखों नन्हे कणों से मिलकर बारिश की एक बूंद बनती है। जब ये जल कण बड़े और भारी हो जाते तब वे बारिश बनकर गिरते हैं। वहीं इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब सूरज की रोशनी बारिश के बूंदों से होकर गुजरती और सात रंगों में बदल जाती है। भारत में मौसिन राम को दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में गिना गया। वहीं पर बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू को वैज्ञानिक भाषा में पेट्रिकोर कहते हैं। एक साथ दो इंद्रधनुष भी बन सकते हैं, इसे डबल रेनबो कहते हैं। दूसरे इंद्रधनुष का रंग क्रम में उल्टा खास दिखाई देता है। इतनी सारी अमेजिंग जानकारी के बाद आज का सवाल आप दोस्तों के लिए अब है। कहते हैं कि इन सवालों के दांव पेच में हम और आप जब जुड़ते हैं तो कुछ बातें करने में मजा आता है। तो चलिए, आज का सवाल है, वह स्थान क्या कहलाता है जहां एक नदी समुद्र में मिलती है? वह स्थान क्या कहलाता है जहां एक नदी समुद्र में मिलती है? ए शाखा, बी मुहाना, सी केंद्र। ए शाखा, बी मुहाना, सी केंद्र। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: इंद्रधनुष बोले, जी ले जरा ये अलग अलग रंग ही जीने का मजा। वह स्थान क्या कहलाता है जो हां एक नदी समुद्र से मिलती है? ए शाखा कहलाता है, या फिर बी मुहाना कहलाता है, या फिर सी केंद्र कहलाता है? सिर्फ एक सही जवाब है, जरूर देना 9414151415 पर देना। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, और याद रखो मिशन लाइफ में कोई ना कोई जरूर रहे।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आज विशेष गुरु पूर्णिमा है और इसीलिए इस खूबसूरत गीत को आप तक हमने पेश किया है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आते, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ।

0: थम तो गया है, आगे बढ़ते हैं। पुनः सवाल को दोहराते हुए प्यारी कविता को भी जरूर पहुंचाते हैं। सवाल हमने आपके लिए रखा था कि वो कौन सा जगह जब नदी समुद्र में मिलती है, इसी कारण उसको गंगा सागर, और उन्हीं जगहों पर विशेष मेला लगता है। गंगा सागर का मेला भी ऐसे ही, जो गंगा है जब सागर में समाती उसके पहले का जो स्थान कहा जाता है, उस मिलन के एरिया को क्या कहते हैं? यही शब्द है, क्या वो शाखा है या फिर बी मुहाना बोलते हैं या फिर सी केंद्र बोलते हैं? भाई झटपट जवाब दीजिए। नंबर है 9414151415। आप लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं उड़ान, मैं हूं आपके दोस्त मोरा। तो चलिए दोस्तों, ये प्यारी सी कविता, जब बात अमेजिंग इंद्रधनुष से थी तो क्यों नहीं कविता भी कुछ ऐसी बने। बरस बरस बादल बिखरा है, आसमान खुलकर निखरा है, किरणें खिल खिल झांक रही हैं, अपनी शोभा आंक रही हैं, धरती के छोरों तक मिलता, आसमान के ऊपर खिलता, रंग हरा नारंगी पीला, रंग हरा नारंगी पीला, लाल बैगनी नीला नीला, आसमान का रंग मिला, फिर इंद्रधनुष रंग फिर से खिला। चलिए दोस्तों, इंद्रधनुष तो खिल गया और आगे शिवानी जी हाँ आपसे कुछ कह रही है। उन बातों को जरा सोच समझो और फिर उन्हें जीवन में अपना लो। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नदी का किनारा। आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। मेहनत का असर, असली फल क्या है, सुन लेते कहानी में।
1: अजय सुनिए, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सब ठीक है ना? हाँ,
2: क्या करूँ बताओ, लॉकडाउन के चक्कर में सारे काम धंधे बंद हो गए हैं मेरे।
1: देखिए, अब जो होना था वो हो चुका है ना, अब कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। हाँ,
2: शहर में मिठाई का काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन शहर में लड्डू बनाने के अलावा दूसरा काम था ही नहीं। यहाँ पर मैं एक आधा दुकान देख लूँ क्या?
3: जो करना है वो करिए, पर घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये बात याद रखिए।
2: ठीक है, फिर मैं जाके वही करता हूँ अभी।
3: अरे वाह वाह वाह वाह, सुगंध तो बहुत बढ़िया आ रही है, लगता है बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। हाँ,
2: मेहनत का फल मीठा होता है, समझी भाग्यवान है।
3: अब सब अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा होगा।
4: सुनो, मुझे एक लड्डू दो।
5: एक खाने पर तो मन भर ही नहीं रहा।
2: अरे देता हूँ, आराम से बैठ के खाइए, और भी लोग हैं लाइन में यहाँ पर।
6: ठीक है, दीजिए, बैठकर ही खाते हैं।
5: ये लड्डू जो नहीं खाएगा वो पछताएगा, क्यों काका?
6: हाँ सही कहा, पहले भी मैंने यहाँ लड्डू खाए हैं, पर ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए।
5: लाजवाब है।
6: अरे भाई, जो ये लड्डू एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा।
2: एक खाकर भी लोगों का मन नहीं भरता है, मुझे लगता है कि मेरा कारोबार यहीं पर सेट हो जाएगा।
3: क्या खाक जम गया है? हाँ, क्या खाक जम गया है? रोज रोज ये ऐसे चिल्लर ही तो गिनते हैं आप।
2: बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है भाग्यवान। हाँ, मेरा कारोबार रफ्तार पकड़ लेगा। हाँ।
3: बूंद बूंद से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो पूरा सागर चाहिए।
2: अच्छा, तू रातों रात बड़ा होने का सपना देख रही है? हाँ?
3: अब जब आप समझ ही गए हैं ना, तो पूरा करके भी दिखाइए। रोज रोज ना ये ऐसे चिल्लर नहीं, नोटों का बंडल गिन कर दिखाइए।
5: देख रहा हूँ, सभी उस दो दिन से आए उस लड्डू वाले के पास दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, और मेरे पास कोई भी नहीं आता। पर ये भूल गए हैं कि जो पुराना होता है वही असली होता है, बाकी तो नकली लड्डू बेच रहे हैं।
6: पर सभी उसके लड्डू की बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ
5: हाँ, जब कल पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा कि लड्डू कैसा है, बेकार लड्डू।
2: ये सब झूठी झूठी अफवाहें फैलाकर मेरा धंधा बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। मैं अभी सही से जवाब दूंगा।

0: क्या यही गोविंद लड्डू वाले की दुकान है?
1: आप एकदम सही दुकान पे आए हैं। आइए बैठिए, ठंडा पानी पीजिए और गले को गीला कर लीजिए।
0: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हारे लड्डुओं की बहुत तारीफ सुनी है इसलिए आया हूँ। मेरे दुकान में गणेश पूजा है इसलिए मुझे 5,000 लड्डू चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये लड्डू बनाओ।
1: आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक पूजा के दिन आपको लड्डू पहुँचा दूंगा सब।
0: हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उफ, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी गोविंद का धंधा बर्बाद नहीं कर पाया। ओह, अब तो वो बड़ा दाव मार देगा, बड़ा दाव। नहीं नहीं, मैं चुपचाप खड़ा ये सब नहीं देख सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। कैसे एक तीर से मैं दो निशाने लगा सकता हूँ यही सोचना पड़ेगा। हाँ, जिससे कि ये गोविंद बदनाम भी हो जाए और उसका धंधा बर्बाद भी हो जाए। हाँ

0: आजी, सुबह से आप लगातार काम ही करते जा रहे हैं, थोड़ा सा खाकर आराम भी कर लीजिए ना।
1: लड्डू ही बना रहा हूँ भाग्यवान, चिंता मत करो तुम। बहुत बड़ा ऑर्डर है भाग्यवान, सेठ जी अगर खुश हो गए तो कोई चिंता नहीं। अब ये सारे लड्डू ठीक से सजा कर रख देता हूँ मैं।
0: सबको हांडी में भर कर रखते तो अच्छा नहीं होता?
2: नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। चाशनी को तुम अलग से रख दो, फिर सुबह क्या करना देख लेंगे हम।

कल सुबह रो रो कर तुम लोगों का जो हाल होने वाला है वो सोच कर मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाए लड्डुओं का गणेश नहीं गणेश के वाहन ही चटकर जाएंगे।

0: अरे ये क्या हो गया? अरे आके देखो भाग्यवान, सर्वनाश हो गया।
1: अरे अरे बाबा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ?
0: अरे देखो तो सही, कल रात तुमने इसको ऐसे ही खुले छोड़ दिया तो चूहों ने तहस महस कर दिया इन्हें।
1: क्या कहते हो, सच में अब क्या होगा?
0: अभी
1: क्या हो गया?
0: अभी मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर शाम तक लड्डू नहीं पहुंचाऊंगा तो बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी। हाय हाय, अब मैं क्या करूं?
2: बेटा बेटा बहुत ही भूख लगी है मुझे, खाना नहीं तो पानी पिला दीजिए।
0: हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए, पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है, आइए मेरे साथ में देता हूँ।
2: वो क्या है, लड्डू? मुझे भी एक दोगे, एक दोगे मुझे?
0: मेरे सारे लड्डू चूहे खा गए बाबा।
2: तो क्या हुआ, उसमें से ही मुझे एक दे दो ना बेटा, दे दो।

0: अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने में बहुत ही अच्छे हैं बेटा, बहुत ही अच्छे हैं। वाह,
1: बहुत बड़ी समस्या हो गई, पता नहीं अब मैं अपना मुंह सेठ जी को कैसे दिखाऊंगा।
0: सच्चाई के रास्ते पर चलकर और मेहनत करने पर उसका फल अच्छा ही होता है, तुम दुखी मत हो बेटा। और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें क्या दूं, बोलो बेटा।

0: तुम ये मिट्टी की हांडी ले लो बेटा, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। अब मैं चलता हूँ। हाँ
1: हाँ बाबा, ठीक है ठीक है। अब इस हंडी को कहाँ रखूंगा? हाँ, जो कुछ बचे कुचे लड्डू है वो इसमें डाल देता हूँ।
2: सबको आप अपनी हांडी में क्यों भर कर रख रहे हो? लाइए, इन्हें फेंक देती हूँ।
1: फेंक दूँ?
2: हाँ हाँ, फेंक दीजिए फेंक दीजिए।

0: अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लड्डू कहाँ से आ रहे हैं?
1: अजय, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हंडी जरूर जादुई है। चलिए अब जल्दी जल्दी हाथ डालकर निकाल लीजिए, 5,000 लड्डू निकाल लेंगे हम। अरे देख क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए ना।
0: हाँ सही कहा भाग्यवान, उस बूढ़े बाबा के जादुई हंडी में मुझे लगता है उनका ही कोई कमाल होगा। ठीक है भाग्यवान, जाके देखता हूँ सेठ जी को खुश कर पाता हूँ कि नहीं।
1: अरे आज तो इस जादुई हंडी की वजह से हमारी इज्जत जाते जाते बची है। अब जाकर देखती हूँ उस हंडी में कुछ और रखने से और क्या निकलता है।

अपने हाथों के इन कंगनों को निकालकर इसमें रख देती हूँ। अरे वाह, इतने सारे कंगन! अब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। लगता है रातों रात हमारे भाग खुलने वाले हैं। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता।

0: हाँ, सारी चिंताएं मिट गई। सेठ जी ने खुश होकर तोहफा दे दिया। अब जो मेरे पास जादुई हंडी आ गई है तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। एक मिठाई बनाऊंगा, फिर हंडी के अंदर डाल के बहुत सारी मिठाइयां बनाऊंगा, फिर मैं उन्हें बेच दूंगा। क्या बात है।
1: अरे वाह, ये हार, कान की बाली, ये कंगन और कितने सारे गहने, सबको मैंने दोगुने, तीन गुने, चार गुने, आठ गुने कर दिया है। अब ना एक काम करती हूँ, इन जूतों को डालकर देखती हूँ क्या होता है। हा?
0: अरे अरे, ये क्या कर रही हो, एक साथ सब डालोगी तो वो फूट जाएगी।
1: आप ना हर बात पर मुझे टोकते हैं। आप बस अपना मुंह बंद रखिए, एक ही दिन में हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए। हाँ। अरे अब ये क्या हो गया जी, ये हांडी तो टूटकर चकनाचूर हो गई। हमारी किस्मत मिट्टी में मिल गई, अब क्या होगा।
0: क्या होगा, लालच का फल बुरा ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। लगता है तुम भूल गई थी, जो मेहनत करके सत्य के रास्ते पर चलता है वही भाग्यशाली होता है। अब मैं नए से शुरू करूंगा सब।
2: अरे भाई गोविंद, मुझे भी एक देना भाई, मतलब जब सभी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी दे दो। हाँ, एक दे दो।
0: खाओ भाई, खाओ खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। खाओ खाओ।
3: एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे, क्या चीज, मेहनत का असली फल। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये विश्व एक परिवार है, इसकी

0: रहे हैं।
1: दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वो जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी शांत और पॉजिटिव रहता और हमेशा ये कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वो घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास गए और दुख जताते हुए बोले, आपका घोड़ा खो गया, ये बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हैं। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की ये बात समझ नहीं आई और वो अपने अपने घर चले गए। कुछ महीनों बाद वो घोड़ा वापस आ गया और इस बार वो अपने साथ कई और जंगली घोड़े भी ले आया। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और उत्साह से बोले, आपका घोड़ा खो जाना अच्छा था, अब आपके पास इतने सारे घोड़े हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं। इस पर किसान ने फिर से शांत स्वर में कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं लेकिन मुझे कोई विशेष खुशी नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात फिर से समझ नहीं आई और वो अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया, लेकिन एक दिन वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और अफसोस जताते हुए बोले, शायद इतने सारे घोड़े मिलना अच्छा नहीं था, अगर ये घोड़े नहीं होते तो आपके बेटे की टांग न टूटती, आप बहुत बदकिस्मत हैं। किसान ने फिर वही बात कही, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की ये बात फिर समझ नहीं आई और वो अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हो गया, राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। लेकिन किसान का बेटा युद्ध में जाने से बच गया क्योंकि वह घायल था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और भावुक होकर बोले, आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप कितने खुशकिस्मत हैं, पर हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बेटे युद्ध में चले गए, हमें नहीं पता वो वापस आएंगे भी या नहीं। गांव वालों ने किसान से पूछा, हमने आपको जीवन के मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। किसान मुस्कुराया और कहा, हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहली बात, लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि उनकी बातों को ध्यान देने का मतलब है अपनी खुशियों की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना। अगर लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और अगर बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, कभी भी किसी बात को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जिस तरह किसी किताब के सिर्फ एक लाइन को पढ़कर ये नहीं बताया जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, उसी तरह लाइफ के किसी एक इंसिडेंट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी जिंदगी के लिए अच्छी थी या बुरी। आज जो घटना अच्छी लग रही है वो कल बुरी साबित हो सकती है, और आज जो घटना बुरी लग रही है वो कल अच्छी भी लग सकती है, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा। आपके साथ क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके हाथ में हैं। इसलिए अपने कर्म और सोच को अच्छा बनाओ और बाकी चीजें ऊपर वाले के हवाले कर दो, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, बस ईश्वर पर भरोसा रखो। दोस्तों, हमारे आसपास कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई हिम्मत हार चुका हो, कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा हो, या कोई अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुका हो। शायद सिर्फ एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद

0: मधुबन खुशबू देता है इस खूबसूरत चंद लाइन को आप तक पहुंचाया। अब आगे बढ़ते हैं और आज वह स्थान क्या कहलाता है जहां नदी और समुद्र मिलती है। तो ए था शाखा, बी था मुहाना और सी था केंद्र। और सही जवाब न तो केंद्र है न शाखाएं हैं, बल्कि मुहाना कहते हैं। वह स्थान मुहाना कहलाता है जहां एक नदी और समुद्र मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं तो आज बच्चों का टैलेंट को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन का मंच दे रही। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात में पहुंचे क्योंकि आप सबको विदित है रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है, बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलता है जिस मंच का माध्यम से अपना हुनर अपना प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का भाव भावना और स्वर लय का साथ उनका जो विशेषता आज जन जन तक पहुंचाएंगे क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, समुदाय का भागीदारी देखने को मिलता है। हर विद्यालय में बच्चों को मंच मिलता है, उनका जो तुतली तुतली आवाज हो चाहे उनका दिल का भावना है, शुद्धता पवित्रता और ज्ञान युक्त बात करते हैं। तो आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज खड़ात का आवाज सुनने को मिलेगा। सभी हमारा परिया नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, सभी 8th क्लास का बच्चियां हैं, सभी अपना नाम बताएंगे और कौन सा गांव से कौन सा फल से आते हैं।
1: मेरा नाम है सविता।
0: सविता गुड,
1: जोड़िया से आती हूँ
0: जी।
1: कौन सा क्लास? 8th में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड। आपका विद्यालय का पूरा नाम बताए सविता।
1: राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय अब रोड खड़ा।
0: वेरी गुड।
1: मेरा नाम रेखा है, मैं खड़ा से आती हूँ और राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ कक्षा 8 में।
2: मेरा नाम मानसी है, मैं खड़ात में रहती हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय का नाम राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात है।
3: मेरा नाम पूजा है, मैं जोड़िया से आती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात।
4: मेरा नाम अम्मिया है, 8th क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम है राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय।
5: मेरा नाम असुगना है। मेरा नाम मेवा है, मैं खड़ात से आती हूँ कक्षा 8।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
6: मेरा नाम पार्वती है, मैं राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
7: मेरा नाम द्रौपदी है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात।
0: वेरी गुड। सबका आवाज सुन लिया और हमारा बच्चे जब इस तरह प्रोग्राम में भाग लेते हैं उनका मम्मी पापा आए लोग जो सुनते हैं बाप माँ सुनते हैं और फ्रेंड्स सुनते हैं और बड़े दादा दादी नाना नानी सुनते हैं तो बोला रहे ये हमारा पार्वती का आवाज है, ये हमारा गुड़िया का आवाज है। तो जब सुनेंगे खुशी लगेगा। चलिए पहला प्रस्तुति एक प्रार्थना का रूप में गाएंगे सभी माँ शारदा का क्योंकि हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में बच्चे प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इस बच्चों को भी हमें एक मौका देंगे तो उनका स्वर लय और ताल का साथ दिल का भावना हृदय का संगीत जब इस तरह मौका में देते हैं तो हमें खुशी लगता है। चलिए देर किस बात की, आज सुनेंगे प्रस्तुति, पहला प्रस्तुति होगा और खड़ात विद्यालय के भावना को आगे पहुंचाएंगे। रेडी सभी बच्चे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञान से ज्ञान की ओर, बच्चे ज्ञानवान होंगे, समझदार बच्चे होते हैं। और माँ शारदा से ऐसे प्रार्थना में अपना दिल का भावना को प्रकट करते हैं तो हमें बहुत खुशी है। बच्चे को देखकर बड़े बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो है ही है, बड़े बच्चे भी कुछ प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, क्योंकि बड़े दीदी है ये तो छोटे छोटे बच्चे है, और उनका बड़े दीदी 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास का बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम हेल्दी वेल्दी हो जाएगा और सबको साथ लेकर चलना होता है। तो आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए पार्वती एंड ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परियां। तो बड़े होकर नाम रोशन करेंगे, बड़े होकर पार्वती तुम क्या बनेगी? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। वाह, टीचर का काम क्या होता है?
1: पढ़ाना।
0: पढ़ाना, आज पढ़ रहे हैं और आगे जाकर पढ़ाएंगे।
1: हाँ।
0: उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा पार्वती, है ना, पूरा ध्यान से, मन और बुद्धि से, जैसे माँ शारदा से ज्ञान की तरफ चलना है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे। घर में कौन कौन है द्रौपदी?
1: घर में मेरी मम्मी है, पापा है, बहन और भाई है।
0: सब अच्छे से पढ़ाई कराने के लिए सहयोग देते हैं।
1: हाँ।
0: चलिए नेक्स्ट के लिए हमारे साथ तुम बड़ा कर क्या बनेगी?
1: मैं टीचर बनूंगी।
0: टीचर, सब तो टीचर ही बनेगा और बहुत अच्छा है, मैम बनेंगे तो बच्चों को अच्छा अनुशासन देंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा बड़े बच्चे भी कुछ प्रस्तुत करेंगे तो एक प्रार्थना का रूप में हो जाएगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: एक के बाद एक प्रस्तुति आपको मिलने को जा रहा है और हमारा सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। छोटे बच्चों को देखकर बड़े बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे और वो भी अपना प्रस्तुति देने के लिए तत्पर है, प्रस्तुत है और प्रस्तुति के लिए रेडी है। सभी प्रस्तुत होकर आए हैं। हमारा बड़े बड़े बच्चे हैं जो कि स्कूल का शान है, घर का मान है और अपना बात को रखने के लिए एक प्रस्तुति सुनाएगी जो कि चार छात्रा है। तो अपना परिचय देंगे और कहाँ से और बढ़ होकर क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य क्या, आपको तो समझ आया आज क्या बनना चाहते हैं। आपके हाथ में सब कुछ है, आपके ऊपर सभी विश्वास करते हैं, ट्रस्ट, माँ बाप का भी ट्रस्ट, हमारा भी विश्वास है। हम तुमको विश्वास दे, तुम हमें विश्वास दे, कहते हैं ये गीत, तब ये धरती अच्छा बन पाएगा। चलिए हमारा साथ चार छात्र है तो अपना अपना परिचय देंगे।
2: मेरा नाम प्रेरणा है, खड़ास से आती हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ास में पढ़ती हूँ, क्लास 12th।
1: वाह, बड़ी बच्ची होगी और इसका बात तो करियर बनाएगी 12वीं क्लास का बात, करियर क्या बनना चाहेगी?
2: टीचर बनना चाहती हूँ।
1: टीचर ही तो, इसलिए मेहनत करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट,
3: मेरा नाम भावना है, मैं खड़ास से आती हूँ और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ास है और मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ।
1: सभी टीचर बनने के लिए IAS ऑफिसर, कलेक्टर, डॉक्टर ये सब क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि
3: टीचर ही बनना चाहते हैं।
1: टीचर अच्छा है, कलेक्टर से भी अच्छा टीचर है।
4: मेरा नाम नंदनी है, मैं खड़ास से आती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ास है और मैं टीचर बनना चाहती हूँ।
1: तो देखिए बच्चों का जो उमंग उत्साह है, आज बच्चे बड़े होकर कोई कलेक्टर, कोई टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि उनको एक मंच आज मिल रहा है जो आवश्यकता था। तो छोटे बच्चे भी आज इस कार्यक्रम को सजा रहे, बड़े बच्चे भी इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते, आप अपना परिचय देंगे।
5: मेरा नाम साक्षी है, मैं खड़ास से आई हूँ, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ।
1: वेरी गुड, चलिए एक प्रस्तुत सुनाएंगे सभी।

0: शुद्धता देगा।
1: क्या बात, क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुत है। इसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। हे आत्माएं, परमात्मा, सब चीज इसमें है। हमें ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ाने के लिए खुद को आत्मा समझ कर पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमें बहुत कुछ शक्ति मिलती है। जैसे बच्चों को आज ज्ञान आत्म प्रबंधन में बच्चों को सिखाया गया था, है ना। आत्मा और परमात्मा शब्द आया कि नहीं गीत में? तुम्हारा शब्द है लेकिन भूल गए। आज मैं बोला था ना तो आप लोग का पास वो ज्ञान है, लेकिन क्या करना है उसको थोड़ा बुद्धि से काम में लेना है। जैसे प्रश्न पूछा था, तुम सब कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे, ऐसे प्रश्न था ना। लेकिन आज तो कविता का माध्यम से बच्चे भी गीत का माध्यम से भावना को, भाव को प्रार्थना का रूप में ऐसे हर विद्यालय में करते तो हमें बहुत खुशी लगा। तो बड़े होकर सब तो अपना अपना उमंग उत्साह से करेंगे काम, और ट्वेल्थ का बाद करियर जो देश को चाहिए, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व चाहिए, एक अच्छा मानव चाहिए। डिग्री तो सबके पास है, लेकिन डिग्री होने से क्या, माँ बाप को सम्मान देना नहीं आता, बड़ों को सम्मान नहीं देना आता है, तो उसमें क्या फायदा डिग्री का। लेकिन एक अच्छा इंसान बनेंगे तो सभी लोग प्रशंसा करेंगे, हाँ कि नहीं?
2: हाँ।
1: अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ा? अच्छा सोच। सोच कहाँ से निकलता है?
2: आत्मा से
1: निकलता है, बुद्धि से निकलता है, जाम पिंडी चंदन वहां से निकलता है। आत्मा निकल जाएगी, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा है तो परमात्मा को याद करते, जैसे प्रार्थना में परमात्मा शब्द आया कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारे छोटे बच्चे ओवन हर बच्चे एक प्रस्तुत देंगे, लेकिन ये सभी बड़े बच्चे हैं, सब करियर बनाना चाहते हैं। और मेहनत, कितना घंटा मेहनत करती तुम पढ़ाई के साथ साथ? स्कूल में तो 5 घंटा पढ़ाई होता है, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ना। व्यर्थ से मुक्त, खराब दोस्त से मुक्त, मोबाइल से मुक्त, कहाँ कहाँ समय निकालना पड़ेगा? आपके पास 24 घंटा है। तो सुबह उठना, जल्दी उठना, जल्दी सोना और जल्दी
2: उठना।
1: कौन कौन करते हैं? करते तुम? कितने बजे सोती तुम?
2: 9 बजे।
1: वेरी गुड। और उठते कितने बजे?
2: 6 बजे।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम?
3: 10 बजे।
1: 10 बजे हो जाता, अच्छा। और सुबह?
3: 5 बजे।
1: क्या बात, बहुत अच्छा, इससे तो आगे है। 6 बजे उठ, लेट से सोती, जल्दी उठ जाती। तुम?
4: मैं रात को 11 बजे सोती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ।
1: 11 बजे इतना समय मैंने होमवर्क रहता है पढ़ाई ना मोबाइल में?
4: नहीं, मोबाइल नहीं।
5: मैं तो 10 बजे सोती हूँ और 6 बजे उठ जाती हूँ।
1: 6 बजे, लेकिन 4 बजे उठ कौन उठता है? 4 बजे, 5 बजे उठने के लिए कोशिश। 5 बजे का समय अमृत वेला, ठीक है? तो उठने के लिए कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: प्रस्तुति के लिए हमारा छोटे बच्चे फिर स्वागत कर रहे हैं. छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे भी कम नहीं, बड़े बच्चों को भी टक्कर देने के लिए आए हैं और सभी 8th क्लास के होंगे शायद. तो अपना अपना नाम बताएंगे क्योंकि हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए तीनों छात्र उपस्थित है. सभी आदिवासी फील्ड से आते हैं.
2: मेरा नाम मेवा है, क्लास 8.
1: वेरी गुड. तुम्हारा नाम?
3: पार्वती. मेरा नाम 8 में पढ़ती
1: जी.
3: मेरा नाम सुगुना. मैं 8 में पढ़ती.
1: वेरी गुड. चलिए सुगुना, पार्वती और उनका दोस्त को स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए. खड़ात का विद्यालय के बच्चे है, तो शुरू करिए बच्चे.

0: स्वर का दाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और एक प्रस्तुति सुनाएंगे, पार्वती अपने साथी को पुनः स्वागत करते हैं और एक गीत प्रस्तुत करने के लिए। ओके शुरू।

0: कमजोर होना।
1: क्या बात क्या बात, मन का विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना है और विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में ही जगत है, हम विश्वास करना चाहिए। विश्वास तुमको करेंगे, तुम हमें विश्वास करेंगे तो हमारा कार्य अति सहज हो पाएगा और सफलता पूर्ण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते सभी, बड़े होकर तो नाम रोशन करेंगे। और क्या बताया था नाम? मेवा। वाह मेवा रे मेवा। मेवा कौन नाम रखा?
2: मेरे मम्मी पापा ने।
1: पापा ने रखा मेगा। मेगा मतलब क्या है? इसका नाम है। अच्छा वेरी गुड। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अगला प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन
2: ब्रेक का पहले हम बड़े बच्चों का सुन रहे थे देशभक्ति गीत, क्योंकि देशभक्ति का साथ साथ प्रकृति पर्यावरण हमें बहुत कुछ देता है, हमारा देश भी हमें बहुत कुछ देता है और बच्चे भी हमें गीत के माध्यम से अपना भाव को देते हैं। हमारे रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सजाने के लिए आज चल पड़े और एक के बाद एक गीत प्रस्तुति हो रहा है। सभी खुशी से अपना मुस्कुरा रहे हैं और सभी पुनः स्वागत कर 8 क्लास का बच्चे हैं। सभी नाम बताएंगे।
3: मेरा नाम रेखा है।
2: रेखा।
3: मेरा नाम हिमांशी है।
2: हिमांशी।
3: मेरा नाम द्रौपदी है।
2: द्रौपदी।
4: शुरू करिए।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना आन शान बान देश का रक्षा करने के लिए चाहते हैं। और तिरंगा हमारा सबसे शान, हर जगह में तिरंगा को सलाम करते हैं, जहां भी मिलते हैं हम सम्मान देते हैं। तिरंगा है तो एक पहचान, भारत का पहचान तिरंगा, जातीय पताका, जातीय झंडा कहते। और बच्चे तो लहरा है लहरा दे, और अगस्त 15 जनवरी 26 ऐसे राष्ट्रीय पर्व में गाते हैं और झंडा भी फहराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक छोटा प्रस्तुति सुनाएगी, तो अल्प विराम का बाद।

0: यूं तो बच्चे सच्चे होते हैं और महात्मा होते हैं, और एक को देखकर दूसरे बच्चे भी हम भी करेंगे सर, हम भी गीत गाएंगे, हमारा संगीत को लीजिए, हमारा संगीत को लीजिए। तो चलिए अंतिम प्रस्तुत में सभी को चांस दे रहे हैं, और सभी नया नया बच्चे भी आए अपना आवाज को बुलंद करने के लिए।
1: मेरा नाम पूजा है।
2: मेरा नाम है सविता।
3: मेरा नाम द्रौपदी है।
4: मेरा नाम हिमांशी है।
5: मेरा नाम रेखा है।
6: मेरा नाम अम्मी है।
0: चलिए शुरू कर।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सभी को नाम का सा धन्यवाद। ये था राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात का आवाज। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब बच्चे सच्चे दिल से आते हैं तो अपना बात को रख पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाम का साथ।

होस्ट आत्मिका का प्यारा सत श्री अकाल, सदगुरु की महिमा गाई जाती है। और जब परमात्मा आपका सच्चा सदगुरु और साथी बन जाए तो इस जीवन रूपी नैया को किनारा मिल ही जाएगा। तो चलिए उस सच्चे बादशाह का शुक्राना करते हैं इस सुंदर डिवाइन मैशअप द्वारा। हमारी आज की सिंगर हैं बीके शिखा और उनका साथ देंगे बीके मून और बीके स्वरा।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो की कैन हो। जी हाँ, रेडियो मधुबन 107.8 FM से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातें। आज 29 जुलाई की खूबसूरत और शांत शाम, या फिर आप रात भी कह सकते हैं, मैं आपका दोस्त, केवल आपका हम सफर लेकर आया हूँ मैं सुरों को, एक ऐसे कारवा को जो दिन भर की थकान को भुलाकर आपके दिल को सुकून से भर देगा। कहते हैं कि रात का ये वक्त बड़ा ही खास होता है। जब शहर सो जाता है तब पुरानी यादें कुछ मीठे नगमे और दिल की सच्ची बातें जाग उठती है। तो बस अपनी चाय या फिर कॉफ़ी या फिर भोजन, जो भी आप कर रहे हैं, लीजिए, खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस कीजिए और अगले कुछ घंटे, एक घंटों के लिए हमारे साथ इस सुहाने संगीतमय सफर में खो जाइए। चलिए आज की रात का आगाज करते हैं इस बेहद प्यारे और पुराने नगमे के साथ जो सीधे आपके दिल को छू लेगा। तो सबसे पहले सुनते हैं आज का हमारा ये यूथ एंथम और फिर सुनते हैं हमारे आज के दिन का पहला गाना। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी हमने बहुत ही प्यारा गाना सुना, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब है भाई भाई। जी हाँ दोस्तों, ये नारा तो हम 1947 से पहले से हम बांटते चल रहे हैं कि हम सब है भाई भाई और आपस में हमें प्यार बांटना है। और यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य भी होना चाहिए कि हर कोई जो भी हमें मिलता है, जो भी हमारे आसपास है, वो सबको हमें अपना सा मान के चलना है। तो ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये सब हमें अपनी लगने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाना था, मूवी है हम सब उस्ताद है, इसके जो गायक थे, जिसने इसे सुर में दिया है, किशोर कुमार साहब। इसे लिखा था असद भोपाली जी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे म्यूज़िक कंपोज किया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही प्यारा नगमा अभी हमने आप सुना। और चलिए हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे हम करते हैं बातें। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते। सुरेश
0: नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं?
1: सर
0: बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे बैठे हैं, बात सुन रहे, काम कर रहे हैं
0: जी, क्या बात है।
1: और गाने भी सुन रहे, प्यार बांटते चलो, बहुत
0: हाँ,
1: अच्छा गाना सुना दिया।
0: बिल्कुल,
1: अभी जरूरत है ऐसे रहने की।
0: बिल्कुल,
1: कभी कभी कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे से लड़े हो जाती है, एक दूसरे को अनबन हो जाती है। कोई ऐसा नहीं करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है,
0: बिल्कुल
1: प्यार से रहना है,
0: जितनी कोशिश हो सके उतना हम सबको अपना मान के चलना है। तो
1: बिल्कुल सही
0: बिल्कुल, कभी
1: बात है,
0: लड़ाई झगड़े होने की सवाल ही नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की सभी हमारे मित्रों को आपको आज के दिन की शुभकामनाएं। पूरा
0: जी
1: दिन चला गया, अच्छा दिन था, गुरु का दिन था, सब गुरु का
0: यस,
1: दिन था
0: आज, खास गुरु पूर्णिमा के दिन। यस
1: जी, आज बड़ी पूनम कहलाते हैं। मैं गुजरात में बहुत सारे ऐसा मंदिरों पर भीड़ रहती है आज,
0: हाँ
1: आज के दिन, क्योंकि जो गुरु होता है इसको गुरु के साथ जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए
0: जी,
1: और अच्छे मंदिरों में दर्शन करने के भी जाते हैं, क्योंकि आज का दिन ऐसा ही है करके, बस एक दूसरे को गले मिले, एक दूसरे के अच्छी तरह से रहे, और अंधकार की और उसके प्रकाश की और जाने का दिन है आज, क्योंकि वास्तव गुरु जो अच्छा गुरु मिल जाता है तो दिन और अंधे में से उजाले में आशा देते हैं। लेकिन कभी कभी पृथक गुरु मिल जाता है तो इस पर बहुत मुसीबत आ जाती है, कभी ऐसा लोगों के साथ ऐसा अच्छा ही होता है कभी कभी
0: जी,
1: लेकिन हमको अच्छा ग्रो करना है कि जो हमको अच्छा रास्ता दिखा सके।
0: जी बिल्कुल, और हर किसी के जीवन में, हर किसी के जीवन में एक ऐसा गुरु होना जरूरी होता है, या तो हम अपने माँ बाप भी कह सकते हैं।
1: पहले तो हमारा, पहले तो हमारा गुरु ही माँ बाप ही होता है,
0: जी,
1: क्योंकि सबसे पहले तो हमारा माँ बाप गुरु होता है, क्योंकि हमको जन्म देते हैं, पूरे पालना करते हैं
0: जी,
1: अपने अच्छा संस्कार कहते हैं, तो गुरु हमारा पहला माँ बाप भी है सर।
0: बिल्कुल,
1: बाद में गुरु आता है, हम पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे टीचर हमारे शिक्षक भी हमारे गुरु हैं।
0: बिल्कुल,
1: बाद में हमको अच्छा कोई टैलेंट देता है, अच्छा कोई सिखाता है, ये भी हमारे गुरु है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आप हमारे रेडियो मधुबन भी हमारा गुरु है, क्योंकि कई सारी बातें हमने सीखी है 15 साल में सर, क्योंकि हमको बोलना भी नहीं आता था, हिंदी बोलना भी नहीं आता था,
0: अच्छा,
1: लेकिन हम धीरे धीरे आपके साथ बात करके पूरी हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हैं।
0: क्या बात,
1: और बोल भी पाते हैं और अच्छी बातें भी कर पाते हैं
0: जी,
1: और रेडियो मधुबन में हम आते हैं तो अच्छे एक स्टेज पर हम बोल भी पाते हैं। कभी कभी क्या होता है सर
0: जी,
1: हम ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन स्टेज पे जाते बोलना, स्टेज पे अच्छी बातें बताना, ये भी एक हमारा रेडियो मधुबन ने हमको सिखाया है, तो हमारा रेडियो मधुबन भी हमारा गुरु है, हमारे आज सभी भाई भाई बहन बहुत अच्छी तरह से हमको एक अच्छा ज्ञान भी प्रस्तुत है सर, ये भी हमारा गुरु भी है।
0: क्या बढ़िया बात कही आज आपने,
1: बिल्कुल सर। चलो एक गाना भी मैं आपको देता हूँ, फिल्म का नाम तो शायद मुझे मालूम नहीं है,
0: कोई बात नहीं।
1: दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए, एक ऐसा गाना है सर, मुझे गाना का फिल्म का नाम याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं, चलिए हम कोशिश करते हैं आज ये गाना ढूंढ करके आपके लिए।
1: हमारे सभी, हमारे गुरु राम जी है, हमारा बुरा लाल जी है, बुरा राम जी को, हमारा राम राम मदन लाल जी है, कई सारे मित्र जो सुन रहे हैं, हमारे आज के दिन की शुभकामनाएं सर। नमस्ते,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: तो ये थे हमारे सुरेश जी, जिन्होंने हमें कॉल किया और बहुत ही प्यारा गाना हमें सजेस्ट किया है। चलिए कोशिश करते हैं उनके लिए ये गाना हम प्ले करें, दिल दीवानों का डोला, और उनके लिए हम प्ले करेंगे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, बात हो रही थी इस गाने के बारे में, तो बिल्कुल यही प्यार बांटते चलो, और इसी प्यार को बांटते बांटते अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, जो कि अगला जो गाना था हमारी फरमाइश है, हमें फरमाइश के रूप में मिला है हमारे भूरी लाल जी की तरफ से, और बहुत ही प्यारा गाना उन्होंने हमें फरमाइश किया, रोटी कपड़ा और मकान का। चलिए सुनते हैं पहले ये गाना और फिर करते हैं इस गाने के बारे में बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत ही प्यारा अभी हमने गाना सुना, हाय हाय ये मजबूरी मुझे पल पल ये तड़पाए, तेरी दो टकी आधी नौकरी ते मेरे लाखों दशा बन जाए। ये दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि आजकल खास करके आजकल के ज़माने में जब हमारे नौकरियां हमें इतनी होती है खास कि हम कैसा भी मौसम हो, कितनी भी बारिश हो, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हम अपने काम पे जाना नहीं छोड़ते। और कुछ लोग ऐसे खास होते हैं हमारे साथ जो अभी हमें कॉल किया है, हमारे कुछ खास ने, तो चलिए पहले उनसे करते हैं बात, फिर करते हैं दूसरी बातें। हेलो,
2: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ। और से
1: जी नमस्कार भूरा राम जी, कैसे है?
2: बस बैठ के आपके प्रोग्राम सुन रहा था।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
2: मैं बोला मेरे को आज गुरु पूर्णिमा है तो आपको उसके तो मैं को राम राम कर दूं।
1: जी थैंक यू सो मच, आपको भी राम राम गुरु पूर्णिमा की।
2: अच्छा, और सब मधुबन भाइयों को, सुरेश भाई, भूरेलाल जी, मदन भाई, सबको मेरा हाथ जोड़ के गुरु पूर्णिमा का राम राम।
1: क्या बात है, सभी को, चलो जो भी सुन रहे सभी को आपका आवाज जा रहा है।
2: अच्छा सर, और दूसरा एक कोई आज गुरु पूर्णिमा के दिन है तो कोई अच्छा गुरु महिमा का भजन सुनाएंगे तो अच्छा।
1: चलिए आपकी कोई खास, आपको कोई खास गाना याद आ रहा है गुरु पूर्णिमा के भजन पे?
2: मेरे को तो मारवाड़ी में तो, मैं तो सत्संग आदमी हूँ, पूरा मारवाड़ी में भजन आते, लेकिन अभी फोन के ऊपर कैसे गाओ।
1: कोई बात नहीं, कुछ कोई भी दो शब्द आप सुना दीजिए, कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं सुना दूंगा उसे।
2: इसीलिए आपको बोला कोई मारवाड़ी भजन ग्रुप महिमा का वो तो सुना देंगे तो अच्छा करें।
1: चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए प्ले करने के लिए।
2: ये अभी टाइम जाएंगे आपका और सब, मैंने तो मेरे को गुरु महिमा का तो अच्छे अच्छे भजन सुना दूंगा।
1: चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करते कोई अच्छा सा गुरु महिमा का आपके लिए गाना,
2: कोशिश करके अच्छा कोई रिकॉर्ड रहे तो सुना देना गुरु महिमा का।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ओके सर,
1: थैंक यू सो मच भूरा राम जी कॉल करने के लिए। और क्या बात है, हमारे भूरा राम जी ने बहुत ही बढ़िया बात करी है कि गुरु महिमा के ऊपर या गुरु के ऊपर कोई ऐसा हमें गाना मिल जाए राजस्थानी, तो कोशिश करते हैं हम आपके लिए प्ले करते हैं। लेकिन बात हम जो कर रहे थे कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे कुछ खास जो हमारे साथ रहते हैं, घर में होते हैं या बाहर में हमारे खास जो हमारे बहुत करीब है, वो कई बार ऐसे चीज़ें बोलते हैं कि तेरे ये नौकरी और तेरी ये दो तकिए की नौकरी के चक्कर में मेरा ये सावन जाए, बिकॉज सावन के समय में घूमना, सावन के समय में बारिश में भीगना या फिर उन झरनों पे जाना तो हर किसी को पसंद है ना दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बहुत ही प्यारा नगमा एक हमारे लिए वेट कर रहा है। हमारे सुरेश जी ने हमें ये फरमाइश दी थी, दिल दीवाने का डोला, तो चलिए सुनते हैं पहले ये नगमा और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ किखाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने जो गाना सुना, दिल दीवाने का डोला, दिलदार के लिए मैंने रंग बसंती चोला मेरे यार के लिए, अभी गाना था तहलका मूवी से। और इसके जो गीतकार थे हसरत जयपुरी जी और अनुराधा पोडवाल जी की आवाज़ में अभी हमने ये गाना सुना। बहुत ही प्यारा नगमा हमने ये सुना है। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की और। एक और जो नगमा है, पुकारता चला हूँ, खास दिल के करीब है, उसे हम सुनते हैं और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी जो हमने गाना सुना, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। यार दोस्तों, गोल्डन एरा के गानों की बात ही अलग होती है। जब भी 1960 के दशक की रोमांटिक या बेफिक्री नगमे याद आते हैं तो एक चेहरे आंखों के सामने आ जाता है, द वन एंड ओनली विश्वजीत जी। और उनके साथ अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ हो तो बात ही क्या है। 1965 में आई फिल्म मेरे सनम का वो सदाबहार नगमा पुकारता चला हूँ मैं, अभी जो हमने गाना सुना, ये गाना सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि अपने दौर का एक ट्रेंड सेटर था, जिसने उस ज़माने के युवाओं को अपना दीवाना बना दिया। गाने और फिल्म से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प बातें हैं, चलिए सुनाता हूँ मैं आपको। ओपी नैयर साहब का जादुई संगीत था इस गाने में, जहाँ रिदम ओपी नैयर साहब के ट्रेडमार्क टांगे चलाने की, यानी कि आपको पता है घोड़ा गाड़ी की दम, और काउबेल का बेहतरीन इस्तेमाल इस गाने में किया है उन्होंने। अनोखी ताजगी जो दी है उन्होंने, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल इसमें है। मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने इस गाने में जिस तरह से जुल्फों के छाँव और बाहर की गली का जिक्र किया है, वो सीधे दिल में उतर जाता है। और एक चीज़ और है, विश्वजीत जी का स्टाइल आइकॉनिक बना देता है इस गाने में। विश्वजीत जी को जो अपन जीप में सफ़र करना, उनके कोट पैंट पहनने का अंदाज़ और सिर पर खास स्टाइल की कैप, ये सब 90s की यानी कि 60s के दशक में स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। आशा जी और रफ़ी साहब की जोड़ी इस गाने में दी है। भले ही यह साल सोलो सॉन्ग रफ़ी साहब की आवाज़ में अमर हुआ, लेकिन फिल्म मेरे सनम की बाकी गाने जैसे जाइए आप कहाँ जाएंगे या जो भी दूसरे दो तीन गाने थे, उसमें आशा भोसले जी की और रफ़ी साहब की जुगलबंदी में के कमाल कर दिया था। काफ़ी गाने इस मूवी में भी हिट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो अगला नगमा है वो भी हमारे बहुत ही प्यारा है, प्यारा तो है। और आज जैसे हमारे भूरा राम जी ने कहा कि कुछ भजन या कुछ भी सुना दीजिए गुरु पूर्णिमा पे, तो गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु हमारे जो खास देवताओं की बात करते हैं, तो उस पर एक छोटा सा गाना भजन कह सकते हैं आप, ये याद आया तो ये सुना देते हैं भूरा राम जी आपको। सुनिए ये गाना रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: फिटनेस ये जेन्युइन है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: वेलकम बैक दोस्तों। ये गाना अभी हमने सुना, मूवी थी झनक झनक पायल बजे 1955 में। सोचिए 1955 में ये गाना आया था और इसमें लता मंगेशकर जी का आवाज़। सोचिए 1955 में लता मंगेशकर जी कितने यंग थे और उस वक्त ये गाना उन्होंने गाया था मन्ना डे जी के साथ। ये उनकी जुगलबंदी थी। और क्या गाने के सुर है इसमें, बहुत ही लाजवाब लग रहे। हसरत जयपुरी जी इसके गीतकार थे और संगीत दिया था वसंत देसाई जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की। और अगला नगमा जो है वो भी बड़ा प्यारा है, प्यार का फसाना। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और फिर करते बातें। सुनते रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य है, मगर क्या स्वास्थ्य इतना ही है? आज अगर हम स्वास्थ्य का ना होना भी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य समझते हैं तो भी आज हम देखते हैं कि कई लोग दवाइयों को खाते हुए अपने आप को स्वस्थ समझकर चलते हैं। कई लोगों को आदतन गोलियां खाने की या किसी न किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की आदत हो जाती है। लोग कहते भी हैं कि भाई, इन दवाइयों के साथ तो ठीक चली रही है गाड़ी, तो फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी कई लोग मानने लगते हैं। जब हम स्वास्थ्य के बारे में सही जागरूकता नहीं रखते तो ऐसा होता है कि हम अपनी अपने स्वास्थ्य की मान्यताओं को ही सत्य मानने लगते हैं। इसलिए ये जानना भी आवश्यक है कि सही अर्थों में हम स्वास्थ्य को कैसे समझें और अपने परिवार और अपने स्वजनों को स्वस्थ बनाने में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आइए, आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। आज हमारे मार्गदर्शन के लिए स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई व्याधि ना हो, कोई पेन नहीं हो बॉडी में, तो लोग समझते हैं कि ऐसे किसी प्रकार का पेन ना होना या बीमार ना होना ही स्वास्थ्य है, ऐसा कई लोग समझ लेते हैं। और कई कई बार तो लोग उससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई, मैं अगर ये दवाई लेता रहता हूँ, हर दिन मैं ये गोली खाता रहता हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं स्वस्थ ही हूँ, मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इसको भी स्वास्थ्य का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन समझ कर लोग चलने लगते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे
1: श्री भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात की है, एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बात करता है कि सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने चाहिए। आज इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अखबार अभी देखेंगे खोलकर, जब बच्चों का 10वीं या 12वीं का रिजल्ट निकलता है, उनका परीक्षा फल आता है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि ये बच्चा 99.99% पाया, और कुछ बच्चे तो इतना अच्छा नंबर पा रहे हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। पर आप ये भी तो देखिए कि बहुत बच्चे मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, तो वो तो मानसिक रूप से परेशान हो ही जा रहे हैं, साथ साथ उनके माता पिता भी उस बच्चे के नंबर न होने से भी परेशान हो जा रहे हैं। तो आप इस पूरी व्यवस्था को स्वस्थ व्यवस्था नहीं कह सकते। आप अगर किसी भी व्यक्ति के बढ़ने से कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है और आप अगर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप उसको स्वस्थ व्यवस्था नहीं मानेंगे। आप ये सोच रहे हैं, आपका दिमाग कुछ ज्यादा सोचता रहता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्या मेरे खाने में कुछ गलत मिला हुआ है, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या ये जो मैंने कपड़ा पहना है ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आप बार बार इसी चीज के लिए परेशान होते रहेंगे तो आपको ठीक से स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। सिर्फ शरीर में कोई दर्द ना होना, कोई व्याधि ना होना, कोई परेशानी ना होना, जैसे हम लोग अभी डायबिटीज की बात किए, आप पेशेंट को, मरीज को मालूम ही नहीं चलता है कि डायबिटीज है, उसको पता चला कंधा बस जाम है, कंधा जाम है, अरे कुछ तरह दर्द हो गया होगा, अरे जिम में खींच गया होगा, अरे हाथ खींच लिए होंगे, ये सारा हम बस बोलते रहेंगे और पता चलता है कि अरे भाई, ये तो डायबिटीज निकल गई। महिलाएं कितनी आती हैं कि उनको मासिक धर्म की समस्या हो रही है, महिलाएं आ रही हैं जिनको बाल झड़ रहे हैं, थकान बहुत लग रही है, उनको पसीने में दुर्गंध होने लगी, फिर अरे ये तो बहुत दिन से चला, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तब मालूम चले रहे आपको तो थायराइड की समस्या शुरू हो गई, हार्मोनल समस्या शुरू हो गई। तो मैं सब बहुत एक खतरनाक एग्जांपल कैंसर है, आदमी को मालूम ही नहीं चला, जब वो सेकेंड फेज थर्ड फेज में चला गया तब पता चला अरे भाई ये तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है आपके शरीर में कहीं पे, और आप सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, पर आपको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप तीनों तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके रोज कोई दवा या गोली अपने दिमाग से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने सेंस से मत खाइए। जब तक किसी डॉक्टर ने आपको ना लिखी हो, जब तक आपको ये समस्या हो, कुछ गड़बड़ आपके अंदर निकले, कुछ ठीक चीज ना हो, तो आपको वो दवा खानी चाहिए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि रोज मैं ये गोली खा लूं तो मैं ठीक महसूस करूंगा, रोज मैं ये, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ, कितने मरीज आते हैं, आप उनसे कहिए कि आप ये दवा खाते हैं, हाँ सुबह उठ के गैस की गोली खा लेते हैं, क्यों, हमको गैस बहुत बनती है। अच्छा, आप भोजन में कोई अपने वो किए, नहीं, भोजन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, हम बस ये गैस की गोली सुबह खा लेते हैं, फिर हमें जो मन में आता है हम खाते रहते हैं। अरे अपना भोजन सुधार लीजिए, आप अगर अपना भोजन सुधार लेंगे तो शायद आपको वो गोली की जरूरत न पड़े। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, अपने भोजन को सुधार लीजिए, और जहां तक हो सके अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके दवाई का प्रयोग मत करिए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों का, होम्योपैथी का, एलोपैथी का, इवन नेचुरोपैथी का अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके उनका प्रयोग मत करिए।
0: ये बात समझ में आती है कि आज हम दवाइयों के साथ अपने जीवन को ठीक चला रहे हैं और इसे हम स्वास्थ्य का परिचायक समझकर अगर चलते हैं तो वास्तविकता में ये हमारी भूल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आती है। अब दवाइयों के साथ जो चीजें हम कर रहे हैं, दवाइयां हर दिन खाने वाली जो चीजें एक रेगुलर चीज बन गई है, वो आम बीमारियों के रूप में भी हम देखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हम डायबिटीज और बीपी, इनके लिए लोगों को गोली लेते हुए देखते हैं। डायबिटीज के लिए मरीज डायबिटीज की गोलियां ले रहे होते हैं और कोई को अगर बीपी की समस्या है तो वो बीपी की गोलियां लेते रहते हैं। पिछले एपिसोड में हम ये बात कर रहे थे कि बीपी क्या है और इसे कैसे समझने की जरूरत है और क्या इसमें होता है शरीर में, ये चीज हम समझ रहे हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हम आम लोगों को, जैसे कोई घर आए मेहमान को पूछते हैं, वैसे ही हम पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज या बीपी तो नहीं है, और कहते हैं कि हाँ उनको बीपी है या डायबिटीज है तो भी हम बोलते हैं हाँ अच्छा ये भी ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल नॉर्म के रूप में इस बीमारी को देखने लगे हैं। तो प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के बारे में तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम समझते आए हैं, मगर बीपी की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे कि भाई बीपी भी कोई चीज है, बट आजकल ये एक कॉमन नोशन बन गया है, हर कोई मतलब बीपी की दवाई के बारे में बात करता है, बीपी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, इसका इसकी वजह क्या है?
1: जैसा भैया हम लोग ने आज शुरुआती बात में किया कि जैसे हेल्थ की जो डेफिनेशन की बात की कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, और कल जो हमने बातों में ये बात समझी कि देश में करीब 15 से 20 करोड़ लोग इस समस्या के मुहाने पे खड़े हैं, मतलब, और हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है इसीलिए फिगर हमेशा बहुत बड़े हैं, हम इतने स्ट्रेस में इस समय रह रहे हैं कि हमारा जो तनाव है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है। बहुत एकदम अगर साधारण रूप से समझिए कि अगर आप किसी चीज पे गुस्सा करते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है, आप पूरे शरीर में आपके कंपन होने लगता है, तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है कि मतलब आप किसी पे गुस्सा हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर आपकी प्रवृत्ति यही है कि आप बार बार हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो सबसे जो बड़ी चीज ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार परेशान हो जा रहे हैं, आपके ऑफिस में अगर कुछ हो रहा है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके व्यापार में कुछ हो रहा है, आप उसके लिए बार बार चिंता करेंगे तो उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, और अगर आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली मिल रही है वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब आदमी कम सो रहा, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा मोबाइल फोन है। हम लोग ने पिछले एपिसोडों में भी बात किया है, कृपा करके अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से दूर रखिए। अगर वो आपके हाथ में रहेगा तो आपको वो सोने नहीं देगा, और अगर आपको वो सोने नहीं देगा तो आप फिर अगले दिन सवेरे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जी भैया, आप लोग ने ये भी देखा है कि जो ब्रह्म कुमारीज का लिटरेचर है वो बहुत पॉजिटिव लिटरेचर माना जाता है, वो बड़ा अच्छा लिटरेचर माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ किताब पढ़ लें, हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ अच्छी चीज का अध्ययन कर पाए। ये तो हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर बच्चे को सुलाना तो कोर्स की किताब दे दीजिए, वो तुरंत सो जाएगा। तो हम अगर अच्छे विचार पढ़कर अगर हम सोएंगे तो हमारी नींद ठीक रहेगी, हमको मानसिक रूप से आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम अपने जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उस दोनों का तनाव कम कर पाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जरा ठीक से सोइए, पूरा 6 से 7 घंटा सोइए। मोबाइल के बाद जो दूसरा कारण ये देखा जा रहा है जो नींद लोगों की कम होती है वो है ट्रैवल टू वर्क, मतलब आप अपने घर से अपने काम करने की जगह पे कितना दूर जाते हैं। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ लोग वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा एक तरफ, मतलब दिन में 24 में से नॉर्मल है 2.5 से 3 घंटा वो अपना सिर्फ अपने काम की जगह पे जाने में और काम की जगह से अपने घर जाने में समय बिता दे रहे हैं। तो सोचिए 24 में से 3 घंटा तो लोगों का अपने सफर में ही बीत गया। तो आपके पास जो नींद का समय, जो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए, वो कैसे मिली? तो ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो अपना ट्रैवल टाइम कम करने की कोशिश करिए, और सोते समय प्लीज मोबाइल को जो प्रयोग है उसको कम करिए, तो आपकी नींद ठीक हो जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, जो आप अभी बात कह रहे हैं वो पता चलता है कि वो कितनी प्रासंगिक है। एक तो हम आज अपने ही ख्याल रखने के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम या तो अपने काम से रिलेटेड चीजें जो है उसको ही ज्यादा प्रामुख्यता देखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर हम सेल्फ केयर नहीं करते, अपने ख्याल रखने के बारे में हम ध्यान नहीं देते, तो हमारे अपने स्वास्थ्य को हम दरकिनार करते हुए इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है और इसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी हैं, ये बात समझ में आती है। और जैसे आपने कहा कि एक सकारात्मक लिटरेचर जो है, ऐसी पॉजिटिव चीजें जो ब्रह्म कुमारी इस परिवार में लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मिलती है, वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बहुत बार लोग ये कहते हैं हम करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है, मगर उसका उदाहरण यहाँ ब्रह्म कुमारी इस परिवार में हम देखते हैं कि लाखों लोग आज यहाँ सिखाए जाने वाले इन सरल विधियों को सीख कर अपने जीवन को सशक्त जीवन बनाते हैं, जीवन में छोटी छोटी तब्दीलियां करते हैं, बुरी आदतों से बच जाते हैं, अपने क्लॉक को, बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए सोने और जागने के समय को निर्धारित करते हैं। वो जैसे अक्सर राजयोग ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यही बताया जाता है कि आप स्वयं के राजा बनते हैं, आप अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने काबू में स्वयं को, अपने मन को, आप जो करना चाहते हैं वो सशक्त होकर कर सकते हैं, बात पता चलती है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर साहब मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि बहुत बार हम बीपी के बारे में सुनते हैं, तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत भी है कि हम इसमें मन का क्या रोल है, हमारे शरीर का क्या रोल है, और हमारे डाइट, खान पान इत्यादि का क्या रोल है बीपी की बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं या इससे ग्रसित होते हैं।
1: भैया, आपने अभी बड़ा अच्छा बताया, और जो अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करने आते हैं मैं जो भी सुन रहा है, मैं चाहूंगा प्लीज एक बार माउंट आबू वाले सेंटर पे जरूर जाइए। जब वो सवेरे 4 बजे आपको उठाएंगे मेडिटेशन के लिए, और उठाएगा कोई नहीं, ये बात गलत है, आप अपने आप उठ जाएंगे, आप अपने आप, आपके अंदर से आवाज आएगी, यार इतने दूर आए हैं, चलो चल के देखें क्या होता है। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, जहां पहला दिन थोड़ा सा परेशान करेगा, दूसरे तीसरे दिन तो बाप रे आपको इतना आनंद आने लगेगा कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने जो मन है मानसिक रूप से शांत होते चले जाएंगे। आप खुद देखिए, ब्लड प्रेशर के इलाज में जो चीज सबसे पहले कही जाती है कि प्लीज थोड़ा मेडिटेशन करिए, ये बड़ा ही ब्रॉड टर्म है मेडिटेशन, मगर आप किसी भी विधि से, किसी भी गुरु के सिखाए हुए तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो आप बहुत कुछ पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और आप बीपी से बच सकते हैं। अभी मैं एलोपैथी की पढ़ा हूं, तो अगर आप किताबों को पढ़िए और अगर आप क्लिनिक्स में भी जाइए डॉक्टर के यहाँ, तो पहले वो तुरंत बोलते थे कि अरे ये गोली खा लो और ठीक हो जाएगा। अब वो देखिए आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कुछ एक्सरसाइज करिए। सेकंड, यूज ऑफ योगा आसन एंड प्राणायाम, कि आप कुछ आसन करिए मतलब फिजिकल एक्टिविटी करिए, प्राणायाम करिए मतलब ब्रीदिंग पे अपने कंट्रोल करिए। यूज ऑफ मेडिटेशन, प्लीज यूज मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन करिए। और उसके बाद नीचे लास्ट में लिखा जाता है कि अवॉइड सॉल्ट इनटेक। पहले जैसे हमेशा बोला जाता था ब्लड प्रेशर है तो आप 4 चीजें अपने भोजन में से निकाल दीजिए, जो है चूरन, चटनी, अचार और पापड़, कि अगर आप ये चीज जिसमें भयंकर सॉल्ट है, और खासकर आबू राजस्थान में है तो वहां तो बड़ा अच्छा नमक का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नमक और बहुत अच्छा घी का प्रयोग किया जाता है, और वो पचा भी लेते हैं उसको। तो अब डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि आपको अपने जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप आलसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब आप दिन भर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप ही मतलब कुर्सी पे बैठे ही बैठे काम कर रहे हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने को थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। कहा जाता है प्ले एनी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, आप वो नहीं कर सकते तो बेसिक वॉकिंग करिए, आप टहलिए। और ये भी कहा जाता है प्लीज घर के बाहर जाके टहलिए, अपने घर में ट्रेडमिल ले आए उस पर टहल रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि आप बाहर जाके भी अगर टहल पाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो मन है वो वातावरण को देखेगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आप कुछ लोगों को देखेंगे, आप अगल बगल आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। और ये हुआ मेंटल बात की, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का प्रयोग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना आलस्य जीवन जो है उसको छोड़िए। और तीसरा जो कहा जाता है, मतलब माइंड ठीक हो गया मेडिटेशन से, बॉडी ठीक हो गई ठीक ठाक खाने से, एक्सरसाइज, बॉडी ठीक हो गया, और फिर बोला जाता है कि डाइट को कंट्रोल करिए, मतलब अपने भोजन को कंट्रोल करिए। और सबसे पहली बात जो बोली जाती है लो सॉल्ट डाइट, मतलब आप प्लीज ऐसा मतलब भोजन करें जिसमें नमक की मात्रा कम हो। और जो आज के परिवेश में मैं जो बोलना चाहूंगा कि प्लीज फ्रोजन एंड फ्राइड, मतलब जो भी भोजन फ्रीज किया गया हो और उसका प्रयोग हम फिर से तल के या गरम करके या माइक्रोवेव करके या ओवन में डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी चीज को भी प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी चीज को जिसको तला बहुत ज्यादा गया है, जिसपे नमक बहुत ज्यादा डाला गया हो, इन सारी चीज को अपने भोजन से हटा दीजिए और अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा घूमिए टहलिए और थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, ये सब आपको बहुत फायदा देगा।
0: बहुत ही सुंदर बात आप ये समझा रहे हैं कि एक और हम बीपी के बारे में बेहतर समझ तो हासिल कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम इसके निदान के लिए या इससे बचाव के लिए भी हमें क्या करने की जरूरत है, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। दोस्तों, ये ना समझें कि बीपी उम्र के साथ आने वाली बीमारी है और इससे हम नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम आज से ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम बेहतर बढ़ा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तला हुआ या नमकीन चीजें खाना, और खासकर आज क्योंकि हम बहुत सारी चीजें घर में नहीं बनाते हैं और आसानी से ये चीजें बाहर से हम खरीद के खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए घातक हो सकती हैं, हमें बीमारियों के कगार पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अपने आप के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, जैसे कि आप थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा अपने भोजन के प्रति ध्यान देना शुरू करेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। आज समय को देखते हुए इस एपिसोड में यहाँ रुकते हैं दोस्तों, मगर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने आज हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें मार्गदर्शन दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हमने बीपी, जो एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं, उसके बढ़ते हुए कारणों के बारे में समझा। साथ में ये भी समझा कि हम क्या ऐसे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज के सेहत स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: Hello, bachcho, chalo, chalo, chalo, aa jao jaldi se radio ke paas. Mani didi aur Pari aa gaye hain apne pyare pyare bachchon se milne ke liye apne aap sabhi ke favorite show mein.
2: सपनों की सैर और बातें इस कार्यक्रम में हो रही है रिमझिम रिमझिम बारिश की।
1: हाँ, बारिश का मौसम तो आ ही गया है, लेकिन कई बार साथ में बीमारियां भी हो जाती है, तो उसके लिए हम बताएंगे आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ।
2: बिल्कुल बच्चों, इन बातों को याद रखना, हमेशा बारिश में उबला हुआ स्वच्छ पानी पीना।
1: हाँ, उबले हुए पानी से जो उसमें कीटाणु है वो मर जाते हैं, और फिर उसे छान कर फिर पीना ठंडा करके।
2: और बाहर का खुला भोजन खाने से बचना बिल्कुल।
1: हाँ, घर में जिद नहीं करना कि बाहर का मुझे चाट खाना है या समोसा खाना है। काफी देर तक खुला भोजन रखा होता है बाहर में, और जिसे खाने से पेट की बीमारियां भी हो सकती है।
2: और बच्चों, बारिश की सीजन में मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, इसीलिए मच्छरों से भी बचना।
1: हाँ बच्चों, और बारिश में यदि भीग जाओ तो जल्दी से आके सूखे कपड़े पहन लो, गीले कपड़ों में ही ना खेलते रहना।
2: बिल्कुल बच्चों, वरना बुखार हो जाएगा, फिर कड़वी कड़वी गोलियां खानी पड़ेगी, और घर और आसपास पानी जमा होने नहीं देना।
1: हाँ, क्योंकि यदि पानी जमा होगा तभी तो मच्छर मक्खी पैदा होंगे, और मच्छर मक्खी तो है ही बीमारियों की जड़, तो आसपास पानी जमा नहीं होने देना।
2: तो ये थी बच्चों आज की बारिश में बीमारियों से बचने की टिप्स।
1: हाँ बच्चों, तो ये टिप्स को अमल में जरूर लाना है आपको, और स्वस्थ और अच्छे से मानसून का एंजॉय करना है आपको।
2: तो चलो मनी दीदी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

बच्चों बैठो रेडियो के पास, परी कहानी शुरू कर रही है। इधर उधर हो गए हो तो जल्दी से बैठो, वरना आपकी कहानी मिस हो जाएगी। आज आपको नाग और चींटियों की कहानी सुनाएंगे। एक जंगल में एक नाग रहता था। वो रोज चींटियों के अंडों, छिपकलियों, चूहों, मेंढकों, खरगोश ऐसे छोटे छोटे जानवरों को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर बच्चों दिन भर सुस्त पड़ा रहता था। और कुछ दिनों में ही वो काफी लंबा और मोटा हो गया। उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया था बच्चों। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल का सबसे बड़ा शक्तिशाली जानवर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पे रहना चाहिए। बच्चों ये सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों का एक बिल था। वहाँ ढेर सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। बच्चों नाग ने कहा, ये बवाल मुझे यहाँ पसंद नहीं, ये गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। तो बच्चों वो गुस्से से बिल के पास गया और उसने चींटियों को कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलते बनो। बच्चों नागराज को देखकर अन्य जानवर तो थर थर कांपने लगे, पर नन्ही सी चींटियां, बच्चों उस पर ये धौंस का कोई असर नहीं पड़ा। अब तो नाग का गुस्सा और बढ़ गया। पता है उसने क्या किया? अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर से प्रहार किया। बच्चों सोचो चींटियों ने क्या किया होगा। चींटियों को तो बहुत गुस्सा आ गया। बच्चों थोड़ी ही देर में हजारों चींटियां बिल से निकलकर बाहर आई और नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। बच्चों नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हैं। बच्चों ये असह्य वेदना उससे बहुत भारी पड़ रही थी। असंख्य चींटियों से वो घिर गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए वो छटपटाने लगा, मगर बच्चों इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और कुछ देर तक इस तरह वो संघर्ष करता रहा और बाद में बहुत पीड़ा से बच्चों उसकी तो जान ही निकल गई। तो देखा बच्चों, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ के घमंड से तो विनाश हो जाता है, है ना बच्चों? इसीलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना और उनकी मजाक मत उड़ाना और घमंड भी नहीं करना, ये दो बातें कहानी हमें समझाती है। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

बच्चों, तेनाली राम की अनोखी दुनिया की किताब लेकर तो आ गई है मनी दीदी और हम पढ़ रहे हैं कहानी जिसका शीर्षक है 99 का चक्कर। तो अब ये 99 का चक्कर क्या है? पिछली कड़ी में याद है मैंने आपको क्या बताया था? तेनाली राम ने एक फरियादी को, जो कि अपने किराएदार से बहुत परेशान था, वह भजन ढोल बजा बजा कर गाता था और उसने फरियादी के सिर में दर्द कर दिया था। तो तेनाली राम ने उसे युक्ति बताई कि 99 की थैली

उस मोची के कमरे में रखाना और उसके पश्चात एक सप्ताह के बाद आकर मोची के भजन का हाल सुनाना। तो फिर फरियादी ने तो वैसा ही किया और महाराज भी उत्सुक थे कि आखिर ये 99 का चक्कर क्या है। तो बच्चों चलो बिना देर किए मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। तो महाराज ने चौंक कर फिर पूछा, 99 के चक्कर में? ये 99 का चक्कर क्या है भाई, मुझे खुलकर बताओ साफ साफ। महाराज, ये मोची किसी के पास काम नहीं करता, ये अपनी दुकान लगाता है। मतलब ये हुआ कि इस मोची में भी पैसे वाला बनने की लालसा है। अब जब उसे मखमल की थैली में 99 रुपए मिलेंगे तब वह उन्हें खर्च करने की कतई नहीं सोचेगा। वो सबसे पहले उस थैली में अपने 1 रुपए मिलाकर उन्हें 100 रुपए में बदलेगा। इसके बाद वह इन 100 रुपयों को 200 रुपयों में, 200 रुपयों को 500 रुपयों में, 500 रुपयों को 1000 रुपयों में बदलने के लिए ललायत उठेगा महाराज। और अब मोची को 99 के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तेनाली राम ने विश्वास पूर्वक कहा, मगर तुम्हारी बात मान भी ले तो ये फरियादी की समस्या का हल कहाँ हुआ? तुमने तो मोची को 99 के चक्कर में डालने का इंतजाम कर दिया है। महाराज ने संशय युक्त स्वर में कहा। तो तेनाली राम ने महाराज से अनुनय पूर्वक कहा, बस 7 दिन तक धैर्य रखे महाराज। तो बच्चों क्या हम भी 1 वीक का धैर्य रख सकते हैं ना, कि इसका परिणाम क्या हुआ होगा, क्या रिजल्ट हुआ होगा? तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। तो थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तो चलो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से। कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर तो हम पहुंच ही गए हैं और आज तो हमने मानसून की बातें की, कहानियां भी सुनी, किताब भी पढ़ी और अब समय हो गया है पिछली कड़ी में परी ने जो पहली पूछी थी उसका जवाब जाने का। तो परी ने पूछा था, धरती पर जब पानी गिरता हरियाली से मन खेलता, धान की फसल उगती है, कौन सा मौसम आता है?
3: बच्चों इसका जवाब तो बहुत आसान था, इसलिए ढेर सारे बच्चों ने सही जवाब भेजा है और वो है बरसात।
2: हाँ, बरसात के मौसम में तो हरियाली से मन खिल ही जाता है। तो जिन भी बच्चों ने सही जवाब दिया है उन सभी को ढेर सारी शाबाशियाँ और तालियाँ।
3: तो बच्चों आज की पहेली भी इसी उपलक्ष्य में है, बहुत ही आसान है, जल्दी से नोट करो। छप छप।

0: महीने तक का हम करते हैं गुड नाइट
1: स्लीप टाइट
0: गुड बाय।
1: सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सर।

होस्ट आत्मिका का प्यारा सत श्री अकाल, सदगुरु की महिमा गाई जाती है। और जब परमात्मा आपका सच्चा सदगुरु और साथी बन जाए तो इस जीवन रूपी नैया को किनारा मिल ही जाएगा। तो चलिए उस सच्चे बादशाह का शुक्राना करते हैं इस सुंदर डिवाइन मैशअप द्वारा। हमारी आज की सिंगर हैं बीके शिखा और उनका साथ देंगे बीके मून और बीके स्वरा।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पैसे कमाएंगे तो घर बनाएंगे तो सुख होगा। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने बेटे की शादी करता है, कारण क्या कि घर में यदि बहू आएगी तो सेवा करेगी तो सुख की प्राप्ति होगी।

0: भाई रुक भाई रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, ओए इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है जो आप ध्यान से सुनेंगे कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या काम? उनकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम? मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आँख वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कई आप जैसे लोग मुझे अंधे से कहीं टकराने जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे तो मुझे बेचारे का क्या होगा सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए, कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। फ़ायदा क्या होता है इसका, जो बता रही हूँ आपको कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी, कानों में तेल डालने से अंदर का मैल उगल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे। तो कितने अच्छे उपाय है, एक पंथ कितने सारे काज। तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा कि सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि सप्ताह में एक ही बार भोजन करना है, भोजन आप रोज करिए ठीक है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नियम बना दीजिए कि एक बार आप भोजन करने से पहले, सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार, कोई भी दिन। और जब आप भोजन करते हैं सुबह के समय, तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन के समय, लंच के समय, उसके पहले कि भाई आप भोजन करने बैठ रहे हैं, तो उसके 5 मिनट पहले आप हल्का सुहाता सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गर्म नहीं हो, सुहाता सुहाता ठीक है, तेल लीजिए सरसों का और इसकी 2-4 बूंदें डालिए कान में। इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं। और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मैल निकल करके बाहर आ जाएगा। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप 2-4 बूंद तेल डालें तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे। और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए, बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40-42 साल के है ऐसे, ठीक है। तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में, तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे, गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा, और न ही बहरापन आएगा, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी आंखें भी नहीं दुखेगी। कितना सारा फायदा है कि देखिए, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो। और देखिए, कान और नाक के छिद्रों में उंगलियां तिनकर डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए, ठीक है। तो इनसे आपको बचाव करनी है। तिनका डालते हैं, मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है, ठीक है। इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे। ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता सहता गुनगुना तेल डालने से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना, उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो, ठीक है। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बैंक के नाम से एसएमएस आ रहे हैं। इन एसएमएस में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी। बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है, भले न चाहते हुए भी। जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए। हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा। लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। तो मैं आपको सामग्री जरूर लिखवाऊंगी लजीज कुल्फी का, परंतु आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने % की छूट मिली हुई है राजस्थान में। ठीक है, जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब मैं आपको कुल्फी लजीज की सामग्री लिखवा रही हूँ। आप पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा। हाँ, मैं सामग्री आपको 12 कुल्फी की सिखा रही हूँ। ठीक है, कि अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और 1 टिन लेना है मिल्क मेड। अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच और पीसी हुई छोटी इलायची 1/2 चम्मच। फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की और कुछ धागे लेना है आपको केसर का। बस सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ। अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, 1 टिन लेना है मिल्क मेड, फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है, पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच और 6 बूंद केवड़ा जल की, केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए। तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है, और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई। दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं, चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति, कैसे आपकी तबीयत है? जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है?
2: बस आपकी दुआ थी है, मैं तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
1: जी।
2: 30% मिलता है महिलाओं को,
1: 30%, ठीक है,
2: 30% मिलता है और अब 50 होने वाला है, सुना है।
1: अच्छा, ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है?
2: ठीक है
1: जी जी, आभार। तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई गांव से, और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की गिरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, केवड़ा जल। फिर ठंडा होने दीजिए इसको। ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए जमने के लिए रख दीजिए। तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गर्म करना है, ठीक है, हिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है, गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए, और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की गिरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए, ठीक है, लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो, ठीक है। तो ये बन गए हमारी कुल्फी लजीज। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें, कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो, या फिर आजकल तो मेहमान भी फ़ोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फ़ोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब भाई भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है। जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है, महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है। और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है। और
1: जी, आपको,
2: आपको दीदी प्रणाम है
1: और आपको भी नमस्कार।
2: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जी अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
1: बिल्कुल।
2: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
1: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
2: जी, जी जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से। और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज़्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है। फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है, जिसमें आपको बादाम, काजू और पिस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप लीजिएगा चिरौंजी 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच वही आपको पीसी हुई इलायची लेनी है, और सुगंध के लिए थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ा सा पीला और लाल रंग खाने वाला लेना है। ठीक है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं पीला रंग और लाल रंग, थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो ये हो गई तिरंगी कुल्फी की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप अपनी डायरी में नज़र डाल दीजिएगा, आपने अच्छी तरह लिखा है, कहीं छूट गया हो तो फिर से आप लिख सकते हो। 5 कप क्या लेना है, दूध, फिर मिल्क मेड लेना है 1 टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम, काजू और पिस्ता ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी और इलायची पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच। सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा

फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला, ठीक है। अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। फिर आप ये गर्म करिए, गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गर्म करिए ताकि नीचे चिपके नहीं, ठीक है। हिलाते रहिए, गर्म करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गर्म करेंगे तभी यह गाढ़ा हो पाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आप जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा, बारीक जो के मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को 3 हिस्सों में कर लेना है आपको, 3 जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है, 3 हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफ़ेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफ़ेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको 3-3 कलर के डालना है, थोड़ा लाल थोड़ा सफ़ेद थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, ठीक है। 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है विशेष करके कलरिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है, अलग अलग फ्लेवर वाली होती है, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े, ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए। हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और 1 पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी का सांचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो 1 कलर वाला डालिए, ठीक है। बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए। जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के, ठीक है। और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से बड़े प्यार से श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारा जो भाव होता है जो विचार होता है एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं, प्रभु के प्रति हमारा संकल्प चले जाते हैं तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को मेहमानों को भी आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में आशियाना प्रोग्राम में।
0: जी तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
1: हाँ जी।
0: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
0: जी,
1: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
0: जी,
1: ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
0: जी।
1: और आपने जीत की बात की तो देखिए, जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहां पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है
0: जी।
1: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को,
0: बिल्कुल
1: ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
0: जी।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा और बस इस गाड़ी को संभाल के चलिए, क्योंकि आप बस ट्रेन या कोई भी गाड़ी चला रहे तो हेलमेट या सीट बेल्ट की जरूरत होती है, मगर जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ना तो सीट बेल्ट लगती है ना कोई लगती है, बस आपको मन को मतलब शांत करके उस गाड़ी को चलाना है
0: जी,
1: तो बस आपकी गाड़ी में जरूर आपकी जीत होगी, बस यही कहना चाहता हूँ।
0: बहुत सुंदर, तो आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है इस विषय को। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
0: हूं। जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे हैं। अरे दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
0: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: सही बात है
0: जी।
2: तो वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ, समय के मुताबिक चलना चाहिए।
0: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए, विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
2: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो कि अपने गाड़ी की हो तो समझो कि आगे आ गया बम्प आ गया
0: जी,
2: बराबर, तो ब्रेक मार दिया, वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने ऊपर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
0: जी।
2: हाँ वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो कि खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए कि चलो भाई अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
0: चलिए ठीक है,
2: हाँ जी,
0: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
2: जी, जी,
0: जी, जी, जी। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे तो और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे, और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो हमारे श्रोता बंधु फिर से जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
3: हाँ जी, हम शांति, नमस्ते सुरेश भाई बोलता
0: हूं। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: बहुत अच्छी बात हो रही है, उसका विषय भी दिया है आज, जिंदगी में यही तो हो रहा है
0: जी,
3: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की
0: जी,
3: सही समय पे खेल बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
0: हाँ जी,
3: देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ बाद में बताओ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
0: जी,
3: और कई गाड़ी सामने आते एक दूसरे के सामने भेज जाती है, तो ऐसा भी होता है
0: जी।
3: तो सही समय पे जिंदगी में भी ऐसी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए, ताकि देखो चल आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जीते हैं और हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमको होगा, हमारे पास पैसा है तो हम सभी तरह से जो खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा,
0: और
3: सही समय पे पैसा भी बचाना है, सही समय पे सबको साथ भी देना है, एक दूसरे को जिंदगी में साथ भी रहना है, तो ही तो हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं
0: जी,
3: वरना जैसे गियर बदलना है, हम अच्छी है अच्छी तरह से जी रहे हैं और हम कुछ और कर देंगे, गियर बदलना चाहे कि कुछ और कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो हमारे ही आएगी,
0: बिल्कुल
3: तो ऐसा नहीं करना है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं रेस्ट चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ियों की है, सही समय पे हमको गियर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
0: जी,
3: सोच के रहना है, सोच के चलना है,
0: जी
3: तो हम आसान से जिंदगी जी सकते हैं दीदी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे, या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है। बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
4: ओम शांति सर, नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुम्पा।
3: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
4: बस मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ, अभी वो दिन चालू करवाया तो अभी कौन में सुन रहा हूँ।
3: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो? हाँ, मोबाइल पर
4: चालू हो गया, चालू हो गया,
3: चलिए बहुत अच्छी बात है।
4: बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
3: जी प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
4: हाँ, और ये वो बस के लिए कहते हैं, महिला के लिए तो वो भी तो कितना 35 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
3: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
4: ये 30% हो गया, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
3: ठीक है। चलिए आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
4: अभी वो सभी ने, मैं वो यही कहता हूँ कि ये जीवन अपना और अभी से जीना सीखो, और बस ऐसे ही, और सूरज भाई ने बोला है तो वो भी सही है। चलो
3: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं,
4: मेरा तो यही बस ये कहना है।
3: जी
4: ओम शांति, नमस्कार
3: जी,
4: सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को।
3: जी आपको भी नमस्कार, जी शुक्रिया रामा भाई। तो ये रामा भाई वासना से थे, और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, देखते हैं अभी बहुत जल्दी हम आप सभी को जवाब भी सुनाएंगे। अभी आप भी जुड़ सकते हो और प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा, आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि समय पर आप जो गियर बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों को इंटरव्यू देना जाना है जॉब के लिए, ठीक है, अब आज का इंटरव्यू है और बच्चे सोचेंगे अरे हो जाएगा ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या इंटरव्यू हो पाएगा, क्या उनको जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। समय के अनुसार फैसला लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बात हो। देखिए जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं की, थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझ कर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
5: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
3: हाँ जी नमस्कार, कमलेश बहन कैसे हो आप?
5: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक। आप कैसे हो?
3: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
5: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
3: वो तो है, ईश्वर की कृपा तो
5: है, भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
3: जी जी जी बिल्कुल।
5: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
3: हाँ जी,
5: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
3: जी,
5: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको, किस साइड अपने को घुमाना है, और किससे तुलना करनी, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
3: जी,
5: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस मैम।
3: जी, बहुत बहुत आभार कमलेश बहन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का यू खोकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने जाने हैं उपाय, ज़रूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और ज़्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने % की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है, लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। लता।

एक रोज दिवाली है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है मेरे।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है, परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
2: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर बनूंगी।

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोरबेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है। कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
1: आपने अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विने खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
1: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अनी वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परवरिश पे मने पूरो विश्वास है।
3: साथी डारे छोरा छोरी जद देखू जद घर भरियो घुमड़ियो घुमड़ियो रे ऊ मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं फुल राव हाल रियो।
4: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिक रिया।
5: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
4: अरे वाह वाह बीनणी, ले बेटा यो मुख मीठो कर गुड़ खा, मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा। पर यो कही राजू, तू बीनणी ने कही क्यों जो बीनणी उदास लाग रही?
5: माँ, थारी बीनणी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
4: देख बीनणी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी, तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
6: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
4: तू कई समझे मने थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठा कोनी? मैं सब समझू, डिलीवरी अपना घर में ही वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे ही कोनी जानो समझी, और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केजे।
6: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद कोनी आवे और हर बहू खुश रह सके।
4: कई सोच में पड़ गई बीनणी।
6: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास कोनी माँ हो।
7: दिवाली में तो खूब मनावा सब मिलकर नाचागा, आयो त्योहार आचो आनंद हिरदाम समा।
6: पापा जी मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूं ना सब सफाई कर ले, आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेली मनाई?
6: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
8: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका, क्यों श्याम?
9: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊ।
1: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊ मठड़ी।
0: मैं बनाऊ मोहन थाल।
6: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
10: बेटा थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तू ध्यान सु करजे। सुन, मिठाई तू अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू?
6: माँ, मैं थारे वीडियो कॉल करू।
10: यो कई बेटा, ब्यान जी सा, ब्याई जी सा, जमाई सा सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
9: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
10: वाह हावरो बेटो एड़ो, रखू बेटा फोन, मारा तो खुशी का आंसू आ गया।
8: बिन्नी ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो और मैं थने देऊ, थारी भी पहली दिवाली है, आसू यो थारो है।
0: बिंदनिया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आज सो छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके कि पे डिपेंड नहीं रहे इन्ने वास्ते।
6: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: सा मुक्सु कयो नहीं जायो सैको नी होवे सा।
1: हेलो प्रिया, काई बात है? आज तू घणे खुश लाग रही है।
2: हाँ पूजा, आज मैं घणे खुश हूँ। आज मैं हमेशा के लिए छुटकारो मिल गयो। मैं टेंशन फ्री वही गई।
1: अरे काई बात हुई प्रिया, कि कौन थोने छुटकारो मिलियो, कसान टेंशन फ्री हुई? भाई पूरी बात बताओ तो ठा पड़े।
2: काई बताऊं पूजा, मारा ननदोई जी है जो मने घणो परेशान करता, अश्लील फोटो भेजता, खराब मैसेज करता, गलत इशारा करता। मैं तो तंग आके वाऊ आखिरकार हिम्मत जुटान घर में सास ससुर को बात करी, सगड़ा सबूत भी बताया, तो वे सब मिली मारा ननदोई जी ने खूब समझायो। अच्छे वे सगला रे सामने माफी मांगी। हाज आज हूँ अबे हल्की होगी। मारा सास ससुर मारो खूब मनोबल बढ़ायो और मारो खूब साथ दियो।
1: काई बात कर रही प्रिया, थारा में यह हिम्मत कया ना आई?
2: हिम्मत तो खुद ने ही जुटानी पड़े, ढीला पोचारा तो दुनिया बेच खावे।
1: थैंक यू प्रिया, थारा अनी डिसीजन सो तो मारा में भी ताकत आ गई। मैं भी थाने मारी यही बात करवा जा रही थी कि मने भी एक छोरो घणो तंग करे, पर वीको काय करनो, वो थारा सो सीखवा मल्यो। अगेन थैंक्स, चल आओ जी।
2: बेस्ट ऑफ लक पूजा।
1: थैंक यू प्रिया, बाय।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हिंसा को नो कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम हिंसा को नो कहते हैं तो वो परिवार और समाज कैसा होता है, आज हमने नाटक के द्वारा देखा है। अभी हम सुनेंगे आबू के अंचल में रहने वाली उन आवाजों को, उनका क्या अनुभव है घरेलू हिंसा को लेकर।
4: नमस्कार, मेरा नाम ललिता है और मैं आपको शारीरिक हिंसा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारे जीजा जी थे, वो ट्रक चलाते थे, तो वो बहुत नशा करते थे और आते थे ना तो मारते थे। और ऐसा नहीं अकेले में मारते हो, जैसे कि हमारी दीदी बड़ी मम्मी के सामने मारते, बड़े पापा के सामने मारते, रिश्तेदारों के सामने मारते, सबके सामने मारते। मेरी दीदी है ना चुपचाप मार खा लेती थी। क्यों? कि भाई मायके भी नहीं जा सकते हैं और ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, तो हम कहेंगे भी किससे और जाएंगे भी कहाँ। पति का भरोसा है भाई, मार खाते रहो चुपचाप। तो ऐसे कईयों साल तक चला। हमारी बहन, छोटी बहन की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो बैठ के बातें करने लगे, फिर डांस होने लगा औरतों का, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो जाते थे, शराब पी के आते थे और उसको बहुत मारते थे दीदी को। तो फिर वहाँ पे दीदी ने ना खुद भी मारा और औरों से भी मारवाया उनको। बोला आप, तुम्हें मतलब पता चलेगा कि औरत जितना सहती है ना वो सहती है, जब वो नहीं सहती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है भाई। उसको भी जैसे तुम्हें अपनी इज्जत का वो होता है, भाई चार जनों के लोगों बीच में मार रही है तो मेरा कोई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो मर्द हूँ। वो भी तो औरत है ना, आप मर्द को जन्म देने वाली औरत ही तो होती है ना, आप उस औरत पे अत्याचार करते हो। हमारी दीदी ने सबको यही बताया, भाई कितना हो जाए मतलब सहो नहीं। और यही सा हमारी बुआ के साथ भी हुआ। तो मेरी बुआ ने तो खैर उनको जेल में डलवा दिया, तो अब वो नहीं मारते हैं। और मेरी दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, तो अब जीजा जी नहीं मारते हैं और दोनों आराम से रहते हैं। और अभी काफ़ी उन्होंने तरक्की भी कर लिया, क्योंकि नशा छोड़ दिया और नशे में आके वो मारते थे वो, तो उनको भी जब 3-4 बार पड़ा तो वो सुधर गए। यौन हिंसा, कई बार सोचते हैं यार बात करना कईयों को अच्छा नहीं लगता है यौन हिंसा के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हो जाती है। मैं फील्ड में एक औरत से मिली हूँ जो यौन हिंसा की शिकार है, उनके 10-12 बच्चे हैं ऐसे। उनके पति गुजर गए हैं तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उनके बच्चे में से जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था वो अपनी माँ के साथ ही रेप करता था। जब वो मना करती थी तो वो सबके सामने शराब पी के सबके सामने मारता था, गाँव वालों के सामने मारता था, रोड पर ऐसे मारता था जब वो नहीं मानती थी। और बहुत बार ज़बरदस्ती किया उसने, मारा भी बहुत, मतलब कपड़े निकाल के भी वो मारता था। उसके खिलाफ किसी ने केस भी नहीं किया, क्योंकि जो उस औरत की हेल्प करना चाहता था, मतलब उनको बचाना चाहते थे उस चीज़ से, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो। जो बेटा था ना वो उनके साथ भी मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना ये सब करता था शराब पी के। और कई बार उसने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे किया, उसने मारपीट किया है। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ली।
5: नमस्ते जी, मैं नंदू कंवर बोल रही हूँ। मारी शादी ने 35 हो गई, यानी कि 35 साल हो गई। जब से मैं शादी कर मेरे ससुराल गई, के बाद में मैंने कोई परेशानी नहीं है कि जो मैं घर में काम करती हूँ या मेरे को पैसे है, मेरा पीर का दियड़ो दहेज है, मार पीर की दियड़ी कोई भी चीज़ है, मैं कोई अधिकार नहीं जमाई और सब जो भी मारो मान रखियो, मतलब ससुराल में कि भाई थे या करो था को जो चीज़ बाप दादा को लिया वह आपको ही अधिकार है, तुम्हारे सासू चू लगा नणद देवरणी जिठानी कोई मारा हक नहीं जमाओ, जो मारे मन चाहिए तो मैं यूज करियो और जो मारे चाहिए भाई कोई ने भी देनो लेनो कहीं भी करियो तो मैं मारा हिसाब ही दियो लियो, ठीक है। फिर बाद में जब मारे खुद की भी मैं काम सिलाई पकड़ी जैसे भी चाहे भले वो 100 रुपये की सिलाई करी 50 की करी, जो मारे मन में हुई कि वह चीज़ खरीदनी है वो कोई ने देनो लेनो है तो वो ही दियो लियो और वही पैसा मारे कन जमा है, पर मारो परिवार कोई मैंने यूँ परेशान नहीं करियो कि आज आपका पैसा मान दो मैं कोई सामान लेवा करा, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी मारे घर में मैं करूँ तो मारे ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे और सब अच्छे से अच्छे काम करूँ मैं मारे, और जो भी सिलाई करो भले ही अपन 2 रुपये की कि भाई कोई बुनाई करो रहे कोई काज बटन करो रहे कोई भी काम करा आप तो मारे घर में मैं ही बाप रहूँ, और जो भी कोई पैसा आवे तो भाई देवरानी जिठानी लेनो देनो हो चाहे आगे सास ससुराल को देनो लेनो हो तो बेटा आप बोलो और आपने मन चाहे वो काम करो, तो ऐसो मारे तो घर में कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो को भी कोई मैंने पूछे कहते अतरा मजबूत किया हुआ कि आपा काम करा और आपा ही नाम नहीं करा तो दूसरों कौन करी, तो सब समझदारियों काम ले और चालर जकी भी आवे तो मैं तो आई कोशिश कर भी खेऊँ और कहते डरो मत कोई भी मत डरो अपने बढ़िया बढ़िया काम करनो और सारी होशियारी के साथ में चालनो सबने साथ में लेट चालनो है। और जो आपा काम करा और बीमे भी कोई हुआ तो भी ज्ञान बतावा कि बेटा यूँ नहीं करनो और यूँ करवाऊँ आगे आपने अच्छे काम हुई आगे पैसा टक्का घर बार परिवार सब आपा ने चलानो है तो सब भी हिसाब चलो। तो जो भी मार्केट कोई सिलाई वाली भी आवे ना वो ही बात पूछे कि भाभी साहब मैं तो यूँ परेशान आ घर हूँ दहेज की खातिर मन लड़े मगर आदमी भी कोई यूँ मन लड़े टाबर भी है कोई पड़ोसन भी माने यूँ खे देवे कि भाई थे थाना यूँ लड़े करे तो आप घरे चले जाओ आंसू अलग हो जाओ, मैं एक ही बात हूँ कोई अलग नहीं होना कोई इशू भी जो भी कहे आपने काम करना मजबूती के साथ करो मजबूती के साथ रहो और बढ़िया काम करो और सबने ज्ञान करो।
6: नमस्कार मेरा नाम तमन्ना है, हमारे पास में एक आंटी जी रहती है तो वो मतलब मानसिक हिंसा की शिकार हैं, उनके सास ससुर मतलब थोड़े पुराने ज़माने की उनकी सोच मतलब नए ज़माने के साथ में बदली नहीं, उनके साथ में एक बेटी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उनके सास ससुर बोले कि हमको अब इस बार पोता ही चाहिए पोती नहीं चाहिए, पोतिया मतलब बड़ी होगी इतना खर्चा पैसा लगाएंगे शादी करके तो इनको दूसरे घर जाना है इसलिए हमें एक और पोती नहीं चाहिए हमें पोता चाहिए, पोता होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा हमारा नाम रोशन करेगा, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत ताने मारते थे और पूरा घर का काम उनसे ही करवाते थे, ना उनको टाइम पे भोजन देना ना उनका मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेके मतलब ढंग से ध्यान ही नहीं रखना, बस जरा सी गलती हो जाए तो बस उनको सुनाना सुनाना, वो इतनी सास ससुर से परेशान हो जाए वो सोचते थे कि अब मेरे भी दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, अब वो मतलब उनके ऑपरेशन

पा रहे हैं। हमारी इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम अपनों के लिए खड़े रहे और उनको साथ दें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का विषय घरेलू हिंसा के प्रकार बेहतर समझ में आया होगा, और आपके कोई अगर सुझाव है या अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई और कहते हैं, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी आप सुनिए ये गीत आरजे उषा की जुबानी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं तो आज बच्चों का टैलेंट को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन का मंच दे रही। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात में पहुंचे क्योंकि आप सबको विदित है रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है, बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलता है जिस मंच का माध्यम से अपना हुनर अपना प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का भाव भावना और स्वर लय का साथ उनका जो विशेषता आज जन जन तक पहुंचाएंगे क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, समुदाय का भागीदारी देखने को मिलता है। हर विद्यालय में बच्चों को मंच मिलता है, उनका जो तुतली तुतली आवाज हो चाहे उनका दिल का भावना है, शुद्धता पवित्रता और ज्ञान युक्त बात करते हैं। तो आज राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज खड़ात का आवाज सुनने को मिलेगा। सभी हमारा परिया नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, सभी 8th क्लास का बच्चियां हैं, सभी अपना नाम बताएंगे और कौन सा गांव से कौन सा फल से आते हैं।
1: मेरा नाम है सविता।
0: सविता गुड,
1: जोड़िया से आती हूँ
0: जी।
1: कौन सा क्लास? 8th में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड। आपका विद्यालय का पूरा नाम बताए सविता।
1: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अब रोड खड़ा।
0: वेरी गुड।
1: मेरा नाम रेखा है, मैं खड़ा से आती हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ कक्षा 8 में।
2: मानसी है, मैं खड़ात में रहती हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात है।
3: मेरा नाम पूजा है, मैं जोड़िया से आती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात।
4: मेरा नाम अम्मिया है, 8th क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय।
5: मेरा नाम असुगना है। मेरा नाम मेवा है, मैं खड़ात से आती हूँ कक्षा 8।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
6: मेरा नाम पार्वती है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड। नेक्स्ट।
7: मेरा नाम द्रौपदी है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात।
0: वेरी गुड। सबका आवाज सुन लिया और हमारा बच्चे जब इस तरह प्रोग्राम में भाग लेते हैं उनका मम्मी पापा आए लोग जो सुनते हैं, बाप माँ सुनते हैं और फ्रेंड्स सुनते हैं और बड़े दादा दादी नाना नानी सुनते तो बोला रहे हमारा पार्वती का आवाज है, ये हमारा गुड़िया का आवाज है। तो जब सुनेंगे खुशी लगेगा। चलिए पहला प्रस्तुति एक प्रार्थना के रूप में गाएंगे सभी माँ शारदा का क्योंकि हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में बच्चे प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इस बच्चों को भी हमें एक मौका देंगे तो उनका स्वर लय और ताल का साथ दिल का भावना हृदय का संगीत जब इस तरह मौका में देते हैं तो हमें खुशी लगता है। चलिए देर किस बात की, आज सुनेंगे प्रस्तुति, पहला प्रस्तुति होगा और खड़ात विद्यालय के भावना को आगे पहुंचाएंगे। रेडी सभी बच्चे
8: हिंद

0: बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञान से ज्ञान की ओर, बच्चे ज्ञानवान होंगे, समझदार बच्चे होते हैं। और माँ शारदा से ऐसे प्रार्थना में अपना दिल का भावना को प्रकट करते हैं तो हमें बहुत खुशी है। बच्चे को देखकर बड़े बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो है ही है, बड़े बच्चे भी कुछ प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, क्योंकि बड़े दीदी है ये तो, छोटे छोटे बच्चे है और उनका बड़े दीदी 9th class, 10th class, 11th class, 12th class का बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम हेल्दी वेल्दी हो जाएगा और सबको साथ लेकर चलना होता है। तो आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए पार्वती एंड ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वाह, न कन्या परिया। तो बड़े होकर नाम रोशन करेंगे, बड़े होकर पार्वती तुम क्या बनेगी? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। वाह, टीचर का काम क्या होता है?
1: पढ़ाना।
0: पढ़ाना, आज पढ़ रहे हैं और आगे जाकर पढ़ाएंगे।
1: हाँ।
0: उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा पार्वती, है ना, पूरा ध्यान से, मन और बुद्धि से, जैसे माँ शारदा से ज्ञान की तरफ चलना है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे। घर में कौन कौन है द्रौपदी?
1: घर में मेरी मम्मी है, पापा है, बहन और भाई है।
0: सब अच्छे से पढ़ाई कराने के लिए सहयोग देते हैं।
1: हाँ।
0: चलिए नेक्स्ट के लिए हमारे साथ, तुम बड़ा कर क्या बनेगी?
1: मैं टीचर बनूंगी।
0: टीचर, सब तो टीचर ही बनेंगे और बहुत अच्छा है, मैम बनेंगे तो बच्चों को अच्छा अनुशासन देंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा बड़े बच्चे भी कुछ प्रस्तुत करेंगे तो एक प्रार्थना का रूप में हो जाएगा, तो लेते छोटा सा ब्रेक।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: एक के बाद एक प्रस्तुति आपको मिलने को जा रहा है और हमारा सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। छोटे बच्चों को देखकर बड़े बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं और वो भी अपना प्रस्तुति देने के लिए तत्पर है, प्रस्तुत है और प्रस्तुति के लिए रेडी है। सभी प्रस्तुत होकर आए हैं। हमारा बड़े बड़े बच्चे हैं जो कि स्कूल का शान है, घर का मान है और अपना बात को रखने के लिए एक प्रस्तुति सुनाएगी जो कि चार छात्रा है। तो अपना परिचय देंगे और कहां से और बढ़ होकर क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य क्या, आपको तो समझ आया आज क्या बनना चाहते हैं। आपके हाथ में सब कुछ है, आपका पर सभी विश्वास करते हैं, ट्रस्ट, माँ बाप का भी ट्रस्ट, हमारा भी विश्वास है। हम तुमको विश्वास दे, तुम हमें विश्वास दे, कहते हैं गीत, तब ये धरती अच्छा बन पाएगा। चलिए हमारा साथ चार छात्र है तो अपना अपना परिचय देंगे।
2: मेरा नाम प्रेरणा है, मैं खड़ास से आती हूँ और राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ास में पढ़ती हूँ, क्लास 12th।
1: वाह, बड़ी बच्ची होगी और इसका बात तो करियर बनाएगी 12वीं क्लास का बाद, करियर क्या बनना चाहेगी?
2: टीचर बनना चाहती
1: हूँ। टीचर ही तो, इसलिए मेहनत करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट,
3: मेरा नाम भावना है, मैं खड़ास से आती हूँ और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ास है और मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ।
1: सभी टीचर बनने के लिए आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, डॉक्टर ये सब क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि
3: टीचर ही बनना चाहते हैं।
1: टीचर अच्छा है, कलेक्टर से भी अच्छा टीचर है।
4: मेरा नाम नंदनी है, मैं खड़ास से आती हूँ, मेरे विद्यालय का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ास है और मैं टीचर बनना चाहती हूँ।
1: तो देखिए बच्चों का जो उमंग उत्साह है, आज बच्चे बड़े होकर कोई कलेक्टर, कोई टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि उनको एक मंच आज मिल रहा है जो आवश्यकता था। तो छोटे बच्चे भी आज इस कार्यक्रम को सजा रहे, बड़े बच्चे भी इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते, आप अपना परिचय देंगे।
5: मेरा नाम साक्षी है, मैं खड़ास से आई हूँ, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ।
1: वेरी गुड, चलिए एक प्रस्तुत सुनाएंगे सभी।

0: शुद्धता देगा।
1: क्या बात, क्या बात, कितना सुंदर पत्र, और इसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। हे आत्माएं, परमात्मा, सब चीज इसमें है। हमें ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ाने के लिए खुद को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमें बहुत कुछ शक्ति मिलती है। जैसे बच्चों को आज ज्ञान आत्म प्रबंधन में बच्चों को सिखाया गया था, है ना, आत्मा और परमात्मा शब्द आया कि नहीं गीत में? तुम्हारा शब्द है लेकिन भूल गए। आज मैं बोला था ना तो आप लोग के पास वो ज्ञान है, लेकिन क्या करना है उसको थोड़ा बुद्धि से काम में लेना है। जैसे प्रश्न पूछा था, तुम सब कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे, ऐसे प्रश्न था ना, लेकिन आज तो कविता का माध्यम से बच्चे भी गीत का माध्यम से भावना को, भाव को प्रार्थना के रूप में ऐसे हर विद्यालय में करते तो हमें बहुत खुशी लगा। तो बड़े होकर सब तो अपना अपना उमंग उत्साह से करेंगे काम, और ट्वेल्थ का बाद करियर जो देश को चाहिए, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व चाहिए, एक अच्छा मानव चाहिए। डिग्री तो सबके पास है, लेकिन डिग्री होने से क्या, माँ बाप को सम्मान देना नहीं आता बड़ों को।

0: सम्मान नहीं देना आता है तो उसमें क्या फायदा डिग्री का, लेकिन एक अच्छा इंसान बनेंगे तो सभी लोग प्रशंसा करेंगे, हाँ कि नहीं?
1: हाँ।
0: अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ा? अच्छा सोच। सोच कहाँ से निकलता है?
1: आत्मा से
0: निकलता है, बुद्धि से निकलता है, जाम पिंडी चंदन वहां से निकलता है। आत्मा निकल जाएगी, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा है तो परमात्मा को याद करते, जैसे प्रार्थना में परमात्मा शब्द आया कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारे छोटे बच्चे होवन हर बच्चे एक प्रस्तुत देंगे, लेकिन ये सभी बड़े बच्चे हैं, सब करियर बनाना चाहते हैं। और मेहनत कितना घंटा मेहनत करती तुम पढ़ाई के साथ साथ? स्कूल में तो 5 घंटा पढ़ाई होता है, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ना, व्यर्थ से मुक्त, खराब दोस्त से मुक्त, मोबाइल से मुक्त, कहाँ कहाँ समय निकालना पड़ेगा? आपके पास 24 घंटा है, तो सुबह उठना, जल्दी उठना, जल्दी सोना और जल्दी
1: उठना।
0: कौन कौन करते हैं? करते तुम? कितने बजे सोती तुम?
1: 9 बजे।
0: वेरी गुड। और उठते कितने बजे?
1: 6 बजे।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम?
2: 10 बजे।
0: 10 बजे हो जाता, अच्छा। और सुबह?
1: 5 बजे।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, इससे तो आगे है, 6 बजे उठ, लेट से सोती जल्दी उठ जाती। तुम?
3: मैं रात को 11 बजे सोती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ।
0: 11 बजे इतना समय मैंने होमवर्क रहता है, पढ़ाई ना, मोबाइल में
3: नहीं, मोबाइल नहीं।
4: मैं तो 10 बजे सोती हूँ और 6 बजे उठ जाती हूँ।
0: 6 बजे, लेकिन 4 बजे उठ कौन उठता है? 4 बजे, 5 बजे उठने के लिए कोशिश, 5 बजे का समय अमृत वेला, ठीक है? तो उठने के लिए कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ఆర్ లిస్నింగ్ టు బ్రహ్మ కుమారీస్ కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ రేడియో మధుబన్. కీప్ లిస్నింగ్, కీప్ స్మైలింగ్.
1: प्रस्तुति के लिए हमारा छोटे बच्चे फिर स्वागत कर रहे हैं. छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे भी कम नहीं, बड़े बच्चों को भी टक्कर देने के लिए आए हैं और सभी 8th क्लास के होंगे शायद. तो अपना अपना नाम बताएंगे क्योंकि हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए तीनों छात्र उपस्थित है. सभी आदिवासी फील्ड से आते हैं.
2: मेरा नाम मेवा है, क्लास 8.
1: वेरी गुड. तुम्हारा नाम?
3: पार्वती. मेरा नाम 8 में पढ़ती
1: जी.
3: मेरा नाम सुगुना, मैं 8 में पढ़ती.
1: वेरी गुड. चलिए सुगुना, पार्वती और उनका दोस्त को स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए. खड़ात का विद्यालय के बच्चे हैं, तो शुरू करिए बच्चे.

0: होरा इतनी शक्ति मेरे दादा मन का विश्वास कमजोर होरा।
1: क्या बात मन का विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना है और विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में ही जगत है, हम विश्वास करना चाहिए। विश्वास तुमको करेंगे, तुम हमें विश्वास करेंगे तो हमारा कार्य अति सहज हो पाएगा और सफलता पूर्ण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते सभी, बड़े होकर तो नाम रोशन करेंगे। और क्या बताया था नाम? मेवा। वाह मेवा रे मेवा। मेवा कौन नाम रखा?
2: मेरे मम्मी पापा ने।
1: पापा ने रखा मेगा। मेगा मतलब क्या है? इसका नाम है। अच्छा वेरी गुड। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अगला प्रस्तुत सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन
2: ब्रेक का पहले हम बड़े बच्चों का सुन रहे थे देशभक्ति गीत, क्योंकि देशभक्ति का साथ साथ प्रकृति पर्यावरण हमें बहुत कुछ देता है, हमारा देश भी हमें बहुत कुछ देता है और बच्चे भी हमें गीत के माध्यम से अपना भाव को देते हैं। हमारे रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सजाने के लिए आज चल पड़े और एक के बाद एक गीत प्रस्तुति हो रहा है, सभी खुशी से अपना मुस्कुरा रहे हैं और सभी पुनः स्वागत।

0: प्यारा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और देशभक्ति में ओत प्रेत होकर अपना आन शान बान देश का रक्षा करने के लिए चाहते हैं। और तिरंगा हमारा सबसे शान, हर जगह में तिरंगा को सलाम करते हैं, जहाँ भी मिलते हैं हम सम्मान देते हैं। तिरंगा है तो एक पहचान, भारत का पहचान तिरंगा, जातीय पताका, जातीय झंडा कहते हैं। और बच्चे तो लहरा है लहरा दिए, और अगस्त 15 जनवरी 26 ऐसे राष्ट्रीय पर्व में गाते हैं और झंडा भी फहराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक छोटा प्रस्तुति सुनाएगी, तो अल्प विराम का बाद।

0: यूं तो बच्चे सच्चे होते हैं और महात्मा होते हैं, और एक को देखकर दूसरे बच्चे भी, हम भी करेंगे सर, हम भी गीत गाएंगे, हमारा संगीत को लीजिए, हमारा संगीत को लीजिए। तो चलिए अंतिम प्रस्तुत में सभी को चांस दे रहे हैं, और सभी नया नया बच्चे भी आए अपना आवाज को बुलंद करने के लिए।
1: मेरा नाम पूजा है।
2: मेरा नाम है सविता।
3: मेरा नाम द्रौपदी है।
4: मेरा नाम हिमांशी है।
5: मेरा नाम रेखा है।
6: मेरा नाम अम्मी है।
0: चलिए शुरू कर।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सभी को नाम का सा धन्यवाद। ये था राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात का आवाज। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब बच्चे सच्चे दिल से आते हैं तो अपना बात को रख पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाम का साथ।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तो लीजिए श्रोताओं, हाजिर हूँ मैं संदीप त्रिवेदी, आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। कहाँ पर ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूँ, रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, लगातार हमराही का, आपका हमारा ये साथ आगे बढ़ता जा रहा है, और कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कहानी को प्रस्तुत करना और उसको रुचिकर बनाना, इन दोनों ही कार्यों में हमारे लिए कभी कभी चुनौती हो जाती है। लेकिन फिर भी आप सबका जो प्यार है, आप सबका जो विश्वास है, और हमारे युवा साथियों की खासकर जो भावनाएं हैं इस कार्यक्रम के साथ, उसी की बदौलत निरंतर हम इस कार्यक्रम को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। आप सब जानते ही हैं दोस्तों, जिंदगी किसी भी मोड़ पर आसान नहीं होती है, हर मोड़ पर जिंदगी में संघर्ष है, और मैं तो ये भी मानता हूं कि हर किसी के जीवन में संघर्ष है, बस किसी का संघर्ष कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का सामने आ जाता है और किसी का सामने नहीं आ पाता है। ऐसे में सोचिए आप कि वो लोग जिनकी जिंदगी में किसी न किसी तरह की शारीरिक चुनौती है, वो किसी तरह की दिव्यांगता से जूझ रहे होते हैं, और उसके बावजूद जब परिवार समाज उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, तो फिर ऐसे में जिंदगी को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल से भी हमारे अनगिनत साथी हैं जो बाहर आ जाते हैं और बखूबी समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके, साबित करके बताते हैं। तो आज भी ऐसे ही मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो अब और ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं आप सबको मिलवाने जा रहा हूं। आज राजस्थान से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान धर्म सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी बबीता जी। तो बबीता जी और धर्म सिंह जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: स्वागत है सर, सभी रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम साथियों को सादर प्रणाम।
2: जी धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़े, धर्म सिंह जी आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं थोड़ा, कि आप किस तरह की दिव्यांगता से पीड़ित हैं और कब से आप जॉब कर रहे हैं, किस तरह आप दृष्टिबाधित हुए और कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया।
3: जी हाँ सर, जैसा कि मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा दिखता था, उसके बाद जैसा आपको भी शायद बीच में विदित है क्योंकि आपसे जूनियर थे, उसके बाद हमने जो ब्लाइंड एक दृष्टिबाधित होने के कारण कई जगह इलाज भी कराया परंतु नहीं व्यवस्था बैठ पाई, और जो आँखों में कॉर्निया की कमी होने के कारण कहीं इसका इलाज नहीं हो पाया, इसलिए आपसे जूनियर हम रहे। और हमने आपको बताया कि 2012 की जॉब में सेलेक्ट हुए, परंतु किसी कारणवश या बदनसीब कहिए जो हमें जॉब नहीं मिल पाई, उसी जॉब को हमें नवंबर 2017 में जॉइनिंग मिली, वो भी बड़े संघर्ष के बाद, जिसको जॉइनिंग लेटर जून 2017 में मिल जाए और उसको जॉइनिंग नवंबर 17 में हो 6 महीने बाद, उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष किया मैंने, क्योंकि चौथा नियुक्ति आदेश आने के बाद ही मुझे जॉइनिंग मिल पाई, क्योंकि हमारी तरफ एक दिव्यांगों को बड़ी चुनौती है कि दिव्यांग किस तरीके पढ़ाएगा, क्या करेगा, ये यहाँ के लोगों की सोच वो अभी तक मुझे परेशान करती आ रही है।
2: जी धर्म सिंह जी, तो ये मतलब चार चार बार ज्वाइनिंग लेटर जारी होने की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, थोड़ा सा आप वहाँ के परिवेश के मुताबिक अगर बताएंगे तो ज्यादा स्थिति क्लियर हो पाएगी हमारे सुनने वालों के लिए।
3: जैसा कि यहाँ के कुछ अशिक्षा का कारण है, और यहाँ के जो शिक्षित हैं, आप जानते हैं हमारा भरतपुर संभाग बहुत पिछड़ा हुआ संभाग है।
2: जी जी जी,
3: दिव्यांगता के और एक दृष्टिबाधित के लिए तो बिल्कुल सहानुभूति बहुत ही कम लोग रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी सोच थी कि दिव्या है, तुम कैसे पढ़ाओगी, तुम
2: जी
3: क्या करोगे। जब मैं 8 जून को ज्वाइनिंग करने गया था 2017 में, जब ये बात आई थी,
2: जी
3: फिर आप जानते हैं कि बाबुओं को किसी के ना किसी कारणवश कोई छोटी मोटी त्रुटि निकाल के, तो इसको मैं वापस गया जिला परिषद से, दोबारा मुझे ज्वाइनिंग आदेश हुए, फिर उसमें भी मुझे पढ़नी पड़ी दोबारा। फिर दोबारा मैंने पंचायती राज और कुछ राजनीति नेताओं के सहयोग से 16 नवंबर 2017 को ज्वाइनिंग प्राप्त की। कुछ
2: अच्छा
3: मीडिया वालों का भी अच्छा सपोर्ट रहा, और उस परेशानी को अभी तक मुझे कई अधिकारियों से झेलना भी पड़ रहा है।
2: अच्छा मतलब लगभग आप 2.5 सालों से नौकरी कर रहे हैं, बावजूद इसके अब अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है बखूबी शिक्षण कार्य करवा सकता है।
3: जिसमें अभी भी मैं बाकायदा, मेरा 2 साल का रिजल्ट, अभी 2.5 साल का जो रिजल्ट है 8वीं का 100% रखता हूं मैं, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास चलानी पड़े।
2: क्या बात है, चलिए आप अपने स्तर पर मेहनत पूरी कर रहे हैं और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये नेत्रहीनता है, इसका कब पता चला आपके परिवार को कि आप ब्लाइंड हैं शुरू से?
3: इसमें मेरे परिवार में अशिक्षा का कारण था, और इसका जब मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था, जब मतलब आसपास के लोगों ने, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने ही पता चला, और फिर उन्होंने ही मुझे ब्लाइंड स्कूल अजमेर के बारे में बताया था।
2: अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि बबीता जी से भी थोड़ी बात की जाए और बबीता जी अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। जी बबीता जी
4: जी नमस्ते।
2: नमस्ते। जी तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है बबीता जी?
4: मैंने 12th पास की है।
2: 12th पास किया है, उसके बाद में फिर पढ़ाई आपने नहीं की आगे?
4: नहीं,
2: अच्छा तो जो है क्या कोई खास कारण रहे या आपके यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा, मतलब महिलाओं को, क्या वजह रही?
4: नहीं, वो परिवार है ना, गरीब है हमारा।
2: अच्छा, ओके ओके। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
4: मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं और 1 बहन।
2: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो मन करता है कभी अब आपका और आगे पढ़ाई करने का?
4: नहीं, हम नहीं करता।
2: अब नहीं करता, अब तो घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो धर्म सिंह भाई, अब जरा आ जाएं आपकी कहानी पर।
3: जी
2: ये जब नौकरी लग गई नवंबर
3: जी
2: 2017 में,
3: जी हाँ
2: उसके बाद फिर ये भी प्रयास शुरू हो गया होगा कि अब आपका विवाह करवा दिया जाए, परिवार
3: जी
2: ने और आपने स्वयं ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए होंगे इसके लिए,
3: जी हाँ
2: तो ये सब कहानी कैसे बढ़ी जरा बताएं हमारे सुनने वालों
3: समाज में बड़ी विडंबना है सर, आप
2: को।
3: स्वयं जानते हैं, एक दृष्टिबाधित, हालांकि नौकरी लग जाता है तो सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें तो दृष्टिबाधित को, यार तुम मार साहब हो, तुम इतना करो, उतना दो, इस काम में तो बाध्य कर देते हैं समाज के लोग, पर शादी के लिए समाज के लोग बड़े एग्री नहीं होते हैं कि यार जैसा बंदा है उसको वैसी ही बच्ची चाहिए,
2: अच्छा
3: इसमें ज्यादा वो रखते हैं व्यवहार।
2: जी
3: परंतु किसी कारणवश मेरी भी यही जिद थी कि भाई दिव्यांग लूंगा तो फिर अपनी जैसी लूंगा, फिर मैं क्यों किसी को परेशान करूं, ये
2: सही है,
3: तो नौकरी लगने से पहले ही मुझे मिल सकती थी। तो
2: बिल्कुल
3: मेरी जो, हालांकि 4 दिन 5 दिन में घर पर आते, चाय नाश्ता भी करते, और बच्चा कैसा है भाई, ब्लाइंड है, ठीक है, आना कोई जवाब ना देते हुए वापस रिटर्न हो जाते थे।
2: नहीं, ये बीच में आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मेरी, जो आपने कहा ना उसके बाद से। जी
3: मतलब मेरी, जैसे आपको बताऊं कि शादी में जो आते थे संबंध वाले, 2 दिन में या 4 दिन
2: ओके ओके। जी
3: आते थे, दृष्टिवादित को जब पता
2: ये
3: चलता,
2: कब से आना शुरू हो गए थे आपके घर में रिश्ते वाले?
3: जॉब में मतलब ये समझिए आप, जॉब लगने के मात्र 2 या 3 महीने बाद से आना शुरू हो गए थे।
2: अच्छा 2-3 महीने बाद से ही।
3: कभी मेरे स्कूल में भी आते थे तो कभी घर पे भी आते थे, परंतु जो उनको जब पता चलता कि यार बंदा एक दृष्टिवादित है, और मैं तो साफ कहता था भाई देखो हाथ पकड़ के जो चल सके वैसी बच्ची चाहिए मुझे,
2: सही है।
3: ना क्योंकि हमसे गिरना ना करे कोई, भाई
2: ठीक
3: हम जाएं तो समाज में फिर गिरना हो तो क्या मतलब है। इसलिए
2: ठीक बात है।
3: फिर लास्ट में जद होते हुए 2018 में जो मेरे ससुर साहब हैं बबीता जी के पिताजी, वो आए थे, उनको किसी ने बता रखा था कि भाई एक ब्रांड है और उसकी कोई मांग जांग नहीं है, तो आप अपनी बच्ची का संबंध कर
2: सकते। ये मांग दांग से याद आया कि जिस मतलब जगह आप रहते हैं, वैसे तो खैर बहुत जगह की ये समस्या, वहां पर भी ये सब लेन देन जो है काफी ज्यादा है।
3: आज यदि मैं मान लीजिए इस चीज को बताना तो नहीं चाहिए, दहेज प्रथा तो बहुत ज्यादा ही वो है।
2: अब कुछ परिवर्तन हो रहा है धर्म भाई, या अभी भी नहीं हो रहा है, वैसा ही है माहौल है आज 2021
3: सर्विस में जो लग जाता है वास्तविक वो अब मैं बहुत बड़ा हो जाता है कि मुझे 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए,
2: मतलब जितनी बड़ी नौकरी उतना ही बड़ी डिमांड। मतलब
3: हमारा बैकवर्ड एरिया भी है, और क्या है आप जानो सीएससी का और इनका ज्यादा, चाहे आईएएस हो या आरएएस हो या डॉक्टर हो, उनकी करोड़ों तक की मांगों में शादी होती है।
2: चलिए आगे बताइए जी।
3: तो इसी प्रकार आप 17 दिसंबर 2018 को मेरे जो ससुर साहब थे वो आए, उन्होंने मेरे से नाते वोते पूछे, जो परंपरा होती है वो, और मोबाइल नंबर लिया। उसके बाद एक हमारे विद्यालय के जो एचएम थे उनको पता चला, मतलब स्कूल में आए थे वे, तो एचएम साहब से मैंने मिलाया। एचएम साहब तो और उनकी थोड़ी जान पहचान हो गई थी, भाई पूर्व से जानते थे थोड़ा सा, तो हालांकि ये संबंध होने वाला था, पर वो जैसे 3 महीने में संबंध होने वाला था, तो एचएम साहब की बदौलत ये 15 दिन में ही जो सगाई का प्रोग्राम होता है वो 28 दिसंबर को ही हो गया।
2: अच्छा।
3: और सीधा ही दोबारा मुझे मिलाया, और दोबारा ही मुझे हाथ में 111 रुपए थमा दिए। और 1 जनवरी 2019 को जो गोद रस्म होती है, जो लड़की भरी जाती है, वो कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से करा दिया।
2: जी,
3: तो हमारे एचएम साहब को भी ये थोड़ा डर था कि यार दिव्यांग है, क्या पता कोई पढ़ा दे, कोई इनको सिखा दे, तो संबंध टूट जाए, तो ये जल्दबाजी, इसलिए थोड़ी जल्दी करें, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा डर तो रहता ही है।
2: नहीं, और धर्म सिंह एक बात और बताएं आप, कि ये जाति वाति का भी बड़ा देखना पड़ता होगा ना उस एरिया में वहां पर।
3: हाँ, वो तो है, जाति का तो देखना ही पड़ता है, तो अपनी जाति से ही है।
2: अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस मामले में तो कम से कम आपको एक अच्छा रहा कि प्रस्ताव आपको जो आया वो आगे से, मतलब जो आया
3: तो काफी जद्दोजहद के बाद आया साहब।
2: हाँ, लेकिन कई चक्कर काटने के बाद कई लोगों ने
3: 30-40 लोग चक्कर काट गए।
2: जी जी जी, उसके बाद में जो है बबीता जी के परिवार ने आपका दरवाजा खटखटाया।
3: जी,
2: फिर आगे क्या हुआ, आपने की वो रसम हो गई 1 जनवरी को।
3: उसके बाद ये है कि फिर हमारा 12 मार्च 2019 को संबंध हो गया,
2: शादी हो गई।
3: हाँ,
2: तो शादी पूरे मतलब धूमधाम,
3: पूरे जो रीति रिवाज होता है, बाकायदा बारात वगैरह सब कुछ, बहुत सारी सुविधाएं।
2: अच्छा,
3: सारा कुछ हुआ।
2: तो फिर मुश्किल क्या थी, जब देखिए जाति सही हो गई और आपके मतलब विवाह।
3: मुश्किल यही थी, जो मतलब जॉब लगने के बाद जो लोग आते थे कि यार तो इसको दिखता नहीं है, क्या करेगी हमारी बच्ची, वही लोग सोचते थे, कई अलवर साइड से भी आए, कई दौसा साइड से भी आए, कई हमारे करौली के आसपास के समाज के लोग आए थे। ये थोड़ी विनम्रता होती है कि जैसे समाज की जो संगठन होती है, वे संगठन यार हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना चंदा दीजिए, या 5,000 या 10,000 आप अध्यापक हो, और जब संबंध वाली बात आती है जब वे शांत हो जाती है।
2: तो मेरे भाई आपने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की कि देखिए मैं भले ही ब्लाइंड हूँ, लेकिन
3: बिल्कुल समझाने की कोशिश कई जगह की, कोई रुचि नहीं लेता, ये प्रभु की देन थी। तो अचानक फिर हमारे कुछ एचएम सामने भी आपको से कि किस्मत में एक अफसर सबसे बड़े जानते हैं कि जो नसीब में लिखी हुई थी, उन्हें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं संबंध होना समाज से नामुमकिन था।
2: जी जी जी, तो जब मतलब इनका प्रस्ताव आया तो उन्होंने खुशी खुशी मतलब स्वीकार कर लिया।
3: यस, हाँ।
2: अच्छा, कोई बिना किसी बात, उन्होंने कोई चिंता नहीं की इस बात की, ब्लाइंड वाइंड की
3: ना? हाँ, वो चिंता
2: क्या लगता है आपको, उनको कोई नॉलेज ही नहीं था, या उनको ये था बस कि बेटी का ब्याह करवाना चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे?
3: इनको ये था, कुछ तो हमारे एचएम साहब का भी इसमें सपोर्ट था, उन्होंने उनको थोड़ा समझाया ज्यादा, और एक इनको ये था कि भाई कुछ समझाया कि जॉब में तो है, कुछ वैसा होता तो आज बच्ची परेशान रहेगी, जॉब में है तो बच्ची सुखी तो रहेगी।
2: सही है, सही है, सही है।
3: ये चीज थोड़ा उनको समझ में आ गई।
2: अच्छा,
3: ये हम एक जॉब वाले को बच्ची दे रहे हैं, कोई उसको दहेज मांग नहीं, आज कोई जॉब वाला देगा तो 10-12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें उसको।
2: अच्छा, ये तो चलो इनका पक्ष रहा धर्म सिंह जी, लेकिन आपके परिवार की भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दबी हुई इच्छा तो रही होगी ना यार, कि हमारे बेटे की शादी कर रहे हैं तो कुछ हमें मिलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ था क्या?
3: कुछ परेशानियां तो भाई थोड़ी सी परेशान तो हुए यार, कम से कम ज्यादा नहीं तो शादी का खर्चा तो मिलना चाहिए था।
2: अच्छा,
3: जॉब में
2: ऐसे में आपने आपने कैसे समझाया अपने परिवार को?
3: समझाया क्या, ये संबंध मैंने हमने अपने बलबूते पर कर लिया था, भाइयों को तो बाद में बताया मैंने।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी कहानी रही। ओके ओके।
3: मतलब जो जो रस्म होती है सगाई की, वो मैंने स्वयं ने कर ली, जब बहुत बड़े कार्यक्रम आता है जब मैंने बताया था, थोड़े परेशानी हुई और थोड़े मनमुटाव भी
2: आया था। आपको क्या लग रहा था, घर वालों को पहले पता चल जाता तो नहीं होने देते बिना दहेज के शादी आपकी?
3: होने तो नहीं, होने तो देते थे, परंतु एक वो थोड़ा सा मनमुटाव कुछ ज्यादा होता।
2: आप कौन से नंबर के?
3: मैं सबसे छोटा हूँ।
2: सबसे छोटे, आपसे बड़े जो भाई हैं?
3: नहीं नहीं, मेरे से बड़े उन सब।
2: वो सब के कोई सरकारी नौकरी में है?
3: ना ना, सभी अनपढ़ हैं।
2: केवल आप ही हो सरकारी नौकरी में?
3: और एक पढ़ा, एक समझिए शिक्षित भी मैं ही
2: हूँ। वही बात है ना, अनपढ़ को तो चाहे कैसा भी हो, लोग अपनी लड़की मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी दे देंगे, और एक दृष्टिबाधित को शिक्षक को जो कि शिक्षक है उसको तो कोई मतलब अपनी लड़की जो है वो कैसी भी हो वो देना नहीं चाहता।
3: वो इस बच्चा थी।
2: तो फिर आपके भाइयों ने मतलब अंत में कैसे राजी हुए, शादी में तो शामिल हुए होंगे सब लोग?
3: हाँ, शादी में तो सब हो गए करीब सभी भाई लोग, क्योंकि कुछ आस पड़ोस वालों ने समझाया कोई बात नहीं यार, जितना भी हुआ सब बच्ची की बात है, बच्ची तो आ रही है। फिर उन्होंने जो बच्ची को जब गोद भरने की जो रस्म होती है, उस रस्म में गए तो बच्ची को देखा, भी बच्ची को देखते हुए सब प्रसन्न हो गए।
2: अच्छा, कि बच्ची सही है, सुंदर है? यूं
3: हाँ, सुशील सुंदर मिली।
2: अच्छा अच्छा, तो ये सब समस्याएं शादी के साथ समाप्त हो गई, या मतलब रह रह करके कभी कभी शादी के बाद भी लोगों ने आपको ताना मारना या परेशान करना मतलब जारी रखा क्या?
3: ऐसा तो कोई परिवार में नहीं किया। हाँ, शादी के बाद जब कभी हम मार्केट में जाते हैं तो लोग कुछ चर्चा तो करते हैं,
2: वो तो चलिए, वो तो लोगों का काम है यार, वो तो
3: वो चलता रहता है, लोग देखने भी आते हैं कई बार जगह, जैसे मैं यहाँ रहता था पहले शुरू में आया था, यार क्या सुंदर आई है, और वो ये लोग तो सोचते हैं, ये सोच तो सबकी होती है।
2: बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम बबीता जी से जरा पूछते हैं कि उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा था। बबीता जी, आपको शादी के समय ये मतलब बताया गया, अब रिश्ते की बात जब चल रही थी कि भाई जो आपके होने वाले पति हैं वो नेत्रहीन हैं, वो देख नहीं पाते हैं आंखों से?
4: हाँ, सब कुछ बता दिया
2: था। बता दिया था।
4: हाँ।
2: तो आपने कुछ मतलब सोचा नहीं इस बारे में, आपकी अपनी कोई राय, या वहाँ पे ऐसी मतलब कि मैं जो हमने तय कर दिया वो कर दिया, बात खत्म, ऐसा है?
4: नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा पे डाल दिया, तो जो वो पसंद करेंगे उनसे ही कर लूंगी।
2: आपने नहीं कहा कभी भी कि भाई एक जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, मैं उनके साथ कैसे जीवन बिताऊंगी, कभी आपके मन में नहीं आई ये बात?
4: नहीं।
2: अच्छा,
4: कभी
2: किसी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था आपने जो ब्लाइंड है, जिनको दिखाई नहीं देता है?
4: नहीं, मैंने नहीं देखा।
2: पहली बार ही इन्हीं को ही देखा आपने?
4: हाँ, मैंने तो शादी पे देखा।
2: अच्छा, तो आपके घर में भाइयों की शादी हो गई थी आपसे पहले?
4: नहीं, मेरे से सब छोटे हैं।
2: अच्छा, आपसे सब छोटे हैं। हाँ। सबसे पहले आपकी शादी ही करनी थी परिवार को?
4: हाँ, सबसे बड़ी मैं।
2: तो बबीता एक बात बताओ ना, बातें तो आपकी भी तो और जगह चली होंगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चली होंगी?
4: पहले ना हम दोनों बहनन की कर रहे थे, पापा हमारे।
2: हाँ, अच्छा।
4: जो मतलब कोई ना कोई कमी लेकर आती, के मतलब कोई लड़का कैसा है, कोई पीवे कोई खावे, ऐसे लेकर आती।
2: अच्छा।
4: हाँ, कोई मतलब कोई बात कैसे कर जाते, जो पापा अच्छी नहीं लगती, जो मना कर देते।
2: दहेज वहेज की भी प्रॉब्लम करते थे वो लोग?
4: दहेज की तो नहीं करते, मतलब वो क्या है, एक मतलब लड़की एक है मांगते, हमारे पापा दोनों की कहते।
2: अच्छा, तो वो बहन आपसे छोटी थी, बड़ी थी दूसरी बहन जो है वो?
4: वो मेरे से छोटी छोटी सा, हम चार भाई हैं।
2: अच्छा, वो उसकी अब शादी हो गई कि नहीं हुई अभी?
4: अभी नहीं, वो 11th में पढ़ रही है।
2: अच्छा, 11th की पढ़ रही है। ओहो, तो इतनी छोटी की शादी करने वाले थे आपके घर वाले?
4: अरे वो क्या है, वो है मतलब है गांव में ना, शादी लायक जो बड़ी है वो मेरे से बड़ी लगे।
2: अच्छा।
4: पापा ने कह रहे एक ही संग लेकर दूं जो बढ़िया।
3: ये चीज तो सर, आप भी अपन आदिवासी इलाकों में तो ऐसे चलता है।
2: जी,
3: बाद में भेज देते हैं जब बड़ी हो जाती है, तो
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात है कि भाई
3: खर्चा
2: कितनों
3: बोलते
2: का एक साथ ब्याह कर देंगे तो थोड़ा खर्चा भी कम लगेगा।
3: हैं डबल शादी का खर्चा नहीं बैठेगा।
2: सही सही कहा आपने, ऐसा होता है आमतौर पे,
3: हाँ
2: ये तो है। अच्छा बबीता, मम्मी पापा ने कभी बैठाल के बात करी कि भाई ये जो है तुम जिनसे शादी कर रहे हैं वो ऐसे कभी मतलब आपसे बात अलग से की या ऐसी नौबत नहीं आई?
4: नहीं, कही तो थी मेरे से, तू देख ले तूने और बात कर ले, तो
2: हाँ
4: मम्मी पापा के सामने शर्म सा आई थी जो मैं।
2: अच्छा, तो आपने तो कही मान ली उनकी कि भाई जो आपने करिया वो ठीक है ना।
4: हाँ
2: ये ठीक है, ये अच्छी बात है। तो
4: और बोलते हैं जो अच्छे ही ढूंढे कुछ गलत सुनने ढूंढे।
2: ये बात भी ठीक है, लेकिन वो कईयों के होता है ना कि भाई दिख अच्छा सुंदर और बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और जो गाड़ी पे घुमा सके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है ना कई जगह। अच्छा
4: ऐसे मेरे मन में नहीं आई थी
2: ऐसे
4: वाटर
2: नहीं आई, तो अब आप
4: नहीं,
2: गाड़ी पे बिठा के घुमाती हैं कि नहीं?
4: अभी तो नहीं घुमा
2: अभी नहीं
4: दी
2: घुमाते, गाड़ी नहीं दिलाई इन्होंने?
4: अभी।
2: ओहो अच्छा। तो बबीता, शादी से पहले बात बात होती थी फोन पे इनसे, धर्म सिंह जी से
4: हाँ
2: होती थी? अच्छा,
4: हाँ
2: तो इसमें फिर कुछ पूछा आपने इनसे कि भाई आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं?
4: नहीं
2: तो
4: ऐसे मैंने,
2: कुछ नहीं, और इनने आपसे कुछ पूछा था कि भाई घर घर को सारो काम कर लेते हो कि नहीं?
4: ऐसे इनने भी नहीं पूछी, जो गई जैसी है वैसी आ जा।
2: अच्छा, वो ठीक है, सरकारी नौकरी है मतलब तो सब ठीक है फिर तो। है ये समझ सबके अंदर होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होने के बाद जो है लड़की लड़के का जीवन जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो और कोई किसी ने विरोध विरोध किया पर परिवार में, दूसरे दूर के चाचा ताऊ ने, मामे ने, किसी ने कि यार ये कहाँ
4: हाँ
2: लड़की इनकी शादी करा रहे हो भाई ब्लाइंड के? अच्छा
4: हाँ हमारे चाचा वगैरह ने, ताऊ वगैरह ने तो कही है थी,
2: कही थी, क्या कही थी?
4: पापा से कही, मेरे मुंह तो नहीं मालूम पर पीछे पापा कह रहे थे, कह रहे थे ताऊ वगैरह ऐसे कह रहे वैसे कह रहे। मैंने कि वो जाने कहा है, मैंने पढ़े लिखे इंसान नहीं जान सके चाची को।
2: जेब बात बिल्कुल सही कही है कि भाई पढ़े जो पढ़े लिखो ना है उसको क्या मालूम।
4: हाँ अभी तो बस घर घूरे घरे देखे, खेती बाड़ी देखे, पर छोरा नहीं देखे ढंग से जो खावे के पीवे। हमारे
2: ये बात सही
4: पास
2: बात
4: आए
2: है।
4: तो खावे पीवे से बहुत ज्यादा नफरत है। हाँ
2: अच्छा तो शादी में सब शामिल हुए कि ना हुए? तुम्हारी शादी में
4: सब शामिल हुए थे। हाँ
2: सब शामिल हुए थे? ओके, और आज आज सब खुश होते कि भाई लड़की का जिंदगी सुधर गई, बढ़िया है, जीवन साथी
4: अब तो सब खुश हैं।
2: सब खुश है,
4: हाँ
2: ससुराल अपने पियर में जाना हो पाता है तुम्हारा?
4: हाँ
2: अच्छा
3: 30 किलोमीटर दूर है सर।
2: अच्छा 30 किलोमीटर दूर है।

0: भले बीए ही करवा
1: बात
0: लेते,
1: सही
0: बीएड
1: है, वो आपकी सही
0: ना
1: है। अब
0: करवाते लेकिन बीए ही करवा लेते, भले प्राइवेट ही करवा लेते बीए, कहाँ दिक्कत है।
1: मेरा प्लान है कि मैं BSTC कराऊं उस
0: हाँ
1: सत्र
0: करो,
1: से।
0: पढ़ाई तो कराओ यार।
1: यस यस
0: मतलब ये
1: करूंगा।
0: देखो, पहले के जमाने की परिस्थिति अलग थी, आज का समय अलग है, और आपको मतलब थोड़ा सा अगर समय मिले तो इस पर भी विचार कीजिएगा।
1: यस यस
0: बाकी और बताएं, आप अपनी जिंदगी से खुश हैं
1: हाँ, फिलहाल खुश हैं।
0: आज? अच्छा, और कोई शिकायत नहीं है मतलब किसी से भी?
1: नहीं, हमारी कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है, दोनों पति पत्नी मजे से रहते हैं, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से चल रहा है फिलहाल।
0: धर्म, एक बात बताइए आप, कि
1: जी
0: आपके उस एरिया में जो बताइए आपने विशेष जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो साक्षरता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम है ना? तो आप तो एक तरह से पुरुष हैं, तो आपने जैसे तैसे समस्याओं का सामना कर लिया। आपके उस एरिया में मैं भी जानता हूं और आप भी जानते ही होंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं, उनकी स्थिति तो और ज्यादा गंभीर होगी, और ज्यादा चिंताजनक होगी फिर।
1: हाँ, कई जगह, एक जगह अभी एक एग्जाम दे रही थी बच्ची पिछले सत्र में BSTC का, तो उसमें जो एग्जामिनर उसके यार जो ट्यूटर लगाया जाता है, कोई बोला तुम्हें तो क्या दिखता है, तुम कैसे पढ़ती हो क्या, उसको वहां टॉर्चर कर रहा था। जो हम कई लोगों ने जहाँ जाकर, मैंने स्वयं ने और एक हमारे साथ में एक अध्यापिका थी, उसने खुद ने जाकर उस प्रिंसिपल को कहा कि भाई इनको क्या बात दे, आपके पास मेडिकल है तो आप इनको करवाते हो, इन लोगों से एग्जाम दे रही है उसका क्यों माइंड खराब रखते हो, वो फेल हो जाती है उस पेपर में तो कौन जिम्मेदार होगा। मतलब समस्याएं तो आती हैं सर, परंतु तो वो क्या है, ज्यादातर सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि जो जूझ रहा है वो उसका सपोर्ट नहीं कर पाता है कोई ज्यादातर।
0: अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस एरिया में जब आप हैं अब और अच्छी स्थिति में भी हैं, तो जो ये जो दिव्यांगों की जो परिस्थितियां हैं खासकर, उसके लिए काम करना चाहिए?
1: अब काम तो करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शायद पूर्व में विदित होगा, 2012 में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था मैंने, 6 राज्यों की टीम बुलाई थी। उस वक्त कई हमारे जो समाज कल्याण अधिकारी, जैसे उन्होंने कह दिया यार 96 बंदे कहाँ से लाओगे, बोलो ऐसे शब्द तो बोले थे कि 96 बंदे कहाँ से लाओगे आप।
0: अच्छा
1: जब एक उनको विश्वास ही नहीं था कि वास्तविक दृष्टिवादी थे क्रिकेट खेल सकते हैं, शायद
0: अच्छा
1: आपको पता होगा अपन के क्रीड़ा परिषद के माध्यम से जो
0: जी
1: 2012 में
0: जी जी जी
1: नेशनल लेवल का हुआ था,
0: जी
1: और उससे करौली जिले में पूरी मुझे आज निजात मिल गई है। किसी विभाग में जाता हूँ अब कोई मुझे पहले परेशान करता था, अब कोई परेशान नहीं करता है करौली जिले की।
0: उस टूर्नामेंट की बदौलत।
1: हाँ, और इतना क्राइब था कि उसको देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता था, 3 दिन चला था, 3 दिन। आप अपने अजमेर के बहुत से साथी आए थे, मेरे कई क्लासमेट भी आए थे कई।
0: लेकिन डियर ये बताओ ना कि कार्यक्रम तो आपने करवा दिया 2012 में, कार्यक्रम तो रोज रोज करवाना संभव भी नहीं है किसी के लिए, लेकिन
1: उस
0: लोग
1: यही है
0: वहां
1: कि
0: की
1: आपको मैं
0: परिस्थितियों को
1: बताऊं सर,
0: सुधारने के लिए काम आपको रोज रोज करना पड़ेगा, तो वो आपने सोचा
1: वो
0: है कि नहीं?
1: करौली से मुझे परिस्थितियां सुधर चुकी हैं मेरी।
0: अच्छा, पर करौली में ठीक है माहौल?
1: हाँ, अब माहौल ठीक है, वहाँ कोई भी दिव्यांग किसी प्रकार का, जैसे जयदेव है आज पढ़
0: हाँ
1: रहा है, कहीं कोई
0: हाँ
1: परेशानी आती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसी विभाग में वहाँ मुझे परेशानी नहीं आती है, और करौली में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम, कोई किसी दिव्यांग की कोई परेशानी होती है, उसको मैं स्वयं सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि
0: अच्छा
1: तो उस टूर्नामेंट से करीब करीब सभी विभागों के अधिकारी, नहीं तो कुछ कर्मचारी जानने लग गए, हाईलाइट अच्छा हुआ था।
0: इसके अलावा अब क्या सोच रहे हैं आप आजकल कैसे?
1: वैसा ही
0: मतलब
1: यही सोच रहा हूँ कि भरतपुर जिले
0: भरतपुर
1: में
0: में,
1: तो
0: आपका
1: वैसा
0: कहने का
1: ही।
0: मतलब है कि भरतपुर में स्थितियां अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो
1: हाँ
0: वो आपको करनी पड़ेंगी, मतलब उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा उस एरिया में।
1: हाँ यस
0: अनेक संगठन है, आप उन संगठनों के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं वहां पर। नहीं
1: संगठन क्या है, इसके आसपास नहीं है ना ऐसे कोई संगठन अपने
0: नहीं
1: जयपुर अजमेर।
0: राजस्थान लेवल के जो बड़े बड़े संगठन है
1: अब ये
0: ना,
1: कौन सा संगठन है, ये राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ।
0: हाँ, तो इन्हीं के तत्वावधान में भी आप काफी कुछ काम कर सकते हैं।
1: हाँ, तो प्रयासरत हूँ, देखो कई बार, एक बार KPG सर से भी एक दो अधिकारियों को यहाँ समझाया था, उनसे भी उनको भी महसूस हुआ यार तुम भरतपुर संभाग में बहुत ज्यादा परेशान ही है, क्योंकि तो वो एक RAS लेवल पे है, फिर भी कई अधिकारियों ने समझा कि यार लैंड तो है, क्या RAS होगा ये।

0: तरीके से आप, क्योंकि शायद केपीसी से आपकी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज को समझा कि यार हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कैसा भी हो, पर अज्ञानता तो है। खुद केपीसी ने मुझे एक बार बताया था बात, क्योंकि तो मेरी कई समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार मैंने फोन किया उनसे डायरेक्ट, और उन्होंने मेरी समस्या सुनी और समस्याओं का समाधान भी करवाया खैर।
1: तो ऐसे ही अब जैसे अब आपकी समस्याओं का अनेक साथियों ने समाधान करवाया, इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा इस भूमिका में आना चाहिए कि आप बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है वो कुछ काम कर सके।
0: अब यही है कि आप जैसे बड़े भाइयों से और कुछ सलाह लेंगे और क्या कार्य कर सकते हैं, जो हालांकि हम तो जैसे तैसे सफल हो गए हो चुके हैं, परंतु अब आने वाले जो बंदे हैं उनको ये समस्याएं नहीं आए।
1: क्योंकि कहते हैं ना वो शुरुआत घर से ही करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये भी है कि और कुछ नहीं तो आप ये जो विवाह के मामले में जो आज भी पुरानी सोच बनी हुई है लोगों की, इसको दूर करने के लिए भी आप जन जागृति फैला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं।
0: और वो तो क्या है कि यहाँ का सबसे बड़ा ये जो हमारे साथी हैं, जूनियर्स जो साथी हैं, वो अध्ययनरत हैं, जोधपुर हैं, कहीं अजमेर हैं, तो यहाँ मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको पता है। अब ये कुछ साथ दें इस जन जागरूकता को तो फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि तो कुछ फाउंडेशन आप जानते हो कि राज कर्मचारी की भी होती है।
1: बिल्कुल ठीक बात है। तो जब शादी होने वाली थी, भाइयों को पता चला, तो कभी ऐसी नौबत तो नहीं आई कि कोई आपको मतलब मारना वारना चाह रहे हो या
0: नहीं, ऐसा कुछ
1: लड़ाई
0: नहीं
1: झगड़ा
0: हुआ।
1: करना चाह रहे हो, मतलब ऐसी नौबत तो नहीं आई थी?
0: नहीं, वो सभी समस्याओं को समाधान आसानी से कर लिया था मैं।
1: अच्छा, आसानी से कर लिया था। अब सब मतलब
0: क्योंकि
1: आपकी माता जी और अब सब अपनी बहू से खुश है मतलब?
0: आपको ये तो शायद पूर्व से पता है कि मैं समस्या को समाधान तो जहां तक करीब करीब कर ही लेता हूँ।
1: तो बबीता, झगड़ा वगड़ा होता है कभी दोनों में?
2: नहीं
1: कभी नहीं होवे?
2: नहीं
1: गुस्सा किसको आता है, आपको कि धर्म सिंह जी को?
2: दोनों को
1: दोनों को आता है।
2: हाँ,
1: अच्छा, ज्यादा किसको आता है?
2: नहीं हमें ज्यादा
1: अच्छा। तो
0: कहूँ,
1: जी जी
0: बुरा तो एक
1: जी
0: प्रोग्राम है इस पे लिख के लिए चाहिए,
1: जी
0: झगड़ा तो दूध के झगड़े में अपन भी झगड़ जाते थे
1: हाँ, वो तो कोई बात
0: सुबह
1: नहीं।
0: सुबह 6 बजे का दूध, कभी बार आप मैं सोता हुआ तो आप लिया थे। हाँ
1: हाँ वो तो है, वो तो है यार, वो तो दूध तो पीना पड़ता था ना अब सुबह सुबह,
0: आपको
1: इसलिए
0: पता पड़ता धर्म सिंह सो रहा है।
1: वो अलग मामला हुआ करता था, वो
0: हाँ
1: हॉस्टल के दिन थे वो तो।
0: तो वो यार होता भाई, वो सर वो तो मेरी
1: अच्छा,
0: वो सोना लेकर जगना
1: तो इसी में लड़ाई होवे ज्यादा मतलब। तो
0: और क्या है।
1: धर्म सिंह भाई, एक तो ये है कि अब आप एजुकेशन के मामले में और जन जागृति के मामले में काम करें इस कार्यक्रम
0: इसी
1: के
0: वजह से
1: संबंध।
0: तो मैंने चॉइस किया ना कि जेनारायण व्यास से
1: जी
0: ये करी, इसके बजाय मैंने करौली से ही करना अपने को उचित है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये कार्यक्रम की सफलता भी तभी है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी सिखाना चलवाना ये भी अगर संभव हो, परिस्थितियां अनुमति देती हो तो। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और आपने कर दिया, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति
0: बिल्कुल
1: अनुमति देती हो तो वो भी आप कीजिएगा
0: बिल्कुल, वो सत्य है, वो मैं बाइक लेने के इरादे में हूँ,
1: कम
0: अभी सोच रहा हूँ बैटरी वाली लूँ के पेट्रोल वाली लूँ, ये सोच में।
1: तो और कोई आपके जिंदगी के अनुभव से कोई बात आप कहना चाहें जो रह गई हो धर्म सिंह भाई?
0: अब समस्याएं तो देखो ब्लाइंड को शुरू से आती हैं, परिवार में भी सबसे बड़ी के समस्याएं तो आपको पता है कि यदि जॉब नहीं लगती है जब तक, तो ब्लाइंड का कहीं परिवार में कहीं कोई वाज नहीं होता है,
1: जी,
0: वो जॉब लग जाती है जो सभी एक दूसरे को चाहने लगे।
1: सभी सगे हो जाते हैं।
0: ये तो आपको हमको पता है।
1: नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपके अनुभव कोई रहे हो, आपकी कोई घटनाएं रही हो ऐसी खास जो आज इस मंच पर आप बताना चाहें?
0: घटना जो मैंने आपकी बताई, एक तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो संघर्ष करना पड़ा, और कई संघर्ष अभी भी करने पड़ रहे हैं छोटे
1: अच्छा,
0: मोटे।
1: आज भी?
0: तो सेवा संघ के पटल पे अभी चल रहे हैं वे।
1: तो आप जब आप कार्यक्रमों में कहीं जाते हैं, जो परिवार के कार्यक्रमों में साथ साथ जाते होंगे सब जगह, तो तो अब कुछ सोच बदली है लोगों की, आज भी वैसे ही है कि अब देखना और देख?
0: सोच हल्की बदल रही है।
1: अच्छा,
0: शुरुआत में जो देखते हैं एक बार देख दो बार देखता है, तीसरी बार तो वो सोच, क्योंकि कई लोगों की, जैसे कि एक बार हम यहाँ ब्याना शहर के अंदर एक मंडी में गए थे, जो हम दोनों सब्जी लेने गए थे, वो एक ठेले वाली लेडीज थी, वो बुला के बबीता जी को, यार आपके पिताजी ने देखा नहीं कैसा लड़का है, ये आपको पसंद आ गया क्या?
1: अच्छा,
0: मतलब अलग से यार क्यों बुलाया? तो ऐसी सोच है, तो आप जानते हैं कुछ सोच तो होती है लोगों की, कई बार हमारे स्टाफ में हो जाती है, यार तुम सारा काम ताले खोलना लगाना टेबल उठाना ये करना, तुम्हें कैसे ये 2 मिनट में रोड पे पहुंचना रोड पार करना, ये एक समस्या है जदोजहद तो होती है। शुरू में गांव वालों को भी समस्या, यार कैसे पढ़ाओगे क्या करोगे? जब मैं 6 महीने जब पढ़ाया, गांव बच्चों ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो आज उस विद्यालय में मैं ये कहूँ कि मैं प्रत्येक वर्ष 10 से 15 एडमिशन प्रति वर्ष उसमें लाता हूँ, गांव वालों को अपनी जिम्मेदारी से, तो उनको विश्वास है कि ये गुरुजी हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। हालांकि मेरा पूरा स्टाफ अच्छी मेहनत कराता है,
1: अच्छा,
0: परंतु उनकी जो सोच थी कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी हम सोच को तोड़ने के लिए इसलिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है और करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी है ना दिव्यांग, जो बीए और बीएड करने के बाद उनकी आंखें चली गई और वो जाते हैं स्कूल में जाके बैठते हैं और छुट्टी हुई और रवाना हो जाते हैं, तो वो विडम्बनाएं सभी लोग सोचते हैं यार ये भी ऐसी होंगे, तो कई स्कूलों में ऐसी शिकायत मिलती है कि कई टीचर ऐसे हैं यार वे तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल का उन्होंने डप्पा उठा दिया, मतलब बोलते हैं ना कि डप्पा बैठा दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो कमी क्या है उनकी है, जो बीए बीएड करने के बाद में उनकी अचानक रोशनी चली गई और उनकी जॉब लग गई, हालांकि करने को तो वो भी कर सकते हैं, परंतु उनकी वो सोच नहीं, और उनकी क्या राजनीति पहुंच भी अच्छी, तो पढ़ाना नहीं पढ़ा बात बराबर है, पर हमें तो उससे ज्यादा काम करना जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो सोच को दूर कर सकते हैं।
1: अच्छा धर्म सिंह, आपके उस क्षेत्र में ये बाल विवाह वाली भी समस्या होगी?
0: हाँ, बाल विवाह वाली आजकल कई संगठन इस पर रोक लगा रहे हैं, इसलिए बाल विवाह वाली समस्या नाम मात्र की रही है।
1: आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित है या कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है आपको?
0: हाँ, जैसे आपको पता है थोड़ी बहुत लाइट वगैरह पता चल जाती है।
1: नहीं, इसका पूछने का हमारा मकसद ये है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाई देता है तो उससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती होगी।
0: इतना नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, तो अब जो है भविष्य की क्या योजनाएं हैं और आप दोनों की?
0: भविष्य की यही योजना है, देखो आप जैसे बड़े भाइयों का परामर्श सलाह रहेगी, बहुत अच्छा जीवन यापन जो जॉब है वो करेंगे, और आगे इनको भी मुझे बीएसटीसी कराने कर हो सकता है कहीं जॉब लग जाए आसपास, तो जॉब करा लेंगे और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से रहे, माँ घर में है उसकी अच्छी सेवा हो।
1: अच्छा, माता जी को आप अपने साथ रखते हैं यहाँ पे?
0: यहाँ नहीं रहता हूँ फिलहाल, तो अच्छा, करौली है।
1: अच्छा करौली है, जी। तो बबीता जी, घर के सारे काम वगैरह कौन, मतलब बाहर के जो काम होते हैं वो आप ही करती हैं या धर्म सिंह जी करते हैं?
2: मैं ही करूँ।
1: आप ही करते हो?
2: हाँ।
1: तो आपने कभी, आपका भी मन करता होगा यार कि आज तो आप ही चले जाओ, हम तो थक गए हैं परेशान हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर
2: इन्हें संग ले जाऊं?
1: अच्छा, साथ में ले जाते हो, ओके ओके ओके। लेकिन कुल ना के खुशी खुशी आप सारा संभाल लेते हैं चीजें, कि भाई ये नौकरी करके आवे हैं तो बाकी सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर एक तरह से ले रखी है ना। अच्छा, तो कोई परेशानी तो नहीं है जिंदगी में?
2: नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
1: कोई शिकायत
2: नहीं?
1: बोल दो आज तो खुल करके।
2: नहीं, कछु नहीं है।
1: हाँ, कछु ना है, कछु हो और आप कहीं मतलब बोलना नहीं चाह रहे हो?
2: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: मतलब जो ऐसी बात जो आपके मन में हो और आप कहना चाहो, जो धर्म सिंह जी ने मना करी हो कि भाई ना कहनी?
2: नहीं, मैंने तो खूब खोल के बोली हूँ।
1: अच्छा। अच्छा, कभी कोई प्रोग्राम हुआ आपका, कोई ऐसे कार्यक्रम हुआ कभी?
2: नहीं, पहली बार है।
1: पहली बार ही है रो है।
2: हाँ
1: हाँ देख लो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहली बार फिर मौको पता नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो यही
0: नहीं।
1: यही दुआ करेंगे ईश्वर से।
0: नहीं।
1: तो अब जो है वो बबीता को देख करके वहां की आसपास की लड़कियां और ज्यादा प्रभावित हों, और दिव्यांग साथियों की, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी प्रभावित हो, और जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी सुधारने के लिए और प्रयास हो, क्योंकि वहां पे कई ऐसी दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं जिनको मैं भी जानता हूं।
0: हाँ, आप तो जानते हैं करीब, शायद मैं तो उनको नहीं जान पाता हूँ, संपर्क
1: जी जी जी
0: नहीं है उनका।
1: जी इसीलिए तो उस क्षेत्र में जो है वो ये जो सकारात्मकता है ये आना बहुत जरूरी है। धर्म सिंह भाई, कहीं ना
0: जरूरी है
1: कहीं
0: इस चीज
1: ग्रामीण
0: के लिए, तो मैं भी अग्रसर हूँ, जहाँ तक पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ में आगे किसी दिव्यांग को कोई ऐसी परेशानी ना आए।
1: कहीं ना कहीं हमारा जो रेडियो मधुबन है, ये ग्रामीण परिवेश में कार्यक्रम प्रसारित करता है और कम्युनिटी रेडियो है ये, तो यहाँ अबू और इसके आसपास भी काफी ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो समाज में थोड़ी सी मतलब जो है वो सोच को विकसित किया जाए। तो ये लेकिन किसी एक दो के करने से नहीं होगा, ये कोशिश सबको करनी होगी। आप क्या मानते हैं कि नहीं?
0: बिल्कुल
1: अपनेपन की भावना से और जो है वो बिना किसी की कमियों को ध्यान में रखे हुए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सबको काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब चलते चलते अंत में धर्म सिंह, क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को?
0: सुनने वालों को यही है कि एक जो दिव्यांग के प्रति जो सोच है, सकारात्मक सोच रखें और सहयोग नहीं बल्कि उनके एक सहानुभूति रखें, चाहे सहयोग मत कीजिए आप, एक सहानुभूति के तौर पर उनके साथ रहें और उनके मन को ना दुखाएं। और मैं सभी दिव्यांग से यही, मैं इस रेडियो मधुबन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उनको कभी जिंदगी में अपने आप में हार नहीं माननी चाहिए।
1: जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो बबीता जी, आप भी अंत में कुछ कहना चाहेंगे सभी सुनने वालों से?
0: वैसे मैं
1: अच्छा, अब शर्म आ गई?
0: आपसे बोल रहा था, थोड़ा क्या है, पहला जो होता है ना, कहीं भी हो आप जानते हैं,
1: जी,
0: तो झिझक तो रहती है।
1: नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन बहुत अच्छे से आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं, और साथ ही तमाम साथियों से ये निवेदन करते हैं कि देखिए, कहानी को सामने लाना महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी है, कैसी नहीं है, उसमें कितना संघर्ष है, कितना नहीं है, ये जो है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे साथियों को मंच मिले और हमारे दिव्यांग साथी आकर के जो है अपनी बातें बताएं, अपने दिल की बातें करें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है, ताकि हमारी आवाज जब समाज तक पहुंचेगी तो शायद कभी ना कभी समाज में जो है वो सोच बदलेगी, यही उम्मीद हम करते हैं। तो श्रोता हूँ, आप सबका इंतजार है हमेशा इस कार्यक्रम में। यदि आप विवाहित हैं, दिव्यांग हैं, और आपकी जिंदगी की भी कोई कहानी है, और आप अगर इस मंच पर आकर के बताना चाहें, सुनाना चाहें, तो रेडियो मधुबन हमेशा आप सबका इंतजार करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, आपकी प्रतिक्रियाएं आप चाहें तो 94-14-15-14-15 पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप info@radiomadhuban.in पर मेल भी कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है रेडियो मधुबन के नाम से, उसको इंस्टॉल करें और सुनते रहें 24 घंटे सातों दिन रेडियो मधुबन। और आज के इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। धर्म सिंह जी और बबीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी
1: कार्यक्रम में शामिल होने।
0: टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक
1: जी। और श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति। As I sit here

ओम शांति। आज 30 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते इस समय तुम आत्माएं परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हो और दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। कोई गुरु यात्रा कराते हैं, तीर्थों पर ले जाते हैं। भारत में तो स्त्री का पति भी गुरु हो जाता है। कहते हैं स्त्री का पति ही उसके लिए गुरु है। तो दुनिया के अंदर अनेक ऐसे गुरु हैं जिनके 50 फॉलोवर्स हो, 100 फॉलोवर्स हो, 500 हो या लाखों के अंदाज में भी होते हैं। फिर वो गुरु का इतना सम्मान करते हैं। आगा खां गुरु था, बाबा कहते उनका हीरो में वजन किया। लेकिन यहां परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु कितना सूक्ष्म बिंदु है, इस बिंदु का क्या वजन करेंगे। ये पिता परमात्मा परम सतगुरु बन करके श्रेष्ठ मत देते हैं श्रेष्ठ गति के लिए, और वह आकर के हमें रूहानी यात्रा कराते हैं। ये रूहानी यात्रा बुद्धि की यात्रा है कि जब हम शांत में बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं, वर्षे को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये रूहानी यात्रा जो करते हैं उनके विकर्म विनाश होते हैं और वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व के बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। कितना निरहंकारी निष्काम सेवाधारी बाबा है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है। उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। शिव बाबा का तो लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, अनेक प्रकार के गुरु हैं, ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा कहे तुम समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना।
सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं, तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु है। कोई को 100 फॉलोवर्स, कोई को 500, कोई के 50 भी होते हैं। कोई के 100 फॉलोवर्स, बाबा कहे कोई के 500 और कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजो का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोवर्स है, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरे में तौलकर दान किया था। बाबा ने कहा, बाबा का देखा हुआ होगा, खोजो लोगों ने उनको हीरे में तौलकर दान किया था। उनके शिष्य ने एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लैटिनम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? बाबा कहते हैं, सतगुरु को क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है, हाँ, शिव बाबा का वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, परम सतगुरु कितना वंडरफुल है। सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते। इस दुनिया में आकर भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं, दाता है, तो ले कैसे सकते। फिर भी बाबा कहते ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं कि अभी दान करेंगे, दूसरे जन्म में एवजा मिलेगा। अब यह तो है बेहद का बाप, इन जैसा निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। शिव बाबा के तरह निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता है। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुखदाम का मालिक बनाते हैं, बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस निश्चय किया, बस वर्षे के हकदार बाबा कहते बन गए। बाबा और वर्षे को याद करना है, इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। इस ज्ञान की कभी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तक हो जाए। हाँ, बाबा जो मुरली सुनाते हैं, अगर बाबा कहे शुरू से लेकर के लिखते जाओ, एक दिन भी मिस ना करो, तो ढेर पुस्तक हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको तंत्र मिलता है, बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है।
बाप का परिचय देने से क्या होता है, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है, बाबा कहते इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं, यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। रूहानी यात्रा सिर्फ एक जन्म की है, बाकी तीर्थ यात्राएं तो जन्म जन्मांतर द्वापर से करते आए। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसकी भी होती नहीं है दुनिया में, इससे पहले तो सदगति तो किसी की भी होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, यहां तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसे ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थ क्वेक आदि होते हैं, सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो कलयुग अंत में बाबा ने सबका दुख हर करके सुख दे दिया, तो सतयुग में कोई भी प्रकार का दुख होता नहीं। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। दुखरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, तो बाबा कहे तुम्हें भी किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको ये रास्ता बताना है, कौन सा रास्ता, सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है, सुखदाता के बच्चे हैं तो तुम्हें सबको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहां आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा से हम स्वर्ग का सुख लेते हैं तो इस दुनिया का सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बुट्टी देते हैं, क्या देते हैं, संजीवनी बुट्टी, किस लिए, सुरजित होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बुट्टी है कौन सी, बाबा आकर संजीवनी बुट्टी देते हैं कौन सी, मन मना भव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन, कितना प्यार बाबा करते हैं। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पिता। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे, आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप पे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरहंकारी, अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु है, गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं, शिव बाबा का कोई गुरु नहीं, यह सत बाबा सत टीचर सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है, बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं,
इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। हमारे जो सदगुण है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को सोले कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं, ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, क्योंकि वह तो सदा ही सागर है, संपूर्ण है। श्री कृष्ण के लिए कहेंगे कि हाँ, सोले कला संपूर्ण, वहां लिमिट है। तो बाबा कहते हैं वह तो स्थिर है। बाप कहते, ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, सोले कला संपूर्ण वाला टाइटल शिव बाबा को नहीं दे सकते, मैं थोड़ी विकारी बनता हूं जो फिर सर्वगुण संपन्न बनू, मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी है। हाँ, श्री कृष्ण जैसी महिमा थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है, इस यात्रा से फिर तुम अभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। बाबा कहते हैं कि इस यात्रा से फिर तुम मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो, उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं, भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। असंख्य हर प्रकार की कितनी सामग्री है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति कर देता है, ज्ञान का एक वाक्य भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है, यहां तुमको सीढ़ी चढ़ने में एक सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, बाबा की मदद के लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य दो प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सदगति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। श्रीमत है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर, या भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है, हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। यह बातें तुम ही जानो, दुनिया वाले बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाबा कहते ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तब ही भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझे कैसे,
बाबा कहे वे लोग समझे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा ये ज्ञान तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है यह भी तुम जानते हो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ यहां आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहां भी जाओ, मन मना भाव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। हम बाबा कहे इससे ही बेड़ा पार है, यह भी तुम जानते हो। पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती रहती है, मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। आफतें आएगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है। बाबा कहते दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, मैं आता ही एक बार हूं। अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा।
पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्म समझ करके चलना। पुरुषार्थी का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं है, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है। आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज का व्यक्ति इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज में स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति में सहज हो जाए तो यही योगी की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। बाबा के जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना आसान होता है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए तो यह योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। यह योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।